0: FM 107 पर पैगाम।
1: बहुत पुरानी बात है कि एक शख्स से ऐसा कसूर हुआ कि वो कानून की पकड़ में आ गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, हर कोई उसे बुरा भला कह रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। उस शख्स का मुकदमा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। आपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देता हूं, तुम में से जिसने कभी कोई गुनाह किया हो वो यहां से चला जाए। सिर्फ वही लोग इसे बुरा कह सकते हैं जिन्होंने खुद कभी कोई बुराई ना की हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक एक करके सब के सब चले गए। इसीलिए हुक्म है कि जब दूसरे का ऐब मालूम हो तो अपने ऐब को मत भूलो, बल्कि उसे एक यादहानी समझो। कुरान हकीम में इरशाद है कि हर वो शख्स जो दूसरे शख्स का ऐब निकालता है, बहुत जल्द वही ऐब उसमें भी जाहिर होगा। इसलिए ऐब जुई और तानाजनी से बचना चाहिए।
0: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

जिसने सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली वो शाम तक जिनों से महफूज हो गया, और जिसने शाम के वक्त ये आयत पढ़ी वो अगली सुबह तक उनसे महफूज हो गया। रिवायत है अल हाकिम, अन्नसाई और अत्तबरानी की, और अल्बानी साहब ने इसे सही हदीस बताया है।

0: अव्वल है और ना काला गोरे से। हाँ, बुजुर्गों और फौकियत का कोई मयार है तो वो है तकवा।
1: आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज अपने आखिरी खुतबे में बयान फरमाए। इस तरह ये उनकी वसीयत है, लेकिन अफसोस कौम ने उस वसीयत को भुला दिया और रंगो नस्ल, ज़बानो वतन, ज़ातो कबाइल के इख्तलाफात में बढ़कर रह गई। खुतबे में उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब इंसान एक आदम की औलाद हैं और आदम अलैहि सलाम की हकीकत इसके सिवा और क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए और फजीलत और बर्तरी के सारे दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पांव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तवल्लियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत बदस्तूर बाकी रहेंगी। अफसोस कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भुलाकर कबाइली और खानदानी इफ्तिखार में मुब्तला हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि तुम सब खुदा के हुजूर इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर दुनिया का तो बोझ लदा हुआ हो और दूसरे लोग सामान आखरत लेकर पहुंचे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदा के सामने तुम्हारे किसी काम ना सकूंगा। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए अर्शाद फरमाई कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश ये सोचकर कि हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार हैं और हम कबीला हैं, हमारी सिफारिश तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर देंगे, दुनिया हासिल करने में दीन से और नेक काम करने से लापरवाह हो जाएं।
0: इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने तुम्हारी झूठी नखवत को खत्म कर डाला, बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फख्र और मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों, तुम्हारे खून माल और इज्जतें एक दूसरे पर कतन हराम कर दी। हमेशा के लिए इन चीजों की अहमियत इसी से है जैसे तुम्हारे उस दिन की और इस मुबारक महाजिल हज की खास तौर पर इस शहर में है। तुम सब खुदा के सामने जाओगे और वो तुम्हारे आमाल की बास परस करेगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि ऐसे में कुछ तो खून करने लगो। और सारे मजमे ने यख जुबान होकर कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद हदिया बरहक ने फरमाया, अगर किसी के पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखने वाले को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का ख्याल रखो, उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जो तुम पहनते हो। सारे मजमे ने सदक रसूल कहकर इकरार किया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते हैं।
1: इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरे जहलियत का सब कुछ मैंने अपने पांव तले रोन दिया। दौरे जहलियत के खून के सारे इंतकाम अब कलदम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कलदम करार देता हूँ, मेरे अपने खानदान का है। रबी इब्ने हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनू हजैर ने मार डाला था, अब मैं माफ करता हूँ। दौरे जहलियत का सूद अब कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का सूद है, अब ये खत्म हो गया। मजमे ने एक बार फिर सादे के रसूल का नारा लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, लोगों, खुदा ने हर हकदार को उसका हक खुद दे दिया, अब कोई किसी के वारिस के लिए वसीयत ना करे। ये वजाहत है इस बात की कि अल्लाह ने कुरान में विरासत का कानून वाज़े फरमा दिया है और हर वारिस का हिस्सा मुय्यन फरमा दिया है और इसी हिसाब से तिरका तकसीम होगा।
0: हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद तन्बी है इन लोगों के लिए जो अपनी अना या बुग़्ज़ की वजह से किसी जायज वारिस को उसके हक से महरूम कर देते हैं। इसके अलावा फरमाया, बच्चा उसी से मंसूब होगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, और जिस पर हरामकारी साबित हुई उसकी सजा पत्थर है। हिसाब किताब खुदा के यहाँ होगा। जो कोई अपनी निस्बत बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका की बजाय किसी और को अपना आका जाहिर करेगा, उस पर खुदा की लानत है। कर्ज कबले अदायगी है

0: अर्यतन हुई चीज वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए। जो कोई जामिन बने वो तवान अदा करे। किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय उसके जिस पर उसका भाई राजी हो। औरतों के लिए जायज नहीं कि वो शोहर का माल बगैर उसकी इजाजत किसी को दें। तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हुकूक है, उसी तरह उन पर तुम्हारा हुकूक है। औरतों पर तुम्हारा हक है कि वो अपने पास ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई खयानत ना करे, कोई काम खुली बेहयाई ना करे। अगर वो ऐसा करे तो खुदा की जानिब से इसकी इजाजत है कि तुम उन्हें मामूली जिस्मानी सजा दो, और वो बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। लोगों मेरी बात समझ लो, मैंने हक तबलीग अदा कर दिया, मजमे ने सिद्क रसूल कहकर तस्दीक दी।
1: इसके बाद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी किताब छोड़े जा रहा हूँ कि इसके बाद तुम गुमराह ना हो सकोगे अगर इस पे कायम रहे, और वो खुदा की किताब है। और हाँ देखो, दीनी मामलात में गुलू से बचना कि इससे पहले के लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। इसके बाद फरमाया, शैतान को अब इस बात की तवक्को नहीं रह गई कि इस शहर में उसकी इबादत की जाएगी, लेकिन इसका इम्कान है कि इन मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो उसकी बात मान ली जाए और वो उसी पर राजी है। इसीलिए तुम अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना, लोगों अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाजें अदा करो, महीने भर के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात खुश दिली से अदा करते रहो, अपने खुदा के घर का हज करो और अहले अमर की इताअत करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मजीद फरमाया, अब हर शख्स अपने जुर्म का खुद ही जिम्मेदार होगा, अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। फिर फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये बातें उन तक पहुँचा दें जो खैर मौजूद हैं।
0: और मजमे ने बेशक कहकर वादा किया। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मौजूद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, उसका मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जो जिंदा थे मगर मैदान अराफात में मौजूद ना थे, बल्कि इससे मुराद आने वाली पूरी नौए इंसानी है। इसीलिए हमारा फर्ज है कि इस खुतबे को लफ्ज बा लफ्ज अगली नस्लों तक मुंतकिल करें। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे मेरे बारे में खुदा के यहां सवाल किया जाएगा तो क्या जवाब दोगे? पूरे मजमे ने यक जुबान होकर ऐलान किया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत यानी दीन हम तक पहुंचा दिया, अपनी रिसालत का हक अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वारी फरमाई। लोगों का यह जवाब सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्त शहादत आसमान की तरफ उठाई और 3 मर्तबा फरमाया, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। और इस लम्हे वही नाजिल हुई, अल्योम अकमलतुम लकुम दीनुकुम, यानी मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत कामला का इतमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। खुतबे के बाद आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तकबीर का हुक्म फरमाया और जोहर के वक्त में ही जोहर और असर की नमाजें अदा की।
1: मगरिब के बाद रवाना हुए और मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें अदा की और दुआ में मशगूल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को रात ही को मुज़दलिफा से मिना भिजवा दिया था और खुद सहाबा के साथ फजर की नमाज अदा करके तुलुए अफ्ताब से कबल मिना के लिए रवाना हुए। मिना पहुंचकर सीधे जमरात अकबा तशरीफ ले गए, 7 कंकरियां मारी, तलबिया पढ़नी बंद कर दी, रात मिना में कयाम फरमाया, बड़ा तवील वास फरमाया जिसमें बहुत से अहकाम का ऐलान फरमाया, फिर कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए और 100 ऊंट कुर्बान फरमाए, इनमें से 63 ऊंट खुद अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए और बाकी हजरत अली करमल्ला वजह ने ज़िबा किए। इसके बाद ऐलान फरमाया कि जो चाहे इन ऊँटों में से गोश्त ले जाए, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि हर ऊँट से एक एक बूटी लेकर पानी में जोश दे दे।

0: हर घर ईद, ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। एफएम 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे लिटिल सुपरस्टार्स। आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सफा। लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल, सुपर फन और फुल ऑफ मस्ती भरा प्रोग्राम जिसका नाम है किड्स कार्निवल। अच्छा भाई, आज का दिन ना बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है खुशियों का दिन, मिठाइयों का दिन, रंगों का दिन, हंसी का दिन और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ प्यारे प्यारे मोमेंट्स बनाने का दिन है भाई। देखिए, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आज आप सब ने मजे मजे के अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहने होंगे, शो ऑफ कर रहे होंगे अपने कपड़ों को। अच्छा, टेस्टी टेस्टी शीर खोमा भी खाया होगा, ईदी भी जमा की होगी। वैसे कुछ बच्चों को इस ईद पर ईदी नहीं मिलती, लेकिन कुछ को मिल जाती है और बहुत सारी सेल्फीज भी ली होंगी। और अगर अभी तक आपको ईदी नहीं मिली ना, तो टेंशन नॉट लिटिल चैंपियंस, शायद कोई चाचू, खाला, दादी अभी भी आपको कोई सरप्राइज देने वाला हो। क्या पता कोई घर आ जाए, क्या पता कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो ईदी दे दे। अच्छा साथियों, किड्स कार्निवल ना सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल फन वर्ल्ड है जहाँ हम मिलकर अपनी ईद उल अदा सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर होंगे सॉन्ग्स, स्टोरीज, गेम्स, रिडल्स और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें। तो भाई अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, यानी कि बेल्ट बकल अप कर लें भाई, क्योंकि अगले कुछ मोमेंट्स होने वाले हैं फुल ऑन एक्साइटिंग। अच्छा, आज के शो में ना हम बात करेंगे ईद की, ईद के एक खूबसूरत ट्रेडिशन के बारे में, सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी भी, खेलेंगे कुछ मजेदार गेम्स, कुछ फनी रिडल्स और मिलेंगे एक सुपर स्पेशल यंग गेस्ट से जो हमारे साथ बात करेंगी एज अ जूनियर RJ। और हाँ, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपनी वॉइस नोट्स हमें भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, और हमें आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, हमारा क्या हैंडल है भाई सोशल मीडिया का, @FM107Qatar, सिंपल सा। तो भाई हो जाइए तैयार, हो सकता है अगली बार रेडियो पर जूनियर RJ की आवाज आपकी सुनाई दे। तो बच्चा बाड़ी, क्या आप जानते हैं कि ईद सिर्फ मिठाई और ईदी का नाम नहीं होता, किस किस को ये बात पता है? मैं आपको बता दी चलूं कि ईद हमें शेयरिंग, केयरिंग और काइंडनेस भी सिखाती है। इसीलिए तो आज अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें दूसरों के साथ, यानी कि बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ या किसी और के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर घर में कोई हेल्प किसी को ज़रूरत है, अम्मी को, अब्बू को, जैसे कि मम्मा को किचन में बहुत ज़्यादा बिजी होती है मम्मा, उनको किचन में हेल्प करा दिया, या बाबा गेस्ट को रिसीव कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्प करा दी गई। बिलीव मी लिटिल सुपरस्टार्स, छोटी छोटी हेल्प भी ना बहुत स्पेशल हो जाती है। ईद दुनिया भर में खुशियों का नाम है और खुशियां तो जुड़ी हुई फैमिली से होती हैं, है कि नहीं साथियों? किड्स कार्निवल में हम सिर्फ मस्ती नहीं करते, हम सीखते भी हैं। तो आज की प्यारी सी बात याद रखिए, जो बच्चा दूसरों को खुश करता है खुद भी सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है। तो भाई अगर आज आप किसी को स्माइल करवा दें, अच्छा सा दिन है ना, ईद का दिन है, किसी छोटे कजन के साथ टॉय शेयर कर लें या दादी को जोर से जाके झप्पी पाए, प्यारी सी हग दें, तो समझ लीजिएगा कि आपने असली ईदी का गिफ्ट रिसीव कर लिया है भाई। अच्छा हाँ, और बच्चा पार्टी, ईद मॉर्निंग्स कितनी एक्साइटिंग होती है ना, मुझे जरा जल्दी से बताएं आप में से किस किस ने अपनी ईद पर जो है वो कौन कौन से कलर का ड्रेस पहना है। आज का जो पहला दिन है इसमें आपके, आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? तो भाई ईद मॉर्निंग्स कितनी एक्साइटिंग होती है ना, सुबह जल्दी उठना, नए कपड़े पहनना, मैचिंग शूज ढूंढना जो कि आप ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, फिर भी आपकी सुबह सुबह एक चीखन पुकार चल रही होती है, अम्मी मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है, और फिर जब तैयार हो जाते हैं तो फिर मिरर के सामने पोज बनाना और मम्मा से कहना कि भाई जल्दी करो गेस्ट आने वाले हैं, मम्मा आप कहाँ बिजी हैं, क्या आप किचन में खड़ी रहती हैं, और फिर किचन से आती यम्मी यम्मी कबाब और बिरयानी की खुशबू, आए हाय हाय हाय हाय हाय, ईद का मजा ही कुछ और होता है भाई, इस ईद का मजा खास

0: खाने पीने के मामले में कुछ और होता है। अच्छा, मुझे यकीन है कि कुछ हमारे जो लिटिल सुपर स्टार्स है ना, उन्होंने तो आज ऑलरेडी 20 बार तो फ्रिज ओपन किया होगा सिर्फ ये देखने के लिए भाई मीठे में क्या है कि नहीं। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको मीठा पसंद है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बारबेक्यू ज्यादा पसंद है? बताएं बताएं कितने बच्चे हैं। मुझे तो भाई स्वीट्स ज्यादा पसंद है। अच्छा चलिए ये बताएं कि आपकी फेवरेट ईद एक्टिविटी क्या है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर और मुझे बताएं कि आपने ईदी कितनी कलेक्ट की है, कितने अभी तक फैमिली विजिट्स हुए हैं, मिठाइयों के बारे में क्या ख्याल है आपका, या वो जो हमारे कजन्स हैं जो आते जाते हैं ईद पर, उनके साथ कोई गेम्स वगैरह खेली हैं? भाई मुझे लगता है कजन्स के साथ ईद सबसे ज्यादा फन होती है। कभी हम लूडो के कॉम्पिटिशन्स खेल रहे होते हैं, कभी स्नेक्स एंड लैडर्स, कभी पिलो फाइट्स, कभी हाइड एंड सीक और कभी रैंडम सी डांस पार्टी। और फिर जब कोई कजन ज्यादा मिठाई खा लेता है ना, तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं कि इसको देखो गुप्पू सारी मिठाई खा गया। तो भाई ये हम सबके पास होता है, पूरे घर में सिर्फ हंसी और शरारतें होती हैं ईद के दिन। और चलिए साथियों, अब टाइम आ गया है एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट का। अगर आप भी अपनी फनी ईद स्टोरी, फेवरेट जोक या प्यारा सा कोई FM 107 को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप हम अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए 666-22-107 पर, शायद आपकी आवाज अगले किड्स कार्निवल में रेडियो पर सुनाई दे। और पेरेंट्स भी अपने लिटिल स्टार्स की क्यूट रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं हमें इसी नंबर पर 666-22-107 पर। भाई हम सुनना चाहते हैं कि आपकी हंसी कैसी लगती है ईद के दिन, आपकी एक्साइटमेंट्स क्या है, और भाई अपनी अच्छी सी ईद मेमोरीज भी तो शेयर करें। साथियों आज के इस शो में हम एक यंग गेस्ट से भी मिलेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आएंगी वो, इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी। तो भाई वो हमें बताएंगी कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, वो हमें बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या ईद पर मज़े किए, आइसक्रीम पार्टी की या नहीं की, कुछ ख़रीदारी की कि नहीं की, कौन से कलर के ड्रेस उनको पसंद हैं। अच्छा शायद आपने सुबह से नए कपड़े पहन लिए होंगे, बहुत सारी सेल्फीज भी ले ली होंगी, टेस्टी टेस्टी बिरयानी और कबाब्स भी खा लिए होंगे भाई, और ईदी भी तो कलेक्ट की होगी। अच्छा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने कभी ये बात सोची है कि हम ईद अल अदा आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए, सिर्फ कपड़े पहनने के लिए, सिर्फ ईदियाँ इकट्ठी करने के लिए? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा है मामला कुछ। चलिए साथियों इस बात को आज हम एक बहुत ही इजी तरीके से, यूं कह लें कि एक कहानी की तरह, एक तरीके से आसानी से हमसे समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये हमें प्यार, शेयरिंग, काइंडनेस और केयरिंग का मैसेज देता है, सेक्रीफाइस का मैसेज देता है। ये हमें सिखाता है कि भाई दूसरों की खुशी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी अपनी खुशी होती है, और इसीलिए तो इस ईद को फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। अगर डेप्थ में इसका मीनिंग जाकर देखें तो इसे फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सेक्रीफाइस ये क्या होता है भाई, सेक्रीफाइस क्या होता है? चलिए इसे सिंपल अंदाज में आपको समझाती हूँ कि ये इतना बड़ा जो वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड सा सुनने में सुनाई देता है, सेक्रीफाइस कुर्बानी या आखिर होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास चॉकलेट का एक लास्ट पीस है और आपका छोटा भाई या बहन उदास है, आप खुद भी वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, मजे की बात ये है, लेकिन फिर भी आप उस छोटे से पीस को भी शेयर कर देते हैं ताकि आपका बहन या भाई जो भी है वो हैप्पी हैप्पी फील करे। वाह भाई ये भी एक छोटा सा आपकी तरह प्यारा सा सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी अच्छी बात के लिए अपनी पसंद की चीज को शेयर करना या छोड़ देना। आप भी लिटिल हीरोज बन सकते हैं, जो आप कहते हैं ना कि भाई हम तो छोटे से बच्चे हम क्या ही कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं लिटिल हीरोज। तो सुपर हीरोज, लिटिल स्टार्स, कहीं मत जाएं। आगे आ रहा है बहुत ही फन सा हमारा सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं किड्स कार्निवल सिर्फ और सिर्फ FM 107 कतर पर। ईद मुबारक वंस अगेन एवरीबॉडी, और रेडी हो जाइए क्योंकि मस्ती अभी शुरू हुई है।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ, एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरी

कार्निवल ऑन एफएम 107 विद सफा। मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी और स्पेशल ईद के बारे में। देखिए, ये है ईद अल अधा। मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, अब टाइम हो गया है हमारे सुपर सी क्यूट सी स्टोरी कॉर्नर का। तो भाई, अपने अपने कुशंस ठीक कर लीजिए और अपनी इमेजिनेशन के कैप्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक प्यारी सी ईद की स्टोरी के लिए। आज की कहानी का नाम है द टॉय दैट बॉट डबल हैप्पीनेस, वो खिलौना जो के डबल ट्रिपल हैप्पीनेस लेकर आया। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। ईद की एक सुबह थी, पूरा घर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। किचन से यमी यमी शीर खोमे की खुशबू आ रही थी, लिविंग रूम में कलरफुल बैलून्स लगे हुए थे और अली तो एक्साइटमेंट के मारे सुबह ही अलार्म से पहले ही उठ गया था। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो सीधा बेड से जंप मारकर उठा और बोला, ये आज तो ईद का दिन है भाई। अच्छा, अली ने जल्दी जल्दी वॉशरूम जाके अपने दांत वांत ब्रश किए, मुंह धोया और फ्रेश हुआ और फिर उसकी नजर पड़ी अपने नए कपड़ों पर। उसका कुर्ता बिल्कुल मजे से, यू नो, जैसे वो नए कपड़ों की शाइन होती है ना अपनी, एक वैसे ही वो चमक रहा था क्योंकि नया कुर्ता था। और उसके नए शूज तो भाई सुपर हीरो जैसा फील करवा रहे थे उसे। अच्छा, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी पहने, अपने शूज भी मजे से पहन दिए और भाई वो मिरर के सामने खुद को देखकर फनी फनी पोजेस बनाने लगा कि भाई मैं तो क्या टशन में हीरो लग रहा हूँ। कभी हीरो स्टाइल, कभी क्रिकेट स्टाइल, कभी मूवी स्टार स्टाइल। मम्मा हंसकर बोली, बेटा जी अगर मॉडलिंग कंप्लीट हो गई हो ना तो नाश्ता भी कर लो चलो। अच्छा, नाश्ते की टेबल पर सब बहुत खुश थे एज यूजुअल, क्योंकि ईद का दिन था। बाबा ने अली को हक किया और कहा, बेटा ईद मुबारक चैंपियन। दादी ने भी बड़े मजे से उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, लाडला था भाई वो घर का, और उसे सब ने ईदी दी और ईद मुबारक विश किया। अच्छा, अली की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी लेकिन उसको अभी भी लग रहा था कि भाई आज कोई और सरप्राइज उसका वेट कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। और फिर भाई सरप्राइज आ ही गया। डोरबेल बजी, टिंग टिंग। अली भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, जैसा कि हर एक्साइटेड बच्चा करता है। बाहर उसके चाचू खड़े थे और उनके हाथ में एक शाइनी सा गिफ्ट बॉक्स था जिस पर रेड कलर की रिबन लगी हुई थी। ओ भाई, उसको देखकर तो अली की आंखों में चमक दौड़ उठी। अली का दिल एक्साइटमेंट से धक धक धक धक करने लगा। ये मेरे लिए है चाचू, उसने पूछा। चाचू मुस्कुराकर बोले, नहीं, एक बच्चा है जो कि बड़ा प्यारा सा है और थोड़ा सा शरारती भी है। मुझे नहीं पता कि वो अभी घर में होगा कि नहीं होगा, ये उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। चाचू उसको छेड़ रहे थे तो फिर वो खीखी खीखी करके हंसना शुरू हो गया क्योंकि उसको तो पता था उसके जितना छोटा बच्चा और कोई घर में है ही नहीं। तो फिर चाचू ने उसको मुस्कुराकर प्यार करके बोला, बिल्कुल मेरे लिटिल चैंपियन, ये आप ही के लिए तो है, पूछने की क्या जरूरत है। तो भाई अली ने फौरन गिफ्ट रैप खोलना शुरू कर दिया एक्साइटमेंट में, खड़ खड़ खड़ खड़, पेपर इधर उधर, रिबन इधर उधर, और भाई बॉक्स की बारी आई खुलने की। एंड गेस व्हाट, अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनी रेड टॉय कार निकली। ओए होए, क्या तो मजे की रिमोट कंट्रोल कार थी। उसकी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, डोर ओपन हो रहे थे और वो व्रूम व्रूम ऐसे ना साउंड्स निकाल रही थी जैसे कि रियल कार हो। वाओ, उसको देखकर तो अली की खुशी की इंतहाई ना थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अली की ड्रीम कार मिल गई हो। अली को पूरा दिन अली उस टॉय के इस कार के साथ बिजी रहा, खेलता रहा। कभी वो सोफा के पास रेस लगाता उस कार से, कभी वो कुशन्स के बीच में से उसको गुजारता, कभी वो उसका कहां से ट्रैक बनाता, कभी इमेजिनरी रेसिंग कॉम्पिटिशन कर रहा होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बिगेस्ट रेस ऑफ द ईयर, अली द स्पीड मास्टर विनिंग द रेस। ऐसे करके वो अपनी गेम खेलने लगा। अली को वो टॉय बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, वो किसी और को उस टॉय के पास भी नहीं जाने देता था। जब उसकी छोटी सी कजन ने पूछा ना कि अली भाई मैं इसको देख सकती हूँ, मैं थोड़ा सा खेल सकती हूँ इसके साथ, तो अली का मूड खराब हो गया। अली ने फौरन अपनी कार अपने पीछे छुपा ली और बोला, नो नो नो नो नो नो नो नो, ये मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अली का बेस्ट फ्रेंड अहमद भी उसके घर आया। ईद थी, सबने मिलना था एक दूसरे से। अहमद ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था
और उसके हाथ में चॉकलेट्स के छोटे छोटे पैकेट्स थे। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, उसकी नजर रेड टॉय

0: कार पर पड़ी। अब जाहिर ही बात है लड़कों को तो कार्स अच्छी लगती हैं और रेड कलर तो वैसे ही इतना प्यारा होता है और उसकी कार तो वैसे ही इतनी शाइनी थी।
1: वाओ अली,
0: अहमद एक्साइटमेंट में बोला,
1: ये कार तो बहुत अमेजिंग है, कैन आई प्ले विद इट टू प्लीज।
0: अली ने फौरन कार अपनी तरफ खींच ली और बोला, नहीं अहमद देखो ये मेरी गाड़ी, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, अच्छा मेरे चाचू मेरे लिए लेकर आए थे। अहमद की स्माइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई।
1: ओह ओके,
0: उसने सॉफ्टली कहा। फिर वो रूम के कॉर्नर में जाकर क्वाइटली बैठ गया। अली फिर से अपनी कार के साथ रेस लगाने लगा, व्रूम व्रूम। लेकिन अब पता नहीं क्यों अली को ना पहले जैसा मजा नहीं आ रहा था। रूम में एकदम बच्चे भी थे, दो तीन बच्चे थे, और रूम में एकदम से साइलेंस ही हो गई। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, अहमद की तरफ, तो अहमद ना एकदम कॉर्नर में चुप सा बैठा हुआ था। ना वो कुछ हंस रहा था, ना मुस्कुरा रहा था, ना ही वो रेस कमेंट्री कर रहा था। अली ने साइड से अहमद को देखा, अहमद फ्लोर की तरफ देख रहा था और उसका फेस ना कुछ उदास उदास सा लग रहा था। अली ने फिर अपनी कार चलाना शुरू कर दी, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास मेरी फेवरेट टॉय है, फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है भाई? उसको दादी की बात याद आई जो दादी ने सुबह कही थी। दादी ने कहा था ना कि भाई ईद की असली खुशी शेयरिंग में होती है। अली ने आहिस्ता से अपनी कार रोक दी, खेलते खेलते रुक गया। वो अहमद के पास गया और सॉफ्टली बोला, अहमद। अहमद ने ऊपर देखा। अली ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, आई एम सॉरी अहमद, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों टर्न्स लेकर खेल लेते हैं अपनी हमारी कार से, ठीक है? अहमद की आंखें फौरन चमकने लगी। रियली? अली ने एकदम से हंसकर बोला, हाँ रियली, और हम हमारी रेसिंग टीम का ऑफिशियल ड्राइवर भी चूज करेंगे भाई। बस फिर क्या था भाई, दोनों फ्रेंड्स मिलकर पूरे रूम में व्रूम व्रूम ही करते रहे, पूरे रूम को स्टेडियम बना दिया उन्होंने, कार रेसिंग स्टेडियम। कुशन टनल्स बन गए, बुक्स जो है ना वो ब्रिजेस बन गई, और डाइनिंग चेयर्स पिट स्टॉप स्टेशंस बन गए। अहमद फनी कमेंटेटर बन गया। ओ नो लेडीज एंड जेंटलमैन, अली की कार कुशन माउंटेन से टकरा गई, और दोनों जोर जोर से इतना हंसे उस कमेंट्री पर। कभी अहमद कार चलाता, कभी अली, कभी वो प्रिटेंड करते कि वो डेजर्ट क्रॉस कर रहे, कभी वो मून मिशन पे चले जाते। मम्मा जब रूम में आई तो उन्हें देखकर वो भी हंसना शुरू हो गई और उनका दिल भी खुश हुआ। मम्मा मुस्कुराकर बोली, लगता है ईद का असली फन शुरू हो गया है भाई अली, है कि नहीं अहमद और अली? अली ने स्माइल करते हुए कहा, मम्मा अकेले खेलना इतना फन नहीं था, अहमद के साथ ज्यादा मजा आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम ये सीखते हैं कि जब हम सिर्फ अपने लिए चीजें करते हैं ना, तो खुशी छोटी रहती है। खुशी मिलती जरूर है, लेकिन वो छोटी होती है। लेकिन जब हम शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो हैप्पीनेस ग्रो करती है। ईद भी हमें यही सिखाती है, यानी कि काइंडनेस, केयरिंग एंड शेयरिंग, और थोड़ा सा सेक्रीफाइस। अगर आपके पास चॉकलेट्स हैं तो उन्हें शेयर करें, अगर आपके पास टॉयज हैं तो उन्हें शेयर करें, अगर कोई फ्रेंड लोनली फील कर रहा है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बिलीव मी लिटिल सुपरस्टार्स, छोटी सी शेयरिंग भी किसी का पूरा पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकती है। और याद रखिए, हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट बिकम्स बिगर व्हेन यू शेयर इट। तो साथियों, मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कभी आपने अपनी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो किसी के साथ शेयर की है अली की तरह? क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त, घर वाले, बहन भाइयों के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लेकर आए हैं आप कभी शेयरिंग से, केयरिंग से, सेक्रीफाइस से? तो भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, अपने मैसेजेस भेजें और मुझे बताएं कि आपकी क्या स्टोरी है। आप सुन रहे हैं सफा के साथ किड्स कार्निवल ऑन FM 107। तो चलिए साथियों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज का मेहमान। साथियों, इस सेगमेंट में हम लोग करेंगे ये कि हम अपने एक छोटे जनाब को, यानी कि अपने एक छोटे आरजे को हमने इनवाइट किया है, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे ईद उल अधा के बारे में, और जानेंगे कि भाई इस छोटी सी दुनिया में ईद उल अधा का क्या बड़ा सा मतलब है। तो भाई चलते हैं अपने मेहमान की जानिब, यानी कि जूनियर आरजे के जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
0: और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना ताकि सबको पता चले हमारे साथ कौन है।
2: मेरा नाम है मायरा जैनब जैदान, मैं 8 इयर्स की हूँ। मुझे कतर में रहना अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
2: क्योंकि हम जब भी हम लोग कभी पापा को छुट्टी मिलता है तो मुझे घुमाते तो मुझे बहुत मजा आता है।
0: ओह बहुत मजा आता है। हाँ। अच्छा, ईद पे बताएं कि ईद के दिनों में वैसे तो आप घूमती फिरती रहती हैं, ठीक है, माशाल्लाह से, तो ये ईद के दिनों का क्या सिस्टम है? ईद के दिनों पे किसी स्पेशल जगह पे जाती हैं?
2: जी,
0: आपको सबसे ज्यादा कहाँ

0: घूमना अच्छा लगता है ईद पर।
1: कभी हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग मस्जिद जाते हैं ईद के नमाज के लिए, तो वहाँ पे लास्ट टाइम जब ईद थी इतनी रश थी।
0: हाँ, रश में गई थी आप?
1: हाँ, रश में हम लोग ने जैसे तैसे करके जगह मिली। फिर हमने

0: पीती भी मिली और कैंडीज भी मिली। सच सच बताएं हमारा, कैंडीज के लिए गई थी कि नमाज पढ़ने गई थी?
1: नमाज भी पढ़ा।
0: सब कुछ मिल गया, ऑल इन वन पैक। माशाल्लाह से नमाज भी मिल गई, तो कैंडीज भी मिल गई, तो ढेर सारा लव भी मिल गया और ढेर सारी दुआएं भी मांग कर आ गई। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अमायरा, हम लोग जो है ना आज बात कर रहे हैं ईद उल अधा के बारे में, जैसे हम प्यार से ना वो बच्चे कहते हैं ना बकरा ईद, है ना। तो एक बात बताएं, आप लोग जो है वो बकरा ईद यहाँ पर जो है वो कोई शीप कोई गोट वगैरह खरीदते हैं? नहीं खरीदते? खरीदते हैं। तो आपको उससे बहुत सारा प्यार हो जाता है। और इसके अच्छा, ये जो एनिमल का सेक्रीफाइस है, इसके पीछे की स्टोरी पता है आपको क्या थी? तो मुझे थोड़ी सी बताएं ना, मेरे साथ भी शेयर करें ना, अगर आपको थोड़ा सा कुछ मुझे हाईलाइट दे दें कि इसके अंदर क्या क्या था तो चलेगा। हाँ जी,
1: As we know, Eid al-Adha is a festival of sacrifice. जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हिज सन को सैक्रिफाइस करना है, उसको सैक्रिफाइस करना था,
0: तो फिर क्या हुआ?
1: तो वो रेडी हो गए।
0: सही, ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना। ठीक है, तो फिर
1: अल्लाह को ओबे करते थे।
0: ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला की बात को ओबे किया। ओके,
1: फिर क्या हुआ कि वो कुर्बानी देने जा रहे थे और शीप अल्लाह ने भेज दिया।
0: यस, वेरी गुड, आई लाइक द कॉन्सेप्ट। कम से कम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है कि अल्लाह ताला की बात वो मानने जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने एज अ रिवॉर्ड उनके बेटे की बजाय शीप भेज दिया। तो इसीलिए हम ईद उल अधा पर शीप की कुर्बानी करते हैं, या हम लोग गोट जो होता है एनिमल सेक्रीफाइस जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक बात तो बताएं, ये जो ईद उल अधा होती है इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है, क्या चीज करती हैं आप? बारबेक्यू या पार्टी या ईदी, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इसमें?
1: हम लोग शीर कौरमा
0: बनाते। शीर कौरमा आता है बनाना? रेसिपी आती है आपको?
1: हाँ, मम्मा शीर कौरमा बनाती है। एक दिन मैं बार बार मम्मा को कहती हूँ तो मम्मा कुछ काम दो, मम्मा कुछ काम दो। फिर मम्मा ने वो शीर कौरमे के लिए वो क्या था, वो पिस्ताशियो और आलमंड दिया छीलने के लिए पानी में डुबा के। मैं 2-3 घंटे तक छीलती गई।
0: मेरी नानी ना बचपन में मुझे मटर देती थी छीलने के लिए। मैं पता है क्या करती थी, आधा मटर तो मैं वैसे ही खा जाती थी। या कुछ गर्ल्स होती हैं जो कहती हैं नहीं हमें बहुत फैंसी वाले ना वो गरारे शरारे पहनने, आपको क्या पसंद है?
1: हम कभी मैं वो ब्लैक गरारा पहनती हूँ।
0: भाई
1: वो क्योंकि वो नानी के घर से उन्होंने भेजा था। फिर हम लोग यही से ही कुछ वो पाकिस्तानी गरारे लिए थे,
0: फिर वो भी पहने थे
1: जी, एक पीच कलर का।
0: अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं कि ईद जब आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आपकी पसंद की फेवरेट स्वीट डिश ईद पर कौन सी है?
1: हाँ हाँ, एक पैकेट में आज भी वो पापा कुछ टाइम पहले लाए थे, एक पैकेट में एक पॉप्सिकल जैसा होता है ना, उसको पैकेट में डाल के वो ब्लू स्लश फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: पैकेट डाल के ब्लू स्लश फ्लेवर, स्लश स्लश, हाँ स्लश जो है ना, तो भाई हमें वो वाला पसंद है। अच्छा ये तो बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ईद पे आपको क्या पसंद है खाने में? बिरयानी, कोरमा, क्या कढ़ाई, क्या चीज?
1: इस बार जब ईद हुई थी तो
0: हाँ जी,
1: मम्मा ने बनाया था शीर कोरमा।
0: सही,
1: बिरयानी।
0: ओके,
1: मतलब मटन बिरयानी
0: और
1: कुछ
0: और,
1: कुछ बनाया था,
0: कुछ कुछ,
1: और पापड़ भी,
0: पापड़ बनाए थे।
1: हाँ, साबुदाना पापड़ और प्लेन पापड़।
0: वाह भाई, साबुदाना पापड़ भी बनाए थे।
1: साबुदाना
0: अम्मा बड़ी टैलेंटेड है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा हाँ, आपने क्या क्या बनाया था ये तो बताएं।
1: कुछ दिन पहले मेरा मम्मा मुझे किचन में बुलाई।
0: हाँ,
1: फिर मम्मा ने मुझे प्लेटफॉर्म में बैठा कर कुछ सामान वामान हटा कर मुझे पीछे कर कर

0: वहाँ पर रोटी बना ली आपने खुद ही?
1: अरे माशाल्लाह, कितने साल की है फिर से बताना?
2: 8
1: ईयर्स ओल्ड है। हाय हाय, मैंने रोटी कब बनाई थी मुझे याद ही नहीं पड़ा, जब मैं 6th या 7th ग्रेड में थी। मैं तो बहुत बड़ी थी, आपने तो माशाल्लाह इतने छोटे होने में रोटी बना ली। मैं मुझे कब खिला रही है रोटी बनाकर?
2: घर पे आई मेरे।
1: अच्छा, ये भी एक मसला है। अच्छा भाई, चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे आएंगे। चले भाई, आज का एपिसोड तो हमारा बाइंड अप होने लगा है, ठीक है। फिर अगले एपिसोड में भी इंशाल्लाह साथियों हमारा ईद के तीसरे दिन एक और एपिसोड रहेगा जो है ना हमारा किड्स कार्निवल का, तो उसके अंदर भी अमायरा मेरे साथ ही होंगी और अमायरा के साथ मजे मजे की बातें हमारी जारी रहेंगी हमारे सेकंड एपिसोड में भी। तो अभी के लिए अमायरा हम सबको अल्लाह हाफिज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, बातें बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, टू बी कंटिन्यूड रखेंगे, क्या कहती है? चलें भाई साथियों, अमायरा जाने से पहले कोई अच्छी सी बात बोलना चाहेंगी आप?
2: जी,
1: जरा सोचें।
2: लास्ट मैं सोच रही हूँ कि एक रिडल क्विज हो जाए।
1: हाँ अमायरा, आज आपको एक रिडल क्विज के साथ छोड़े जा रही हैं, जिसके लिए आप हमें मैसेज करके जवाब दे सकते हैं 666-22-107 पर। नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 666-22-107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अमायरा एक रिडल पर छोड़कर जा रही हैं आपको, आपने अमायरा को मैसेज में जवाब देना है इसका, ठीक है। अमायरा रिडल पूछ लें भाई।
2: पीपल बाय मी टू ईट ईट मी बट नेवर ईट मी।
1: हैं, पीपल बाय मी टू ईट मी बट दे नेवर ईट मी। अब ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल हो गया भाई। साथियों एक काम करें, आप लोग आज इसके बारे में सोचें कि ये क्या है इस रिडल में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आएगा ईद के तीसरे दिन, अमायरा इसका जवाब हमें देंगी, है ना अमायरा?
2: एक हिंट दे सकती हूं।
1: अच्छा, हिंट के साथ छोड़कर जा रही है, चलें हिंट के साथ छोड़कर जाएं, चलें ठीक है।
2: पहला वर्ड तो पहला स्टार्टिंग में तो एक लेटर ए है, पर वर्ड के लिए बी है।
1: पहला अल्फाबेट ए है,
2: हाँ, जैसे एन ए और दूसरा लेटर जो वर्ड का, हाँ, वर्ड का जो अल्फाबेट है वो पी है।
1: पी है, ए और पी है। ओके, तो भाई ये याद रख लें कि पहला और दूसरा, पहला अल्फाबेट है ए, दूसरा अल्फाबेट है पी। आप सोचें और ध्यान से सोचें कि क्या चीज हो सकती है, और अमायरा और मुझे दीजिए इजाजत इस शो से। और आज हमने ढेर सारी बातें की सैक्रिफाइस के बारे में, और साथियों ये याद रखें कि ईद सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह से बारबेक्यू क्यों करने का नाम नहीं होता, ईद होता है नाम सैक्रिफाइस का। कुछ सैक्रिफाइसेस हम अल्लाह ताला की राह में करते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए करते हैं। सैक्रिफाइसेस बहुत सारी कंडीशंस में होते हैं, कि नहीं?
2: जी।
1: और मुझे लगता है कि हर पॉजिटिव सैक्रिफाइस, हमारा क्या कहती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है ना।
2: जी।
1: सैक्रिफाइस तो ये भी होता है कि जब हमारे छोटे बहन भाइयों को कोई चीज चाहिए होती है,
2: और शेयरिंग इज केयरिंग।
1: यस, ये जो शेयरिंग इज केयरिंग वाला मामला होता है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस आता है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन आपके कजिन्स को, आपके सिस्टर ब्रदर्स को वही चीज चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ना ग्रीडीनेस या ये वाला डिजायर होता है कि नो इट्स ओनली माइन, इसको हम सैक्रिफाइस करते हैं और हम उस चीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उससे शेयरिंग से क्या होता है अमायरा, वी फील मोर, हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। तो चले भाई, अमायरा और सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ईद ढेर सारी एंजॉय करें, और उसके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। ये याद रखें कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है अमायरा?
2: हमारा।
1: हाँ जी, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो किसी और का भी ख्याल नहीं रख सकता ना मायरा, है कि नहीं?
2: जी।
1: चलें भाई अल्लाह हाफिज कर दें।
2: जी।
1: चलें भाई अल्लाह हाफिज बोल दें सबको।
2: अल्लाह हाफिज।
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
6: कतर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब हैं। एक खास शो जहां आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को

0: अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सलाम हो इब्राहिम अलैहि सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दिल से देसी।
0: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे मावज FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107, दिल से।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 टाइम चेक।

Assalamu alaikum and good morning. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और लेकर आ गई हूँ आपके लिए शो मॉर्निंग मस्ती ईद. राइट, और ईद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से. और माशाल्लाह से आगाज़ हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक क्या जो वक्त आपका गुजरा होगा वो अच्छा ही गुजरा होगा. आप लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ ली होगी और उसके बाद मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों ने इस वक्त तक अपना नाश्ता भी कर लिया हो. तो गुड, ज़बरदस्त भाई. और उम्मीद है कि आज का और आने वाले जितने दिन हैं ईद के ये आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे. आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे आज के इस खूबसूरत दिन. राइट, और जैसे आप जानते हैं अभी 7:02 हो गए और अब से लेकर जो है 9 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा. इसमें हमने खूब सारी बातें करनी है और आप लोगों ने भी डेफिनेटली मतलब इसमें मेरा साथ देना है और आप लोगों ने ही ज्यादा साथ देना है. 443-443-377 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना कीजिएगा क्योंकि इस वक्त फ़ोन अवेलेबल नहीं है. आप लोग इस वक्त अगर शामिल होना चाहते हैं शो में, उठे हुए हैं, अभी तक सोए नहीं हैं उम्मीद है, तो इंशाल्लाह आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग नंबर हमारा बिल्कुल हाजिर है, आप लोग ईजिली हमें कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आज का प्लान किया हुआ है, पूरा दिन गुजारने का क्या कुछ अब तक हो चुका है. ये सारी चीज़ें जो हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं. अच्छा, मुझे अभी आते हुए खुशगवार सी हैरत हुई क्योंकि डेफिनेटली मैं पहले भी बता के गई थी इतनी सुबह सुबह मैंने कभी भी ईद का शो नहीं किया, ये पहली दफ़ा इत्तफाक है. तो लोग माशाल्लाह से नमाजें पढ़ने के बाद मतलब जो छोटी छोटी सी जगहें भी मिली हुई है ना, तो इतने मतलब फिटनेस के अब मतलब लोग ख्याल रख रहे होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो गए कि लोग एक्सरसाइजेस मतलब पुशअप्स करते हुए नजर आया मुझे अभी आते हुए जब मैं देख रही थी. तो मैंने कहा वाह भाई, मतलब ज़बरदस्त भाई, मतलब इतना निहार मुँह हो रहा है ये अभी इस वक्त जो ना एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो चुका है कि लोगों ने भी शायद कुछ मतलब डेफिनेटली नमाज पढ़ते ही तो फ़ौरन से एकदम से नाश्ता नहीं करते, थोड़ा सा रुक के आप जो है नाश्ता करते हैं आधा एक घंटे के बाद. तो लेकिन सुबह ही सुबह माशाल्लाह जो है ये एक्सरसाइज का सिलसिला भी शुरू हो गया, निहार मुँह बिल्कुल खाली पेट. अच्छी बात है, गुड, ज़बरदस्त, और फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए. तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कि आप लोग अपनी ईद पे क्या करने वाले हैं. और जैसे कि मैं नाश्ते का जिक्र कर रही हूँ तो यूजुअली हमारे घर पे क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी. आज हम मतलब हमारे रोज़ाना ना सेगमेंट में एक चीज़ शामिल होगी कि हम आपसे ब्रेकफास्ट के हवाले से बात करेंगे कि ईद के दिनों में ख़ास तौर पर क्या होता है. और मेरा हमेशा ये होता है कि मुझे ना वैसे भी अगर देखा जाए तीनों मील्स में सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्ट और ख़ास तौर पर हॉलीडेज़ के हिसाब से अगर देखा जाए जो चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो होता है कि सुबह का नाश्ता, मतलब वो एक अच्छा सा होना चाहिए. लोग यूजुअली डिनर वगैरह के लिए बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि नहीं यार नाश्ता, इवन मतलब जो है ना वो वाला नहीं कि आप ये कि ईद के दिनों में या किसी खास ओकेशन से. मुझे तो अगर हम फ्लाइट की बात करें तो उसमें मेरे सबसे अच्छी मेरी नाश्ता ही लगती है. मेरी कोशिश होती है कि ऐसे वक्त में हम लोग फ्लाइट बुक करें कि जिस वक्त में आपको ब्रेकफास्ट मिल सकता हो. तो खैर हर बंदे का अपना अपना होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एयरलाइन की अगर हम बात करें वो ब्रेकफास्ट, और कुछ लोगों को वैसे भी सुबह नाश्ता करना इतना पसंद नहीं होता. पहले मैं भी नहीं किया करती थी, एक बहुत तवील अरसा गुजरा है ज़िंदगी का यूनिवर्सिटी तक जब मुझे बिल्कुल नाश्ते में इंटरेस्ट नहीं था, खाया नहीं जाता था सुबह. लेकिन ये कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो एक मील होती है ना वो होती है, और वो एक अच्छी होनी चाहिए. इस वक्त अभी तक हमने नहीं खाया, लेकिन हमारा क्या रहता है हर दफ़ा, क्योंकि आज मुझे आना था वरना यूजली इस वक्त हम लोग बैठ के जो है ना ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते हैं, और वो ये होता है कि अगर अभी मैं देकर आ भी जाती तो फिर वो मज़ा नहीं आता. एक होता है ना नाश्ते से ज़्यादा या किसी भी मील से ज़्यादा, चाहे वो डिनर हो चाहे मतलब कोई भी ऐसा मतलब खास एहतमाम जिस पे हुआ, वो इस पे होता है कि आप मिल बैठ के जो है ना वो चीज़ इंजॉय करें. अगर ऐसे ही मतलब एक बंदा चला गया और घर पे कोई है नहीं, एक बंदा भी कम है, तो फिर वो वाला मज़ा नहीं आता है. मुझे लगता है आप लोग भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो सारी जो चीज़ें, इवन आप एक चाय का कप भी जब इंजॉय करते हैं, जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके साथ कोई बैठा हो, तो फिर आप इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है. तो खैर अभी हमने नहीं किया, लेकिन अब यहाँ से निकलते ही पहला काम यही होगा कि ख़ास जो है वो ब्रेकफास्ट बनेगा, और वो मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का क्या सीन रहता है, किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है. क्या ब्रेकफास्ट ऐसे ही कर लेते हैं नॉर्मल सा और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है. क्योंकि हमारा तो ये चारों दिन एक सेगमेंट रहने वाला है जिसपे हम ब्रेकफास्ट टेबल के हवाले से बात करेंगे. तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और कुछ अलग अलग इंजॉय करना भी मज़ेदार सा होता है, तो वो भी इंशाल्लाह मतलब मैं भी आपसे शेयर करूंगी, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या सीन रहता है आपके घर का. इसके अलावा भी आपसे मतलब कुछ खबरें वबरें भी
शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जो आप इंजॉय कर सकते हैं. तो अभी दो घंटे तक मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. आप लोग हमारे साथ रहिए, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी. और जहाँ भी मैं नाश्ते वगैरह की बात कर रही हूँ ना, तो अगर हम सुबह सुबह के हवाले से देखें, मतलब ईद की जो सुबह होती है, तो कुछ सुन्नतें हैं जो ख़ास तौर पे ईद के हवाले से हैं. उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपने जो है वो अच्छे सुबह नहा धो के अच्छे कपड़े पहनना, और ये ज़रूरी नहीं होता कभी भी कि वो नए कपड़े हों, आपके पास अच्छे कपड़े हों धुले धुला

आए साफ सुथरे खुशबू का एहतमाम करें और वो कपड़ों का जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सुन्नत है, मतलब खुशबू लगाना भी सुबह के वक्त, मतलब जो है वो नहाने से, सॉरी नहाने के लिए नमाज से पहले आप बात ले लें, नहा लें, गुसल ले लें जैसे आप कहते हैं, गुसल कर लें, तो ये एक सुन्नत भी है और बड़ा ज़रूरी है कि हमारे इस्लाम में सबसे जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो इसी चीज़ को है कि आप साफ सुथरे हों। सफाई को नफ्स ईमान भी कहा गया है, तो ये एक सबसे पहली जो चीज़ होती है ना जो हम सुन्नत के तौर पे ईद के रोज़ मतलब जिसे फॉलो कर सकते हैं, वो ये कि आप अच्छी तरीके से साफ सुथरे लिबास में साफ सुथरे तरीके से नमाज पढ़ने के लिए जाएं। और फिर वहाँ पे नमाज का, यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ख़वातीन भी जा सकती हैं और इजीली सबसे मतलब जो ना एक मिलना मिलाना भी आपका सुबह सुबह हो जाता है। और ये सारे जो इज्तमात हैं उसका मकसद बेसिकली यही होता है कि हमारा एक दूसरे से मिलना हो सके, एक दूसरे को जो एक विश करना, ग्रीट करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बेसिकली कम्युनिटी को जोड़ता है, वो बनाता है उस तरह से, लोग भी देख रहे होते हैं कि वाओ, मतलब ये एक अलग ही मिसाल मिलती है जो कि सिर्फ मेरा ख्याल से हमारे दीन में। इसके हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे अभी हज के हवाले से भी और ये किस तरह से ये वाली जो है, जैसे हम हर मौके पर हमारी कोशिश होती है कि सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए, तो इस ईद की जो ख़ास बात है वो ये कि हम सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ से सिलसिला शुरू होता है और फिर मतलब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें सिखाया है उस चीज़ को हम लेके मतलब जो है इस ईद पर या दूसरी ईद पे भी हम इसी तरह से चलते हैं। बल्कि हमारे रोज़ाना दिन के आगाज़ का मतलब जो ना हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस तरह से करें कि जहाँ पे हम जो जो हमारे नबी जो जो चीज़ें कर रहे होते थे उन्हीं चीज़ों को हम भी फॉलो करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें। और बेशक मतलब हर मुसलमान की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये करना भी चाहिए।

0: और वक्त हो गया है सुबह के अज़कार का, तो हम सुबह के अज़कार की तरफ बढ़ते हैं और आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड साथ ही साथ ईद का दिन बहुत मुबारक आपको, पहला दिन और ईद मुबारक. मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग इस वक्त सो रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी ने भी कॉल नहीं की है. अगर आप जाग रहे हैं तो आप इस बात का सबूत इस तरह से दे सकते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे. इससे ये भी पता चल जाएगा कि एक तो आप होशो हवास में हैं, आप जाग रहे हैं, हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं, और दूसरा ये कि आपसे बात भी हो जाएगी. मतलब दो तो काम एक साथ हो जाएंगे. तो जरूर आप हमें कॉल कीजिएगा. व्हाट्सएप पे इस वक्त मैसेजेस नहीं कीजिए, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है. आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ईजिली, और कॉल करना मेरा ख्याल है इसका ज्यादा आसान भी होता है. आप कॉल मिलाइए, फटाफट बात कर लीजिए. ईद की मैं भी आपको मुबारकबाद दे दूंगी, आप भी मुबारकबाद दे दीजिएगा. खैर जी, हम बात कर रहे थे अभी से पहले, अस्कार से पहले सुन्नतों की. तो सुन्नत की अगर बात की जाए ना, तो मतलब वैसे हम अस्कार के हवाले से बात करें खुसूसी तौर पे, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुन्नत है. और हमें सुबह और शाम के जो अस्कार हैं उनका ख़ास अहतमाम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप बैठ के जो है सबसे पहले, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, पहला काम यही करें कि आप अस्कार जो है आपके पास हो. आजकल मोबाइल फ़ोन है सबके पास, मोबाइल फ़ोन पे आपको ईजिली मिल जाते हैं, और अस्कार का आप अच्छी तरीके से अहतमाम कीजिए. सारी वो दुआएँ जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के आगाज़ के ऊपर पढ़ा करते थे, वो पढ़ना बहुत ही आपके लिए, एक तो ये कि एक दिल को एक इत्मीनान होता है, आपका जो ना दिल अच्छा फील करते हैं आप जब सुबह के वक्त में आप पहला काम ये करते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बज़ाहिर मतलब छोटी सी हैं, 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा बरकत लेकर आती हैं, आपको अपनी हिफाजत में रखती हैं. तो इसका अहतमाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना चाहिए. सुबह के असगार भी, शाम के असगार भी,

अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें. और ये बहुत ही अच्छी चीज माशाल्लाह से कि एफएम 107 पे रोजाना की याद दहानी आपको करवाई जाती है कि असकार को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं. अगर आप पढ़ नहीं सकते, जल्दी जल्दी है सुबह में, बहुत सारे लोग बिल्कुल आखिर के वक्त उठ रहे होते हैं और बस उनका फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी निकलो भाई घर से, तो चलें आप मतलब कम अज़ कम सुन सकते हैं और उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. जी, हम सुन्नतों के हवाले से बात कर रहे थे, तो ईद की अगर हम देखें ना, तो कुछ सुन्नतें जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले गुस्ल करना, फिर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना. साथ ही साथ एक और जो सुन्नत है वो है, आप एक रस्ते से, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाया करते थे तो एक रस्ते से जाया करते थे और वापसी का रास्ता जो है ना मुख्तलिफ होता था. और इसकी वजह ये होती थी कि जाते वक्त आते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके और उनसे ईद मिल सके. तो ये ख़ास तौर पर एक पर्पज़ होता है ईदों का जो अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पे दिए हैं. पहले रमज़ान के बाद रोज़े रखने के बाद हम ईद सेलिब्रेट करते हैं और वो भी सेलिब्रेशन का जो एक तरीका है ना, वो बड़ा खूबसूरत है. अगर हम अपने देखें तो हमारे जो एक सेलिब्रेशन है उसमें आपको ग्रेस ज़्यादा मिलता है, आपको खूबसूरती ज़्यादा मिलती है, आपको एक मतलब एक जो भी बंदा देखेगा ना तो वो इस तरह से इसको विटनेस करेगा कि बहुत पुरवकार जो है ना वो चीज़ें इसमें शामिल हैं. कोई ऐसा नहीं होता कि बंदा जो है वो जो कुछ हम देख रहे होते हैं कि कुछ और लोग जो फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं उसमें बिल्कुल मतलब एक होश नहीं होता या किसी चीज़ में बिल्कुल मतलब एक अलग ही तौर तरीका होता है. उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं क्या जाऊँ, आप लोग जानते ही हैं. लेकिन हमारे त्यौहार ऐसे हैं कि जिसमें हम जो सेलिब्रेशन करते हैं उनमें बहुत ही आपको ग्रेस भी मिलता है और साथ साथ उसका मकसद जो है वो कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है. उसके पीछे पर्पस उसका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और यूनिटी आपको उसमें नज़र आए. अब जैसे अगर हम ईद से पहले अभी हज की बात करें, माशाल्लाह से मतलब कल से सिलसिला जो शुरू हुआ हुआ था, अब इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट होगा, तो आप उसमें भी देखें कि एक इतना बड़ा इज्तमा, इस दफ़ा मैं देख रही थी कि 18 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही बता रही हूँ, तो 18 लाख जो लोग हैं वो जमा हुए मक्का मुकर्रमा में. और फिर उसके बाद वो सारे के सारे जो अरकान हज हैं वो उन्होंने मुकम्मल किए और एक रिकॉर्ड भी है ये. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इतना बड़ा इज्तमा इतनी तंजीम के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, कोई और दुनिया में नज़र नहीं आता. सिर्फ और सिर्फ ये वो फेस्टिवल है, ये वो मतलब एक फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी बड़ी तादाद में होते हैं लोग. और इंतहाई मतलब एक तो गवर्नमेंट की वहाँ की जो है वो बहुत अच्छी काविश होती है हमेशा, उसके साथ लोगों के अंदर भी ना एक बहुत ठहराव, सुकून और तंजीम के साथ सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं माशाल्लाह से. और इतना बड़ा एक इज्तमा जब बनता है तो ये हमारी एक वो स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, जिसको अगर हम वाकई सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो इससे बड़ी हमारे कोई कुव्वत नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह देख के खुशी हो रही होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इन सूरतों में, चाहे वो हम ईद की बात करें, ख़ास तौर पे ये हज का जो मौका है कि जिसमें एक पूरी दुनिया देख सकती है कि हमारी जो एक नेशन है मुस्लिम नेशन वो कितनी मुत्तहद और कितनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह.

0: उसके बाद दुनिया ने वो मंजर देखा कि जहाँ पे एक बाप अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करने के लिए तैयार था और बेटा खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार था. तो ये ऐसी मिसाल है, मतलब ये बंदा सोच तसव्वुर नहीं कर सकता इस बात का कि वो जो चीज़ है वो उन्होंने करने का बिल्कुल पक्का अहद कर लिया था और उसमें उनकी माँ भी दिल से राज़ी थी कि हाँ अल्लाह ताला ने कहा है, इसके पीछे हिकमत होगी कोई ना कोई और उस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है. ये बिलीफ मतलब किसी को उस वक्त नहीं पता था कि उनके बदले में एक दुम्बा आ जाएगा और वो दुम्बा जो है वो कुर्बान होगा और उसके बाद फिर इस तरह से मतलब हमेशा रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ये सारे लोगों पे इंसानों के ऊपर ये फ़र्ज़ कर देंगे कि आप जो भी इस्तेआत रखता है वो कुर्बानी करें. तो उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उस वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फ़ेल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस तरह से रज़ा फरमाबरदारी, ये एक रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन चुकी है. और ये ऐसी मिसाल है कि जिसके ऊपर आप सोचते हैं तो दंग रह जाते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है, किस तरह से मुमकिन है कि कोई मतलब अपनी जान देने को कुर्बान मतलब तैयार हो जाए और कोई मतलब जो है वालिद जिनकी औलाद हुई भी, मतलब उनको बुढ़ापे की औलाद कहा जाता है, एक अच्छी एज के बाद उनको वो औलाद मिली थी और उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर. तो इससे बेसिकली अगर देखें हम तो हमें इससे जो मैसेज मिल रहा होता है उसमें हमें यही है कि ईमान एक तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आप दूसरी दफ़ा सोचें नहीं बल्कि आप तैयार हों फौरन से. और हमसे भी बहुत सारी चीज़ों की ऐसी डिमांड्स जो हैं जो बहुत सारी रीजंस की वजह से हम सोच रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे एक्सक्यूजेज़ होते हैं हमारे, हम नहीं कर रहे होते. तो हमें उस पर सोचना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे तो फिर हमारे पास क्या एक्सक्यूज़ है, हमसे तो कोई इतनी बड़ी चीज़ें मांगी भी नहीं गई हैं. तो खैर इसके हवाले से मज़ीद अभी हम बात करते हैं इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं. आप कोशिश कीजिए कि कॉल करें अगर जाग रहे हैं तो, वरना मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तैयार हूँ. लेकिन ये कि अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी कॉल करते हैं, तो कॉल ज़रूर कीजिए हमें. वापस आते हैं हम थोड़ी ही देर बाद.
1: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए. आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे. ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें. आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना व ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन. सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद. कुल्लु आम व अंतुम बख़ैर.
2: ईद मुबारक, ईद मुबारक.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: क्रिकेट हो
5: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की,
7: स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
8: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल. अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल. तो किस्से वाला जो पार्ट है ना वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउसफुल. ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
9: सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: Alright, welcome back. Eid Mubarak to all of you. आप सुन रहे हैं Morning Masti Eid with RJ Mahesh Khan और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज क्योंकि मौका है तो आज हम सेक्रीफाइस को याद कर रहे हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि और उस हवाले से अभी तक जो मैंने बताया मैंने ये एक जो बैकग्राउंड है उसका वो बताया था उसके साथ ही ये कि हमसे अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम इसके ऊपर अब गौर करें कि अल्लाह ताला की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमसे नहीं मांगी वो कुर्बानी जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगी थी हमसे बस जो चीज़ है वो ये कि हम इस चीज़ के लिए एक प्रिपेयर रहें हम इस चीज़ का एक अपने मतलब ना किसी भी वक्त में हमारी जो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अल्लाह ताला रहने चाहिए और ये हर इंसान से अल्लाह ताला की सिर्फ इतनी सी ही एक डिमांड है कि हम अल्लाह ताला को हर मौके पे कोई भी चीज़ हो तो हमारी प्रायोरिटी हमारी जो पहली जो सोच है वो अल्लाह के बारे में हो और अल्लाह ताला ने हमसे जो कुर्बानी मांगी वो ये कि आप अपनी चीज़ों में से जो माल एक इंसान की कमज़ोरी होता है लोग मतलब अपनी बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास जितना मतलब आ रहा होता है इंसान की फितरत में है वो उससे ज़्यादा का लालच कर रहा होता है तो उसमें से आप कुछ जो जो रकम है वो ज़कात की सूरत में आपसे तलब की जाती है रमज़ान के बाद उसके बाद सदका करते रहें इसका हुक्म दिया गया और साथ ही इसी इस मौके पर क्योंकि आप देखें कि ये जो हम कुर्बानी करते हैं और उसको गरीबों में बांटने का एक ना कहा जाता है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए अपने फ्रीज़र में बंद करके ना रखा जाए कि पूरे साल वो इस्तेमाल करें बल्कि ये कि आप गरीबों में वो तकसीम करें तो उसके पीछे पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जिनको पूरे साल शायद बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको भी वो खुशियाँ मिल सकें उनको भी वो चीज़ें मिल सकें तो हम लोगों को शेयरिंग एक तो सिखाई गई है दूसरा ये कि अल्लाह के नाम पे हम जब ये कुर्बानी करते हैं अपने माल में से कुछ रकम निकाल के उसमें और फिर ख़ास तौर पर ये हुक्म दिया गया है कि आप जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं तो वो जानवर अगर आपको उससे मोहब्बत हो मतलब अगर आपने पहले जैसे हुआ करता था ना आजकल तो ये थोड़ा मतलब कम ही हो गया है कि आप अपने घरों पर पहले से ला के रखें और उसे बाकायदा मोहब्बत के साथ पालें और उससे एक उनसियत हो जाती है ज़ाहिर सी बात है आप जानवर अपने घर पे इतने अरसे रखते हैं तो एक उनसियत डेवलप हो जाती है उसके बाद आप उसकी कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला की राह में मतलब एक अपनी पसंदीदा महबूब चीज़ की कुर्बानी देना ये एक असल पर्पस है उसके साथ ही मतलब सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कि हम लेकर आए जानवर और हमने कुर्बानी दे दी असल में बेसिकली जो ये मैसेज है उसके पीछे पर्पस है अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करना मतलब हम जिन चीज़ों को जो बहुत हमारे लिए प्रायोरिटी है जिन चीज़ों से हम बहुत मोहब्बत रखते हैं वो हमारे मतलब अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना ये जो चीज़ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अल्लाह ताला के नज़दीक और अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं वरना एक तरह का मतलब आप देखें तो हर चीज़ एक लग्जरी भी बन जाती है साथ ही साथ एक ट्रेंड भी बन जाती है कि हाँ सब कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं और फिर पैसे बहुत ज़्यादा हों तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल देते हैं लेकिन अल्लाह ताला को वो नहीं चाहिए अल्लाह ताला को बेसिकली आपके नफ्स की कुर्बानी आपकी जो एक चाहत है जो दुनियावी चाहते हैं बेसिकली उसकी कुर्बानी चाहिए कि आप अल्लाह ताला के हुक्म के सामने ताबे रहें अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए आप ये देखें कि जो भी मतलब जो है वो जो चीज़ आपसे आपको लगती है मुश्किल है लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है तो आपने उसको कबूल करना है तो जैसे ही हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें हर कदम पे आप देखें मतलब ये वाहिद मौका नहीं था कि जब ये बहुत बड़ी कुर्बानी मांगी गई तलब की गई बल्कि इससे पहले हमने देखा कि उनको आग में डाला जा रहा था जब भी उनको नहीं पता था कि ये आग गुलजार हो जाएगी लेकिन उस वक्त में भी तैयार हो गए थे अल्लाह ताला की मोहब्बत में चाहत में और इस बात पर कि नहीं मैं हक पर हूँ तो मुझे डेफिनेटली मतलब इससे पीछे नहीं हटना चाहिए दूसरा बंदा अगर हक पर नहीं है तो ये वो गलत है मुझे तो मेरा रब बचा लेगा या नहीं भी बचाएगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए कि मैंने मतलब इस आजमाइश से गुजरना है तो ये हमें नजर आता है हर कदम के ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये फेल कि उन्होंने हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म को सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रखा सबकत पे रखा उन्होंने दूसरी बात सोची नहीं और अगर आज हमारी बात की जाए तो हमारे मामले में ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आराम को प्रायोरिटी देते हैं जब हम फजर की नमाज़ के वक्त अल्लाह माफ़ करे बहुत सी दफ़ा इस तरह से होता है कि हमें होता है कि मतलब अभी आराम कर लेते हैं थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे डिले कर देते हैं फिर और चीज़ों में जहाँ पे भी ख्वाहिशात की हमारी बात आ रही होती है तो हम ये हमें लग रहा होता है मासूम सी तो ख्वाहिश हमारी इतनी बड़ी कोई थोड़ी है मतलब इन चीज़ों چیزوں کے اوپر کیا مسئلہ ہے یہ تو لیکن یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب ایک بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے اور وہاں مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو آپ سب سے قریب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہے اور آپ ویسے مطلب ایک پرائیورٹی دینے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنے نفس کی قربانی اپنی خواہشات کی قربانی اپنے آرام کی قربانی اپنی وہ چیزیں جو کہ آپ کو پسند ہیں لیکن آپ کو منع کی گئی ہیں تو آپ ان سے اس لیے صرف صرف رک جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر بیسکلی آپ قربانی کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کراتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پہ اور اس کے ساتھ ہی میسیجز اب میں چیک کر لیتی ہوں میرے پاس کیونکہ اب موبائل آ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی میسیج بھی کیا ہے یا پھر سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور میں اکیلی ہوں یہاں پہ خیر جی آ گیا میسیج آیا بھائی مطلب یہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو کال کیوں نہیں کر سکتے کال نہیں آ رہی کیا خیر جی دیکھتے ہیں کہ کس کا ہے یہ ہے السلام علیکم عید مبارک کیا حال ہیں جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک میرے حال چال ٹھیک ٹھاک ہیں سمیع کا میسیج ہے یہ سمیع آپ کو عید مبارک ہماری طرف سے اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے میسیج یہ کس کا میسیج ہے یہ ہے مبین بخاری کا میسیج اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید مبارک سب کو ایم بی بی کی جانب سے ہماری جانب سے مبین بخاری آپ کو بھی عید مبارک اس کے ساتھ ہی جی میرے پاس میسیج ہے بھائی یہ کس کا ہے یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید الاضحیٰ مبارک اور آپ کہتے ہیں وشنگ یو اینڈ یور فیملی اینڈ آل لوڈ ونس a very happy Eid al-Adha may the almighty Allah the most merciful and bless you and your family and loved one peace prosperity good health and happiness bahut bahut shukriya aapke Sheikh Abdullah hain ye Sheikh Abdullah aapki wish ka bahut bahut shukriya thanks a lot iske sath hi khair mubarak mujhe Sami keh rahe hain alhamdulillah achhi hai aur duty par hain acha aap bhi duty par hain good zabardast chale matlab dil ko mere thode sukoon mila ki main akeli nahi hu اور کچھ لوگ سن تو رہے ہیں لیکن کال کیجئے بھائی 4434377 پہ ہمیں کال کیجئے اور ڈائریکٹلی بات کیجئے میسیجز کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے یہ کام تو ہماری تھوڑی سی مطلب ایک گپ شپ بھی ہو جائے گی خیر جی نسیم کا بھی میسیج آیا ہوا اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی ہماری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو رائٹ اور ایک اور میسیج ہے السلام علیکم عید مبارک فرام فواد اینڈ فیملی فواد ہی ہیں یہ رائٹ تھینک یو فواد ہارون بہت بہت شکریہ فواد آپ کے میسیج کا آپ کو بھی بہت زیادہ عید مبارک ہو اور السلام علیکم کیسی ہیں معاوش جی آپ عید مبارک وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک رابعہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ بتائیں رابعہ کیسی ہیں کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی امید ہے کہ اچھی گزر رہی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور میسیج آیا ہے اور یہ ہیں عمران بی اور عمران کہتے ہیں عید الاضحیٰ مبارک اور تھینک یو جی آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ایک اور بھائی نے بھی ہمیں اپنی ویڈیو ہی بنا کے بھیجتی تھی عید مبارک کی کس طرح سے وہ تیار ہوئے شراز ملک آپ کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے عید مبارک
1: نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: عید کی مہکتی ہوئی صبح گھر گھر سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور دسترخوان پہ سجتی محبت کی کہانی جہاں ہر بائٹ میں ہے اپنوں کا پیار اور ہر سواد میں عید کی پکار عید کی مٹھاس گھر کی رسوئی کا جادو اور ہر ڈش پہ چھپی خوشیوں کی کہانیوں سنیا پروگرام عید کچنز ود آر جے سرور مرزا عید کے پہلے اور تیسرے دن دوپہر 1 بجے سے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
3: دوستوں میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
4: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा। और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाए सिर्फ FM 107 पर, किड्स कार्निवल पर, RJ सफा के साथ, दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: एनर्जी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और हमारे साथ मतलब बिल आखिर एक कॉलर आ गए हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान.
0: जी फैजान, क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक.
1: ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक.
0: जी कैसी गुजर रही है अब तक ईद?
1: जी अभी तक तो माशाल्लाह अच्छी ही गुजर रही है. अभी दोस्तों के पास गया हुआ था.
0: अच्छा, गुड.
1: वहाँ पे खाना खाना खाया है, नाश्ता किया है, तो अभी फिर एक दोस्त को ड्रॉप करके मैं कॉल करने ही वाला था आपको, लेकिन मैं ड्राइविंग कर रहा था फिर इसलिए मैंने कॉल नहीं किया.
0: हाँ हाँ, चले अच्छा किया आपने कॉल कर तो ली, क्योंकि मुझे पहले शुरू में लग रहा था कि मैं सिर्फ अकेली हूँ, सब सो चुके हैं नमाज पढ़ के, राइट. और आज तो फिर भी लोग जागे हुए भाई. हाँ मतलब अभी मुझे आगे की ना 3 दिन की फिक्र है कि 3 दिन तो पक्का लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह में नमाज के लिए उठना नहीं है तो आराम से उठेंगे. मतलब हम बोलते रहेंगे अकेले.
1: जो ना घर भी कॉल नहीं की पाकिस्तान, आपको पता है कि मेरी फैमिली इधर होती है.
0: जी जी जी.
1: अभी तक उन्हें भी कॉल नहीं की, अभी उनके भी शायद आई होंगी कॉल्स. मोबाइल घर पड़ा है दूसरा, अभी जाके देखते हैं क्या सीन है.
0: सही सही सही. तो वैसे यूजुअली किस तरह से मतलब ईद की, क्या अभी तो फैमिली नहीं है तो क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे?
1: आज शाम को निकलेंगे. अभी तो खैर गर्मी है काफी, धूप है, अभी तो कहीं जा ही नहीं सकते, ना जाना चाहिए इस टाइम पे, गर्मी बहुत है. शाम को देखेंगे कहीं दोस्तों के साथ, कहीं अगर हुआ प्लान तो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे.
0: सही
1: है, खाना खाएंगे.
0: खाना शाना खाएंगे, मतलब असल जो चीज है वो डिनर के ऊपर मतलब फोकस होता है, राइट?
1: जी जी जी, मेन काम तो डिनर ही है ना.
0: डिनर ही है. सही है सही है. तो और डिनर में क्या मतलब, ये बारबेक्यू वगैरह का सीन होता है कुछ या नहीं?
1: जी बारबेक्यू का हमारा सीन है, कल शाम को हम इंशाल्लाह बीच पे जाएंगे.
0: गुड.
1: 7-8 दोस्त मिलकर.
0: जबरदस्त.
1: और जो है वो आज का सीन यही है कि बस भाई एक दोस्त है उनके साथ, मतलब उनको भी इनवाइट किया हुआ है ना, वो कोई बारबेक्यू टाइप. अब मैं उसका ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी प्रमोशन ना हो जाए. तो जो है ना
0: सही.
1: तो ये सीन है.
0: सही हो गया. जबरदस्त जबरदस्त, चले अच्छी चीज है. मतलब ये असल जो चीज है वो यही कि
1: कैसे गुजर रही है
0: मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है. बस वो सुबह नमाज वगैरह का सारा सीन था. और यूजुअली मैं जैसे बता रही हूँ कि हम लोग इस वक्त मतलब बैठ के रिलैक्स होके आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ये कि अभी हमने नाश्ता उस तरह से नहीं किया, अब हम जाके करेंगे. तो क्योंकि वही आने की टेंशन है ना, तो मतलब आते वक्त फिर नहीं होता कि आप अभी इतनी जल्दी जल्दी में क्या करोगे, और फिर मतलब वो मजा भी नहीं आता. तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि
1: हाँ जी, मैंने सुना था आपके साथ नाजिया मैडम भी आएंगे, वो नहीं आएंगे?

0: नहीं नहीं ईद के दिनों में नहीं, हमारा अभी बेसिकली ईद के बाद जो है 1 जून से शो मॉर्निंग का ही होगा, जिसमें मैं और नाजिया होंगे, और वो ईद के बाद है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक।
1: अच्छा
0: जी जी जी जी
1: 9 बजे तक
0: जी जी। वैसे नाजिया को आपने आज सुनना है, तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात नाजिया से 8 से 10 के दरमियान होगी, रात को।
1: रात को 8 से 10
0: जी जी जी जी बिल्कुल, तो उनसे आपकी जब मुलाकात हो सकती है।
1: चलें आपको वंस अगेन ईद मुबारक बहुत बहुत, और
0: आपको भी और अपनी फैमिली को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक जरूर कहिएगा जब आपकी बात।
1: ठीक है,
0: चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, थैंक यू, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरे आपकी ईद। जी, तो हमारे साथ हमारे पहले कॉलर थे फैजान, और देखा मतलब ये होता है, एक बंदा हिम्मत करता है ना, उसके बाद पे दूसरे को होता है कि चलो यार हम भी कॉल मिला लेते हैं, मिल जाती है, बात हो जाती है। तो एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
2: रिफत हुसैन।
0: रिफत हुसैन, ओके, आपका मैसेज तो आता रहता है ना?
2: जी जी जी, नहीं मैंने तो फोन किया था, शायद ऑनलाइन बिजी था उस टाइम।
0: अच्छा अच्छा, नहीं मुझे नजर नहीं आई।
2: नहीं मैं आपका शो 4 बजे था ना, मैं शो सुनता था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, शाम के वक्त
2: आपसे बात हुआ था पिछले ईद पे। अच्छा, जो अमीन भाई के साथ
0: बांग्लादेश थे ना आप?
2: जी जी जी,
0: सही सही, मुझे याद आ गया बिल्कुल
2: आपको।
0: जी जी मुझे याद आ गया। तो कैसी गुजरी है भाई आपकी ईद?
2: ईद तो परदेश में ईद क्या है, बस ऐसे ही है, नमाज पढ़ो, थोड़ा खाना शाना खाओ, दोस्त के साथ बात करो, थोड़ा घूमने फिरने जाओ। लेकिन मैं ईद पे नहीं घूमने जाता हूँ ना, क्योंकि उधर बहुत जगह पे बस फैमिली फैमिली फैमिली कैसे बनाएगा, इसलिए मैं ईद पे प्रेफर नहीं करता हूँ।
0: अच्छा,
2: इतना लोग होता है वो तो मैं नहीं जाता हूँ।
0: सही सही, तो फिर कैसे ईद गुजारते हैं?
2: अभी तो ड्यूटी करता है ईद पे।
0: सही सही सही सही, चले गुड, जबरदस्त। तो ईद पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ खाने वाने का खास एहतमाम कर लेंगे, चलो बाहर नहीं जाएंगे लेकिन खुद बना लेंगे?
2: वो तो सही है ना, वो तो बनाता है खाना ईद पे।
0: गुड,
2: फिर एक दो दो दोस्त है, तेरे भी दोस्त, तो हम लोग मिलके खाते हैं।
0: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। अच्छी चीज यही है, बस आप जाएं ना जाएं, असल चीज ये है कि बस वो जो ईद की खुशी है ना, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
2: जगह पे बहुत रश होता है ना, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, और जगह पे जाऊंगा तो फिर बोलेगा फैमिली अलाउ, नहीं अलाउ है, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ।
0: ये भी है, सही हो गया, चलें अच्छी चीज़ है, और मतलब सही है, मतलब ये भी मज़ा आता है मुझे तो। खैर मतलब अगर मैं घर पे भी, एक फैमिली की वजह से होता है कि जाना है, क्योंकि खासतौर पे बच्चों को एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वरना मैं भी घर पे आराम से ईद गुजार सकती हूँ, मैं उस पर भी बहुत खुश रह सकती हूँ।
2: तो सुकून अपने अंदर होता है ना।
0: एग्जैक्टली, ये बात है, ये बात आपने बिल्कुल सही की, कि सुकून आपके अपने अंदर होता है।
2: अब शायद कितने शायद आपके पास बहुत सारे आदमी होंगे, फिर आपको उधर मजा नहीं आएगा, फिर अकेला आप बैठे रहोगे, फिर आपको शायद लगेगा मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ऐसे ही है, सुकून अपने अंदर है, जिधर भी ढूंढ लोगा उधर ही मिल जाएगा सुकून।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रफत, ऐसे ही है। चलें जी, गुड, जबरदस्त, और अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल कीजिएगा आइंदा भी, ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें।
2: ईद मुबारक
0: आपको, बहुत ज्यादा
2: जी,
0: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, ठीक, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ थे हमारे दोनों कॉलर्स, और चलें अच्छी बात है, ईद पे बात हो जाए आपसे तो अच्छा लग रहा होता है। और एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, कौन बात कर रहे हैं?
3: आपसे, आपको भी ईद मुबारक, मैं नौशाद अहमद।
0: अच्छा नौशाद, कैसे हैं आप?
3: बखैर हूँ, अल्लाह करम है, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी गुजर रही है ईद?
3: चल रहा है जो भी, जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज पढ़कर आ गए घर पे, ये कब, कितनी देर पहले आ गए?
3: जी, नमाज पढ़ करके आया, और उसके बाद थोड़ा अरबियों के पास गया, मिला, मुलाकात हुई, फिर अभी वकरा के लिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।
0: अच्छा,
3: अलखोर से वकरा के लिए।
0: अच्छा, अलखोर से वकरा जा रहे हैं? हाँ
3: जी जी,
0: सही सही,
3: रास्ते में।
0: अच्छा अच्छा, गुड।
3: और थकन भी है रात की, रात में सो नहीं पाया था, जाना ही पड़ रहा है कुछ जरूरी काम की वजह से।
0: अच्छा अच्छा, और काफी लंबा सफर है ना ये तो?
3: काफी लंबा सफर है जी जी।
0: हाँ मतलब ठीक ठाक मेरे ख्याल से 40-45 मिनट तो आराम से लग जाते होंगे ना।
3: हाँ 45 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, लेकिन अभी रोड खाली है तो वैसे कोई रश वगैरह नहीं है इस वक्त। बाकी वक्त में तो लोग ज्यादातर तो अपने घरों में रहते हैं।
0: लेकिन अभी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं सुबह में निकलूंगी तो रश बहुत कम मिलेगा, लेकिन हैरत हुई मुझे कि काफी लोग मतलब पता नहीं क्यों निकले हुए थे। मतलब लोग मुझे समझ नहीं आते, छुट्टी वाला दिन है तो छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह आप क्यों निकले हुए, लेकिन रश था अच्छा खासा।
3: नहीं हो सकता है कुछ लोग नमाज के लिए जब सुबह निकलते ना तो मिलते जुलते साथियों से, अपने अहबाब से मिलते जुलते होता है। बाकी अब जो कुछ देर के बाद जो है भीड़ खत्म हो जाती है, लोग जो है खा करके सो जाते हैं,
0: सो जाते हैं,
3: उसके बाद जो है जोर की नमाज के बाद इत्मीनान और सुकून के साथ उठते हैं, फिर अपना जहाँ जाना हो जाते हैं नमाज के बाद।
0: बिल्कुल ऐसे ही तो यही है, अभी ज्यादातर लोग अब बस अब थोड़ी देर में सोने ही वाले होंगे और बहुत सारे तो सो चुके होंगे ऑलरेडी। सही। अच्छा ये बताएं आपके नमाज के लिए आप करीब की मस्जिद में जाते हैं या थोड़ा सा मतलब दूर प्रेफर करते हैं जो बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं?
3: मैं बारह जब भी मैं तकरीबन 17-18 साल से हूँ, मैं जब भी नमाज के लिए जाता हूँ तो अपनी करीब वाली जामा मस्जिद है वहीं जाता हूँ, और वहाँ काफी दूर से लोग आते हैं। आज तो मस्जिद बिल्कुल बड़ी पड़ी थी और बहुत परेशानी के बाद जगह मिली है अंदर।
0: सही सही सही। तो यही वैसे मतलब करीब करीब की मस्जिदें हों तो एक थोड़ा सा मतलब एक तो आपका जाना आना क्योंकि बीच में रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है तो भी मतलब टाइम भी बच जाता है, और फिर दूसरा ये कि अपने अपने जो नेबरहुड है ना उनसे आपको मिलने का मौका मिल जाता है।
3: अपने इलाके की मस्जिद में खास तौर से जो लोग अपने कुर्ब जवार के हैं उनसे मुलाकात भी हो जाती है।
0: जी जी
3: साथियों से मुलाकात हो जाती है वहाँ
0: पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: और मैं अपनी तरफ से जितने भी मेरे जानने वाले हैं मेरे गांव के हैं सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूं, और खासतौर से आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक।
0: आपको भी हमारी तरफ से खुसूसी ईद मुबारक, और आप देखभाल के जाएं अच्छे तरीके से ड्राइव करें देखभाल के इंशाल्लाह ताला, और जागे हुए रात के तो फिर बस कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सकता है वापस जाएं और जाके सो जाएं। ठीक है, और जरूर अच्छे से ईद गुजारेगा जो कुछ भी करें, मतलब चाहे वो थोड़ा बहुत हो लेकिन अच्छे से खुश होके अपने दिन को गुजारेगा। ठीक है चले जी, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, और वही मतलब आपके पास मतलब जो भी हो ड्यूटी पर हो कुछ भी हो लेकिन कोशिश एक ये करनी चाहिए कि अपने दिल में, जैसे अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दिल सुकून जो है ना अपने दिल में होता है, तो ये वाला जो सुकून है वो होना चाहिए, और उसके साथ जो भी मिलता है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब चीज़ों में ना हमेशा यही वाली जो चीज़ है ना ये होती है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई बड़ी कोई बहुत बड़ी लग्जरी हो तो जब भी आप बहुत खुश होंगे बहुत अच्छे से गुजारेंगे, बल्कि छोटा मोटा हो अल्लाह ताला का शुक्र करने की आपके अंदर आदत है तो उसमें आप खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, इन्जॉय भी कर सकते हैं, और यही जो है ना ये असल चीज़ होती है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए। ये जब चीज़ समझ में आ जाती है ना रियली तो उसके बाद आपका दिल इतना पुरसकून होता है कि आपको लगता है कि आप हर वक्त खुश हैं, आपको मतलब कोई चीज़ ऐसी फील ही नहीं होती। और जब तक इंसान के अंदर अल्लाह ना करे अगर नाशुक्रापन है तो कितनी ही चीज़ें उसको मिल जाए कुछ भी हो जाए लेकिन फिर उसको मतलब उन चीज़ों की ना कदर होती है ना वो वैल्यू समझता है और ना ही वो खुश हो पाता है, बल्कि वो दूसरे को देख देख के मतलब जो है ना वो होता रहता है परेशान कि देखो मतलब उसके पास तो है मेरे पास नहीं है। तो इस चीज़ से बस हमें जो है ना महफूज रहना चाहिए, अपने आप को रखने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हमारे हर तरफ अगर हम उनको महसूस करें तो। कॉल कर सकते हैं आप भी हमें 443-443-77 पे, और आप बता सकते हैं कि ईद का आपका क्या सिलसिला है। अभी अगला घंटा जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात करेंगे कुछ नाश्ते वगैरह के हवाले से, और मैं कुछ आपको आइडियाज़ भी दूंगी अगर आप लोगों ने अब तक नाश्ता नहीं किया है मेरी तरह कि आप क्या कर सकते हैं कुछ अलग करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मतलब हम आपको बताएंगे ब्रेकफास्ट की टेबल जो है ना वो आपकी किस तरह से इन चारों दिनों में अलग अलग मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी उसके हवाले से जो हम करते हैं यूजली मतलब घर पर थोड़ा बहुत, तो वो आप जो है वो अपनी एक कर सकते हैं। खुश होती है मतलब खुशी होती है बंदे को जब वो अपने लिए कुछ थोड़ी सी एक एफर्ट करता है। मुझे लगता है कि कभी कभी आपको ना थोड़ा सा अपने आप को भी ट्रीट देनी चाहिए। आप घर पे रहें, घर पे रह के आराम से इंजॉय कीजिए अपने नाश्ते को, और उसमें भी मतलब एक मज़ा होता है नाश्ते के वक्त में आप सब लोग साथ बैठते हैं या फिर खाने के वक्त में, तो वो एक अलग ही इंजॉयमेंट है उस चीज़ की। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: खलील, खलील पराचा बात कर रहा हूँ
0: जी। खलील पराचा कहाँ से हैं भाई?
4: कतर से।

0: से तो है, आप हैं अभी यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनली कहाँ से?
1: मैं ओरिजिनली कराची से।
0: अच्छा, ओरिजिनली कराची से। कराची में कौन से वो से जगह से, इलाके से?
1: कराची में गुलशन इकबाल।
0: अच्छा, गुड, जबरदस्त जबरदस्त। मैं भी कराची से हूँ वैसे।
1: वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: जी जी, कितना अरसा हो गया खलील भाई आपको यहाँ पे?
1: अरसा तो मुझे बहुत हो गया, पर अभी परमानेंटली मैं एक दो साल से आया हुआ हूँ इधर।
0: ये क्या सीन है?
1: ये सीन ऐसा है कि यहाँ फैमिली मेरी 2011 से सेटल है, मैं आता जाता रहता था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, आप आते जाते रहते थे और अब मेंटली भी आप यहाँ पे आ गए दो साल से। सही, गुड। तो ईद का क्या सिलसिला रहता है यहाँ पे, किस तरह से मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या खास मतलब जो चीज़ है जो आपको अच्छी लगती हो यहाँ की ईद की?
1: एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में ईद होती है वैसे ही यहाँ भी है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो अभी वही आपका प्रोग्राम सुन रहा था, फजर की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद घर आना, नाश्ता करना, सो जाना। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है, तो पाकिस्तान में ऐसा है कि वो नाश्ता ही कुर्बानी पे करते हैं। गोश्त जब तक नहीं बना के खाया जाए तो वो समझते हैं कि ईद का मजा ही नहीं आया।
0: ऐसे ही है।
1: वो जब तक कुर्बानी ना हो, उसका गोश्त खुद बनाए या बना के वो नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करें, उसमें ज्यादा मजा आता है।
0: और यूजुअली लोगों का नाश्ता कलेजी से होता है ना उस दिन, ज्यादातर लोगों का।
1: जी हाँ जी हाँ जी।
0: बिल्कुल।
1: लिटरली सही कह रही है।
0: हाँ, क्योंकि वो कलेजी, क्योंकि हमारे घरों में भी यही होता था कि नहीं, पहले कलेजी आ रही है, कसाई काट के दे रहा है, फिर बस उसके बाद नाश्ता होगा सब लोग।
1: कलेजी फ्राई करके और माशाल्लाह फिर उसी कुर्बानी की खाई जाती है, वो ज्यादा मजा आता है नाश्ते पे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो खलील भाई आप कुछ देर के लिए हमारे साथ रह सकते हैं, हमें एक ब्रेक पे, जिंगल ब्रेक पे जाना है।
1: जी जी ओके,
0: चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट जी, तो बस हम आते हैं वापस थोड़ी ही देर में।

0: एफएम 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
4: आठ बज के एक मिनट हम आपके साथ हैं। जी भाई
5: जी
4: जी, तो आप नाश्ते का जिक्र कर रहे थे कि कलीजी के साथ जो है वो यूजली नाश्ता होता है, तो यहाँ पे वो वाला सिलसिला नहीं है अभी?
5: नहीं नहीं, यहाँ तो बस सिलसिला ये कि अभी तो सो रहे हैं ज्यादातर
4: सही
5: वाले, सो रहे हैं। मैंने खुद भी यानी खुद ही आके चाय वाय बनाई। हम पाकिस्तान में होते तो अभी तक कलीजी आ चुकी होती।
4: सही है सही है, मतलब ये तो है क्योंकि हमारी थोड़ी सी एक तो नमाज का ना टाइम भी डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ पे जरा जल्दी हो जाती है, हमारी यहाँ देर से होती है थोड़ी नमाज ईद की।
5: हाँ जी वो ये है कि ईद की नमाज के फौरन बाद ही
4: लोग कसाई पकड़ना शुरू कर देते हैं।
5: अक्सर कसाई धोखेबाज होते हैं। हाँ, भाग जाते।
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चक्कर जो है ना हर दफा के होते हैं इंसान के।
5: तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं उनको ना देखना पड़ता है। कराची में तो कम से कम ऐसा ही है।
4: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
5: वो आपको आपके यानी जानवर पे चुरी घुसमा के चला जाएगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बड़ी फनकारियां होती है हमारे, बस ये समझते हैं। अच्छा, लोग तो हमसे सामान लेके रख लेते हैं कि भाई तुम सामान दे दो बस।
4: अच्छा कौन सा सामान?
5: वो देखा है बंदा वहाँ देख के कराची में रह के बंदा कहीं मार नहीं खा सकता।
4: ये तो है, आप तो मतलब हर तरह के आदि हो जाते हैं आपके, मतलब टोपियां बनाने के ना लोग आदि होते हैं, तो आप भी आदि हो जाते हैं।
5: पता वहीं से सीख जाता है।
4: एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल यही है।
5: ट्रेंड हो जाता है बंदा, ट्रेंड।
4: बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात तो है। अगर आप दूसरी जगहों के लोग देखें ना, खासतौर पे जो मतलब जिनका ताल्लुक गांव वगैरह से होता है, तो आपको लगते हैं बहुत मासूम लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने मतलब क्योंकि मतलब एक तो ये है कि हर तरह के लोग होते हैं कराची में, हर जगह के आए हुए लोग होते हैं, और वो लोग भी चलाक हमसे ज्यादा हो चुके होते हैं, तो उस तरह आप जो है ना मतलब अच्छा खासा ट्रेन हो चुके होते हैं चीजों से निपटने के लिए।
5: नहीं नहीं, वाकई कराची का बंदा कहीं नहीं मार खाता।
4: एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है जी, सही कह रहे हैं। तो भाई चले, आप बहुत अच्छे से ईद गुजारिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर।
5: नहीं, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है।
4: तो
5: मैंने कहा चलो मैं मिला के देखता हूँ, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, वो अचानक ही मिल गया। मैंने रेडियो ही बंद किया फौरन, क्योंकि फिर आवाज डबल आ रही होती
4: है। जी जी जी जी जी, चले बहुत अच्छा किया, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ
5: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
4: हाँ, और आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा।
5: आप और आप लोगों के प्रोग्राम सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
4: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा, मैं वेट करूंगी
5: इंशाल्लाह। सबको सलाम,
4: थैंक यू जी, थैंक यू, ईद मुबारक आपको एक दफा फिर से, अल्लाह हाफिज।
5: आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक।
4: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खैर मुबारक, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जी, तो हमारे साथ हमारे भाई कराची के खलील वराचा, और इनके बाद देखते हैं कि कौन है हमारे साथ, और उनसे भी बात करते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 4433477 पे, और इसके साथ ही व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी करते कर सकते हैं 6622107। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रेडियो ऑफ कर दीजिए, ईद मुबारक। कौन बात कर रहे हैं, तौफीक भाई?
6: नहीं, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है।
4: अच्छा मोहम्मद साकिब, क्या हाल चाल है?
6: मोहम्मद भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
4: जबरदस्त।
6: प्रोग्राम सुनने से हम लोग यही निकले थे, नाश्ता करके वापस आ रहे हैं।
4: सही है। अच्छा, हाँ मुझे शुरू में बोल रही थी, तो बहुत सारे लोग नाश्ते में भी तो मशगूल होंगे ना।
6: जी जी बिल्कुल। और हम लोग आपस में एक बात कर रहे थे जो कलेजी वाली बात थी, यही हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जाहिद भाई, उनसे मैं बोल रहा था, जब घर पे कुर्बानी होती है तो सबसे पहले कलेजी इसलिए होती है कि वो जल्दी बन भी जाती है।
4: हाँ, फौरन से गल जाती है ना।
6: हाँ,
4: बिल्कुल
6: हमारे दोस्त हैं जाहिद भाई और सैफ है बाकायदा स्पेशल।
4: अच्छा अच्छा,
6: तो हम ये कहना चाह रहे थे जैसे हम बोले आप कुछ स्पेशल बनाओ तो ये खुद होटल पे लेके गए।
4: अच्छा अच्छा, तो वो खुद होटल में आपको लेके गए बगैर मतलब अपने आप बनाने के बजाय, उन्होंने कहा कि चलो भाई, मतलब आज तो उनका भी हक बनता ना वैसे। है ना
6: जी, आप लीजिए बात कर लीजिए।
4: जी जी बिल्कुल, बात करवा दीजिए।
6: तो बोलिए आप, मुबारकबाद दीजिए।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको।
2: अल्लाह
4: का करम है, आप बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आपने कलेजी बना के खिलाई नहीं, बल्कि आपने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को खुद होटल लेके चलता हूँ।
2: जी जी, हर दम तो ऐसे काम करते रहते हैं, आज मैं बोला थोड़ा रेस्ट कर देता।
4: नहीं, अच्छी बात है, गुड, जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी चीज है, मतलब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना ईद पर।
2: जी,
4: तो क्या सबसे अच्छी चीज क्या बनाते हैं भाई आप? नाम नहीं बताया आपने, नाम बताइएगा।
2: नाम है मेरा जाहिद।
4: जाहिद, ओके जी। तो सबसे अच्छी चीज आपकी जो है ना, जो सबसे खास डिश है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, वो क्या है?
2: सबसे खास डिश तो बिरयानी ज्यादा पसंद आती है।
4: ओए होए, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट
2: जी।
4: तो बिरयानी कौन सी वाली बिरयानी बनाते हैं आप?
2: बिरयानी हैदराबादी बिरयानी।
4: हैदराबादी, जबरदस्त
2: बिरयानी है, ज्यादा पसंद हैदराबादी करता हूँ।
4: हाँ हाँ, वैसे हैदराबादी बिरयानी का वाकई कोई और दूसरा मुकाबला है नहीं, मतलब सबसे मजेदार जो बिरयानी होती है ना, वो वाकई हैदराबादी होती है। जबरदस्त। और क्या कहना चाहेंगे भाई?
2: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है।
4: जबरदस्त, आज पहली दफा बात हो रही है आपसे, पहली दफा कॉल पे बात कर रहे हैं रेडियो पे।
6: प्रोग्राम में दोपहर में बात हुई है।
4: अच्छा अच्छा,
6: प्रोग्राम होता है दोपहर में।
4: पहली दफा बात हुई है, चलें, खैर अच्छी बात है, पहली दफा हुई है लेकिन आखिरी दफा ना हुई है, जरूर कॉल कीजिएगा आइंदा भी, ठीक है? चले इंशाल्लाह, बहुत ख्याल रखिएगा, ईद मुबारक आपको भी और आपके सब दोस्तों को जो जो साथ हैं, ठीक है?
6: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको भी, मेरा आईडी और फायदी गुलाम वंतुम बखैर इंशाल्लाह।
4: थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स, और इसके साथ ही हम पढ़ते हैं, एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, फिर मैं आपसे कुछ न्यूज़ वगैरह भी शेयर करती हूँ, उसके साथ ही जैसे हमारा हर दफ़ा का रोज़ाना का सेगमेंट होगा ब्रेकफास्ट के हवाले से, तो वो भी हम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन इस वक्त सुनकर आते हैं एक अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक। Say what?

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: Shumalle

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद।
3: ईद मुबारक।
0: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
2: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: ईद मुबारक एक दफा फिर से आप लोगों को मैसेजेस है मेरे पास। जसविंदर सिंह काला कहते हैं ईद मुबारक, जसविंदर सिंह काला की तरफ से आपको भी ईद मुबारक भाई और गुड मॉर्निंग। मुझे कहा है ईद मुबारक मैम मोहम्मद का मैसेज है। अच्छा मोहम्मद, मोहम्मद का पूरा नाम है मोहम्मद खलील। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी भाई और इसके साथ ईद मुबारक फ्रॉम रीमा। और रीमा ने शीर खोरमा भी भेजा। रीमा आयशा आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक और उम्मीद है कि अच्छी गुजर रही होगी रीमा आपकी ईद। इसके साथ ही जी है हमारे साथ जफर अली का मैसेज, लिखनी में पढ़ती हूँ। उससे पहले हम ले लेते हैं कॉलर और फिर हम आते हैं जफर अली और बाकी मैसेजेस की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
1: ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक आपको भी। ये प्रैक्टिस हो रही थी कि कैसे सुनाना है या फिर
1: मैं दोस्त को सुना रहा था मैम।
0: अच्छा दोस्त को सुना रहे थे।
1: मैं बोला मैम को ये सुनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ईद मैम सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब नमाज पढ़ के आते हैं हम लोग घर में काम करते हैं, हाउस ड्राइवर हैं, तो ऐसा लगता है दो तीन घंटे तक कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हर तरफ एकदम सन्नाटा, सब लोग अपने अपने रूम में। हाँ मैम, तो इसलिए मैं सोचा एक शेर सुनाऊं आपको।
0: जी जी सुनाइए।
1: ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है।
0: क्या बात है।
1: नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कहीं दिखे कोई अपना गले लगाना है।
0: ओए होए,
1: मुझे फीलिंग बहुत ज्यादा तरसती है मैडम। हाँ। तकलीफ दे हो जाती है यहाँ पे।
0: सही। कहाँ से ताल्लुक है भाई आपका?
1: हमारा उत्तर प्रदेश इंडिया से।
0: उत्तर प्रदेश इंडिया से। और नाम क्या है भाई?
1: मोहम्मद फहद।
0: मोहम्मद फहद।
1: यस मैम।
0: जी जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है। तो ईद पे मतलब घर वालों को मिस करें, कॉल की अभी तक?
1: हाँ कॉल तो नमाज से पहले भी, नमाज के बाद भी कर लिया।
0: सही। और कितने अरसे से यहाँ पे?
1: यहाँ पे 4 साल हो गया।
0: 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक 4 साल में ऐसे ही लगता है ना कि ईद मतलब घर वाले नहीं है। सही।
1: ऐसा लगता है कोई नहीं रहता है 3-4 घंटे तक।
0: सही, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। अब बंदा यहाँ पे अकेला हो, जाहिर सी बात है फैमिली नहीं है, कोई मतलब अपना नहीं है, जिनके लिए वाकई आप कमाने आए हुए हैं वो आपसे दूर हैं, तो मुश्किल होता है, काफी मुश्किल।
1: और ऊपर से जो आसपास के दोस्त रहते हैं सब लोग अपने अपने रूम में बात ही करते हैं घर पे। घर पे है नहीं।
0: सही सही, चले कोई बात नहीं, लेकिन यही कि आपकी घर वालों को एक तो खुशियां मिल रही हैं आपकी वजह से, है ना, और फिर इंशाल्लाह आपको बहुत अजर मिलेगा इंशाल्लाह इन चीजों का।
1: इंशाल्लाह। थैंक यू मैम।
0: बस इतनी सी बात। चले ओके, बहुत अच्छा
1: लगा।
0: आपके दोस्तों को, आपके सब घर वालों को भी जब आपकी दफा बात करें तो उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक कहेगा, ठीक है? चलो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू जी। रही जी अल्लाह हाफिज जी। तो हमारे साथ फहद थे और मतलब थोड़ा एक होता है इमोशनल भी हो रहा होता है बंदा, क्योंकि घर से दूर है तो याद भी आ रही होती है और मुश्किल भी होता है। अच्छा जी, मैसेजेस जो है आपके शामिल करने, लेकिन आज थोड़ी सी ना चार्जिंग बेसिकली कम है, तो इसलिए मैसेज आपका मैं शामिल करती हूँ, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, तो ये वाला सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए जिनके मैसेजेस नहीं शामिल हो पा रहे हैं, भी जफर अली का तो मैंने पढ़ना था, लेकिन चले थोड़ी देर के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि आपका मैसेज जो है वो शामिल किया जाए। जफर अली, कुछ और भी नाम मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन आप अगर चाहते हैं आपसे हमारी बात हो जाए तो जरा आज प्रेफर कीजिए कि कॉल कर लें, क्योंकि फोन का मैंने आपको मसला बता दिया कि ये वाला मसला है, इस वजह से आपके मैसेज अभी जो है ना वो शामिल नहीं हो पा रहे। अच्छा सबसे पहले तो भाई मैंने एक खबर निकाल के बहुत देर से रखी हुई है, मैंने आपसे शेयर करनी है कि अल्लाह ना करे किसी को भी अगर आज मतलब जरूरत हो, उनको जो है वो जाना हो कुछ डॉक्टर वगैरह को दिखाने के लिए, तो ये मैं आपको बताती चलूं कि जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ सेंटर्स हैं, वो आपको ओपन मिलेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि जो वर्किंग आवर्स वगैरह हैं और वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जितने भी इमरजेंसी इन पेशेंट सर्विसेज हैं हॉस्पिटल्स में, इंक्लूडिंग मतलब जो है वो जो अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन के आती है, उसमें चाहे इमरजेंसी सेंटर्स हों PHCC के, और साथ ही साथ कतर नेशनल ब्लड डोनेशन सेंटर भी यहाँ पे ब्लड डोनर्स को भी रिसीव करेगा और उनको वेलकम करेगा। और टाइमिंग्स मैं आपको बताती चलूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अवेलेबल रहेंगे, तो आप बिल्कुल ईजिली मतलब जा सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, आपको जाना है, विजिट करना है, तो आप बिल्कुल मतलब जो है जा सकते हैं। और 21 हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि काम करें, इनकी थोड़ी सी डिटेल्स ले लीजिएगा कि कौन कौन से हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। उसमें से 15 हेल्थ सेंटर्स अराउंड द क्लॉक 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, अर्जेंट केयर सर्विसेज बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे और बड़ों को भी। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई?
2: ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं? उठे हुए हैं सुबह?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उठ गया।
0: जबरदस्त जबरदस्त। कैसी गुजर रही ईद?
2: ईद तो हमारे मुल्क में ही होती है, यहाँ का।
0: हाय हाय वही वाला सिलसिला है।
2: जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी जी बिल्कुल। तो अभी तक क्या किया आपने?
2: देखिए मैं जो है ईद की नमाज पढ़ी, बाद में जो है घर पे बात किया, ईद मुबारक, और फिर नाश्ता किया। फिर मैंने कहा कि चलो भाई आपको भी ईद मुबारक कह देते हैं कि आप भी बहुत सुबह सुबह शुरू हो गए हैं आज।
0: जी तो रोजाना मैं परेशान, मुझे ना आज का दिन तो काफी हद तक निकल गया, मुझे तीन दिन की परेशानी है, खासतौर पे पहले घंटे की कि कैसे गुजरेगा। अब क्योंकि कल से तो मुझे लग रहा है लोग सो ही रहे होंगे ना, मतलब लोग बोलेंगे छुट्टी है इतना सुबह सुबह कौन उठेगा। तो देखें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला।
2: और तीन दिन आपकी मॉर्निंग में है?
0: जी जी मॉर्निंग 7 to 9 रोजाना।
2: मतलब फिर अब फिर संडे से रेगुलर 4?
0: जी संडे को 4 to 5 एज यूजुअल, लेकिन फिर उसके बाद मंडे से दोबारा 6 to 9 मॉर्निंग।
2: ओके मंडे से मॉर्निंग 6 to 9। ओके
0: जी जी ये सिलसिला है। तो अभी देखें रूटीन चेंज होती है तो मतलब कैसे रहता है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो होती है हर दफा ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताएं समद नाश्ते का क्या सिलसिला है, आप लोग नाश्ते पे एहतमाम करते हैं या फिर असल जो फोकस है वो डिनर के ऊपर होता है?
2: देखिए नाश्ता तो 100% करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन अब वो कभी कभी जो है जल्दी जल्दी में ऑफिस की जल्दी में कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन करना चाहिए।
0: ईद पे मैं कह रही हूँ, ईद पे मतलब नाश्ते पे फोकस होता है या?
2: ईद के दिन तो नाश्ता होता ही है। अब मुल्क में रहेंगे तो वहाँ पर जो है अब जैसा कुर्बानी होती है तो मगज वगैरह और बाकी दूसरी चीजें जो होती है, यानी पाया हो गया और अपने किडनी फ्राई बाकी दूसरी चीजें, तो वो वाली नाश्ता हो जाता है फाते वगैरह होने के बाद में। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं अपने शाम में बहुत सारी डिशेज बनती है, जैसे की बिरयानी हो गई है और मटन का कोई करी हो गया, मटन कढ़ाई हो गई, बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के डिशेज होते हैं। तो सब क्योंकि ईद के मौके पर जो है सब बहने वगैरह अपने ससुराल से आते हैं ना घर पर, तो एक छोटी सी गेट टुगेदर होती है फैमिली की, तो उसमें जो है कुछ अच्छे जायकेदार पकवान होते हैं चल गया।
0: सही सही।
2: और मीठा वगैरह भी होता है तो उसमें ईद अच्छे से निकल जाती है।
0: जबरदस्त।
2: यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग की जो है बना लेते हैं समझे बैचलर से, और कहते हैं ना कि यहाँ पर बैचलर है और इंडिया में मैरिड है, वैसा वाला ही
0: सही है। सही है। तो खाना बना लेते हैं आप समझ?
2: हाँ बहुत एक नंबर बिरयानी बनाता हूँ मैं तो।
0: क्या बात है।
2: ऐसा मेरा मानना है, बाकी सब लोग तो अप्रिशिएट करते हैं बट मैं तो ठीक ठाक बना ही लेता हूँ।
0: अच्छा सही है। तो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर?
2: हाँ अच्छा जायका अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है।
0: जबरदस्त जबरदस्त। तो कौन सी वाली आप बिरयानी बनाते हैं?
2: देखिए हमारे पास में हैदराबाद की दम बिरयानी बड़ी फेमस है।
0: हाँ तो वो वाली कच्चे गोश्त वाली बनाते हैं?
2: हाँ अखनी वाली कच्ची अखनी।
0: अच्छा मतलब कच्चे गोश्त वाली वो होती है ना जो मतलब पहले गलाते नहीं है पर चावल साथ में रख के फिर वो बनाते हैं ना। जबरदस्त ग्रेट भाई क्या बात है, टैलेंट है ये तो जबरदस्त।
2: मैं कुकिंग मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली।
0: अच्छा
2: तो मैं जो है बहुत ज्यादा मतलब
0: तो उसमें क्या आपकी टिप क्या है कैसे जबरदस्त बनती है?
2: देखिए कुकिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुकिंग तो कोई भी कर लेता है ऐसा नहीं है, बट वो जो मोहब्बत और खुलूस से बनाया जाता है ना उसमें असल जायका होता है।
0: हाय हाय ये क्या कह दिया आपने। ये तो है बिल्कुल
2: ये सच्ची बात है।
0: नानी है तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुझे खुद बहुत कुकिंग पसंद है, मैं बहुत मतलब इंजॉय करती हूँ, लेकिन मैं पूछ रही थी कच्चे गोश्त की बिरयानी वाला जो सीन है मैंने बनाई अभी मतलब इसी साल बनाई, इससे पहले नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि कच्चे गोश्त है तो पता नहीं कुछ स्मेल आती होगी कुछ होता होगा कैसे बनती होगी किस तरह का तरीका होता होगा, लेकिन खाई तो बहुत थी और बहुत ही मजे की होती है भाई मतलब हैदराबादी बिरयानी, फिर बनाई अच्छी बनी काफी अच्छी बनी।
2: उसमें सारा खेल मसालों का होता है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी कैलकुलेशंस में कितने मसाले डालने होंगे और कितनी जो है आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. और सबसे बिरयानी का सबसे बड़ा मेन रोल चावल प्ले करता है. चावल एकदम फरेरे उतरेंगे ना, मतलब अच्छे लंबे लंबे चावल उतरेंगे बासमती राइस और नरम ना पड़े ज्यादा से, तो वो ज्यादा केयर करना होता है. और फिर ऑनियन फ्राई है, बाकी मैं लिस्ट तो बड़ी लंबी है बिरयानी की
0: काफी सारे मसाले होते हैं बिल्कुल.
2: हाँ तो शाम में गए वो हम, मतलब और जो गार्लिक पेस्ट होता है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको ना हम वो बाहर का पेस्ट नहीं डालना चाहिए, वो हम अपने मतलब ग्राइंड घर में ही ग्राइंड करके, या फिर वो पुराना होता है ना सिस्टम कूट के करके समझने वाला, उस तरीके से अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा. और गरम मसाले भी घर में ही बनाना चाहिए, मतलब खड़े मसाले तो डालते ही हैं लेकिन जब वो उसको ग्राइंड जो करते हैं उसको, तो वो ग्राइंड करते जो टाइम पे वो भी घर में ही,
0: मतलब फ्रेश

0: तो मतलब डिवाइड हो जाता है काम, अब सब लोग है ना तो उसमें डिवाइड हो जाता है. तो एक मटन वॉश कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में फिर दूसरे जो है ग्राइंड कर लेंगे जो जो भी है इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि मसाले हो गए और दही हो गया और हरी मिर्च पीसना होता है और फिर नींबू को अच्छे से कट करके, फिर तो ये सब सारी चीजें कर देते हैं. फिर मैं आता हूँ, आकर जो है उसमें मसाले वगैरह कितने डालना है और दही और हरी मिर्च, खड़े मसाले, फिर उसके बाद में गरम मसाला, फिर मतलब जो भी हमारे टर्मरिक्स होते हैं वो सब सारी चीजें हल्के स्पाइसेस उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ऑनियन को फ्राई किया हुआ ऑनियन वो भी डालकर उसमें मिक्स करते हैं और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं. उसके बाद में जो है उसको एक 3-4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे ऐसे ही उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया,
1: सही हो गया
0: उसको. अब उसके बाद में वो जितना भी फ्लेवर होता है वो सारा जो है मटन में अच्छे से आ जाएगा.
1: सही है.
0: वो आने के बाद में आप जब शाम में जब चावल जो है आप एक 15 मिनट बिफोर ऐसा मतलब आप उसको थोड़ा सा भीगने रख दें चावल को अच्छे से धोकर, उसे फिर एक 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, सब 15 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 मिनट रख देंगे तो काफी है. फिर आप पानी लगा दोगे, गर्म कर लोगे पानी, फिर उसके बाद में पानी में आप जो है जीरा डाल दें, फिर अपने
1: गरम मसाले
0: जो गरम मसाले जो जिसे हम खड़े मसाले कहते हैं गरम मसाले, तो वो ऐसे डाल देंगे, पानी अच्छे से वो होगा बॉईल होगा और वो वाटर जो है पूरे मसालों का फ्लेवर ले लेगा. उसमें जो है फिर आप राइस डाल दें, राइस को हाफ कुक कर दें, आपको पता चलेगा ज्यादा एकदम बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी कनी नहीं रहनी चाहिए, तो मतलब मीडियम हो जाना चाहिए, 50% पक जाना चाहिए. पक जाए तो कोई नहीं, उसके बाद में फिर आपको एक लेयर पे लेयर लगाना होगा. फिर अब डिपेंड, कुछ लोग
1: ये गोश्त अभी बिल्कुल कच्चा है, हाँ बिल्कुल पका नहीं है,
0: हाँ वो तो दम पे पक जाएगा ना आपको.
1: सही ठीक हो गया.
0: जब आप चावल डाल दोगे फिर उसके अंदर कलर बनाना होगा हमें, कलर बनाकर जो राइस को जो कलर देता है, हाँ जाफरान, तो उसके बाद में फिर आपने वो कलर डाल दिया. और फिर जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, अगर कोई लोग डालते हैं कोई नहीं डालते, मगर मैं डालता हूँ असली घी. असली घी डालेंगे तो फ्लेवर और नेक्स्ट लेवल का लेकर आता है. तो असली घी को मैं क्या करता हूँ कि राइस के लेयर्स जो बनाता हूँ मैं उसके ऊपर मैं असली घी, फिर उसके बाद जो है अपने कोरिएंडर होता है ना वो कोरिएंडर डालता हूँ, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा अच्छा स्मेल लेकर आता है.
1: कोरिएंडर
0: जो है वो,
1: और अभी कितनी देर दम लगाएंगे आप?
0: हाँ देखिए, ये दम जो है मैं एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर रखता हूँ और उसको क्या कहते हैं अपने पतीले को घुमाते रहता हूँ.
1: अच्छा.
0: ताकि जो है सब जगह अच्छे से पक जाए.
1: ओके.
0: मतलब कहीं छूटे नहीं. तो कभी कभी होता ही है कि आंच बिल्कुल एकदम बीच में होती है ना, तो धीमी आंच पे हमको पता नहीं चलता बिल्कुल बीच में पकता है, बाकी का छूट जाता है, तो उस हिसाब से मैं उसको जो है साइड बाय साइड करके पकाते रहता हूँ. तो जब जैसे ही 20 मिनट के बाद में पक जाता है, फिर आप जब आप ढक्कन खोलेंगे तो खुशबू है वो
1: और गोश्त बिल्कुल गल जाएगा, राइट?
0: हाँ, अब फ्रेश रहेगा मटन तो गल जाएगा, अगर फ्रोजन रहेगा तो फिर आपको गलाने के लिए छालिया डालना पड़ेगा या फिर पपाई डालनी पड़ेगी, मतलब उसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, तभी जाके वो थोड़ा सा जो है नरम पड़ेगा, उसका जो हार्डनेस है वो कम होगा.
1: सही.
0: अगर फ्रेश मीट है, फ्रेश है तो आपको जो है फ्रेश मटन में आप आराम से मतलब दम पे ही पक जाएगा.
1: क्या बात है, जबरदस्त भाई. चले मैं इस तरह से भी ट्राई करूंगी. वैसे मैंने मतलब वहम में ना जब चिकन बिरयानी बनाया था दम बिरयानी, तो मैंने उसको थोड़ा सा पका ही लिया था. मैंने कहा था थोड़ा सा तो पका ही लेती हूँ. हाँ नहीं, मतलब भून लिया था हल्का सा ना चिकन को, एक वहम होता है ना, तो मुझे लग रहा था नहीं स्मेल आएगी, लेकिन चले खैर अब आपकी रेसिपी से बना के देखेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि कैसी बनी. ठीक है,
0: बहुत अच्छी होती है, बहुत डिलीशियस होती है, बहुत टेस्टी होती है.
1: इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी और बिल्कुल इसी तरह से करूंगी जैसे आपने बताया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और मैं आपका कल भी वेट करूंगी, परसों भी वेट करूंगी, जरूर कॉल कीजिएगा. ठीक है. आज हम लोग टॉपिक नहीं है ना बेसिकली, ये तो अलग तरह का शो है. आज हम लोग बेसिकली न्यूज कुछ शेयर करनी थी, कुछ मतलब आज सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से मैंने शुरू में बात की है. इसी तरह से कल भी पहला घंटा जो होगा ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा यस्कार वगैरह होते हैं, तो वो इस तरह होगा पहले घंटे में. और दूसरे घंटे में हमारा एक सेगमेंट ब्रेकफास्ट का है, तो उसी हवाले से मैं आपसे बात कर रही थी, पूछ रही थी. ठीक है, चले दी समझ. बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ईद मुबारक. थैंक यू जी, लाफिज. राइट जी, तो हमारे साथ थे समद और उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त हैदराबादी दम की बिरयानी बनाना सिखाई है. मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा. इंशाल्लाह बनती है तो मैं आपको फीडबैक भी दूंगी कैसा है. और फिर इसके बाद मैंने आपसे नाश्ता

की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रीफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं

0: ऑलरेडी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हो 107 FM और ईद मुबारक आप सब लोगों को. मॉर्निंग मस्ती ईद में एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ. और अब हम जल्दी से तस्करा कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे आज क्या होना चाहिए. अच्छा, मैं वही बता देती हूँ जो कि आज हमने अपने घर पे प्लान किया है. मतलब यूजुअली ईद के दिनों पे थोड़ी सी कोशिश रहती है कि थोड़ा अलग अलग तरह का नाश्ता हो. मतलब रोजाना एक ही चीज़ ना खानी, क्योंकि वो तो हम रोजाना, मतलब वही होता है ना, अंडा खा लिया, ब्रेड खा ली, या फिर मतलब मेरा अपना रोजाना ऑफिस की डेज में ये रहता है कि मैं रोज़ाना ओट्स खाती हूँ. ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ. इजी भी रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है. तो मैं तकरीबन रोज़ मेरा नाश्ता वर्किंग डेज में ओट्स का ही होता है. तो ईद पे ये होता है कि ईद या कुछ ऐसे मौके हैं जो थोड़े से अलग हैं, जिन पे थोड़ा सा मतलब कुछ करना चाहिए. तो फिर कोशिश रहती है कि ईद के दिनों में ज़रा अलग अलग थोड़ी को वेराइटी हो. अच्छा, हम लोगों का एक जो फेवरेट जो ब्रेकफास्ट है, जो कि आपको यहाँ पे कुछ जगहों पे मिल भी जाता है, और वो है बेसिकली इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और इंग्लिश ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी ख़ास होती हैं. अंडा तो होता है, जैसे एक है, आप उसमें फ्राई बना सकते हैं, आप उसमें जो है ना, अगर चाहें तो बॉयल, अगर बहुत हेल्दी की तरफ जाना है तो वो भी कर सकते हैं. या फिर आप जो वो वाला अंडा होता है ना, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा मतलब जैसे ऑमलेट तो नहीं, लेकिन जैसे आप थोड़ा फेंट कर और इस तरह से बना लेते हैं स्क्रैम्बल एग, वो बना सकते हैं थोड़ा बहुत नमक वगैरह डाल के. साथ में उसके कुछ चीज़ें और होती हैं, अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है. सॉसेजेस हो सकते हैं, या फिर आप जो बर्गर पेटी होता है वो आप ले सकते हैं. जैम वैम हो सकता है, आप उसके साथ बीन्स बना सकते हैं. ये मतलब आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं. तो आज हमने बेसिकली वो प्लान किया है कि वो बनाएंगे और वो खाएंगे. अभी हो चुका होता हमारा नाश्ता, लेकिन आज चूंकि शो है तो उसके बाद घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला. मतलब कुछ चीज़ें तैयार हैं, हाफ डन हुई हुई हैं और कुछ चीज़ें करनी है. तो ये होता है. अच्छा, हैश ब्राउन्स, और ये बड़ा मस्त है, हमारी फैमिली को बहुत पसंद है. सॉसेजेस हों या फिर ये कि वो बर्गर पेटी हो, इस तरह का कुछ हो तो वो अच्छा लगता है. मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं. लोबिया भी कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन अंडा और ये दो तीन चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं. तो इसमें लेकिन अगर आप वो वाला फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट देखें तो उसमें और भी बहुत सारी इंक्लूडिंग होती हैं चीज़ें. मतलब अच्छा खासा बड़ा प्लेटर होता है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो यहाँ पर जाकर भी आप खा सकते हैं, और दूसरा ये कि घर पर भी आप बना सकते हैं. लिटरली बहुत मज़ा आएगा और थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आम चीज़ों से. और फिर बाद में मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम क्या बनाने वाले हैं घर पर, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने तौर पे भी, चाहे जैसे बाहर जाके करें या चाहे अपने घर पे बनाएं. घर पे बनाएं तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है. मतलब एक तो ये कि घर पे जो चीज़ बनती है ना, उसमें एक तो बरकत होती है, क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है. हो सकता है कि आप एक दिन के लिए चीज़ बना रहे हो लेकिन वो दो दिन तक चल जाए, तो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है, और दूसरा ये कि मज़ा भी ज़रा ज़्यादा आता है ना घर की बनी चीज़ों में. फिर देखते हैं हमारे साथ कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: अहमद.
0: अहमद बात कर रहे हैं? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. अहमद कैसे हैं?
1: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, व हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. ईद मुबारक आपको भी. अहमद आपकी एज क्या है?
1: 12.
0: हाँ, छोटे से हैं अभी तो. मतलब अभी आवाज जो है ना, अभी आपकी आहिस्ते से मैच्योर हो रही है जी. अहमद कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं. ग्रेट ग्रेट. कैसी गुजर रही है ईद, और ईदी मिली अभी तक?
1: नहीं नहीं, इंशाल्लाह शाम के वक्त ही. मेरे यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है ना, कि यानी घर में जब ट्रेडिशन होता है, जब सब लोग तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए, तो उस वक्त सबको ईद ही मिल जाती है, क्योंकि अच्छे कपड़ों के साथ अच्छे ईद भी मिल जाता है. ये भी कहना है.
0: सही, गुड, जबरदस्त. तो अहमद आप जो है वो कहाँ से हो, कौन से कंट्री से हो?
1: पाकिस्तान से, कराची.
0: पाकिस्तान से कराची से. ग्रेट, जबरदस्त. और यहीं रह रहे हैं जब, मतलब पैदा यहीं हुए हैं, यहीं के हैं?
1: यहीं पैदा हुआ था मैं.
0: अच्छा, यहीं पैदा हुए थे आप. ग्रेट, जबरदस्त. तो क्या अभी क्या इरादा है, नाश्ता कर लिया?
1: नहीं नहीं, अभी तो करना. मैं कब 7:30 बजे, उतना टाइम नहीं हुआ मुझे उठने को.
0: अच्छा, सही. नाश्ते में क्या इरादा है आज करने का, क्या खाते हैं आप नाश्ते में?
1: नाश्ते में तो यानी सुबह यानी अगर कुछ भी खाता, बस थोड़े चीज खा लेता हूँ अगर रहते, क्योंकि मैं प्रॉपर नाश्ता नहीं करता ना, क्योंकि मैंने वेकअप ना जब छुट्टियाँ होती है, तो छुट्टी होती कुछ तो फिर मैं कुछ 12-1 बजे उठ जाता हूँ, लाइक बहुत लंच का टाइम हो जाता है ना तो मेरा, तो इसलिए वो मैं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं होता तो इसलिए मैं लंच ही कर लेता हूँ.
0: लंच ही कर लेते हैं. अच्छा हाँ. तो ये लंच जो है वो मतलब आप अपने घर वालों के साथ बैठ के करते हैं राइट? मतलब ये अमूमन सारे बच्चों का है, वेकेशन में तो सब बच्चे लेट ही उठते हैं, आप अकेले नहीं है? सही. मेरा भी कुछ ऐसे हिसाब है, पता है आपको अहमद, मुझे भी बहुत टाइम लगता है खाना खाने में, लेकिन मजा भी आता है, एंजॉय करते हैं अपनी मील, है ना?
1: ये बात है, मजा तो आता है.
0: बच्चों को ना राइस बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आपको चावल पसंद नहीं है?
1: हाँ, क्योंकि शायद बहुत गर्म होंगे. मैंने भी एक बार खाया होगा, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा. इवन तो पहले मुझे कार्य रहता था कि बहुत गर्म है, मुझे मजाक भी दिया जाता था अपने मामू खाला से वाले से कि ने ये बोला था कि राइस बड़ा गर्म है इसलिए आप आजकल नहीं खाते हो, वही राइस नहीं गर्म होता था. जब मैं खाता हूँ तो फिर भी मुझे अजीब लगता है.
0: अच्छा नहीं लगता आपको? बिल्कुल ही वजन नहीं है. ओके सही. अच्छा मतलब खाने में आप काफी चूजी हैं, तो आपकी तो मम्मा को काफी मुश्किल होती होगी आपकी वजह से. हाँ, नाराज रहती हैं इस बात पे?
1: नहीं नहीं, नाराज नहीं होती. आई कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चावल, यानी कबाब भी होता है, मटन हो, चिकन हो, वो लोग मिलते रहते हैं बहुत टाइम से मेरे माँ बाप को, बहुत टाइम से, यानी सिंस वो बहुत टाइम से वो प्रिपेयर करते हैं.
0: अच्छा सही, गुड, जबरदस्त जबरदस्त. तो अभी आप कितने बहन भाई हैं अहमद?
1: अभी एक भाई है.
0: अच्छा, एक भाई है, ठीक है. ये सवाल ना कुछ और करते करते अभी मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन आपने बड़े क्यूट अंदाज में कहा अभी एक भाई है. तो एक भाई छोटा है आपसे?
1: छोटा ही मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छा अच्छा. अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने खुद कॉल मिलाई है?
1: खुद कॉल मिलाई थी. मैंने कहा चलो मैंने बहुत टाइम भी मिलाई थी बट बहुत बातें भी हुई है, यानी बहुत लंबे कॉन्वर्सेशन होते हैं, यानी ट्विटर, यानी जो लोग कॉल करते हैं ना बड़े लंबे कॉन्वर्सेशन होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. यानी मुझे तो एक 5 मिनट 15 मिनट या फिर 10 मिनट कह लें वो उसका कॉन्वर्सेशन भी कई बार मुझे बैल ही होता है. मुझसे 5 मिनट या 1 मिनट भी बंदा कोई कॉन्वर्सेशन करे ना, मेरा वो दिमाग चाहता है कि मैं क्या बोलूं.
0: मुझे अच्छा लगा है मत कि आपने खुद से एफर्ट की. पहली दफा एफएम पे कॉल किए या करते रहते हैं? मुझसे पहली दफा बात हो रही है आपकी.
1: मैं एक साल से बहुत करूँ, इवन मैं सफा को कॉल करता हूँ.
0: अच्छा,
1: यानी हम दोनों की बहुत बात होती है, कभी इससे भी बहुत बात होती है कान में.
0: अच्छा,
1: सर्वर भी है, नाजिया भी है, और मजाक भी मैंने शायद कॉल नहीं की है. आप भी रहेगी?
0: क्यों नहीं की थी आपने मुझे कॉल?
1: क्योंकि कई बार प्रोग्राम जैसे होते थे ना, जैसे ईयर प्रोग्राम डे फैमिली, मुझे पता है इट इज लाइक अ फैमिली ओरिएंटेड शो, तो सम प्रोग्राम्स आर नॉट लाइक जनरल, सम आर लाइक इन फैमिली, तो आके ही होता था बस.
0: सही है, ठीक है, चलें फिर. अब मैं वेट करूंगी आपका, मुझे जरूर कॉल कीजिएगा क्योंकि मुझे तो आपसे बात करके बहुत मजा आया है. ठीक है, और हम लंबी लंबी बातें करेंगे, आप भी आदी हो जाएंगे लंबी लंबी बातें करने के. ठीक है,
1: मेरी सफर से भी बातें करता हूँ बहुत ज्यादा.
0: अच्छा अच्छा, चलें सही है, हम भी लंबी लंबी बातें करेंगे. आप जरूर मुझे आइंदा भी कॉल कीजिएगा, ठीक है? और ईद मुबारक है अहमद, एक दफा फिर से आपको भी, अपनी फैमिली को भी ईद मुबारक कहिएगा, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ अहमद थे और काफी हैरान हो रहे होते हैं. अच्छा, बेसिकली मैं आपके मैसेज शामिल करने के लिए आपका मोबाइल मतलब देख रही थी कि देख लेते हैं आपके मैसेज अगर आप पढ़े जा सकते हैं, चार्जिंग हो गई है तो वो शामिल हो जाएं। जल्दी से एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं कि अगर आपके नजर आ जाते हैं मुझे तो मैं जल्दी शामिल कर दूं आपके मैसेजेस। थोड़ी देर में फिर हमारे न्यूज का भी वक्त होने वाला है। खैर जी, तो कोशिश जारी है कि अगर मिल जाते हैं तो आपके मैसेजेस हो जाएं शामिल, क्योंकि काफी लोगों के मैंने देखे थे आए हुए हैं और वो शामिल नहीं हो सके। तो खैर जी, आप लोग कल परसों और उसके बाद हफ्ते वाले दिन भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो जरूर कॉल भी कीजिएगा, मैसेजेस भी कीजिएगा और अपनी ईद विशेस, कैसे गुजरी ईद, ये सारे के सारे हाल हवाल बताइएगा, खास करके शुरू के एक घंटे में, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली होने वाली हूँ और फिर मतलब वही है कि म्यूजिक वगैरह भी प्ले नहीं होता, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक मतलब है डाउट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देंगे और चीज़ें हो जाएंगी आराम से और इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ दरकार है तो ज़रूर आप लोग शामिल होइएगा।

राइट, तो खुल गए मैसेजेस। ईद मुबारक मुझे कहा हुआ है किसने, ये है ईद मुबारक का मैसेज मेरे पास आया हुआ है, नाम इनका देखती हूँ मैं जल्दी से, नाम नहीं नज़र आ रहा, नाम इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, फिर बंद हो गया मोबाइल। तो खैर मतलब कोशिश मैं कर रही, मैडी मैडी मैडी का मैसेज है और इन्होंने कहा है ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईद मुबारक का मैडी, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। इसके साथ ही जी नसीम, दादी अम्मा कब आ रही हैं, दादी अम्मा नहीं आएंगी, वो छुट्टी पे गई हैं। और इसके साथ ही असमत आफरीदी और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अज़हा मुबारक टू यू एंड योर फैमिली एंड टू ऑल डियर लिसनर्स, और आज घर पर बिजी हैं कॉल पर, इंशाल्लाह कल बात होगी जिंदगी रही तो, सॉरी फॉर टुडे नो प्रॉब्लम। और इसके साथ ही जी जफर अली का मैं मैसेज पढ़ रही थी ना, वो रह गया, तो वो पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, ईद कुर्बान उम्मत मुस्लिमा का बड़ा अजीम बाबरकत।

0: वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ नाज़िया एफ़एम 107 से और सभी सुनने वालों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही खास सेगमेंट है ईद वैल्यूज, और इस सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं सेक्रीफाइस के ट्रू मीनिंग पर। दोस्तों, ईद उल अधा, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस कहते हैं, ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक गहरा पैगाम है जो हमें फेथ, डिवोशन और सेक्रीफाइस का असल मतलब समझाता है। इस दिन की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम जज्बे के साथ है जहां आपने अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया था। ये वाकया हमें और आपको बताता है कि ईमान की इंतहा और अल्लाह से प्यार की इंतहा क्या होती है। अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा करने की ये एक मिसाल है। जी हाँ, कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं है, असल मकसद है अपने दिल को पाक करना, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना और अल्लाह की रजा के लिए कुछ भी छोड़ देना। दोस्तों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला को आपके कुर्बानी जो किया हुआ जानवर उसका गोश्त चाहिए। अल्लाह तक्वा और नियत देखता है। ईद उल अधा हमें यह सिखाता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, कभी अपने ईगो को साइड पर रखना होता है और कभी दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है। ये सब चीजें ही असल में कुर्बानी का रूह है। इस फेस्टिवल का एक और खूबसूरत पहलू चैरिटी से जुड़ता है। कुर्बानी का गोश्त तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपने लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए और उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं। ये हमें बताती है बात कि असल खुशी तब आपको मिलती है जब आप दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। कुर्बानी इंसान के अंदर एम्पैथी पैदा करती है और उसे ये समझाती है कि हर किसी को बेसिक जरूरियात मयसर होनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न दौर में जब लोग मटेरियलिस्टिक माइंडसेट्स पे घिर चुके हैं और इस माइंडसेट, इस अप्रोच को अडॉप्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ईद उल अधा हमें रुककर सोचने का मौका देती है। ये सवाल उठाती है, हम किस चीज को अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या हम अपनी नींद को अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आराम को अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी माल और दौलत को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर की नफरत और जेलसी को दूर कर सकते हैं? असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स की होती है। जब इंसान अपने ईगो, अपने गुरूर, अपने सेल्फ सेंटर्ड सोच को कुर्बान करता है तो वो असल रूह को समझ पाता है। दोस्तों, ईद उल अधा का पैगाम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। ये हमें यूनिटी, कंपैशन और जेनरोसिटी सिखाता है। ये बताता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। कुर्बानी से इंसान अल्लाह के करीब होता है और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद बन जाता है। बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि ईद उल अधा हमें ये याद दिलाती है कि सेक्रीफाइस सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हर दिन, हर लम्हा हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियां देकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर हमने सिर्फ जानवर कुर्बान किया और अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने ईगो को नहीं बदला तो हमने ईद का असल पैगाम समझा ही नहीं। दोस्तों, असल ईद तब होती है जब दिल साफ हो, नियत पाक हो और हम दूसरों के लिए भी, दूसरों के दुख दर्द को समझे, उनके लिए जीना सीख लें। याद रखिए, कुर्बानी हमें

0: ये सिखाती है कि जो चीज हम अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, अल्लाह उससे कहीं बेहतर चीज हमें वापस देता है। अपनी सोच बदलें, अपना दिल नरम करें और इंसानियत के लिए कुछ करने का इरादा करें, क्योंकि यही असल कुर्बानी है। वक्त आपसे इजाजत का, इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक के साथ में हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।

से ईद मुबारक। आज इस खास दिन में आज हम बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक मशहूर फुटबॉलर के बारे में। मशहूर सिर्फ इंग्लैंड के नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स में से एक है हैरी केन। या दोस्तों, फुटबॉल स्ट्राइकर्स की जब भी बात होती है आज के मॉडर्न एरा में, तो हैरी केन का नाम जरूर जरूर आपके सामने अब पिक्चर जो है आपको दिख जाए। एंड इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं हैरी केन, और अपनी जबरदस्त गोल स्कोरिंग एबिलिटी, लीडरशिप और कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत मशहूर हैं। उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉटनहम हॉटस्पर के साथ शुरू हुआ था। वहां पर बेहद वो फेमस हुए, और गोल स्कोरिंग की वजह से हैरी केन ने अपनी पहचान बनाई। और इसी क्लब में अगर देखा जाए, इसी क्लब से खेलते हुए ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। हैरी केन ने प्रीमियर लीग में कई यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं और कई मरतबा गोल्डन बूट अवार्ड्स भी जीता है। आगे जाकर इंग्लैंड के नेशनल फुटबॉल टीम के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे और गोल्डन बूट अवार्ड भी जीता। हैरी केन की फिनिशिंग, पासिंग और पेनल्टी टेकिंग एबिलिटी उन्हें दूसरे स्ट्राइकर से अलग बनाती है। फैंस उनकी प्रोफेशनलिज्म और हार्ड वर्किंग नेचर को भी बहुत पसंद करते हैं। जब उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग छोड़कर उन्होंने जब बुंडेस लीग यानी जर्मन लीग में ज्वाइन किया विद एफसी बायर्न म्यूनिख, तो लोगों ने कहा कि हैरी केन विल नॉट बी सक्सेस। उनके बारे में कहा गया था ऑन मीडिया और यू नो ऑन द सोशल मीडिया, सबको उन्होंने साबित किया कि आप गलत थे। और बायर्न म्यूनिख में भी ही वॉज इक्वली सक्सेसफुल व्हाट ही वॉज विद टॉटनहम हॉटस्पर एज वेल एज विद इंग्लैंड नेशनल टीम। तो जहां उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने गोल्स का सिलसिला जारी रखा। हैरी केन को मॉडर्न फुटबॉल का कंप्लीट स्ट्राइकर माना जाता है। यंग फुटबॉलर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन है जो डेडिकेशन और मेहनत के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स टास्क के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाअत कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको ईद सुन्नाज में। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में ईद की असल अहमियत क्या है। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है जो मुसलमानों को इबादत, सबर और नेकी के बाद दिया जाता है। अक्सर लोग ईद को सिर्फ नए कपड़े, खाने पीने और खुशी के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस्लाम हमें इससे बहुत गहरा और खूबसूरत पैगाम देता है। इस्लाम में दो बड़ी ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दोनों ईदें सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा हैं। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद आती है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और जब ये महीना पूरा ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद की सूरत में खुशी देते हैं। ये खुशी इस बात की होती है कि एक मुसलमान ने अल्लाह की इबादत पूरी करने की कोशिश की। ये दरअसल एक इनाम का दिन होता है, और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को कबूल फरमाया और एक जानवर की कुर्बानी मुकर्रर कर दी। ये वाकया हमें सिखाता है अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा, हुक्म की अताअत और कुर्बानी का जज्बा। इस्लाम में खुशी और इबादत अलग नहीं है, ईद का दिन भी इबादत का हिस्सा है। इस दिन मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज ईद पढ़ते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी का असल जरिया अल्लाह की रजा है। ईद सिर्फ फर्द की खुशी नहीं बल्कि पूरे माशरे की खुशी है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं और दिलों की दूरी ख़त्म हो जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई गरीब, अकेला या परेशान है तो ईद के दिन हम उसे भी अपनी खुशियों में शामिल करें, और यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज हमने सीखा कि ईद अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, ये सिर्फ खुशी

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। भाई ईद मुबारक सभी को। स्टूडियो की घड़ी में सही 10 बज रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: क्या बात है। मुझे लगा कि इस म्यूजिक के चलते ही ना वो वाला गाना नहीं था, तू ना जा मेरे यस। आज सुबह सुबह का आलम है भाई। देखो ईद मुबारक आप सभी को, तहे दिल से ईद मुबारक। आई एम श्योर कि ये सेलिब्रेशन मोड में हर कोई है। एंड आफ्टर द नमाज वो कहते हैं ना कि लोगों के साथ मिलना जुलना, खाना पीना। एंड सीरियसली सरवर, जब मैं आ रही थी ना ऑफिस से, आई मीन घर से ऑफिस की तरफ
2: जी,
3: मुझे उस दौरान मेरे दोस्तों के इतने कॉल्स आ चुके हैं ना दावतों के लिए। एंड आते आते उन्होंने चिढ़ा भी दिया कि वो नाश्ते में क्या कर रहे हैं।
2: अरे
3: तो मैंने कहा ठीक है, मैं चिढ़ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सर्वर के पास, ठीक है। जहाँ मतलब हमारे पास साक्षात रेडियो की पर्सनालिटी के साथ एक ऐसा शख्स है जिसको खाने पीने का दुनिया भर का नॉलेज है। तो मैंने कहा मैं उनके साथ जाके ना आज ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ।
2: अमिता जी ये तो आपने कह दिया, मगर उनको अब ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जहाँ भी जाएंगे हम लोग एक साथ ही जाएंगे।
3: यस ऑब्वियसली। और
2: मगर मैं एक बात बता दूं, मैं इन सभी को ईद मुबारक बहुत बहुत। अमीते जो है आज बिल्कुल फेरी बन के आई हुई है, माशाल्लाह ईद की पूरी वाइब्स में डूबी हुई है। और वहीं मैं अभी एकदम ऐसा हो रखा हूँ कि पूछिए ही मत।
3: मैं ऐसा लग रहा है आपको देख के अभी जस्ट किचन से निकल कर आ रहा हूँ। अभी रुक जाओ, शो के बाद तैयार होगा, असली जलवा तो उसके बाद शुरू होगा।
2: घर का माहौल बनाना था, सबसे मिलना था, ईद मनानी थी अमिता जी, तो हम और अमिता आपकी खिदमत में हाजिर है भाई।
3: एब्सोल्युटली।
2: प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है, 10 बजे से 12 बजे तक हमारा आपका साथ रहने वाला है पूरे 2 घंटे के लिए। और जहां अमिता आपके लिए लेके आई हैं बहुत सारे इनामात, ईदी लाई है। मैं ईदी
3: लेकर आई हूँ। और हमने खाने पीने की बात की है तो, और मॉर्निंग का टाइम है, सो ये मेरी एक बड़ी ही प्यारी कलीग है अपने ऑफिस की, उन्होंने बताया गुनाइदन मीन्स गुड मॉर्निंग। एंड इस मॉर्निंग को और बेस्ट बनाएंगे गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर।
2: तानिया भाई तो और कितने गिफ्ट वाउचर बतानी थी आप मुझे?
3: टोटल 2। आज 2 लकी विनर्स होंगे, 2 लकी विनर्स जिन्हें गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और करना क्या है?
2: क्या करना है?
3: बस इतना ही करना है कि खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना है।
2: अरे इससे अच्छी बात क्या है? आप बताइए कितना ध्यान दूं और पूरी जिंदगी उसी में लगा दी मैंने तो।
3: आपको नहीं, हमारे लिसनर्स को।
2: ओके ओके ओके, उनको दे रहा है, ठीक है।
3: तो हमारे सारे लिसनर्स से सर्वर और मैं कुछ खाने से रिलेटेड कुछ रिडल्स पूछेंगे। एंड लेट्स सी कि आप उन डिशेस का नाम सही गैस कर पाते हैं या नहीं।
2: मतलब 500 कतरी रियाल का एक गिफ्ट वाउचर, फिर दूसरा 500। माय गॉड, मतलब मैं पूरे घर के खानदान को

0: बहुत देने वाला हूँ इस बार तो, मतलब लग रहा है मतलब हम तो होंगे ना, देखिए जो जीतेगा तो हम तो वहाँ पहुंच ही जाएंगे,
1: पहुंच ही जाएंगे। एक्चुअली मैं ना सर्वर के ना हाथ पैर पकड़ने वाली थी कि बिल्कुल नहीं, ये वाउचर्स आपके लिए नहीं, हमारे लिसनर्स के लिए, बट देन ही सर नहीं हम पहुंचेंगे। तो ये हम लोग थोड़े शरीफ लोग हैं, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं आएंगे, हम अकेले आएंगे।
0: बहुत शरीफ है, बहुत, ये तो सभी को पता है कि अमिता और सर्वर कितने ज्यादा शरीफ है, ये तो जग जाहिर है। तो भाई करना क्या है, जैसे कि अमिता ने बता दिया है कि हम आपसे सवाल जवाब करने वाले हैं, मतलब जवाब आप करेंगे हमसे और हम आपसे करेंगे सवाल। और बहुत ही आसान है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके जरिए आप हमें जवाब दे सकते हैं, और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, जो टेलीफोन नंबर है, उससे भी कनेक्ट होके आप हमें जवाब दे सकते हैं। नंबर क्या क्या है अमिता जी?
1: यस, तो व्हाट्सएप करेंगे आप हमें मैसेजेस अपने आंसर्स 666-22-107 पर, आई रिपीट 666-22-107, और फोन मिलाने के लिए आप सीधा हमें कॉल करेंगे 443-443-77 पर, अगेन आई रिपीट 443-443-77।
0: तो भाई 443-443-77 और उधर 666-22-107 जैसे अमिता ने बता ही दिया है।
1: यस,
0: तो हम पहले ब्रेक ले लें या फिर सिलसिला शुरू करते हैं अमिता जी, जैसा आप कहें।
1: मेरे ख्याल से हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें एक गाने की, एक शानदार से सॉन्ग की ईद ही तो देनी है हमारे लिसनर्स को।
0: बहुत तेज गाना आ रहा है, बहुत ही तेज गाना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है।
1: क्या बात है,
0: ईद हो और ये गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई।
1: So enjoy the song, बने रहिए हमारे साथ।
0: बिल्कुल बने रहिए, घर घर ईद में इस वक्त अमिता और सर्वर सबके घर जा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया 500 रियाल का वाउचर ले लो, और क्या ही चाहिए यार।
1: Stay tuned.

0: आप सुन रहे हैं घर घर ई ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: बाबू ले सी रे शुमावे माले

0: हाँ
1: FM 107 पर हर गाना हिट,
2: हर गाना हिट,
1: हर दूसरा गाना सुपर
3: और सुपर हिट होने के साथ साथ यहाँ पर सुपर हिट ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक सबको बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ सबकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, नमाजों से शुरू हुई होगी और आप सब अपनी कुर्बानियों में मशगूल होंगे और जो फारिग होंगे वो हमारे साथ जुड़ भी गए। और जुड़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, आज घर घर ईद लेकर अमिता और सरवर आए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और भाई यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एक नहीं दो दो गिफ्ट वाउचर।
0: एब्सोल्युटली, और जो भी हमारे सवालों के सही जवाब देगा एंड डेफिनेटली अगर वो लकी हुआ तो गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर्स आपके नाम होने वाले हैं। और करना बस इतना है कि आपको ना अपनी किचन पे ध्यान देना है, यानी कि हम आपको एक बड़ी मजेदार सी पहेली बताएंगे, एक रिडल देंगे खाने से रिलेटेड और आपको गेस करना है कि वो डिश कौन सी है। अभी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: माशाल्लाह, ये इतनी प्यारी सी आवाज किनकी है?
4: कुलसुम परवेज।
3: प्यारी प्यारी कुलसुम, हैप्पी ईद।
4: ईद मुबारक।
3: खैर मुबारक भाई कुलसुम को भी और कुलसुम की पूरी फैमिली को भी। कैसी हैं आप?
4: अच्छी हूँ
3: या बहुत अच्छी हूँ?
4: बहुत अच्छी।
0: धीरे से बहुत हल्के हल्के बोल रही हैं। कुलसुम कुछ खाया है कि नहीं अभी
3: ईद के दिन? इतनी हल्की आवाज।
4: अभी बन रहा है।
3: क्या क्या बन रहा है कुलसुम? क्या एक चीज बता दो बस, किसी से पूछना नहीं, क्या बन रहा है? क्या बात है, बस ठीक है, हमारे लिए भी रख लेना, हम भी आ रहे हैं कुलसुम, ठीक है?
0: ओके। टाइम लगाया कुलसुम ने? नहीं, कलेजी सिर्फ कुलसुम के लिए। अच्छा कुलसुम, ये तो बताओ आज की सुबह कैसी रही है आपकी? ईद बड़ी खास होती है और पहला दिन तो बहुत ही सुपर्ब होता है, तो किस तरह से अभी दिन गुजरा आपका? अभी तो सुबह के 10 ही बज रहे हैं, वैसे थोड़ा बताओ हमको।
4: हम सब ईद की नमाज के लिए गए थे।
0: हाँ जी, और फिर क्या ड्रेसिंग पहनी थी, क्या किया था, थोड़ा सा तो बताओ हमको।
4: नया
3: फ्रॉक लिया था भाई कुलसुम ने, वो पहना था। प्यारी प्यारी कुलसुम, क्या बात है। तो भाई कुलसुम ये बताइए कि आपसे कुछ सवाल पूछ लें। ओके यस, चलिए कुलसुम रेडी है?
0: हाँ ठीक है। तो कुलसुम को वैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि आज ईद के दिन क्या क्या बनता है और डिशेस में क्या क्या चीजें होती हैं, है कि नहीं?
4: इंशाल्लाह।
0: चले ठीक है, तो मैं ना आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और आपको उसका सही जवाब बताना है, ठीक है? और फिर अगर आप लकी हो गई तो फिर आपको गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर भी मिल सकते हैं, ठीक है? ओके कुलसुम, ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको गेस करना है कि ये कौन सी डिश है। सो नमाज ईद के बाद किचन से सबसे पहले मेरी खुशबू आती है, ठीक है? मैं कुर्बानी का पहला तोहफा हूँ, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी चटपटी, मैं हर प्लेट में सबसे

0: पहले सर्व होती हूँ।
1: ओए होए होए होए होए होए क्या है गुल, तुम बताओ जल्दी से।
2: कलेजी?
1: अरे कलेजी तो घर में बन रही है।
0: गैस है, गैस है। अच्छा ठीक है कुलसुम, अभी ना हम ये सच है, ये सही है कि नहीं ये तो हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन कुलसुम का कहना है कलेजी। आर यू श्योर ये कलेजी ही है? ओके ठीक है, तो हमने नोट कर लिया है, कुलसुम ने कहा है कलेजी। एंड कुलसुम अभी आप हमारे साथ बने रहो, क्या पता आप लकी हो जाओ और गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाए। अच्छा ये तो बताओ, अभी ईद का जब पहला दिन होता है तो एक्साइटमेंट बड़ी कमाल की होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आप बताओ कि आप किस चीज़ को लेकर बड़े एक्साइटेड होते हो?
2: मेहमान जब घर पे।
1: अरे वाह, प्यारी प्यारी बच्ची भाई,
0: हाई फाई, हाई
1: क्या बात है भाई, क्या तरबियत है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है वाकई। मेहमान जब आते हैं हमें खूब खुश भी होना चाहिए कुलसुम, और उनकी खूब खातिर भी करनी चाहिए। तो अब जब सर्वर भाई आएंगे ना तो घर की सारी चीजें खिला देनी है उनको, ठीक है?
0: अच्छा कुलसुम ये तो बताओ कि सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है आपको घर पे?
1: अम्मा, बाबा,
0: पप्पो।
1: क्या बात है भाई, पप्पो, पप्पो को भाई हमें भी सलाम करना पड़ेगा जाके, इसका मतलब स्पेशल सलाम पप्पो के लिए।
0: वेरी गुड कुलसुम, सो यस हम यही चाहते हैं कि आपकी ईद बहुत ही मजे की रहे,
1: इंशाल्लाह ताला पूरे घर की ईद बहुत अच्छी हो और खूब खुशियां देखें आप, और इंशाल्लाह ताला जब हमारा ड्रॉ निकलेगा तो पता चलेगा आज का विनर कौन है। ऑल द बेस्ट टू यू,
0: ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कुलसुम।
1: ठीक है कुलसुम, बाय,
0: अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज, हैप्पी ईद, ईद मुबारक। तो भाई ये थी कुलसुम हमारे साथ, और इसी तरह अब सिलसिला जो है अमिता जी जारी रखने वाली हैं आप लोगों से सवालों का, जहां पर जैसे कि शुरू में ही बता दिया गया था कि भाई खाने पकाने किचन लवाजमात के हिसाब से बातचीत होने वाली है, सवाल पूछे जाएंगे खाने के सवाल, और गिफ्ट में भी खाना, आय हाय हाय, और ईद खाना पकाना, क्या कहने भाई। तो क्या कहती है अमिता, दूसरे चैंपियन की जानिब बढ़े?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक।
1: कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद रूहुल
1: अमीन। क्या बात है भाई रूहुल अमीन, तो हम कहेंगे अमीन भाई। अमीन भाई कैसे हैं, ईद कैसी गुजरी, सुबह कैसी हुई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है,
0: सब कुछ ठीक है, वाओ। तो अच्छा ये तो बता दो, क्योंकि हमने अभी हमारी पहली कॉलर से ही पूछा, इनफैक्ट हम सबसे पूछने वाले हैं कि ईद की सुबह हर घर में डिफरेंट होती है, तो आपके घर का क्या माहौल रहा, थोड़ा हमें बताइए ना।
2: सबसे पहले तो ईद की नमाज पढ़ने गए थे
0: जी,
2: फिर ईद की नमाज पढ़ के घर में आए और
0: सिमिया खाए। और भाई साहब कमाल है, कमाल है।
2: और मम्मी को ईद मुबारक,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ ईदी तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई ना, अम्मा अब्बा के लिए बेटा इससे ज्यादा अच्छी चीज नहीं हो सकती।
2: और हम ईदी जमा करने के लिए गए थे।
1: हाँ ईदी जमा करने के लिए गए थे, पूरे मोहल्ले या रिश्तेदारों में?
2: नहीं नहीं रिश्तेदारों में।
1: रिश्तेदारों में, क्या बात है, अभी तक कितनी जमा हो गई ये तो बताइए अमीन भाई।
0: 200 नाइस। आपकी आपकी उम्र क्या है अमीन? आपकी
2: 11
0: साल, माशाल्लाह 11 साल में 200 कतरी रियाल,
1: ये तो अभी तक के हैं अमिता, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ईद शुरू हुई है भाई, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है,
0: अभी तो सुबह के बस 10 ही बजे,
1: ये तो सुबह ही बटोर लिए भाई ने 200 रियाल, क्या बात है भाई।
0: दिन भर में न जाने कितने हो जाने वाले,
1: कितने हो जाने वाले,
0: एनी गेसेस अमीन बता सकते हैं दिन भर में कितने आपकी ईदी कलेक्ट हो जाएगी, कुछ अंदाजा बता सकते हैं?
1: अभी हिसाब लगाया आई मीन 500 200 वहाँ, 100 वहाँ, 50 वहाँ, 20 वहाँ, वो नहीं नहीं वो तो 10 ही देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आगे वाले जो चचा हैं वो 50 दे देंगे, है ऐसे ही।
0: फिर क्या,
2: फिर गोश्त खाते हैं,
1: गोश्त खाते हैं हम भी खाते हैं, कहाँ आना बताइएगा अमीन भाई, ठीक है
2: ठीक है
1: ठीक है, चलो तो चलिए अब अमिता

0: आपसे क्वेश्चन करेंगी आज के लिए, ओके? जो रिडल है वो पूछेंगी, रेडी है?
1: ओके, तो अब ध्यान से सुने, ठीक है? मैं दिखने में बारीक धागे जैसी हूँ, घी में रोस्ट होती हूँ और शुगर सिरप में नहा कर प्लेट की शान बनती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मेरी ज्वेलरी है, मैं कौन हूँ?
2: अरे
0: कौन कह रहा है कि सिवैया?
1: सिवैया है, अभी हम
0: ये
1: पूछेंगे।
0: फ्राइड राइस बनाए हैं मीता ने।
1: आर यू श्योर ये सिवैया है? ठीक है अमीन, हमने ना आपका आंसर लिख लिया है एंड लेट्स सी, जब हम लकी ड्रॉ करेंगे ना लास्ट में तो कौन जीतता है हम बताएंगे। तो अगर आप लकी हुए तो गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर आपको मिल सकता है।
0: 500 का गिफ्ट वाउचर, क्या बात है, पूरी पार्टी हो जाएगी। अमीन भाई भूलना नहीं बुलाना, ठीक है?
2: जी इंशाल्लाह आपको
0: बुला। ईद मुबारक अमीन, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक, मेरी और अमिता और एफएम 107 की पूरी टीम की तरफ।
2: खैर मुबारक।
0: घर घर ईद पे इस वक्त अमीन दिए गए हैं कुछ ना कुछ हमारे साथ यादें। अब देखते हैं कि वो आज के विनर रहेंगे या नहीं। आप लोगों ने भी बहुत आसान तरीका है हमें ज्वाइन करना है, और वो क्या करना है, वो कैसे करना है, आपने हमें कॉल करनी है फिलहाल अमिता के कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब दे देना। बहुत मुश्किल सवाल रखा भी देखिए अमिता ने इसी बारे के, भाई सब जीत सके यार, और क्या चाहिए, मुश्किल तो लगाना ही था।
1: और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें कॉल जा रही है, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो लिसनर्स हमें कॉल नहीं कर पा रहे लेकिन हमें सुन रहे हैं, अगर आपको भी सवालों के जवाब पता है तो आप जवाब लिखें अपने नाम के साथ और भेजें उसे 666-22-107 पर, 666-22-107। उन जवाबों को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि आज हम दो लकी विनर्स को देने वाले हैं गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर्स। कोई जुड़ गया हमारे साथ, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम जी, तो अनु ईदियां बहुत बहुत मुबारक जी।
0: ओहो
1: आपको भी,
0: ये तो है गावा भाई, क्या कहने।
3: हां जी जनाब,
0: ईद मुबारक गावा भाई, कैसे हैं
3: जी? वेरी वेल सर, उम्मीद करता हूँ कि आप और अमिता मैडम भी बिल्कुल मस्त होंगे, परफेक्ट होंगे जी।
0: अरे अमिता मैडम ने तो इस वक्त सबको परफेक्ट कर रखा है एकदम टीचर की तरह। चलो खड़े हो जाओ, ईद है, चलो प्रोग्राम करो।
1: ये यूं ही मजाक कर रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ।
0: तो गावा भाई क्या हालचाल, कैसे शुरू हुई ईद?
3: सर मेरी तो काम से ही शुरू हुई आज।
0: ओके,
3: बाकी जो दिल के करीब यार दोस्त हैं जैसे आप हो, कुछ और भी यार दोस्त हैं, उन सभी को मैंने मॉर्निंग में ही विश कर दिया था सर।
0: बादल गरज रहे हैं गावा भाई के आने पे।
1: तो अभी फिर आज दिन भर काम के बाद फिर क्या आपकी प्लानिंग है?
3: काम के बाद मैडम शाम को ना एक अबू सिद्रा मॉल में शो है, अलादीन का शो, उससे रिलेटेड है कुछ, तो वो देखने का प्लान है मैडम।
0: अच्छा, मैंने कहा शायद चिराग घिसने के बाद आप रोल कर रहे हैं आगे का।
3: दुआ करो भाई, मेरे हाथ में आ जाए अलादीन का चिराग।
1: अच्छा अच्छा, सपोज अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो कौन सी तीन विशेष है जो आप मांगेंगे?
0: बताने वाली थोड़ी है
3: मैम।
1: नहीं बताने वाली है,
0: नहीं दो बताने वाली है, एक बताने वाली नहीं है।
1: चले दो बता दे, क्या मांगेंगे?
3: एक जी, एक तो मैडम सभी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री हो जी।
1: क्या बात है,
0: काफी हद तक हमारे कतर में अल्हम्दुलिल्लाह ये गिफ्ट हमारे पास है ही, अल्हम्दुलिल्लाह
3: पूरी दुनिया में सर,
0: पूरी दुनिया में।
1: वेरी नाइस। और दूसरी क्या मांगेंगे?
3: और दूसरी ये है मैडम, दुनिया में कोई भी बंदा हो, कोई भी, वो भूखे पेट ना सोए जी।
1: दैट्स वेरी नाइस, मतलब बहुत खूबसूरत बात कही। वैसे जो लास्ट की है वो अपने लिए मांग लीजिएगा।
0: हाँ, वो तीसरी जो है वो बताइएगा नहीं,
1: वो प्राइवेट है, ठीक है, वो मत बताइएगा।
0: वो भाभी जी कहने नहीं, वो मैं
1: वो मेरी बारी है।
0: मेरी बारी है, दो तुम्हारी हो गई, अब एक मैं।
1: दैट्स सो नाइस।
0: तो गावा भाई क्या कहते हैं आज का?
3: हाँ? क्या जैसे आपकी नाजिया जी के साथ एनर्जी होती है ना, मेरी जुबान पे अभी उन्हीं का नाम है मैडम। हाँ? से तो आज मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक बात कर रहा हूँ अमिता मैडम से।
0: अच्छा,
1: अरे वाह,
3: सुनता तो मैं रहता हूँ।
0: अरे अमिता मैडम तो रॉक स्टार है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं।
3: ये हमारी रॉक स्टार सर्वर एक्चुअली मैडम, आपका जो अंदाज है ना सवाल पूछने का,
1: हाँ जी,
3: ये अभी आपने जो दो लिसनर्स के साथ सवाल किए, ये मैडम बिल्कुल मुझे वही महसूस हो रहा है जैसे अमिताभ जी 3.60 लेके ऊपर वाले सवाल पूछते हैं ना,
1: केबीसी
3: दिल की धड़कन तेज हो जाती है।

0: घर पे भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं. सो अब सुबह से ही रेडी होके घूम रहे हैं तो उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं.
1: जैसे ही काम पूरा करना है वैसे ही सीधे शेरखुरमे पे निकलना है ताकि बिल्कुल
2: पता क्या है मैडम, अमिता जी और नाजिया जी आप दोनों फील्ड में भी वर्क करते हो, मैंने आपको देखा है.
0: हां जी हां जी, वाओ दैट्स सो.
1: अभी पूरी बुक फेयर निपटा के आई है अमिता, इन्होंने ही क्लोज कराई है, इन्होंने ही शुरू कराई थी,
2: इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था.
0: नहीं बेशक, अगर आप कभी हमें बाहर देखें, अगर हम कोई कवरेज या कुछ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमसे जरूर मुलाकात करें, एंड बड़ा अच्छा लगेगा आपसे मुलाकात करके.
1: अहलन बस अहलन.
2: बिल्कुल अमिता मैडम जी, आपकी और नाजिया जी की एनर्जी माइक पे तो है ही है, ऑन फील्ड में भी मैडम बिल्कुल जबरदस्त होती है. बिल्कुल
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप मिले क्यों नहीं. अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने हमको देखा तो आपको हमें हेलो बोलना तो था.
2: मैडम सोशल मीडिया पे देखा है.
1: अच्छा, रूबरू रोशनी जो है वो नहीं हुई है.
0: आएगी आएगी, होगी रूबरू भी होगी इंशाल्लाह.
1: गावा भाई रेडी फिर अब जवाब देने के लिए? बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली है अमिताभ.
2: मैडम इतना तो नहीं पता है मेरे को खाने पीने का, इसके हिसाब से बस आप कर सकते हैं पूछ लीजिए, मैं ट्राई कर लूंगा जी.
0: बहुत ही सिंपल सवाल है और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर जो डिशेज बनती है ना वही हम आपसे पूछने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. अब हम जरा देखेंगे कि
1: सही
0: कौन सी डिश इनके नाम आने वाली है.
1: बिल्कुल इनके नाम आने वाली कौन सी डिश है? बड़ा नहीं है, अमिता निकाल रही है डिश को. ओके.
0: मैं पूछती हूँ आपसे, आप थोड़ा सुने और फिर बताइएगा ठीक है, कि मेरा नाम नहार से आया है.
1: हाय हाय हाय हाय.
0: रात भर धीमी आंच पर पकता हूँ ताकि मीट हड्डी से अलग हो जाए.
1: वाह.
0: मेरे साथ खमीरी रोटी का कॉम्बो हिट है, बताए मैं क्या हो.
2: इसको मैडम निहारी बोलते हैं ना.
0: हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे.
1: इसको कहते हैं
2: निहारी मैडम.
1: चाउमीन
2: ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है नान के साथ.
0: अच्छा ठीक है, तो हमने आपका जवाब नोट कर लिया है, एंड लेट्स सी कि हमारे लिसनर्स जो बाकी भी हमसे जुड़े हैं वो क्या सही जवाब दे पाते हैं. तो जिन्हें भी जवाब पता है वो 666-22-107 पर भी हमें लिख सकते हैं. सो गावा भाई, अगर ये जवाब सही हुआ और आप लकी विनर हुए देन डेफिनेटली आपको गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कतरियाल के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे. तो आप हमें सुनते रहिए ठीक है.
2: मैडम मेरी एक कमिटमेंट है ऑन एयर, इफ आई विल विन, आप सरवर जी और नाजिया जी विल गो विद मी.
0: वाओ. सरवर तो बिल्कुल झूम गए, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने कमाल के हो गए. ये
1: सारी की सारी पार्टी मेरे लिए.
0: ये एक्चुअली सारी पार्टी खुद के लिए करना चाह रहे हैं. ये बोल रहे हैं अमिता नाजिया को भी छोड़ो, मेरे को लेकर चले यार.
1: चलेंगे यार. चलिए भाई गावा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी बधाइयां और इसी तरह खुश रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए.
2: सर आपको भी बहुत सारी बधाइयां, मिठाइयां, बहुत सारा प्यार सर. थैंक यू सो मच
1: गावा भाई. तो भाई ये गावा भाई, इस वक्त घर घर ईद जारी और सारी है, और जहां पर आपकी अपनी एफ और अमिता और सरवर मिर्जा आपके साथ जुड़ गए हैं, और बात हो रही है आज कौन जीतेगा 2-2 500 रियाल के गिफ्ट वाउचर जो हैं गुनाइदन रेस्टोरेंट से, और आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इनको. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आने के बाद प्रोग्राम तो अभी बहुत देर का बचा है. अमिता पहले विनर को मेरे ख्याल में पहले बता देंगी मुझे ऐसा लगता है.
0: यस, इस घंटे हम पहले विनर का नाम लेंगे और अगले घंटे दूसरे विनर का नाम. बस ये दो नंबर आप लिख लीजिए और ख्याल रखिए कि आप हमसे इनके थ्रू जुड़ सकते हैं. 666-22-107 पर आप हमें मैसेजेस करें, हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दे सकते हैं अपने नाम के साथ, और हमें कॉल करने के लिए आप 443-443-77 पर कनेक्ट कर सकते हैं.
1: चलिए भाई, तो एक छोटा सा ब्रेक, यूं गए हम दोनों, यूं वापस आए. सुनते रहिए FM 107 दिल से
0: देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa. FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल. सफा के साथ एक फन फिल शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे. ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा. और अपनी ईद को और भी खुश

खुशगवार बनाए सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर आरजे सफा के साथ दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन और इस मौसकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर

और चौथे दिन दोपहर 3 बजे जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में

0: कमाल की वाइब है, कमाल की वाइब।
1: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है घर घर ईद हमारे स्पेशल शो में। और हमने बस इतना ही कहा है कि गुनाइदन रेस्टोरेंट के अगर 500 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर्स जीतने हैं तो भाई हमें कॉल कीजिए 4434377 पर। अभी कोई जुड़ा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: हां जी, कौन जुड़ा हमारे साथ?
3: नजमा रफीक।
0: नजमा जी जुड़ चुकी है। नजमा जी कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको।
0: आपको भी खैर मुबारक जी। आपकी आवाज की खनक सुनकर हमारा दिल खुश हो गया। आप ये कैसे कैसे गुजर रही है ईद, आज का पहला दिन?
3: अभी तो पहला दिन, तो आपको पता है पूरी रात बच्चियां जो है ना मेहंदी लगा रही थी, तो सुबह बस सोई हुई है अभी तक।
0: अरे वाह।
3: तो अब 12 बजे तक उठेंगे, फिर ईद शुरू होगी हमारी।
0: क्या बात है, आई नो रात भर पूरा, फिर उसके बाद नमाज के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन तो बनता है।
3: थोड़ा वही मैं कह रही ना, थोड़ा सा वो चांद रात है ना, तो चांद रात की जो खुशी होती है ना वो पूरी रात जाग के गुजर जाती है।
0: ये हम फील करते हैं, मैं और सर भी फील करते हैं। और हम आज खाने पीने की बात कर रहे हैं और आपका कॉल आ गया, तो फिर आज आपके किचन से क्या खास मिलने वाला है सबको?
3: अभी तो बच्चा, हम लोग बनाएंगे थोड़ी बिरयानी बनाएंगे आज।
0: जी
2: वाह,
0: बिरयानी, ओहो क्या बात है। तो फिर मतलब
2: बिरयानी के बाद
3: बिरयानी के बाद हम बाहर ऑर्टिंग के लिए जाएंगे, स्वीडिश बाहर खाएंगे।
2: अच्छा, क्या बात है, ये भी अच्छा, अच्छी प्लानिंग है भाई, ये भी अच्छी प्लानिंग है। चलिए
0: तो ये तो बताइए फिर, मतलब कहाँ घूमने जाने वाली है?
3: बाहर बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चे जहाँ भी, जाहिर बात है अगर गर्मी हुई तो किसी मॉल।
2: तो बच्चे तो मैं और अमिता, आप, हम दोनों भी बच्चे ही हैं अमिता, क्या कहती हैं?
3: आप भी आ जाएं साथ में,
0: किसी के तो बच्चे अम्मी।
2: चलिए बुलावा आ गया, मेहनत कामयाब हुई, नजमा जी ने कहा कि आप लोग भी आ जाइए।
0: मतलब अब क्या ही बोलेंगे नजमा जी, मतलब सो नजमा जी अब ये बताएं कि मेहंदी वगैरह आपने भी लगाई है मस्त एकदम?
3: जी मेरी तो अभी बारी नहीं आई आज, वो मेरी बेटी कह रही थी मैं आज मम्मा आपको लगा दूंगी, मैंने कहा ठीक है।
2: काम की वजह से एक्चुअली, और जिम्मेदारियों की वजह से एक्चुअली।
0: सो आप मुझे बताएं, आई नो कि हम अक्सर सबसे पूछते हैं कि ईद आपको क्यों इतना एक्साइट करती है, लेकिन स्पेशली जो घर की लेडी होती है जिसके एक्चुअली लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सारे काम करने के बाद लाइक कोई एक ऐसी चीज है जो ईद की आपको हमेशा एक्साइटमेंट देती है कि भाई ईद आ गई अब तो, मतलब मजा आ गया, ये चीज मेरी है। हाँ जी,
3: बस बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, मेरी बच्चे दो शादीशुदा हैं तीन, तो वो जब आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है।
0: माशाल्लाह,
3: तो बेटी आई है और बेटा आया है, और बस इसी की एक्साइटमेंट में ना, तो मैं बस उनको यही पूछती हूँ कि आपके लिए क्या क्या बनाऊं।
0: आए हाय,
3: तो ये सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि उनकी पसंद का खाना बनाऊं।
0: ये तो माँ का दिल है, मतलब उसमें भी मतलब काम करते रहना है, क्यों आप लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मैं अपनी मम्मी को भी यही कहती हूँ कि कभी तो कह दो कि मुझे ये चाहिए। नहीं बट सीरियसली, हैट्स ऑफ टू यू एंड सारी मदर्स को।
3: मुझे बच्चों की खुशी चाहिए, बच्चे खुश हो तो मैं खुश।
0: ये बात तो बहुत कमाल कह दी,
2: माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: मेरी जुबान एकदम लड़खड़ा रही है, मतलब मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है।
2: रोना नहीं, आज ईद है, आज ईद है अमिता, आज नहीं, नो। तो चलिए मेरी नजमा जी को किचन में ले चलते हैं।
0: यस बिल्कुल, किचन में ले जाते हैं, मतलब किचन में अभी आप जाइए मत, सिर्फ सुन लीजिए, वरना बोले अभी तो निकल कर आई हूँ। ठीक है, तो अब आप बताना कि ये कौन सी डिश है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मैं एक डिश नहीं एक फीलिंग हूँ, ठीक है, चावल और बोटी की परफेक्ट डीलिंग हूँ।
2: वाह,
0: गेस द नेम, क्या हूँ मैं?
2: क्या खाने वाली शायरी करी है आपने अमिता, आज सुबह सुबह ईद के दिन, भाई वाह।
0: हाँ जी, तो क्या क्या कौन सी डिश है ये?
3: चावल और बोटी की डिश।
0: अच्छा, आप फिर से सुने इसको, ठीक है, मैं एक, मतलब ध्यान से सुने, मैं एक डिश नहीं एक फीलिंग हूँ, ये डिश मतलब एक फीलिंग की तरह है, चावल और बोटी की परफेक्ट डीलिंग हूँ। Guess. It's चावल और बोटी का कॉम्बिनेशन, और आसान करती हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकती है?
3: ये पुलाव हो सकता है.
0: पुलाव हो सकता है? आर यू श्योर अबाउट दैट?
3: जी
0: ठीक है.
3: बिरयानी
0: ठीक है. हमने आपका जवाब नोट कर लिया है पूरी तरह से. एंड लेट्स सी अगर आप लकी हुए तो फिर गुनायदन रेस्टोरेंट का 500 कदरियाल का गिफ्ट वाउचर आपका हो जाएगा. ठीक है, तो अभी आप हैं हमारे साथ, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये सारे जो हमने पूरे घंटे हमारे पास व्हाट्सएप और कॉल से जवाब जो इकट्ठे हुए हैं तो हम क्यों ना इन्हीं से पूछ ले.
2: चलिए ऐसा भी हो सकता है क्या कह, आप जैसा भाई आप जैसा कह दें अमिता जी.
0: यस, तो आपको सर्वर जी कुछ नंबर बताएंगे, मतलब एक से लेकर 20 तक. एक से लेकर 20 तक सर्वर क्या बोलेंगे आप?
2: एक से लेकर 20 तक नहीं, 22 तक कर लेते हैं. चलिए
0: ठीक है, एक से लेकर 22 तक आप कोई भी एक नंबर चुने, उसमें आपका नाम भी शामिल है. ठीक है, कोई भी एक नंबर चुने, क्योंकि अब हम इस घंटे के लकी विनर का नाम बताने वाले हैं. ठीक है, सो हम अनाउंस करने वाले हैं. तो आर यू रेडी?
3: जी.
0: ओके, सो 1 to 22. सोच के कोई नंबर चूज कीजिएगा अच्छा वाला. ठीक है.
3: 22
0: चूज किया है. 22. ओके, सो सर्वर ने अब नाम चूज कर लिया है और हम बताने वाले हैं कि अब लकी विनर कौन सा.
2: हाँ बिल्कुल, हम पहले इजाजत ले लेते हैं नजमा जी से और उसके बाद हम जो भांडा है वो फोड़ देंगे फिर उसके बाद. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. तो भाई क्या कहती हैं अमिता जी? बता दीजिए क्या परेशानी है वक्त अमिता को,
0: कौन जिसने जीत लिया और जिसके पास हमको जाना है जिसके साथ हमको जाना है. क्यों?
2: चलिए भाई, तो नंबर पे 22 नंबर पे अगर देखा जाए तो खुद नजमा जी हैं.
0: ओ माशाल्लाह, जोरदार तालियां. क्या बात है.
2: अब हम बता देते हैं कि इसके अंदर क्या था, कभी आपको लगे कि वो आखिरी कॉलर थी तो उन्होंने अपना नाम बता दिया, तो ऐसा नहीं है. हमने बहुत ही शफल्ड रैंडम गिनती लिखी हुई है यहाँ पर, मतलब जैसे कि हमने 1 से 50 तक गिनती लिखी हुई है और उसके अंदर फिर हम जैसे पहली कॉल किसी की आई तो उसका नाम हम 10 नंबर पे लिखते हैं और फिर ऊपर करके हम लिखते हैं. एक्चुअली कभी आप लोग ऐसा समझे कि नहीं भाई पहले मैं अपना नाम बता दूं और आखिर में मैं अपना नाम बता दूं तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं. फेयर प्ले है, सबके लिए है, तो यहां पर ऐसा ही हुआ. और फिलहाल के लिए बहुत बहुत बधाइयां नजमा जी को.
0: नजमा जी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सुन रही होंगी. गुनायदन रेस्टोरेंट के 500 कदरियाल का गिफ्ट वाउचर आपका हुआ है एंड डेफिनेटली हमारी एफएम 107 की जो टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी. सो रिलैक्स रहिएगा, दे विल लेट यू नो कि कब कैसे कहाँ कलेक्ट करना है. ठीक है, और फिलहाल के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है नाम अनाउंस करने का वो बड़ा मजे का है और ऑलरेडी हमारे सर्वर ने बता दिया. तो आप बस, हम आपको नंबर देंगे एक सिलेक्शन करने के लिए. हो सकता है हम आपको बोलें कि 30 से 50 कोई नंबर चूज करें या कोई भी इस तरह के रैंडम नंबर्स और आपको कोई एक नंबर चूज करना है जिसमें हो सकता है आपका नाम भी हो. सो यस, गेट रेडी टू प्ले. और अगली कौन सी डिश आएगी आपकी राहों में
2: भाई? अब बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे और इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पर आप व्हाट्सएप के जरिए और कॉल के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. और जो गेम आज हम आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको कतरी रियाल 500 का जो वाउचर है गुनायदन रेस्टोरेंट से, एक तो अब आज का ऑलरेडी हो गया, अब दूसरा बचा है
0: तो दूसरे हो सकते हैं आप भी हो. तो ये दो नंबर याद कर लीजिए, 666-22-107, 666-22-107. इस पर भी आप जवाब दे सकते हैं और कॉल करने के लिए 443-443-77 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं.
2: भाई देखिए, अभी तक हुई ईद मुबारक हिंदी और उर्दू में, उसके बाद गई पश्तो में और अब ईद मुबारक आ रही है भाई बंगाली में.
0: अरे बाप रे,
2: क्योंकि प्रोग्राम सभी के लिए है और आज ईद है जो सभी के लिए है. तो एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और कहीं भी नहीं जाना, अभी पूरा एक घंटा हम और अमिता आपके साथ बने हुए. सुनते रहिए FM 107.
0: दिल से देसी.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check. सलाम अलैकुम, वेलकम वंस अगेन। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं सुबह के 11:02। एंजॉय द सॉन्ग और फिर घर घर ईद में हम आपकी मुलाकात होगी आरजे सर्वर और एफ अमिता के साथ।

मगर यहाँ पे कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। घर ईद पे इस वक्त अमिता जो है आपको बिना किसी सिफारिश के 500 कतरी दाल का वाउचर दे रही है भाई।

0: चले भाई, आपको तो फना होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
1: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फना नहीं होने देंगे, आपकी एनर्जी बचाकर फुल सेलिब्रेशन के माहौल को और भी खूबसूरत बनाएंगे। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप सब घर घर ईद में। मैं आपकी अमिता और हमारे आरजे सरवर मिर्जा, हम दोनों आ चुके हैं। सो भाई, आज का बड़ा ही मजेदार का माहौल है कि हमने सीधा कहा है कि किचन से बन रही डिशेस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, और उन्हीं से रिलेटेड आज हमारे सवाल हैं। आपको सवालों के जवाब देने हैं। 666-22-107 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, या सीधा हमें एक फोन मिलाएं 443-443-77। और देखते हैं कि आज कौन है जो गुनाहिदन रेस्टोरेंट के 500 कदर रियाल का गिफ्ट वाउचर जीतेगा। अभी कोई हमारे साथ जुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या कोई हमारे साथ है या चले गए? हाँ जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, एंड आपको ईद उल अज़हा की ढेरों ढेरों मुबारकबाद।
2: आपको भी। हाँ जी,
3: मिस अली
2: आ चुकी है, क्या बात है।
0: आप मुबारक मिस अली,
2: आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू मिस अली?
3: मैंने भी आपको बहुत मिस किया, कहाँ चली गई थी?
2: बस।
3: मैंने तो आपको कुछ कहा था, कोई नाम दिया था, एप्पल, ए फॉर एप्पल सी स्वीट सी वॉइस वाली अमिता।
2: क्या बात है मिस अली, दैट्स सो ब्यूटीफुल।
3: और मेरे मास्टर शेफ,
0: माहौल डिफरेंट हो जाता है। जितने भी मास्टर शेफ हो, ईद पे दूसरे के ही घर पे खाना खाने में मजा आता है।
3: सर्वर, मैं सुबह से ना तो सोई हूँ, सेवैया बनाई, फिर माशाल्लाह स्पेशल होती है कि सेवैयों के मतलब साथ पराठे लाजमी होने चाहिए।
2: वाओ, लाइक प्लेन पराठे या कैसे कैसे पराठे?
0: यार पाकिस्तानी पराठे इज लाइक एनीथिंग अमिता यार, वो भी सेवैयों के साथ।
2: भाई साहब, मतलब मैं एक्चुअली खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुंह में गजब का पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, मैंने तो
2: सर्वर को देख के
0: मुझे कुल्ली कर ली इस वक्त, ये हालत हो गई मेरी तो।
2: और बताएं।
3: और अभी इंशाल्लाह बच्चे खा पी के तो सो गए, और मैं अभी तक किचन में हूँ। तो मैंने कहा मैं, आप किचन में हैं तो किचन की बातें हो रही हैं, तो चलो मैं भी शेयर कर दूं कुछ किचन के हवाले से।
2: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट।
3: और एक चीज ने मुझे इंसिस्ट किया।
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: हाँ, मेरा सनी पाजी है, मेरा भतीजा।
2: अच्छा,
0: ओहो
3: उसका नाम एक्चुअली हुसैन है, लेकिन वो माशाल्लाह डील डॉल और बातों में और वैसे

0: ही अखड़ मिजाज, तो और छोटा जो है वो इतना ही अच्छा, यानी कि दोनों हसन हुसैन नाम है उनके, और हुसैन का बर्थडे जो 24 को गुजर गया, और वो
1: हैप्पी बर्थडे हुसैन को, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से भाई।
0: मैं तो पता है क्या है, परेशान हूँ क्योंकि उसका सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो वो इतना नाराज है, वो कह रहा है ईद को ही कर दे।
1: हाँ मैम बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। शाम में अमिता कितने बजे फ्री हो?
0: पहले मुझे वाचर तो दिलाए, फिर आपको भी लेके जाऊंगी।
2: हम मिस अली के यहाँ सीधा ढाबा बोल देते हैं आगे, है ना। फिर मिस अली बोलेंगे कि क्या मतलब, मैंने मेरी ही गलती थी, क्यों मैंने बता दिया इनको आ गए।
0: नहीं, मोस्ट वेलकम। 500 रियाल बिग अमाउंट होता है। और पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है।
2: इट्स अ गुनाइदन रेस्टोरेंट, गुनाइदन रेस्टोरेंट डेफिनेटली, जब आप गूगल करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अब मिस अली सीधा हम सवाल की तरफ रुख करते हैं, एंड आप बताएं कि ये डिश कौन सी है, ठीक है?
0: अच्छा
2: चले मैं पूछ लेती हूँ आपसे, तो आप मुझे बताएं। पहले मुझे कढ़ाई में तला गया, फिर मुझे पानी में निचोड़ा गया, इतनी सजा के बाद मुझे दही में सुकून मिला,
1: क्या
0: ये जनाब ये है वो दही भल्ले।
2: दही भल्ले, आर यू श्योर अबाउट दैट?
0: हाँ देखिए ना, पहले मुझे कढ़ाई में पहले तो हम उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको पानी में डालते, फिर निचोड़ के फिर दही में डाल देते हैं, और फिर जो गार्निशिंग होती है हरी मिर्चे, टमाटर, प्याज और हरा धनिया, पुदीना, और फिर चार मसाला भी अगर डालना हो तो वो भी ऐड कर देते
2: हैं। माइक से दूर हो गए सर्वर, पता है आपने इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नहीं डेफिनेटली हमने आपका जवाब लिखा है मिस अली, एंड लेट्स सी इफ यू गेट लकी, तो फिर आपको गुनाइदन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर मिलेगा।
0: अल्लाह करे मिल जाए, मैं अपने बच्चे को ट्रीट दे दूँ।
2: हाँ इंशाल्लाह मैं लिटरली प्रे करूंगी कि आप भी लकी विनर हो। और अभी के लिए जाने से पहले ईद से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे लिसनर्स को?
0: बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं हमारी तो ढेरों दुआएं हैं, जिस की भी जो दुआएं हैं, जो इन दिनों के, क्योंकि ये दुआओं के दिन थे
2: जी जी,
0: जो हाजी अरफा में कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो नहीं जा सके तो हम तो घरों में बैठ के कर रहे होते हैं। अब तो हम आज हमारे जो है कि एक अल्लाह ताला एक लफ्ज कुरान में इस्तेमाल करते हैं, कुन फयकून
2: जी,
0: हो हम यानी कहते हैं ना कि हो जा तो हो जाता है। तो जो जिसकी जो इल्तिजाएं हैं, जो दुआएं हैं, जो मनते मुरादे हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्नाएं हैं
2: जी,
0: वो सबकी पूरी हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है सबके लिए। और दूसरा ये कि हमारे जो भाई हैं गजा के और फलस्तीन, जितने भी जहाँ जहाँ परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनको सुकून दे, उनको अपने मुल्क में अमन सुकून सलामती, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको, जहाँ जहाँ भी कोई मुश्किल है ना, देखा नहीं जाता, यकीन करे अमिता, इतनी हिम्मत नहीं है हम। मैं तो यकीन करे, मैं तो आंखें बंद कर लेती हूँ जब मैं देखती हूँ ना, और फिर मैं रोती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए, लेकिन मैं एक दुआ ही कर सकती
2: हूँ। आपकी दुआ एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है, और यही सबसे बड़ी ताकत है हर शख्स के लिए। सो आपने आज ये दुआ की है, एंड आपके साथ और भी हमारे लिसनर्स ने ये चीज आमीन कही है, ठीक है, हर किसी ने आमीन कही है। सो आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दैट कि ये जरूर कबूल होगी। सो आज के लिए मैं
1: इंशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत बहुत शुक्रिया मिस अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ईद पे इतना अच्छा पैगाम देने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे खाने बनाने के लिए, और हमें दावत देने के लिए। इंशाल्लाह ताला डिनर आपके यहीं होगा।
2: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
0: मैं बातें नहीं करती, मैं बुलाती भी
1: हूँ। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक मैम, ईद मुबारक। ये थी मिस अली, और बड़ी अच्छी विशेष और दुआओं के साथ हमारे साथ जुड़ी। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे, एक नए चैंपियन, एक नए शेफ की तरफ रुख करते हैं। घर घर ईद प्रोग्राम में इस वक्त अमिता और सरवर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम 500 रियाल का गिफ्ट वाउचर, अब 500 रियाल का रह गया है, जब शुरू हुआ था प्रोग्राम जब 500 रियाल के था, क्योंकि दो दो थे, तो एक तो विनर हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी है, नजमा जी पहली विनर है, अब दूसरे जो विनर है या दूसरी जो विनर है उनको भी इंशाल्लाह ताला हम फाइनलाइज करेंगे, जहां पर आपने क्या करना, बहुत आसान से सवाल का जो इस वक्त अमिता पूछ रही है, किचन में जाके आपसे कुछ एक डिश बना रही है ये, और पूछ रही है मैं बताऊ ये मैंने क्या बनाया, ये घर पे यूजुअली इनके साथ होता भी ऐसे ही है। इन्होंने कहा भाई खाने में क्या बनाऊं, घर वालों ने कहा पहले बना लो फिर नाम रख लेंगे।
2: ये मैं बताती हूँ आपको ना, अभी एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, आपने कैसे पहचान लिया? मैं बताए क्या करती हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ अपनी डिशेस के साथ, और इसके बारे में ना कभी और जिक्र करेंगे. अभी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम अमिता और सर्वर, कैसे
2: हैं
3: आप?
2: बिल्कुल मजे में.
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं. ईद मुबारक. कौन है हमारे साथ?
3: मुबारक. मैं इसरा बात कर रही
2: हूँ. इसरा, इसरा, हाउ आर यू?
3: I'm good. अमिता आप कैसे हो?
2: बहुत मजे के. देख लो अभी पूरे खाने पीने की बातें हो रही है. मैं और सर्वर तो पूरे मतलब भूख लग गई हमको.
3: आ जाए, मोस्ट वेलकम. मैं आपको करती कि आप दरवाजे खुले में आप आ जाए.
2: हाउ स्वीट इज दैट.
1: एंड इसरा इज लाइक, वहां पे हम जैसे ही पहुंचे आप आ तो गए, अब कुछ पका भी
2: दीजिए.
3: नहीं है सब कुछ. नहीं, गोश्त आपको तो आज तो बकरा ईद है तो गोश्त yeah. तो मस्त है. और जो गोश्त नहीं खाते हैं उनकी चिकन की कढ़ाई है, और बाकी सलाद, रायता, खीर, सब कुछ. आप बस आए, आप बोले हाँ हम आ रहे हैं.
2: कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक हो सकती है.
1: बल्कि मैं आप लोग को पिक करने के लिए
3: आती
1: हूँ. लेडीज जो है माशाल्लाह से वाकई दिल बड़ा होता
2: है.
1: आज मैंने देख भी लिया और इसका सबूत भी मिल गया. अमिता कहती रहती थी मैं मानता नहीं था, मगर अब इसरा जी से बात करके मुझे इस बात का सबूत मिल गया.
3: चले अलहमद सरवर को हमारी बात को तो यकीन हुआ. चाहे अमिता का होता ही नहीं होता. इनको तो नाजिया का भी नहीं होता.
2: देखिए सरवर की कहानी तो टोटली डिफरेंट है, और वो हमारे ऑफिस की सारी लेडीज से डिफरेंट है. तो एनीवे
3: मैंने कॉल कर ली ना, बस ये लोग मान गए कि हाँ औरतें
2: होती है. ये तो हम सभी मानते हैं.
1: ईद मुबारक हो इसरा बहुत बहुत. और अब
3: हम बनाएंगे तो खाएंगे ना.
1: अच्छा, इसीलिए मैंने कुकिंग सीख ली. एक्चुअली ये धमकियां मुझे मिलती थी. ये काम भी खुद ही
3: करते हैं. जैसे नहीं, हम जैसे बनाते हैं ना वैसे आप नहीं बना सकते. हमारी आवाज की नजर की अलग
2: है. ये बात तो सच है. ये बात सच
1: नहीं, ये बात सच है अमिता. जैसे आप बनाती हैं ना, मुझे मैं आपको नहीं बना सकता.
2: यहाँ पर अजीत का पहला दिन है.
3: हाँ, वो अलग ही चीज बन रही होती है यहाँ पे तो.
2: और ये हमारे सर्वर जी ना आज अभी शो के बाद मैं इनसे तो बहुत सीरियस बात करना. आज ये मुझे दावत देंगे या मैंने दावत दूंगी, ये डिसाइडेड है.
3: इसी चीज का ट्राई करके आप मेरे घर पे आ जाए.
2: बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि हम दोनों साथ में आएंगे एंड मजे का फिर खाना एंजॉय करेंगे. अभी हम आपको सीधा किचन में ले चलते हैं. एंड यू टेल अस, जब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी आप बताना कि ये कौन सी डिश हो सकती है. ठीक है,
3: डन हो गया.
2: ओके, सो इसरा जी अब ध्यान से सुने. योगर्ट और नट्स का पेस्ट. ठीक है, योगर्ट और नट्स का पेस्ट मेरा असली राज है. मुगलई करीज का मैं ही सरताज हूँ. तो अब आपको बताना है कि ये कौन सी डिश हो सकती है.
3: ये मुगलाई आप कह रहे हैं? अल्लाह,
2: मुगलई करीज का, मुगलई करीज का ये सरताज कही जाती है.
3: अच्छा, व्हाइट करी.
2: व्हाइट करी मतलब क्या हो सकता है?
1: अच्छा, एक बार और अमिता, एक बार और पूछिएगा.
2: देखो, योगर्ट और
1: मैं पहली बार सुन रहा हूं. मैं आपको
2: योगर्ट जो होता है ना, दही बोल लो, सिंपल दही और नट्स का पेस्ट उनका असली राज है इस डिश का. और मुगले करीज का ये सरताज है. सो व्हाट इज दैट डिश?
3: बादामी कढ़ाई कुछ ऐसा.
1: अच्छा, कढ़ाई के बराबर में उसकी बहन भी कुछ होती है.
2: तो हमारे मास्टर शेफ एक्चुअली क्या कुछ उनको थोड़ी हिंट देना चाहेंगे क्या हो सकता है
1: कढ़ाई के अलावा जो हम जी कुछ और.
3: बादामी कढ़ाई होती है, बादामी सालन होता है, बादामी कड़ी होती है.
1: बीच में कड़ी से पहले
3: ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे.
2: अच्छा, गेस
1: अरे आपने खुद बताया अभी इसरा, कड़ी से आपने तीन नाम लिए, कढ़ाई और उसके बाद आपने एक चीज बताई और उसके बाद आपने कड़ी बताई, तो बीच में आपने क्या बताया था?
3: बादामी मुगलाई कढ़ाई.
2: Oh God, it's tough. Okay. अब आप देखो, कोई एक नाम सोच लो डिश का, आप वो बता दो, हम लिख लेते हैं और फिर देखेंगे अब वो सही है कि नहीं. ठीक है,
3: बादामी कढ़ी.
2: बादामी कढ़ी, ठीक है, चले हमने
1: ये सारी चीजें बना के रेडी रखी है, इंशाल्लाह बस पहुंच रहे हैं.
3: चिकन कोरमा कर ले।
1: क्या बात है भाई, इस तरह की वाकई इस तरह खाना बनाना जानती हैं, ये बात का एहसास मुझे हो गया
2: बिल्कुल। हमने

0: मतलब जवाब आपका मिल गया है हमें, इससे ज्यादा खाने मत पकाइएगा। लगनी शुरू हो गई ऑलरेडी,
1: लगनी शुरू हो चुकी है
2: उनकी, उनकी आवाज ही, उनकी आवाज ही निकलेगी फिर तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अमिता ही बोलती रहे।
1: नहीं डेफिनेटली, अभी सर्वर जो है ना, हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजेंगे हम भागने वाले हैं खूब सारी जगहों पर। इनफैक्ट हमारे सबसे पहले घर पर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं,
0: तो
1: आज तो कुछ भी।
0: और उसके बाद हम वाया मिस अली आपके यहाँ इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं, बेफिक्र रहिए आप। इतना इंसिस्ट कर रही हैं, इतना इंसिस्ट कर रही
2: हैं, आप स्टॉप रखे ना, पहले मिस अली फिर मिस इसरा के पास आ जाए।
0: जी जी, वही वही
1: वही वही, उन्होंने मेरी लिस्ट काटी, उन्होंने कहा कि नहीं अभी थे हम यहाँ जाने वाले।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत आपका बड़प्पन, और ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: ईद
0: मुबारक,
1: टेक केयर।
0: तो भाई देखिए किस तरीके से इस वक्त खाने पकाए जा रहे हैं। अमिता ने इस वक्त पूरे कतर को खाना पकाने में लगा दिया है। ईद का खासम खास दिन, ब्रेक पे जाने का वक्त है। एक चैंपियन को हम और ले सकते हैं। ओके,
1: कोई हमारे साथ जुड़ रहा है।
0: ओके, जुड़ चुके हैं।
1: सलाम अलैकुम।
0: येलो,
3: वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप सभी को और FM 107 सुनने वालों को,
1: आपको भी।
0: अच्छा, कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
3: हाँ, मेरा नाम समी परवेज है।
0: समी परवेज भाई
1: साहब, क्या
0: समी भाई, भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो अच्छा हुआ यार समी भाई तशरीफ लाए, माशाल्लाह से लेडीज की इतनी आमद हो रही थी, इतनी आमद हो रही थी, मैंने कहा कोई है नहीं है आज, तो चलिए भाई समी भाई खाना बना लेते हैं।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, कतर में आने के बाद ही सीखे तो मतलब।
0: अच्छा, दूसरे किसी को खिलाया फिर उसके बाद?
3: मतलब जितने रूममेट थे सभी
0: उन्होंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अदब हो गया।
1: नहीं देखो यार,
0: नहीं चेक कर रहा हूँ यार कि मैं खा सकता हूँ जाके, यानी इसमें कोई रिस्क तो नहीं है।
1: अरे वाह समी जी, तो आप सबसे अच्छी डिश क्या बनाते हैं?
3: सबसे अच्छी डिश मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, मटन कढ़ाई।
1: कढ़ाई बनाते हैं, मुझे लगा फिर आप कुछ और बोलेंगे। लेकिन बहुत शानदार, मतलब ये सारा कुछ खाना आपने कतर में आकर ही सीखा।
0: एक्चुअली अमिता जो है भाप लेती है कौन क्या चीज अच्छी बना रहा है, उसके अलावा ही सवाल पूछोगे, वरना ये तो झट से बता देंगे।
1: गॉड सीरियसली, वैसे आज हमें ना बड़ा मजा आ रहा है कि खानों की बातें करके ना, एंड चले हम खानों का सवाल तो आपसे पूछेंगे। पहले बताएं कि ईद के दिन की शुरुआत कैसी रही आपकी?
3: ईद तो मतलब कल रात से शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा जो तोप था वो रेडी नहीं किए थे उन्होंने, फिर रात में लेट गया तोप लेकर आया, फिर मैं बोला अगर सोऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मतलब मॉर्निंग की प्रेयर,
0: नमाज निकल जाएगी और जाहिर बात है जो फराइज हैं वो अदा नहीं हो पाएंगे। चलिए भाई, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे और अल्लाह ताला आपकी ईद बहुत अच्छी गुजारे इंशाल्लाह ताला, और आपकी रूममेट्स की भी, आपके दोस्तों की भी। तो फिलहाल रेडी हैं समी भाई, सवाल पूछ लें
3: इंशाल्लाह कोशिश।
0: अमिता
1: ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुने। पैरों का खेल है, सूप जैसा टेक्सचर है, विंटर्स की रातों में मैं ही डायरेक्टर हूँ, कौन सी डिश हो सकती है?
3: पाया।
1: Are you sure about that?
3: विंटर में तो हम लोग पाया ही खाते हैं।
1: चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या बात है क्या बात है, विंटर में पाया ही खाते हैं तो हमने।
3: आपको मतलब रीडल में,
1: हाँ? रिडल में हमने कुछ मेंशन नहीं किया है।
0: हाँ, नहीं, मगर आपका जवाब मिल गया हमें।
1: यस,
0: इससे ज्यादा मत बताइए, जवाब इधर उधर चले जाएगा, कुछ और पक जाएगा। देखो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मेरे भैया।
1: यहाँ पर आपने पाया कहा, सर्वर ने तुरंत मेरी तरफ देखा, मैं जाकर अब जरूर खाने वाला हूँ।
0: पाया तो मेरी तरफ आया, सिर्फ यही हो सकता है, आया सिर्फ मेरी तरफ आया
1: अल्टीमेट। सो चले भाई, आपका आपका जवाब।
0: चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। लिखिए अपना
1: ईद मुबारक, फिर से
0: मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। मैंने जल्दी जल्दी बात इसलिए करी परवेज भाई से कि अभी है गुंजाइश हमारे पास, क्योंकि हो क्या रहा है कि अजान का भी वक्त है, तो वो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा विनर्स जो हैं हम बुलाने की कोशिश करेंगे, अपने स्टूडियो में बात करने की कोशिश करेंगे चैंपियन से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस भी मिले। तो यहाँ पर अगले खानसामा शेफ ये रहे
1: हमारे साथ। हेलो, सलाम अलैकुम। हाँ जी, कौन हमारे साथ जुड़ा है?
4: यूसुफ बात
1: कर रहा हूँ। यूसुफ जी, मुबारक, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक यूसुफ भाई।
4: जी मुबारक।
0: कैसे हैं यूसुफ भाई?
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसी रही ईद, कैसी हुई शुरुआत?
4: जी आए नाश्ता किए, नमाज पढ़ी, सो गए, और क्या।
0: अच्छा ओ अच्छा, तो कुछ खाया हुआ नहीं था मॉर्निंग में, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं?
4: हाँ किए किए नाश्ता।
0: नाश्ता किया था, क्या खाया था नाश्ते में?
1: मसाला डोसा। मैं हाई फाई करूंगी, मैंने ना आज रवा मसाला डोसा खाया है।
0: बकरीद के दिन भी आप अमिता को याद करते हुए डोसा खाया? अच्छा अभी अभी जरा शुरुआत है, शुरुआत
1: नाश्ता ये हल्का स्टार्टर है।
0: नहीं देखो ईद है, ईद में क्या होता है, पेट को खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ हो क्या रहा है, तो इस बार उनका पेट को पहले समझाऊंगा कि अच्छा डोसा पेट खुश है, आप समझ नहीं। अब जैसे ही आगे दोपहर आ गई, ब्रंच टाइम आ गया। यूसुफ भाई, वैसे यूसुफ भाई खाना अच्छा बनाते हैं?
1: अरे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी सर्वर जी ने कहा तो आई एम वेरी सर्टेन। ये कॉम्प्लीमेंट बहुत कम देते हैं लोगों को खाने से रिलेटेड।
0: यूसुफ भाई खाना अच्छा बनाते हैं।
1: तो यूसुफ भाई कौन सी डिश सबसे मजे की बनाते हैं?
4: मजे की नहीं, जस्ट ऐसे ही बना लेते हैं बस।
1: ऐसे ही कौन सी बनाते हैं?
4: कुछ भी तहारी।
1: कुछ भी क्या?
4: मटन तहारी।
0: अच्छा, ओ, मटन की तहारी।
1: तहारी पहाड़ी सुनाई दे रहा था।
0: तहरी एक्चुअली ताहेरी भी कहते हैं, तहारी भी कहते हैं, जो साउथ की तरफ या हैदराबाद की तरफ या बेंगलोर वगैरह की तरफ वो तहारी हो जाती है, हमारे यूपी की तरफ इट्स ताहेरी। एंड ताहेरी इज लाइक चावल, हल्दी, आलू एंड मतलब तुम खा सकती हो एक्चुअली, मगर ये मटन की बन रही है तो मैं ही खाऊंगा। यूसुफ भाई जरा सा आधा किलो और बढ़ा दिए गोश्त उसके अंदर।
4: नहीं नहीं बना लेते हैं, लेकिन मेरी वाइफ अच्छा बनाते हैं तहारी स्पेशल, हमारे गुलबर्गा जो हमारे सिटी में,
0: आई नो बेंगलोर, इसलिए मैंने जिक्र किया। इस वक्त भाभी आपके साथ हैं?
4: जी जी हैं,
0: इसीलिए वो ज्यादा अच्छी बना रही है, मैं समझ सकता हूँ आपका कहना। पसली में रखी हुई है ना, जिस वजह से ताहरी अच्छी बन रही है, वो कह रहा था। चलो भाई ओए होए, तो चलिए हम अजान की तरफ भी हो रहे हैं, वक्त तंग हो रहा है, तो यूसुफ भाई जल्दी से अमिता।
1: यस, मैं आपसे अब सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी डिश है। सो ओके सुने ध्यान से, जिंजर चिली और लेमन मेरा ताज है, हैवी ब्रेकफास्ट में मेरा ही राज है, ये कौन सी डिश हो सकती है? नो एक बार थोड़ा और सोचे, फिर से सुने, जिंजर चिली और लेमन मेरा ताज है, ठीक है ये डिश है जो ज्यादातर ईद में बनती है, जिंजर चिली और लेमन मेरा ताज है, हैवी ब्रेकफास्ट में मेरा ही राज है।
4: कढ़ाई।
1: ओके लास्ट ऑप्शन और मैं देती हूँ, लास्ट मौका, सोचे बताएं।
4: जिंजर, कढ़ाई और नींबू।
1: जिंजर चिली और लेमन, जिंजर चिली और लेमन इसके साथ, मतलब इनके साथ बनती है कमाल की डिश, और हैवी ब्रेकफास्ट होता है इसका।
4: निहारी।
1: अच्छा निहारी, are you sure about that?
4: Yeah.
1: ठीक है, हमने लिख लिया, हमने लिख लिया है।
0: चलिए भाई यूसुफ भाई, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना है, नाम आपका लिख लिया है, प्रोग्राम आखिर तक सुनना है, और उसके बाद जब जीत जाना है तो सर्वर से बात कर लेनी है। ओके बाय, ईद मुबारक यूसुफ भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो भाई घर घर ईद में इस वक्त अमिता और सर्वर आपके साथ हैं, जहाँ पर ईद मनाई जा रही है, खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान अमिता इस वक्त बना बना के आपको दे रही है, सिखा रही है, खिला रही है, और साथ में आपको विनर भी बना रही है। भाई ईद है तो ऐसा होना भी चाहिए। और गुनाइदन रेस्टोरेंट की जानिब से इस वक्त 500 कतरी रियाल का वाउचर दिया जा रहा है, जो आप अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद हम दोनों ये सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि अभी एक और विनर बनाना है भाई।
1: तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियां, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ। हर ईद की सुबह मनाएं खुशियां। FM

0: हाउसफुल ईद सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिले। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और एफएम 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वांतुम बखैर।

0: वन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद
1: ईद मुबारक
2: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब तो मिस मत कीजिए जश्न ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का घर घर ईद हमारे इस खासम खास शो और ईद का पहला दिन आरजे सरवर मिर्जा और आपकी अमिता हम खास तौर से लेकर आए। तो भाई कौन कौन है, क्या क्या कर रहा है, कैसे ईद मनाई जा रही है, ये सब आप हमें बताएं। एंड डेफिनेटली आज हमारे बड़े मजे के सवाल है, उसका जवाब दिया और लकी हुए तो आप जीत सकते हैं गुनाइदिन रेस्टोरेंट के 500 कतरियाल के गिफ्ट वाउचर। सो यस जनाब, अभी अगला सवाल बिल्कुल रेडी है। क्या हमारे साथ कोई जुड़ गया है सरवर, क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं बिल्कुल जुड़ गया है और उनकी मालूमात भी मैं इस वक्त नोट कर रहा था और मैं सभी को बता दूं, मैं और अमिता यहाँ पर जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला वो बड़ा एकदम सही साफ सुथरा ही होगा, क्योंकि हमारे जो आखिरी कॉलर होंगे उनसे ही हम एक नंबर सिलेक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर जितने भी हमने नंबर लिखे हुए हैं उसमें आप सबका नाम रेंडम लिखा हुआ है, शफिल करके लिखा हुआ है, रेंडमली लिखा हुआ है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो
1: कि
2: पहला नंबर मेरा था या पांचवा नंबर मेरा था या कोई भी अगर हिसाब लगाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लस जो हम कॉल ले रहे हैं वो लोग भी लिस्ट में शामिल हैं। लिफ्ट में प्रॉब्लम हो जाती है असल में शामिल होने में, तो वही याद रह जाता।
1: Absolutely.
2: और जो व्हाट्सएप पे आए भाई बहने सब, वो भी हमने बैठ के इतनी देर से जो हमने अभी आपको एड सुनाए ना और खूब सारे गाने सुनाए इतनी देर से हम दोनों यही कर रहे थे, उन सबके भी नाम हमने इसके अंदर शामिल कर लिए। और अब यहाँ पर ये हमारे साथ
1: कोई जुड़ गए हैं। सलाम अलैकुम। अरे आपको भी ईद मुबारक। कौन कौन जुड़ा हमारे साथ?
2: मोहम्मद रूहलामीन से तो बात हो गई,
1: ये हमारी ऑलरेडी
2: मगर बने नहीं।
1: हाँ कोई नहीं, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। सो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ सीधा एंड आप बताने की कोशिश करें कि कौन सी डिश है ये। ओके सो आसान दीजिए।
2: अरे आपने इससे पहले भी सही बताया था।
1: यस चले हम आगे पूछते हैं। सो मैं पीने की चीज हूँ पर मेरा कलर ब्राउन नहीं है,

0: मैं नमकीन भी हूँ और मीठी भी, मुझ पर बादाम और पिस्ता तैरते हैं, गेस माई कलर एंड माई नेम, क्या हो सकता है?
1: बोल सकते हैं?
0: यस बिल्कुल बोल सकते हैं. सो एक ये पीने की चीज है, मैं पीने की चीज हूँ पर मेरा जो कलर है वो ब्राउन नहीं है. मैं नमकीन भी हूँ, मीठी भी हूँ, मुझ पर बादाम और पिस्ता तैरते हैं, गेस माई कलर एंड माई नेम. कुछ अंदाजा? हाँ जी, कहीं से पूछ रहे हैं?
2: सरवर?
0: सरवर नहीं, शरबत कह रहे हैं. सरवर सुन लिया सरवर ने शरबत को, ठीक है. आप शरबत कह रहे हैं, ये आपका फाइनल आंसर है?
2: ईद के दिन क्या खाते हैं हम लोग?
0: नहीं नहीं नहीं, ये पीने की चीज है. और चलिए एक एक चांस मैं आपको और दूंगी, आप अपना जवाब दें और हम उसे लिख लेंगे, ठीक है. सो ये पीने की चीज है बट इसका कलर ब्राउन नहीं है, ये नमकीन भी है, मीठी भी है और इस पर बादाम और पिस्ता तैरते रहते हैं.
2: समझ गया, एक जगह की खासम खास.
0: यस, तो आपको इसका कलर और नाम बताना है. एक एक चांस और बताएं क्या नाम हो सकता है.
2: ओके, नो प्रॉब्लम. एक बार आपने अच्छा ट्राई किया था, इंशाल्लाह ताला कल फिर ट्राई कीजिएगा. नो प्रॉब्लम अमीन भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. ये थे हमारे साथ अमीन, ताकि दूसरे चैंपियन भी हमारे साथ जुड़ जाएं, कोशिश यही है. और यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया है,
0: इनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमित भाई?
0: बिल्कुल खैरियत से है. ईद मुबारक आपको.
3: ईद मुबारक आपको भी. ईद मुबारक.
2: कौन है हमारे साथ?
3: मुमताज अहमद.
2: ओ मुमताज, क्या बात है, बड़ा ही अच्छा. मुमताज टाइम पे आए आप एकदम.
0: कैसे हैं मुमताज भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, ईद गुजर रहा है.
0: ईद ईद गुजर रहा है, ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, हमारी ये दुआ है. तो हम सीधा आपसे सवाल पूछें?
3: पूछ लीजिए.
0: ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक लिसनर हमारे साथ जुड़े थे अमीन, उनसे सवाल पूछा था. यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं पीने की चीज़ हूँ पर मेरा कलर ब्राउन नहीं है, मैं नमकीन भी हूँ, मीठी भी हूँ, मुझ पर बादाम और पिस्ता तैरते हैं. अब आपको गैस करना है रंग और इस डिश का नाम.
3: रंग और डिश का नाम.
2: मैं मदद कर देता हूँ, मैं गरम भी हूँ. गरम?
3: जी, गरम भी.
2: हाँ गरम हूँ मैं.
0: यस,
2: बताओ मेरा नाम. बताओ मुमताज.
3: गरम
0: पीने की चीज है, सोचे नमकीन मीठी दोनों है, काफी पी जाती है ये.
2: ओके
0: काफी नजदीक आ गए आप, लेकिन
2: करीब और करीब
0: और क्या हो सकता है?
2: थोड़ा बताओ है नहीं, ज्यादा आगे निकल गए. अच्छा चाय कहाँ की हो सकती है, सोचिए इस तरीके की जिसका कलर अलग है यार, और कितना बताऊं?
0: हमें लगातार जवाब आ रहे हैं हमें हमारे लिसनर्स के हमारे व्हाट्सएप पे. अब बताएं क्या हो सकता है. हाँ जी,
3: दिमाग में नहीं आ रहा.
0: ओके. तो देखिए आप हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं, आपके साथ फिर हम ये जवाब शेयर कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने वाले हैं. सो मैं पीने की चीज़ हूँ, मेरा कलर ब्राउन नहीं है, मैं नमकीन भी हूँ, मीठी भी हूँ, मुझ पर बादाम और पिस्ता तैरते हैं. तो ये पिंक कलर की होती है और ये है कश्मीरी चाय. कभी आपने ट्राई की है? कभी ट्राई कीजिएगा, नमकीन होती है, बड़ी मजे की होती है. है ना जी, इंशाल्लाह. चलें इसी बात पे. सर्वर ओवर टू यू. अब आप बताएं कि कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक हमें इनको बोलना है कि चूज करें, एंड देन हम अपना आज का दूसरा लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे.

0: मुमताज भाई नंबर देता हूं मैं आपको, 1 से लेके 23 के दरमियान, फ्रॉम 1 to 23 के बीच या पहले या बाद में, जो भी नंबर आप बताएंगे वो आज का विनर होगा।
1: 19 ओके, 19 पर कौन है हमें देखना पड़ेगा। ओके
0: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अव्वल तो आपकी मोहब्बत का और कॉल करने का मुमताज भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, ईद मुबारक, इंशाल्लाह ताला डेली दो विनर बनेंगे, अलग अलग प्रोग्राम में बनेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे साथ सुबह से रात तक वक्त गुजारिए और इंशाल्लाह जीतने का जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप देंगे उतना ज्यादा जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
0: सविता जी, नंबर 19 में है मोहम्मद खलील। खलील भाई को बहुत बहुत मुबारक तालियों के साथ और ईद की भी मुबारकबाद। काफी लोगों ने ट्राई किया, काफी लोग आए भी, शामिल हो रहे हैं, शामिल अभी भी हो रहे हैं, मगर क्योंकि अब हम क्लोज कर चुके हैं विनर्स को लेना और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हमने भाई शामिल तो करा। मोहम्मद खलील
1: इज आर सेकेंड विनर, पहले थी नजमा, दूसरे मोहम्मद खलील, जिन्होंने गुनायन रेस्टोरेंट का 500 रियाल का गिफ्ट वाउचर जीता है। तो बहुत सारी मुबारकबाद। वैसे हमारे बाकी जो लिसनर्स जिन्होंने कंटिन्यूसली हमें व्हाट्सएप पर आंसर्स दिए, हमारे साथ कॉल पर जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के भी 3 दिन और हैं जब आप यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट के जरिए प्राइजेस जीत सकते हैं, गुनायदन रेस्टोरेंट का 500 रियाल का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो हमारे साथ आगे के 3 दिन ईद के दिन जुड़ना ना भूलें, सुबह 10 से 12।
0: क्या बात है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें, ईद को सेलिब्रेट भी करें, अपनों के साथ करें, दूसरों के साथ करें, दोस्तों के साथ करें और साथ हम साथ हमें भी याद रखें। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि आपको पता ही है, FM 107 के तमाम पेजेस पे सोशल मीडिया के हम आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, टिकटॉक हो, हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107 और वहाँ पे भी आपको सारी मालूमात पता चलती रहेगी आगे जो भी हो रहा है। और आपको तो पता ही है कि भाई कतर में जहाँ भी जो कुछ होता है हम सबसे पहले आपको बता ही देते हैं, तो हमारे साथ जुड़े भी रहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, जरा हम भी जाके ईद मना लें भैया अपनों के साथ।
1: और देखिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि आज सर्वर ने सोच लिया, लिस्ट बन चुकी है, कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक होती है।
0: नॉक होते ही बेल बजते ही टनिंग।
1: Yes, absolutely.
0: सब डरेंगे आज कोई दरवाजा खोलेगा, आ तो नहीं गया कहीं।
1: तो ईद मुबारक एंड हैव अ वंडरफुल डे
0: अहेड। ईद मुबारक भाई आप सभी को और आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक कॉल आ रही है, अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं, जबकि हम सबके नाम भी नहीं ले पाए, शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाए, बट क्या करें, माशाल्लाह चाहने वाले इतने, मोहब्बत करने वाले इतने, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सुबह 10 बजे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार, ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल्स।

Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं FM 107 Qatar और मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ महावश और मौका है ईद उल अजहा का, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक का वक्त आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से ईद की खुशियाँ आपको नसीब हो, ये हमारी दुआ है। तो चले अपने शो का आगाज करते हैं। इस ईद उल अजहा पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है रूहानी लम्हे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम अपने दिल को रूहानियत के साथ जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईद उल अजहा सीरीज का ये खास शो है और हमारी इसकी पहली एपिसोड है। इसमें दो एपिसोड होंगी, आज आप पहले दिन सुन रहे हैं ईद के और फिर तीसरे दिन भी मेरा और आपका साथ रहेगा। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं बल्कि यातात, सबर और सबसे बढ़कर शुक्र का पैगाम लेकर आता है। तो इस खास सिलसिले में हम बात करेंगे उन जज्बात की जो ईद को सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इबादत बनाते हैं। आज की हमारी थीम है शुक्र, यानी अल्लाह की नियमतों का दिल से एतराफ। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये रूहानी सफर। शुक्र एक बहुत खूबसूरत और गहरा एहसास है। ईद उल अजहा के मौके पर जब हम कुर्बानी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और खुशियां मनाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ हमें दिया किसने। यकीनन ये सब अल्लाह की अता है और इसी एहसास का नाम शुक्र है। आम तौर पर हम शुक्र को सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने तक महदूद समझते हैं, लेकिन हकीकत में शुक्र इससे कहीं ज्यादा वसी है। शुक्र का मतलब है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमत को पहचानें, उसकी कदर करें और दिल से इस बात को तस्लीम करें कि हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के फजल से है। ईद उल अजहा हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का इरादा किया, तो ये सिर्फ अतात ही नहीं थी बल्कि एक आला दर्जे का शुक्र भी था। उन्होंने ये साबित किया कि असल शुक्र ये है कि इंसान अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे। आज हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें बेशुमार नेमतें नजर आती हैं। हमारे पास घर है, खाना है, खानदान है, सेहत है और सबसे बढ़कर ईमान है, लेकिन अक्सर हम इन नेमतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ईद का ये मौका हमें याद दिलाता है कि हम रुककर सोचें और इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र का ताल्लुक सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी है। जब दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है तो इंसान के रवैये बदल जाते हैं। वो शिकायतें कम करता है, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कोशिश करता है। ईद के दिन हम खुशी मनाते हैं, लेकिन असल खुशी तब होती है जब हमारे दिल में शुक्र होता है। अगर दिल में शुक्र ना हो तो बड़ी सी बड़ी खुशी भी अधूरी लगती है, लेकिन अगर दिल शुक्र से भरा हो तो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी महसूस होती है। कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की अमानत है और जब हम अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करते हैं और उसका गोश्त दूसरों में तकसीम करते हैं तो ये दरअसल शुक्र का अमली इजहार होता है। हम ये जाहिर करते हैं कि हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर है और हम उन्हें दूसरों के साथ
बांटने के लिए तैयार है। शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब बंदा शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह उससे राजी होता है और उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून पैदा हो जाता है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होता है। एक और अहम बात यह है कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें मजीद अता करता है। ईद का ये पैगाम भी यही है कि हम अपनी नेमतों को पहचानें और उन पर शुक्र अदा करें और दूसरों के साथ बांट कर अपनी खुशियों को बढ़ाएं। आइए इस ईद उल अज़हा पर हम ये अहद करें कि हम सिर्फ ज़ाहिरी खुशियों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अपने दिल को भी शुक्र के नूर से रोशन करेंगे। हम हर छोटी और बड़ी नेमत को पहचानेंगे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें हकीकी मायनों में शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्र सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। अक्सर हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ही शुक्र है, लेकिन हकीकत में शुक्र के तीन अहम दर्जे हैं: दिल का शुक्र, जबान का शुक्र और अमल का शुक्र। जब ये तीनों एक साथ शामिल हो जाएं, तभी शुक्र मुकम्मल होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल के शुक्र की। दिल का शुक्र ये है कि इंसान अपने अंदर ये यकीन पैदा करे कि जो कुछ उसके पास है वो सब अल्लाह ताला की अता है। ईद उल अज़हा के मौके पर जब हम अपने इर्द गिर्द खुशियाँ देखते हैं, घर वालों की मुस्कुराहटें, दस्तरखान पर नेमतें और कुर्बानी की तैयारी, तो हमें दिल में ये एहसास होना चाहिए कि ये सब अल्लाह का करम है। दिल का शुक्र इंसान के अंदर आजजी पैदा करता है। वो खुद को बड़ा नहीं समझता, बल्कि हर नेमत को अल्लाह की रहमत जानता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास ज्यादा वसाइल है तो ये नहीं सोचता कि ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है, बल्कि वो ये समझता है कि अल्लाह ने उसे नवाजा है। यही सोच इंसान को गुरूर से बचाती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। फिर आता है जबान का शुक्र। जबान का शुक्र ये है कि हम खुलकर अल्लाह की तारीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसकी नेमतों का एतराफ करें। ईद के दिन जब हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं तो हमें सिर्फ रस्म अदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें खुशी का ये दिन दिखाया। जबान के शुक्र में भी ये शामिल है कि हम दूसरों के सामने अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें, लेकिन फख्र या दिखावे के बगैर, इस नियत से कि हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं

रहे हैं? क्या हम दूसरों के साथ बांट रहे हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे कर रहे हैं? अगर हम इन सवालों पर गौर करें तो हम अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने का मौका मिलता है। ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत पैगाम हमें एक बहुत अहम हकीकत की तरफ ले

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर। दिल से देसी

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद, बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई आज ईद उल फितर के पुर नूर और खुशियों भरे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका दोस्त सरवर मिर्जा लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे बेहतर प्रोग्राम, क्योंकि भाई ईद पे तो खाने का प्रोग्राम सबसे अच्छा होता ही है, है नहीं है? तो जहां हम बात करेंगे ईद की खुशबू की, उसकी मिठास की और उसके ट्रेडिशनल जायकों की। तो दोस्तों सुबह का वक्त है, घर में हल्की सी रोशनी आ रही है और किचन से उभरती हुई यखनी की खुशबू, ओए ओए ओए ओए, भाई पूरे घर में ये महक रही है। ये सिर्फ एक खुशबू ही नहीं होती, ये यादों का एहसास होता है। भाई बचपन की यादें, बचपन की वो ईद, अम्मी के हाथों का खाना और फैमिलीज का आना जाना। तो आज के शो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन एक डिश, एक रेसिपी जो ईद के लिए खासम खास है, और वो क्या है? मटन यखनी बिरयानी। क्या बात है! और उसके साथ भैया फेवरेट टमाटर की चटनी। ये दोनों चीजें आज आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए और आखिर तक प्रोग्राम को सुनिए। यकीन जानिए ईद का जो मजा है वो दोबारा होने वाला है। तो जनाब ईद का दिन सिर्फ इबादत का ही नहीं होता, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है, बल्कि खाना बनाना और सबको खिलाना भी प्यार का मौका होता है। हर घर की अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो हर जगह कॉमन होती हैं, और उनमें से एक है हमारी यखनी बिरयानी। ये बिरयानी अपनी हल्की और नेचुरल टेस्ट की वजह से बहुत पसंद की जाती है। इसमें मसालों की ज्यादा तेजी नहीं होती, बल्कि यखनी की असली खुशबू और गोश्त का सॉफ्ट टेक्सचर ही इसकी पहचान होती है। और जब इसके साथ फ्रेश टमाटर की चटनी मिल जाए तो आई टेस्ट डबल हो जाता है। तो आज हम इसी सिंपल और दिल को खुश कर देने वाली कुकिंग को सेलिब्रेट करेंगे। ईद का माहौल है, हल्की हल्की बात करते करते अच्छा अच्छा खाना पकाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, भाई और क्या। तो आप सोच रहे होंगे कि यखनी बिरयानी और नॉर्मल बिरयानी में क्या फर्क होता है। भाई बहुत फर्क है। यखनी बिरयानी का बेसिक कंसेप्ट होता है कि गोश्त को पहले पानी और हल्के मसाले डालकर बॉईल कर लिया जाए एक तरीके से। जो यखनी बनानी है ना उसको उबालना है। अब उसके भी अलग अलग तरीके हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ तो पोटली वाले मसाले डलते थे, वो क्या है वो भी बताऊंगा आपको। एक मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, मलमल का कपड़ा जिसको कहते हैं, उसके अंदर सारे मसाले, खड़े मसाले स्पेशली सौंफ, साबुत धनिया और जो स्टार वाला मसाला होता है, हाय हाय हाय, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले ये जानिए कि फ्लेवरफुल यखनी कैसे बनाई जाए। फिर इसी यखनी में चावल पकाए जाते हैं और जिससे हर दाना फ्लेवर से भर जाता है। भाई ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। इसी तरह हमारी टमाटर की चटनी भी एक सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन जब उसे सही तरीके से बना लिया जाए तो वो पूरी डिश का मजा जो है वो डबल कर देती है। तो आज हम हर स्टेप को इतनी डिटेल से देखेंगे कि आप इजीली घर पर बना पाएंगे। भाई कुकिंग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या कॉम्बिनेशन का नाम ही नहीं होता, बल्कि एक आर्ट होती है। मैं हमेशा कहता हूं एक फीलिंग होती है एक्चुअली। जब आप अपने हाथों से खाना बनाते हैं तो उसमें एक अलग ही मजा होता है, मोहब्बत होती है। आज जब हम यखनी बिरयानी बनाएंगे तो हम जल्दी नहीं करेंगे भाई सबसे पहले, बल्कि हर स्टेप को टाइम देंगे। गोश्त को अच्छी तरीके से पकाना है, ये जरूरी है, गल जाए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि होठों से टूट जाए, ओए ओए ओए ओए। और चावल को परफेक्ट टेक्सचर तक लाना है और फिर दम देना है। ये सब स्टेप ही

रियल मैजिक क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ टमाटर की चटनी का फ्रेश टेस्ट एक परफेक्ट बैलेंस देता है। तो आज का प्रोग्राम सिर्फ रेसिपी नहीं है दोस्तों, ईद का खासम खास दिन तो है ही, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है, ईद का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। तो चलिए अब हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं या उस तरफ चलते हैं जहां हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि भाई यखनी बिरयानी के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उनको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। आप भी अगर घर पर हैं तो पेन और पेपर ले लीजिए या फोन पर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज को सिंपल और ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ आपकी आसानी के लिए। याद रखिए, कुकिंग का मजा तभी आता है दोस्तों जब आप रिलैक्स्ड हो और खुश होकर खाना बनाएं। गुस्सा गर्मी में टेस्ट आएगा ही नहीं, दुनिया की चीजें डाल लीजिए आप उसके अंदर, ठीक है। तो स्माइल कीजिए और अपने किचन को ईद की खुशबू से भरने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि एक अच्छी बिरयानी की बुनियाद उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का मटन तो सबसे पहले। हाँ भाई, अगर आपकी चाह है, अगर आप बोन इन रखेंगे तो यखनी जो बनती है ना, वो एक्चुअली जो गूदा है, जो मींग है, जो बोन मैरो है, उसका असली स्वाद जो है, जायका जो है, वो लेके आती है, क्योंकि बोन्स से ही यखनी का असली फ्लेवर निकल के आता है। इसके अलावा बासमती चावल, दही, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाले जैसे दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, तेज पत्ता वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर एक बैलेंस्ड फ्लेवर क्रिएट करती हैं। वहीं टमाटर की चटनी के लिए आपको फ्रेश टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा नमक और हल्का सा ऑयल चाहिए होता है। देखा जाए तो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इनको सही तरीके से यूज करना है और वही आपकी असली स्किल का मुजाहरा करता है। ये सारा सामान घर पे आराम से मिल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम पहला स्टेप शुरू करते हैं जो कि है यखनी तैयार करना। एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, जाहिर बात है बड़ा बर्तन ही लगेगा भाई, ईद का मौका है, लोग आएंगे जाएंगे, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और घर वाले खुद, और उससे पहले आप खुद हैं, सबसे पहले तो अपना ख्याल करना है। चलिए साहब, इस बर्तन में आप मटन डाल दीजिए, फिर उसमें अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक और साबुत गरम मसाले डाल दीजिए। यहां पर मैं आपको मकदार नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल टी स्पून से लेके टेबल स्पून के दरमियान आपको रखना है इनकी मकदार, अपने टेस्ट के मुताबिक, स्वाद अनुसार जिसको कहते हैं। इसलिए मैंने इसको इस बार नए तरीके से बता रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भाई इतना सुहाना सफर हो गया, तीन सीजन सुहाना सफर के हो गए, उसके बाद ईद की बातें हो गई, फ्लेवर्स ऑफ रमजान हो गए, हर चीज में इतना तो बता दिया है सरवर मिर्जा ने कि आपको आइडिया हो गया होगा, है सही कह रहा हूं ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इन मसालों को हल्की आंच पर पकने दें जो आपने यखनी रेडी करनी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्र है, आप जल्दी में आंच तेज मत करें वरना गोश्त टफ हो सकता है, सख्त हो सकता है और यखनी का टेस्ट भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगा। ये धीमी आंच का खेल है, धीरे धीरे जब गोश्त पकता है तो उसका जो फ्लेवर है, जो जायका है, जो स्वाद है, पानी में हल्के हल्के निकलता है, घुलता मिलता है और पानी एक रिच यखनी में, ब्रॉथ कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और यही प्रोसेस है जिसको हम बिरयानी में यूज करते हैं। तो साहब जब गोश्त अच्छी तरह से पक जाए और यखनी रेडी हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है चावल को प्रिपेयर करना। बासमती चावल को पहले अच्छी तरीके से धोकर आधा घंटा भिगो दें, इससे चावल का जो दाना है वो लंबा और फ्लफी हो जाता है। अब आप इसी यखनी को स्ट्रेन कर लें, छान लें और चावल उसमें उबालने के लिए डाल दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे बिरयानी का हर दाना फ्लेवरफुल हो जाता है। ना पानी ज्यादा होना चाहिए और ना कम, भाई पानी की भी मकदार इतनी होनी चाहिए कि गोश्त जो है, जो बोटियां हैं, वो सिर्फ डूब जाए, है ना, अच्छे तरीके से। ये ना हो कि लबा लब आप भर दें तो वो जब आप उसको पकाएंगे तो वो देर तक गलेगा भी और पानी जो है वो इतना ज्यादा उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ना पानी ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम, वरना चावल भी इससे मुतासर होते हैं और या तो वो चिपक जाएंगे या कच्चे भी रह सकते हैं। तो परफेक्ट बैलेंस ही आपकी बिरयानी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं मसाले तैयार करने की तरफ। एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें स्लाइस्ड प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भुनें। ये प्याज बिरयानी का बेस फ्लेवर होती है। जब प्याज रेडी हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें बॉइल्ड मटन डाल

दें और हल्के मसाले ऐड करें। यहाँ पर आपका एम ये होता है कि गोश्त मसाले को सोक कर ले और एक बैलेंस्ड ग्रेवी बन जाए। ज्यादा मिर्च या तेज मसाले की जरूरत नहीं है क्योंकि यखनी का टेस्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप आता है और वो क्या है, लेयरिंग, तबकात। क्या बात है, एक बर्तन में पहले मटन मसाला डालें, फिर उसके ऊपर चावल की लेयर, फिर हल्का सा फ्राइड प्याज और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जाफरान भी आप दूध के साथ घोल के ताकि वो थोड़ा वॉटरी हो जाए, या फिर केवड़ा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के लिए, इसका केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। मगर जैसे कि मैंने पहले भी आपको खानों के प्रोग्राम में बताया है कि भाई एसेंस और ये जो वाटर फ्लेवर्स होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। एसेंस क्या होता है, वो ज्यादा गाढ़ी फॉर्म होती है, वहीं जैसे वाटर होता है, मतलब लेट से रोज वाटर और रोज एसेंस, ठीक है, वेनिला वाटर और वेनिला एसेंस, केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस, तो एसेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एक गाढ़ी फॉर्म है। वाटर वहीं आप समझ ही रहे हैं कहने का मतलब, तो अपने हिसाब से डालें, ऐसा ना हो कि खुशबू आ जाए और बिरयानी का मजा ही खुदा ना खास्ता खराब हो जाए। ठीक हो गया, अब फिर दोबारा से लेयर को जो है रिपीट करते रहें और ये लेयरिंग ही बिरयानी को एक परफेक्ट लुक और टेस्ट देती है। जब लेयर्स कंप्लीट हो जाए तो बर्तन को ढक कर हल्की आंच पर दम के लिए रख दें। ये दम का प्रोसेस ही बिरयानी के फ्लेवर्स को एक साथ कंबाइन करता है और फाइनल रिजल्ट एक अमेजिंग डिश होती है। तो जनाब, जब तक बिरयानी दम पर है, हम अपनी टमाटर की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेश लाल टमाटर लें, उन्हें थोड़ा सा बॉईल कर लें या डायरेक्टली ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब एक पैन में हल्का सा ऑयल गरम करें, उसमें लहसुन डालकर भून लें, फिर टमाटर डाल दें, इसके साथ हरी मिर्च और नमक ऐड करें। अब इसे हल्की आंच पर पकने दें जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये चटनी फ्रेश और थोड़ी सी टैंगी होनी चाहिए ताकि ये बिरयानी के रिच टेस्ट को बैलेंस कर सके। अब जब बिरयानी दम से उतर जाए और चटनी भी रेडी हो जाए तो आपके पास एक कंप्लीट ईद डिश तैयार है। भाई गरम गरम बिरयानी, उससे निकलती हुई खुशबू और साथ में फ्रेश टमाटर की चटनी, यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी ईद टेबल को खास बना देता है। इस वक्त सबसे जरूरी है प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब खाना अच्छा दिखता है तो उसका टेस्ट और भी बेहतर लगता है। तो बिरयानी को प्यार से सर्व करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। ये सिर्फ खाना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि ईद की खुशियों का सफर है जो अभी से शुरू होगा। चलिए साहब, अब प्रोग्राम के हिस्से में आ जाते हैं, हेल्दी ईट बाइट्स पे। भाई प्रोग्राम में इसलिए मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करी है इंग्रेडिएंट्स वगैरह या दूसरी चीजें, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ बातें भी मैं करना चाहता हूँ। हमेशा एक सी बातें करके आप कहेंगे कि भाई ये तो मैं सीख गया, कुछ नया बोलो। तो हेल्दी ईट बाइट की बात करें, जब हमारी बिरयानी तैयार है तो अब इसमें टेस्टी डिश को हम हेल्दी तरीके से कैसे इंजॉय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। भाई अक्सर ईद पर ज्यादा खाना खाने की जैसे लोग हैवी फील करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो हम बिना शर्मिंदगी के भी इंजॉय कर सकते हैं। यखनी बिरयानी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ऑयल कम है और नेचुरल यखनी का यूज होता है जो डाइजेशन के लिए बेहतर है। इसके साथ अगर आप फ्रेश टमाटर की चटनी यूज करते हैं तो उसमें विटामिंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब मिल जाते हैं। इस तरह आपकी ये जो मील है ना, वो सिर्फ टेस्टी ही नहीं रहती बल्कि बैलेंस्ड भी बन जाती है। बस पोर्शन कंट्रोल और फ्रेश साइड डिशेस का ख्याल रखें, वो भैया अपने हाथ में है, अब उसमें मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो दोस्तों, हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पसंद की चीजें ना खाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट चॉइसेस करें। जब आप यखनी बिरयानी बना रहे हैं तो आप गोश्त का लीन पार्ट यूज करें जिसमें चर्बी कम हो, इससे आपका मील हल्का भी रहेगा और प्रोटीन से भरपूर भी होगा। इसी तरह चावल की क्वालिटी या क्वांटिटी को भी बैलेंस में रखें। आप प्लेट में ज्यादा चावल लेने के बजाय थोड़ा सैलेड या चटनी का पोर्शन बढ़ा लीजिए। टमाटर की चटनी खासतौर पर हाइड्रेशन और विटामिन सी के लिए अच्छी होती है, मैंने पहले भी बताया। और ये छोटी छोटी आदतें जो है आपको ईद के दिन भी एक्टिव और फ्रेश बनाए रखती हैं बिना किसी हैवीनेस के, वरना तो भैया बिरयानी खाई और सो गए, पता चला शाम में उठे दोपहर का पूरा टाइम ऐसे चला गया। तो एक और जरूरी बात जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है ईटिंग पेस।
अक्सर हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ डाइजेशन प्रॉब्लम होती है बल्कि हम ज्यादा खा भी लेते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए जब आप ये

डिलीशियस यखनी बिरयानी इंजॉय कर रहे हो तो आराम से हर बाइट को टेस्ट करें। टमाटर की चटनी का हल्का टैंगी टेस्ट बिरयानी के हर बाइट को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा और ये कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाई करता है जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते। धीमी स्पीड से खाना खाने का एक फायदा ये भी है कि आप अपने बॉडी को सिग्नल भी भेज रहे होते हैं और फिर आपका जहन कहता है कि भाई हो गया भाई, चलो हो गया, रुक जाओ, ईद है, दूसरे घर भी जाना है। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासतौर पर ईद के दिन जब हम स्पाइसी और रिच फूड खा रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आप पानी का जो इंटेक है वो बढ़ा दें या फिर लाइट ड्रिंक्स जैसे नींबू पानी है या सिंपल लस्सी है वो यूज करें। आजकल वैसे भी गर्मियां आ गई हैं, अब तो हाइड्रेटेड रहना और भी ज्यादा जरूरी है। यह आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बॉडी को ठंडा भी रखता है। यखनी बिरयानी का टेस्ट हल्का होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी राइस और मीट का कॉम्बिनेशन हैवी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वैसे भी भाई जितने भी वीगन्स हैं, वेजिटेरियंस हैं, वो भी ट्राई करते ही हैं। आप वीगन तो नहीं करेंगे, वेजिटेरियन शायद ट्राई कर लें। मटन बिरयानी की बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर हल्का हाथ रखें, लेकिन फिर भी आप इसको देखें कि मील के साथ थोड़ा पानी लेना या बाद में एक गिलास पानी पीना आपको फ्रेश फील करवा सकता है। ये छोटी सी हैबिट है आपकी ईद को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। पहले खाने के पानी पी लीजिए तो थोड़ा पेट भी फुल हो जाता है, नुकसान भी नहीं करता। खाने के फौरन बाद पानी इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि खाने की डाइजेशन में वो थोड़ी अड़चन पैदा करता है। वहीं अगर आप अपनी मील को और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप फ्रेश सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। खीरा है, गाजर है और सैलेड लीव्स के साथ थोड़ा लेमन जूस और नमक डालकर एक सिंपल सैलेड तैयार कर लीजिए। ये सैलेड बिरयानी के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगी, साथ ही ये फाइबर प्रोवाइड करती है जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। टमाटर की चटनी और सैलेड दोनों मिलकर आपके मील को बैलेंस्ड कर देती हैं। तो भाई इस तरह आपकी प्लेट रंगीन भी है, कलरफुल भी है और टेस्ट भी बेहतरीन है, न्यूट्रिशंस के साथ साथ जो एक परफेक्ट ईद मील की पहचान है। तो दोस्तों हेल्दी ईटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडरेशन। आप अपनी पसंद की हर चीज खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखें। यखनी बिरयानी एक रिच और सेटिस्फाइंग डिश है, इसलिए थोड़ा सा भी काफी होता है। जब आप अपनी प्लेट में कंट्रोल्ड पोर्शन लेते हैं तो आप उसे ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं, साथ ही आपकी बॉडी भी हैवी फील नहीं करती। टमाटर की चटनी का टेस्ट आपको हर बाइट में फ्रेशनेस का एहसास देता है और इस तरह आप ईद के दिन को फुल्ली इंजॉय करते हैं बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, और यही असल में एक स्मार्ट और हेल्दी सेलिब्रेशन की पहचान है। क्योंकि मैं भी ऐसी करने वाला हूं, बल्कि इसके बरक्स देखा जाए तो मैं वही करता आया हूं। दादा खाली हो गए, ईद चली गई, इस बार मैंने भी सोचा है। अब भैया टेबल पे जाने के बाद क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। चलिए जी, प्रोग्राम के अगली भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल ईद प्लेट में क्या है हमारे पास। ईद सिर्फ एक मुल्क या कल्चर तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हर जगह इसके अपने खास जायके होते हैं। अगर हम यखनी बिरयानी की बात करें तो ये साउथ एशिया की एक पॉपुलर डिश है जो पाकिस्तान में, इंडिया में और भी, मतलब अपने जितना बर्रे सगीर की बात करें या फिर हम अरब ममालिक की बात करें, मिडिल ईस्ट में भी राइस और मीट बेस्ड डिशेज जो हैं बहुत मशहूर हैं और वो भी यखनी की बेस से ही बनाई जाती हैं। मंदी है, मजबूस है वगैरह वगैरह, दूसरी चीजें, तीसरी चीजें आपको सब पता ही है। हर रीजन में अपने मसाले और कुकिंग स्टाइल के साथ इस डिश को एक नया रंग दिया गया है और इसी डाइवर्सिटी से फूड का जो मजा है वो भी डबल हो जाता है। आज हम अपनी यखनी बिरयानी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। भाई अगर आप गल्फ रीजन की तरफ देखें तो वहां राइस डिशेस में हल्का स्पाइस और ज्यादा अरोमा होता है। मंदी और कब्जा भी यखनी स्टाइल कुकिंग से मिलती जुलती हैं, यहाँ तक के मजबूस भी, जहाँ गोश्त को स्लो कुक किया जाता है और उसका फ्लेवर राइस में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम यखनी बिरयानी में करते हैं, बस फर्क ये होता है कि मसालों का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है और इससे पता चलता है कि अलग अलग कल्चर में कुकिंग का बेसिक कंसेप्ट काफी सिमिलर होता है। हर जगह लोग जो है वो स्लो कुकिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो नेचुरली इनहेंस होता है। अगर हम तुर्की या सेंट्रल एशिया की तरफ नजर डालें तो वहां पुलाव या पुलाव हमारी लैंग्वेज में पिलाफ भी कहते हैं, फलाफ भी कहते हैं, पिलाफ, इसी तरीके से साउंड निकलती है उनकी। बहरहाल ये जो डिशेज हैं इससे मिलती जुलती हैं हमारी यखनी बिरयानी से और ये भी एक तरह से बिरयानी का ही एक सिंपल वर्जन।

होता है जहां राइस और मीट को एक साथ कुक किया जाता है। यहां भी यखनी का यूज होता है लेकिन स्पाइसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं और ये डिशेस सिंपल होने के बावजूद बहुत रिच टेस्ट रखती हैं। इसी तरह टमाटर की चटनी की जगह वहां योगर्ट बेस्ड मतलब दही बेस्ड डिप्स यूज की जाती हैं। ये सब वेरिएशंस ये बताते हैं कि फूड का कंसेप्ट यूनिवर्सल होता है, बस उसका एक्सप्रेशन और कल्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है। दैट्स इट। तो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट कल्चर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि लोग अपनी ट्रेडिशनल डिशेस को मॉडर्न टच देते हैं। आजकल आप रेस्टोरेंट्स में फ्यूजन बिरयानी भी देखते हैं जहां लोग डिफरेंट स्पाइसेस या प्रेजेंटेशन स्टाइल्स यूज करते हैं, लेकिन असली मजा हमेशा ट्रेडिशनल रेसिपीज में ही होता है जहां सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी का कॉम्बिनेशन होता है। यखनी बिरयानी भी इसी कैटेगरी में आती है जहां हर चीज नेचुरल और बैलेंस्ड होती है। भाई, टमाटर की चटनी इसका परफेक्ट कंपेनियन है जो हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जहां वो साल्सा या टोमेटो डिप में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपनी ईद टेबल को थोड़ा ग्लोबल टच भी दे सकते हैं। यखनी बिरयानी के साथ आप एक मिडल ईस्टर्न सैलड या योगर्ट डिप भी सर्व कर सकते हैं, इससे आपका टेबल और भी वाइब्रेंट लगता है। अब भाई, हमारे यहाँ पे राइन है, लबन है, मुख्तलिफ चीजें हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और फ्लेवर्स मिलकर एक रिच एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रखें कि मेन डिश का फोकस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। यखनी बिरयानी का सटल टेस्ट और टमाटर की चटनी का टैंगी फ्लेवर आपके मील का हीरो रहना चाहिए, बाकी डिशेस सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि एक सिंपल सी डिश जैसे हमारी यखनी बिरयानी किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर से कनेक्ट करती है। ये सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं है बल्कि एक ब्रिज है कह सकते हैं जो लोगों को जोड़ता है। ईद के दिन जब हम अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये सिर्फ टेस्ट का ही मजा नहीं होता बल्कि इमोशंस का भी एक कनेक्शन होता है। टमाटर की चटनी के साथ ये बिरयानी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी फीलिंग्स को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसा जायका जो दिलों को करीब ला रहा है। चलिए भाई दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने आज के खूबसूरत सफर को धीरे धीरे रैप अप करें। आज हमने सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीखी बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस फील किया। मटन यखनी बिरयानी की वो हल्की सी खुशबू जिसमें घर की मिठास भी है और ईद की खुशबू भी, और साथ में टमाटर की चटनी वो फ्रेश और टैंगी टेस्ट जो हर बाइट को और भी ज्यादा कर देता है। ये तमाम चीजें मिलकर एक ऐसी याद बनाती हैं जो सिर्फ जबान तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि दिल तक चली जाती हैं। तो आज के इस शो का मकसद भी यही था कि आप ना सिर्फ कुकिंग सीखें बल्कि उसे महसूस भी करें। भाई, ईद का खाना सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं होता बल्कि शेयरिंग का भी नाम होता है। जब आप अपने हाथों से बनाई हुई यखनी बिरयानी अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो उसमें एक स्पेशल कनेक्शन होता है। हर प्लेट में प्यार होता है और हर बाइट में अपनापन। टमाटर की चटनी का सिंपल सा बाउल भी एक मील को कंप्लीट करता है, जैसे एक छोटी सी बात भी खुशी को बड़ा बना देती है। आज अगर आपने ये डिश घर पर ट्राई की तो यखनी आपकी टेबल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगी, जो सिर्फ ईद के दिन महसूस होती है। इसी फीलिंग को हमेशा जिंदा रखना है। दोस्तों, कुकिंग एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक पैशन भी बन सकती है। आज जब आपने इतनी डिटेल के साथ यखनी बिरयानी का प्रोसेस सुना है तो आपको ये भी समझ आया होगा कि अच्छा खाना बनाने के लिए सब्र और केयर दोनों जरूरी हैं। हर स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो यखनी बनाना हो, चावल को सोक करना हो या दम देना हो। इसी तरह टमाटर की चटनी की सिंप्लिसिटी ही उसकी ब्यूटी है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक परफेक्ट डिश बनाती हैं। आप भी जब किचन में जाएं तो जल्दी के बजाय प्यार और सुकून के साथ कुकिंग करें। तो साहब, टमाटर की चटनी को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं या थोड़ा सा लहसुन जूस भी ऐड कर सकते हैं जो इसे और फ्रेश बना देगा। और यही वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो कुकिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। जो चीज आप अपने हाथों से बनाते हैं ना, उसमें आप अपना टेस्ट, अपना अंदाज और अपना प्यार ऐड कर सकते हैं और इसी वजह से घर का खाना जो है हमेशा स्पेशल।
लगता है, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो।

0: दोस्तों आज के दिन एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हम शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, खाने का टेस्ट है, घर का सुकून है और अपनों का साथ है। जब हम ईद के दिन खाना एंजॉय करते हैं तो ये सिर्फ एक मील नहीं होती बल्कि एक ब्लेसिंग है, अल्लाह का रहम है। इसलिए हर बाइट के साथ शुक्र का एहसास भी होना चाहिए, है ना। खाना कुछ भी हो, जो भी आप बना रहे हो उसमें शुक्र जरूर अदा करें। अगर आप चाहें तो अपनी इस डिश को किसी जरूरतमंद के साथ भी शेयर करें। ईद का दिन शेयरिंग और केयरिंग का दिन होता है, हम सब जानते हैं। जब आप अपने हाथों से बनी हुई बिरयानी किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसमें सिर्फ टेस्ट ही नहीं होता बल्कि मोहब्बत भी होती है। और ये एक छोटी सी चीज होती है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। शायद आपकी बनाई हुई ये सिंपल सी यखनी बिरयानी किसी के दिन को बेहतर बना दे। इसी तरह हम ईद की असल रूह को जिंदा रख सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये पूरा सफर एक खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, उम्मीद करता हूँ मैं। शुरुआत जो खुशबू से हुई, फिर हमने रेसिपी बनाई, हेल्दी टिप्स देखे और फिर ग्लोबल फ्लेवर्स तक पहुंचे और ये सब मिलकर एक कंप्लीट ईद स्पेशल बना। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय भी किया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे शेयर भी करें और हमें बताएं कि आपकी यखनी बिरयानी और टमाटर की चटनी कैसी बनी। आपकी फीडबैक से मुझे और भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा ऑब्वियसली, और आपकी जो भी कला है उसको देखने के लिए भाई मैं बेताब भी हूँ। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है इजाजत लेने का है, लेकिन जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते रहें और उन्हें सेलिब्रेट करते रहें। अपने घर को प्यार से भरें, अपनी टेबल को टेस्ट से और अपने दिल को शुक्र से। आज की ये मटन यखनी बिरयानी और टमाटर की चटनी सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक याद बन जाए, यही मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और ईद के इस खूबसूरत मौके को पूरी खुशियों के साथ एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपके अपनों को खुश रखे, आपको दिल का सुकून दे, यही सारी मेरी दुआएं हैं, आमीन। याद रखिए, परफेक्ट डिश वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो बल्कि वो होती है जो प्यार से बनाई जाए और खुशी से शेयर की जाए। बस इसी सोच के साथ अपनी ईद और अपनी जिंदगी दोनों को खूबसूरत बनाइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर लम्हे को टेस्ट और शुक्र के साथ एंजॉय कीजिए। भाई अब इजाजत ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी भी मौजूद हैं जिनको बहुत सताया मैंने आज खुशबू सुंगा सुंगा के और टेस्ट याद दिला दिला के, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सरवर मिर्जा और शहबाज अंसारी को अगली मुलाकात के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और भी कुछ ईद डिशेज बनाएंगे और खुशबुओं का मजा लेंगे। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ RJ महावश, FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे, आमीन।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अपने ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशियां

विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम।

कार्निवल सफा के साथ एक फन फिल शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज गेम्स हंसी मजाक म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर

FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाईलाइट। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक मशहूर फुटबॉलर के बारे में। मशहूर सिर्फ इंग्लैंड के नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स में से एक है हैरी केन। या दोस्तों, फुटबॉल स्ट्राइकर्स की जब भी बात होती है आज के मॉडर्न एरा में, तो हैरी केन का नाम जरूर जरूर आपके सामने अब पिक्चर जो है आपको दिख जाए। एंड इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं हैरी केन, और अपनी जबरदस्त गोल स्कोरिंग एबिलिटी, लीडरशिप और कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत मशहूर हैं। उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉटनहम हॉटस्पर के साथ शुरू हुआ था, वहां पर बेहद वो फेमस हुए, और गोल स्कोरिंग की वजह से हैरी केन ने अपनी पहचान बनाई और इसी क्लब

कि अगर देखा जाए किसी क्लब से खेलते हुए ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। हैरी केन ने प्रीमियर लीग में कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं और कई मर्तबा गोल्डन बूट अवार्ड्स भी जीता है। आगे जाकर इंग्लैंड के नेशनल फुटबॉल टीम के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर है और गोल्डन बूट अवार्ड भी जीता। हैरी केन की फिनिशिंग, पासिंग और पेनल्टी टेकिंग एबिलिटी उन्हें दूसरे स्ट्राइकर से अलग बनाती है। फैंस उनकी प्रोफेशनलिज्म और हार्ड वर्किंग नेचर को भी बहुत पसंद करते हैं। जब उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग छोड़कर उन्होंने जब बुंडेसलीग यानी जर्मन लीग में ज्वाइन किया विद एफसी बायर्न म्यूनिख, तो लोगों ने कहा कि हैरी केन विल नॉट बी सक्सेस। उनके बारे में कहा गया था ऑन मीडिया और यू नो ऑन द सोशल मीडिया, सबको उन्होंने साबित किया कि आप गलत थे। और बायर्न म्यूनिख में भी ही वॉज इक्वली सक्सेसफुल व्हाट ही वॉज विद टॉटनहम हॉटस्पर एज वेल एज विद इंग्लैंड नेशनल टीम। तो जहां उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने गोल्स का सिलसिला जारी रखा। हैरी केन को मॉडर्न फुटबॉल का कंप्लीट स्ट्राइकर माना जाता है। यंग फुटबॉलर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन है जो डेडिकेशन और मेहनत के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स टास्क के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद उल अधा खुशियों, कुर्बानी और लजीज खानों का त्यौहार है। आप सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। इन दिनों घरों में मुख्तलिफ किस्म के गोश्त के पकवान तैयार किए जाते हैं, जैसे बिरयानी, कबाब, टिक्की, कोरमा, बारबेक्यू। लेकिन अगर खाने में एहतियात ना की जाए तो यही खुशियाँ सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकती हैं। हमारी सेहत और हमारी पूरी फैमिली की सेहत की हिफाजत के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बहुत सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें बताई हैं, गाइडलाइंस जो हैं वो दी हैं कि किस तरह से आपने जो जानवर हैं उन्हें हैंडल करना है, और इसी तरह जो गोश्त है उसे भी ईद उल अधा के दिनों में किस तरह से उसे मैनेज भी करना है। सबसे पहले तो ये कि आप जो है हेल्दी जो बकरा है, कोई जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए होना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपने देखना है, ख्याल करना है कि उसे कोई बीमारी ना हो, जैसे कि डायरिया है, कफिंग है, या ये देखना है कि वो नॉर्मल सांस ले रहा है या नहीं। और इसी तरह से जो जानवर हैं वो भी कि खाना जो है वो किस तरह खा रहे हैं, क्या करना है, और स्पेशली जो स्टोरेज है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी गोश्त है आपने उसको सील करना है तो बिल्कुल वो जो कंटेनर्स हैं या जो शेल्फ्स हैं वो रेफ्रिजरेटर में आप रख रहे हैं किस तरह से उन्हें हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। जैसे कि हम देखते हैं कि ईद जो है वो खुशी का मौका है, और मगर ये कि बहुत से जो मसाइल हैं जैसे कि बदहजमी है, तेजाबियत है, कब्ज़ है, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर दिल, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस तरह गोश्त यकीनन प्रोटीन और आयरन का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन एतदाल बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि गोश्त कम मकदार में खाएं, तली हुई अशिया को कम इस्तेमाल करें, खाने के साथ सैलड शामिल करें, पानी ज़्यादा पीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा दूर रहिए। एक और अहम बात कि मुसलसल सिर्फ गोश्त खाने के बजाय अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ और फल भी शामिल करें ताकि जो निज़ाम हाजमा है वो बेहतर रहे।
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

0: हीरों मुबारक बाद।
1: दोस्तों ये हमारा बहुत ही खास सेगमेंट है ईद वैल्यूज और इस सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं सेक्रिफाइस के ट्रू मीनिंग पर। दोस्तों ईद उल अधा जिसे हम फेस्टिवल ऑफ सेक्रिफाइस कहते हैं ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक गहरा पैगाम है जो हमें फेथ डिवोशन और सेक्रिफाइस का असल मतलब समझाता है। इस दिन की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम जज्बे के साथ है जहां आपने अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया था। ये वाकया हमें और आपको बताता है कि ईमान की इंतहा और अल्लाह से प्यार की इंतहा क्या होती है। अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा करने की ये एक मिसाल है। जी हाँ, कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है, असल मकसद है अपने दिल को पाक करना, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना और अल्लाह की रजा के लिए कुछ भी छोड़ देना। दोस्तों इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला को आपके कुर्बानी जो किया हुआ जानवर उसका गोश्त चाहिए। अल्लाह तक्वा और नियत देखता है। ईद उल अधा हमें ये सिखाता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, कभी अपने ईगो को साइड पर रखना होता है और कभी दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है। ये सब चीजें ही असल में कुर्बानी का रूह है। इस फेस्टिवल का एक और खूबसूरत पहलू चैरिटी से जुड़ता है। कुर्बानी का गोश्त तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपने लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए और उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं। ये हमें बताती है बात कि असल खुशी तब आपको मिलती है जब आप दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। कुर्बानी इंसान के अंदर एम्पैथी पैदा करती है और उसे ये समझाती है कि हर किसी को बेसिक जरूरियात मयसर होनी चाहिए। दोस्तों आज के इस मॉडर्न दौर में जब लोग मटेरियलिस्टिक माइंडसेट्स में घिर चुके हैं और इस माइंडसेट इस अप्रोच को अडॉप्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ईद उल अधा हमें रुककर सोचने का मौका देती है। ये सवाल उठाती है, हम किस चीज को अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या हम अपनी नींद को अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आराम को अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी माल और दौलत को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर की नफरत और जेलसी को दूर कर सकते हैं? असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स की होती है। जब इंसान अपने ईगो, अपने गुरूर, अपने सेल्फ सेंटर्ड सोच को कुर्बान करता है तो वो असल रूह को समझ पाता है। दोस्तों ईद उल अधा का पैगाम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। ये हमें यूनिटी, कंपैशन और जेनरोसिटी सिखाता है। ये बताता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। कुर्बानी से इंसान अल्लाह के करीब होता है और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद बन जाता है। बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि ईद उल अधा हमें ये याद दिलाती है कि सेक्रिफाइस सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हर दिन हर लम्हा हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियां देकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर हमने सिर्फ जानवर कुर्बान किया और अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने ईगो को नहीं बदला तो हमने ईद का असल पैगाम समझा ही नहीं। दोस्तों असल ईद तब होती है जब दिल साफ हो, नियत पाक हो और हम दूसरों के लिए भी, दूसरों के दुख दर्द को समझे, उनके लिए जीना सीख लें। याद रखिए कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि जो चीज हम अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं अल्लाह उससे कहीं बेहतर चीज हमें वापस देता है। अपनी सोच बदलें, अपना दिल नरम करें और इंसानियत के लिए कुछ करने का इरादा करें क्योंकि यही असल कुर्बानी है। वक्त आपसे इजाजत का, इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउस फुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउस फुल। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको ईद सुन्नाज में। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में ईद की असल अहमियत क्या है। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है जो मुसलमानों को इबादत, सबर और नेकी के बाद दिया जाता है। अक्सर लोग ईद को सिर्फ नए कपड़े, खाने पीने और खुशी के तौर पे देखते हैं, लेकिन इस्लाम हमें इससे बहुत गहरा और खूबसूरत पैगाम देता है। इस्लाम में दो बड़ी ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दोनों ईदें सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा हैं। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद आती है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और जब ये महीना पूरा ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद की सूरत में खुशी देते हैं। ये खुशी इस बात की होती है कि एक मुसलमान ने अल्लाह की इबादत पूरी करने की कोशिश की। ये दरअसल एक इनाम का दिन होता है और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को कबूल फरमाया और एक जानवर की कुर्बानी मुकर्रर कर दी। ये वाकया हमें सिखाता है अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा, हुक्म की अताअत और कुर्बानी का जज्बा। इस्लाम में खुशी और इबादत अलग नहीं है, ईद का दिन भी इबादत का हिस्सा है। इस दिन मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज ईद पढ़ते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी का असल जरिया अल्लाह की रजा है। ईद सिर्फ फर्द की खुशी नहीं बल्कि पूरे माशरे की खुशी है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं और दिलों की दूरी ख़त्म हो जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई गरीब, अकेला या परेशान है तो ईद के दिन हम उसे भी अपनी खुशियों में शामिल करें, और यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज हमने सीखा कि ईद अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इबादत भी है, और ये हमें इत्तेहाद और मोहब्बत का दर्स देती है। इसी के साथ आपसे लूंगी इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक और ईद सुन्ना के साथ। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल, सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर।

0: प्यारे प्यारे छोटे छोटे लिटिल सुपरस्टार्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सफा। लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल, सुपर फन और फुल ऑफ मस्ती भरा प्रोग्राम जिसका नाम है किड्स कार्निवल। अच्छा भाई, आज का दिन ना बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है खुशियों का दिन, मिठाइयों का दिन, रंगों का दिन, हंसी का दिन और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ प्यारे प्यारे मोमेंट्स बनाने का दिन है भाई। देखिए, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आज आप सब ने मजे मजे के अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहने होंगे, शो ऑफ कर रहे होंगे अपने कपड़ों को। अच्छा, टेस्टी टेस्टी शीरखुरमा भी खाया होगा, ईदी भी जमा की होगी। वैसे कुछ बच्चों को इस ईद पर ईदी नहीं मिलती, लेकिन कुछ को मिल जाती है और बहुत सारी सेल्फीज भी ली होंगी। और अगर अभी तक आपको ईदी नहीं मिली ना, तो टेंशन नॉट लिटिल चैंपियंस, शायद कोई चाचू, खाला, दादी अभी भी आपको कोई सरप्राइज देने वाला हो। क्या पता कोई घर आ जाए, क्या पता कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो ईदी दे दे। अच्छा साथियों, किड्स कार्निवल ना सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि ये एक मैजिकल फन वर्ल्ड है जहाँ हम मिलकर अपनी ईद अल अधा सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर होंगे सॉन्ग्स, स्टोरीज, गेम्स, रिडल्स और इंटरेस्टिंग बातें। तो भाई अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, यानी कि बेल्ट बकल अप कर ले भाई, क्योंकि अगले कुछ मोमेंट्स होने वाले हैं फुल ऑन एक्साइटिंग। अच्छा, आज के शो में ना हम बात करेंगे ईद की, ईद के एक खूबसूरत ट्रेडिशन के बारे में, सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी भी, खेलेंगे कुछ मजेदार गेम्स, कुछ फनी रिडल्स और मिलेंगे एक सुपर स्पेशल यंग गेस्ट से जो हमारे साथ बात करेंगी एज अ जूनियर आरजे। और हाँ, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपनी वॉइस नोट्स हमें भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, और हमें आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, हमारा क्या हैंडल है भाई सोशल मीडिया का, @FM107 कतर, सिंपल सा। तो भाई हो जाइए तैयार, हो सकता है अगली बार रेडियो पर जूनियर आरजी की आवाज आपकी सुनाई दे। तो बच्चा वाड़ी, क्या आप जानते हैं कि ईद सिर्फ मिठाई और ईदी का नाम नहीं होता, किस किस को ये बात पता है? मैं आपको बताती चलूं कि ईद हमें शेयरिंग, केयरिंग और काइंडनेस भी सिखाती है। इसीलिए तो आज अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें दूसरों के साथ, यानी कि बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ या किसी और के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर घर में कोई हेल्प किसी को ज़रूरत है, अम्मी को, अब्बू को, जैसे कि मम्मा किचन में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मम्मा उनको किचन में हेल्प करा दिया, या बाबा गेस्ट को रिसीव कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्प करा दी गई। बिलीव मी लिटिल सुपरस्टार्स, छोटी छोटी हेल्प भी ना बहुत स्पेशल हो जाती है। ईद दुनिया भर में खुशियों का नाम है और खुशियां तो जुड़ी हुई फैमिली से होती हैं, है कि नहीं साथियों? किड्स कार्निवल में हम सिर्फ मस्ती नहीं करते, हम सीखते भी हैं। तो आज की प्यारी सी बात याद रखिए, जो बच्चा दूसरों को खुश करता है खुद भी सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है। तो भाई अगर आज आप किसी को स्माइल करवा दें, अच्छा सा दिन है ना, ईद का दिन है, किसी छोटे कजन के साथ टॉय शेयर कर लें या दादी को जोर से जाके झप्पी पाए, प्यारी सी हग दें, तो समझ लीजिएगा कि आपने असली ईदी का गिफ्ट रिसीव कर लिया है भाई। अच्छा हाँ, और बच्चा पार्टी, ईद मॉर्निंग्स कितनी एक्साइटिंग होती है ना, मुझे जरा जल्दी से बताएं आप में से किस किस ने अपनी ईद पर जो है वो कौन कौन से कलर का ड्रेस पहना है। आज का जो पहला दिन है इसमें आपके, आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? तो भाई ईद मॉर्निंग्स कितनी एक्साइटिंग होती है ना, सुबह जल्दी उठना, नए कपड़े पहनना, मैचिंग शूज ढूंढना जो कि आप ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, फिर भी आपकी सुबह सुबह एक चीखन पुकार चल रही होती है, अम्मी मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है। और फिर जब तैयार हो जाते हैं तो फिर मिरर के सामने पोज बनाना और मम्मा से कहना कि भाई जल्दी करो, गेस्ट आने वाले हैं, मम्मा आप कहाँ बिजी हैं, क्या आप किचन में खड़ी रहती हैं? और फिर किचन से आती यम्मी यम्मी कबाब और बिरयानी की खुशबू, आए हाय हाय हाय हाय हाय। ईद का मजा ही कुछ और होता है भाई, इस ईद का मजा खासतौर पे खाने पीने के मामले में कुछ और होता है। अच्छा मुझे यकीन है कि कुछ हमारे जो लिटिल सुपर स्टार्स है ना, उन्होंने तो आज ऑलरेडी 20 बार तो फ्रिज ओपन किया होगा सिर्फ ये देखने के लिए भाई मीठे में क्या है। है कि नहीं। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको मीठा पसंद है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बारबेक्यू ज्यादा पसंद है? पता है बताएं कितने बच्चे हैं?
1: मुझे तो भाई स्वीट्स ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा चलिए ये बताएं कि आपकी फेवरेट ईद एक्टिविटी क्या है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर और मुझे बताएं कि आपने ईदी कितनी कलेक्ट की है, कितने अभी तक फैमिली विजिट्स हुए हैं, मिठाइयों के बारे में क्या ख्याल है आपका, या वो जो हमारे कजन्स हैं जो आते जाते हैं ईद पर, उनके साथ कोई गेम्स वगैरह खेली हैं? भाई मुझे लगता है कजन्स के साथ ईद सबसे ज्यादा फन होती है। कभी हम लूडो के कॉम्पिटिशन्स खेल रहे होते हैं, कभी स्नेक्स एंड लेडर्स, कभी पिलो फाइट्स, कभी हाइड एंड सीक और कभी रैंडम सी डांस पार्टी। और फिर जब कोई कजन ज्यादा मिठाई खा लेता है ना तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं कि इसको देखो गुप्पू सारी मिठाई खा गया। तो भाई ये हम सबके पास होता है, पूरे घर में सिर्फ हंसी और शरारतें होती हैं ईद के दिन। और चलिए साथियों अब टाइम आ गया है एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट का। अगर आप भी अपनी फनी ईद स्टोरी, फेवरेट जोक या प्यारा सा कोई FM 107 को मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए 666-22-107 पर, शायद आपकी आवाज अगले किड्स कार्निवल में रेडियो पर सुनाई दे। और पेरेंट्स भी अपने लिटिल स्टार्स की क्यूट रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं हमें इसी नंबर पर 666-22-107 पर। भाई हम सुनना चाहते हैं कि आपकी हंसी कैसी लगती है ईद के दिन, आपकी एक्साइटमेंट्स क्या है, और भाई अपनी अच्छी सी ईद मेमोरीज भी तो शेयर करें। साथियों आज के इस शो में हम एक यंग गेस्ट से भी मिलेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आएंगी वो, इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी। तो भाई वो हमें बताएंगी कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, वो हमें बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या ईद पर मज़े किए, आइसक्रीम पार्टी की या नहीं की, कुछ ख़रीदारी की कि नहीं की, कौन से कलर के ड्रेस उनको पसंद हैं। अच्छा शायद आपने सुबह से नए कपड़े पहन लिए होंगे, बहुत सारी सेल्फीज भी ले ली होंगी, टेस्टी टेस्टी बिरयानी और कबाब्स भी खा लिए होंगे भाई, और ईदी भी तो कलेक्ट की होगी। अच्छा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने कभी ये बात सोची है कि हम ईद अल अदा आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सिर्फ खाने पीने के लिए, सिर्फ कपड़े पहनने के लिए, सिर्फ ईदियाँ इकट्ठी करने के लिए? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा है मामला कुछ। चलिए साथियों इस बात को आज हमें एक बहुत ही इजी तरीके से, यूं कह लें कि एक कहानी की तरह, एक तरीके से आसानी से हमसे समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये हमें प्यार, शेयरिंग, काइंडनेस और केयरिंग का मैसेज देता है, सेक्रीफाइस का मैसेज देता है। ये हमें सिखाता है कि भाई दूसरों की खुशी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी अपनी खुशी होती है, और इसीलिए तो इस ईद को फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। अगर डेप्थ में इसका मीनिंग जाकर देखें तो इसे फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सेक्रीफाइस ये क्या होता है भाई? सेक्रीफाइस क्या होता है, चलिए इसे सिंपल अंदाज में आपको समझाती हूँ कि ये इतना बड़ा जो वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड सा सुनने में सुनाई देता है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी, या आखिर होता क्या है? देखिए मान लीजिए कि आपके पास चॉकलेट का एक लास्ट पीस है और आपका छोटा भाई या बहन उदास है, आप खुद भी वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, मजे की बात ये है, लेकिन फिर भी आप उस छोटे से पीस को भी शेयर कर देते हैं ताकि आपका बहन या भाई जो भी है वो हैप्पी हैप्पी फील करे। वाह भाई ये भी एक छोटा सा आपकी तरह प्यारा सा सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी अच्छी बात के लिए अपनी पसंद की चीज को शेयर करना या छोड़ देना। आप भी लिटिल हीरोज बन सकते हैं, जो आप कहते हैं ना कि भाई हम तो छोटे से बच्चे हम क्या ही कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं लिटिल हीरोज। तो सुपर हीरोज, लिटिल स्टार्स, कहीं मत जाएं। आगे आ रहा है बहुत ही फन सा हमारा सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं किड्स कार्निवल सिर्फ और सिर्फ FM 107 कतर पर। ईद मुबारक वंस अगेन एवरीबॉडी, और रेडी हो जाइए क्योंकि मस्ती अभी शुरू हुई है।
2: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल सफा के साथ एक

On FM 107 with Safa. मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, ईद अल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी और स्पेशल ईद के बारे में। देखिए, ये है ईद अल अज़हा। मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, अब टाइम हो गया है हमारे सुपर सी क्यूट सी स्टोरी कॉर्नर का। तो भाई, अपने अपने कुशंस ठीक कर लीजिए और अपने इमेजिनेशन के कैप्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक प्यारी सी ईद की स्टोरी के लिए। आज की कहानी का नाम है द टॉय दैट बॉट डबल हैप्पीनेस, वो खिलौना जो के डबल ट्रिपल हैप्पीनेस लेकर आया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ईद की एक सुबह थी, पूरा घर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। किचन से यमी यमी शीर खोमे की खुशबू आ रही थी, लिविंग रूम में कलरफुल बैलून्स लगे हुए थे और अली तो एक्साइटमेंट के मारे सुबह ही अलार्म से पहले ही उठ गया था। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो सीधा

0: बेड से जंप मारकर उठा और बोला, ये आज तो ईद का दिन है भाई। अच्छा, अली ने जल्दी जल्दी वॉशरूम जाके अपने दांत वांत ब्रश किए, मुंह धोया और फ्रेश हुआ और फिर उसकी नजर पड़ी अपने नए कपड़ों पर। उसका कुर्ता बिल्कुल मजे से, यू नो, जैसे वो नए कपड़ों की शाइन होती है ना अपनी, एक वैसे ही वो चमक रहा था क्योंकि नया कुर्ता था। और उसके नए शूज तो भाई सुपर हीरो जैसा फील करवा रहे थे उसे। अच्छा, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी पहने, अपने शूज भी मजे से पहन लिए और भाई वो मिरर के सामने खुद को देखकर फनी फनी पोजेस बनाने लगा कि भाई मैं तो क्या टशन में हीरो लग रहा हूँ। कभी हीरो स्टाइल, कभी क्रिकेट स्टाइल, कभी मूवी स्टार स्टाइल। मम्मा हंसकर बोली, बेटा जी अगर मॉडलिंग कंप्लीट हो गई हो ना तो नाश्ता भी कर लो चलो। अच्छा, नाश्ते की टेबल पर सब बहुत खुश थे एज यूजुअल, क्योंकि ईद का दिन था। बाबा ने अली को हक किया और कहा, बेटा ईद मुबारक चैंपियन। दादी ने भी बड़े मजे से उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, लाडला था भाई वो घर का, और उसे सब ने ईदी दी और ईद मुबारक विश किया। अच्छा, अली की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी लेकिन उसको अभी भी लग रहा था कि भाई आज कोई और सरप्राइज उसका वेट कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। और फिर भाई सरप्राइज आ ही गया। डोरबेल बजी, टिंग टिंग। अली भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया जैसा कि हर एक्साइटेड बच्चा करता है। बाहर उसके चाचू खड़े थे और उनके हाथ में एक शाइनी सा गिफ्ट बॉक्स था जिस पर रेड कलर की रिबन लगी हुई थी। ओ भाई, उसको देखकर तो अली की आंखों में चमक दौड़ उठी। अली का दिल एक्साइटमेंट से धक धक धक धक करने लगा। ये मेरे लिए है चाचू, उसने पूछा। चाचू मुस्कुराकर बोले, नहीं, एक बच्चा है जो कि बड़ा प्यारा सा है और थोड़ा सा शरारती भी है। मुझे नहीं पता कि वो अभी घर में होगा कि नहीं होगा, ये उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। चाचू उसको छेड़ रहे थे तो फिर वो खीखी खीखी करके हंसना शुरू हो गया क्योंकि उसको तो पता था उसके जितना छोटा बच्चा और कोई घर में है ही नहीं। तो फिर चाचू ने उसको मुस्कुराकर प्यार करके बोला, बिल्कुल मेरे लिटिल चैंपियन, ये आप ही के लिए तो है, पूछने की क्या जरूरत है। तो भाई अली ने फौरन गिफ्ट रैप खोलना शुरू कर दिया एक्साइटमेंट में, खड़ खड़ खड़ खड़, पेपर इधर उधर, रिबन इधर उधर, और भाई बॉक्स की बारी आई खुलने की। एंड गेस व्हाट, अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनी रेड टॉय कार निकली। ओए होए, क्या तो मजे की रिमोट कंट्रोल कार थी। उसकी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, डोर ओपन हो रहे थे और वो व्रूम व्रूम ऐसे ना साउंड्स निकाल रही थी जैसे कि रियल कार हो। वाओ, उसको देखकर तो अली की खुशी की इंतहाई ना थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अली की ड्रीम कार मिल गई हो। अली को पूरा दिन अली उस टॉय के कार के साथ बिजी रहा, खेलता रहा। कभी वो सोफा के पास रेस लगाता उस कार से, कभी वो कुशन्स के बीच में से उसको गुजारता, कभी वो उसका कहां से ट्रैक बनाता, कभी इमेजिनरी रेसिंग कंपटीशन कर रहा होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बिगेस्ट रेस ऑफ द ईयर, अली द स्पीड मास्टर विनिंग द रेस। ऐसे करके वो अपनी गेम खेलने लगा। अली को वो टॉय बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो किसी और को उस टॉय के पास भी नहीं जाने देता था। जब उसकी छोटी सी कजन ने पूछा ना कि अली भाई मैं इसको देख सकती हूँ, मैं थोड़ा सा खेल सकती हूँ इसके साथ, तो अली का मूड खराब हो गया। अली ने फौरन अपनी कार अपने पीछे छुपा ली और बोला, नो नो नो नो नो नो नो नो, ये मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अली का बेस्ट फ्रेंड अहमद भी उसके घर आया। ईद थी, सबने मिलना था एक दूसरे से। अहमद ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में चॉकलेट्स के छोटे छोटे पैकेट्स थे। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ उसकी नजर रेड टॉय कार पर पड़ी। अब जाहिर ही बात है, लड़कों को तो कार्स अच्छी लगती हैं और रेड कलर तो वैसे ही इतना प्यारा होता है और उसकी कार तो वैसे ही इतनी शाइनी थी। वाओ अली, अहमद एक्साइटमेंट में बोला, ये कार तो बहुत अमेजिंग है, कैन आई प्ले विद इट टू प्लीज। अली ने फौरन कार अपनी तरफ खींच ली और बोला, नहीं अहमद देखो ये मेरी गाड़ी, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, अच्छा मेरे चाचू मेरे लिए लेकर आए थे। अहमद की स्माइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। ओह ओके, उसने सॉफ्टली कहा। फिर वो रूम के कॉर्नर में जाकर क्वाइटली बैठ गया। अली फिर से अपनी कार के साथ रेस लगाने लगा, व्रूम व्रूम। लेकिन अब पता नहीं क्यों अली को ना पहले जैसा मजा नहीं आ रहा था। रूम में एकदम बच्चे भी थे, दो तीन बच्चे थे और रूम में एकदम से साइलेंस ही हो गई। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, अहमद की तरफ, तो अहमद ना एकदम कॉर्नर में चुप सा बैठा हुआ था। ना वो कुछ हंस रहा था, ना मुस्कुरा रहा था, ना ही वो रेस कमेंट्री कर रहा था। अली ने साइड से अहमद को देखा, अहमद फ्लोर की तरफ देख रहा था और उसका फेस ना कुछ उदास उदास सा लग रहा था। अली ने फिर अपनी कार चलाना शुरू कर दी, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास मेरी फेवरेट टॉय है, फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है भाई? उसको दादी की बात याद आई जो दादी ने सुबह कही थी। दादी ने कहा था ना कि भाई ईद की असली खुशी शेयरिंग में होती है। अली ने आहिस्ता से अपनी कार रोक दी, खेलते खेलते रुक गया। वो अहमद के पास गया और सॉफ्टली बोला, अहमद। अहमद ने ऊपर देखा। अली ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, आई एम सॉरी अहमद, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों टर्न्स लेकर खेल लेते हैं अपनी हमारी कार से, ठीक है? अहमद की आंखें फौरन चमकने लगी। रियली? अली ने एकदम से हंसकर बोला, हाँ रियली, और हम हमारी रेसिंग टीम का ऑफिशियल ड्राइवर भी चूज करेंगे भाई। बस फिर क्या था भाई, दोनों फ्रेंड्स मिलकर पूरे रूम में व्रूम व्रूम ही करते रहे, पूरे रूम को स्टेडियम बना दिया उन्होंने, कार रेसिंग स्टेडियम। कुशन्स टनल्स बन गए, बुक्स जो है ना वो ब्रिजेस बन गई, और डाइनिंग चेयर्स पिट स्टॉप स्टेशंस बन गए। अहमद फनी कमेंटेटर बन गया। ओ नो लेडीज एंड जेंटलमैन, अली की कार कुशन माउंटेन से टकरा गई और दोनों जोर जोर से इतना हंसे उस कमेंट्री पर। कभी अहमद कार चलाता, कभी अली, कभी वो प्रिटेंड करते कि वो डेजर्ट क्रॉस कर रहे, कभी वो मून मिशन पे चले जाते। मम्मा जब रूम में आई तो उन्हें देखकर वो भी हंसना शुरू हो गई और उनका दिल भी खुश हुआ। मम्मा मुस्कुराकर बोली, लगता है ईद का असली फन शुरू हो गया है भाई अली, है कि नहीं अहमद और अली? अली ने स्माइल करते हुए कहा, मम्मा अकेले खेलना इतना फन नहीं था, अहमद के साथ ज्यादा मजा आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम ये सीखते हैं कि जब हम सिर्फ अपने लिए चीजें करते हैं ना, तो खुशी छोटी रहती है। खुशी मिलती जरूर है, लेकिन वो छोटी होती है। लेकिन जब हम शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो हैप्पीनेस ग्रो करती है। ईद भी हमें यही सिखाती है, यानी कि काइंडनेस, केयरिंग एंड शेयरिंग, और थोड़ा सा सेक्रीफाइस। अगर आपके पास चॉकलेट्स हैं तो उन्हें शेयर करें, अगर आपके पास टॉयज हैं तो उन्हें शेयर करें, अगर कोई फ्रेंड लोनली फील कर रहा है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बिलीव मी लिटिल सुपरस्टार्स, छोटी सी शेयरिंग भी किसी का पूरा पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकती है। और याद रखिए, हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट बिकम्स बिगर व्हेन यू शेयर इट। तो साथियों, मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कभी आपने अपनी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो किसी के साथ शेयर की है अली की तरह? क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त, घर वाले, बहन भाइयों के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लेकर आए हैं आप कभी शेयरिंग से, केयरिंग से, सेक्रीफाइस से? तो भाई, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, अपने मैसेजेस भेजें और मुझे बताएं कि आपकी क्या स्टोरी है। आप सुन रहे हैं सफा के साथ किड्स कार्निवल ऑन FM 107। तो चलिए साथियों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज का मेहमान। साथियों, इस सेगमेंट में हम लोग करेंगे ये कि हम अपने एक छोटे जनाब को, यानी कि अपने एक छोटे आरजे को हमने इनवाइट किया है, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे ईद उल अधा के बारे में, और जानेंगे कि भाई इस छोटी सी दुनिया में ईद उल अधा का क्या बड़ा सा मतलब है। तो भाई चलते हैं अपने मेहमान की जानिब, यानी कि जूनियर आरजे की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना ताकि सबको पता चले हमारे साथ कौन है।
1: मेरा नाम है मायरा जैनब ज़ैदान, मैं 8 इयर्स की हूँ। मुझे कतर में रहना अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम जब भी हम लोग कभी पापा को छुट्टी मिलता है तो मुझे घुमाते तो मुझे बहुत मजा आता है।
0: ओहो, बहुत मजा आता है। अच्छा, ईद पे बताएं कि ईद के दिनों में वैसे तो आप घूमती फिरती रहती हैं, ठीक है, माशाल्लाह से, तो ये ईद के दिनों का क्या सिस्टम है? ईद के दिनों पे किसी स्पेशल जगह पे जाती हैं?
1: जी।
0: आपको सबसे ज्यादा कहाँ घूमना अच्छा लगता है ईद पर?
1: कभी हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग मस्जिद जाते हैं ईद के नमाज के लिए, तो वहाँ पे लास्ट टाइम जब ईद थी इतनी रश थी।
0: हाँ, रश में गई थी आप?
1: हाँ, रश में हम लोग ने जैसे तैसे करके जगह मिली फिर हमने फिर हम लोग थोड़ा जगह कर मिली, फिर हम मुझे बहुत सारे वो कैंडीज मिली और ईदी भी मिली।
0: ईदी भी मिली और कैंडीज भी मिली?
1: हाँ।
0: सच सच बताएं हमारा, कैंडीज के लिए गई थी कि नमाज पढ़ने गई थी?
1: नमाज भी पढ़ा।
0: सब कुछ मिल गया, ऑल इन वन पैक। माशाल्लाह से नमाज भी मिल गई, तो कैंडीज भी मिल गई, तो ढेर सारा लव भी मिल गया और ढेर सारी दुआएं भी मांग कर आ गई। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अमायरा, हम लोग जो है ना आज बात कर रहे हैं ईद उल अजहा के बारे में, जैसे हम प्यार से ना वो बच्चे कहते हैं ना बकरा ईद, है ना। तो एक बात बताएं, आप लोग जो है वो बकरा ईद यहाँ पर जो है वो कोई शीप कोई गोट वगैरह खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं?
1: हाँ।
0: खरीदते हैं। तो आपको उससे बहुत सारा प्यार हो जाता है। और इसके अच्छा ये जो एनिमल का सेक्रीफाइस है इसके पीछे की स्टोरी पता है आपको क्या थी?
1: जी।
0: तो मुझे थोड़ी सी बताएं ना, मेरे साथ भी शेयर करें ना, अगर आपको थोड़ा सा कुछ मुझे हाईलाइट दे दें कि इसके अंदर क्या क्या था तो चलेगा। हाँ जी।
1: As we know, Eid al-Adha is a festival of sacrifice. जब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हिज सन को सैक्रिफाइस करना है, उसको सैक्रिफाइस करना था,
0: तो फिर क्या हुआ?
1: तो वो रेडी हो गए।
0: सही, ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना। ठीक है, तो फिर
1: अल्लाह को ओबे करते थे।
0: ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला की बात को ओबे किया। ओके,
1: फिर क्या हुआ कि वो कुर्बानी देने जा रहे थे और शीप अल्लाह ने भेज दिया।
0: यस, वेरी गुड, आई लाइक द कॉन्सेप्ट। कम से कम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है कि अल्लाह ताला की बात वो मानने जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने एज अ रिवॉर्ड उनके बेटे की बजाय शीप भेज दिया। तो इसीलिए हम ईद उल अजहा पर शीप की कुर्बानी करते हैं, या हम लोग गोट जो होता है एनिमल सेक्रीफाइस जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, ये जो ईद उल अजहा होती है इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है, क्या चीज करती हैं आप? बारबेक्यू या पार्टी या ईदी, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इसमें?
1: हम लोग ना मम्मा में शीर कौरमा बनाते
0: हैं। शीर कौरमा आता है बनाना? रेसिपी आती है आपको?
1: हाँ, मम्मा शीर कौरमा बनाती है। एक दिन मैं बार बार मम्मा को कहती तो मम्मा कुछ खा दो, मम्मा कुछ खा दो। फिर मम्मा ने वो शीर कौरमे के लिए वो क्या था, वो पिस्ताशियो और आलमंड दिया छीलने के लिए पानी में डुबा के।
0: ओके।
1: मैं 2-3 घंटे तक छीलती गई छीलती गई छीलती गई।
0: मेरी नानी ना बचपन में मुझे मटर देती थी छीलने के लिए, मैं पता क्या करती थी, आधा मटर तो मैं वैसे ही खा जाती थी। या कुछ गर्ल्स होती हैं जो कहती हैं नहीं हमें बहुत फैंसी वाले ना वो गरारे शरारे पहनने, आपको क्या पसंद है?
1: हम कभी मैं वो ब्लैक गरारा पहनती हूँ।
0: भाई
1: वो क्योंकि वो नानी के घर से उन्होंने भेजा था। फिर हम लोग यही से ही कुछ वो पाकिस्तानी गरारे लिए थे,
0: फिर वो भी पहने थे
1: जी, एक पीच कलर का।
0: अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं कि ईद जब आती है अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आपकी पसंद की फेवरेट स्वीट डिश ईद पर कौन सी है?
1: हाँ हाँ, एक पैकेट में आज भी वो पापा कुछ टाइम पहले लाए थे, एक पैकेट में एक पॉप्सिकल जैसा होता है ना उसको पैकेट में डाल के वो ब्लू स्लश फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: पैकेट डाल के ब्लू स्लश फ्लेवर, स्लश स्लश, हाँ स्लश जो है ना, तो भाई हमें वो वाला पसंद है। अच्छा ये तो बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ईद पे आपको क्या पसंद है खाने में, बिरयानी कोरमा क्या कढ़ाई क्या चीज?
1: इस बार जब ईद हुई थी तो मम्मा ने बनाया था शीर कोरमा,
0: सही,
1: बिरयानी,
0: ओके,
1: मतलब मटन बिरयानी
0: और
1: कुछ
0: और,
1: कुछ बनाया था
0: कुछ कुछ,
1: और पापड़ भी,
0: पापड़ बनाए थे,
1: साबूदाना पापड़ और प्लेन पापड़।
0: वाह भाई, साबूदाना पापड़ भी बनाए थे।
1: साबूदाना
0: अम्मा बड़ी टैलेंटेड है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा हाँ। आपने क्या क्या बनाया था ये तो बताएं।
1: कुछ दिन पहले मैं मम्मा मुझे किचन में बुलाई,
0: हाँ।
1: फिर मम्मा ने मुझे प्लेटफॉर्म में बैठा कर कुछ सामान वामान हटा कर
0: सही?
1: मुझे पीछे कर
0: हाँ जी
1: आटा का डो बना हुआ देकर,
0: हाँ।
1: और आटा दिया, फिर मैं उससे पहले ही पूछी थी मम्मा कि मैं उसको बॉल्स उसकी बॉल्स बना दूं, उन्होंने कहा हाँ बना दो। फिर मैं बॉल्स बनाई, फिर बाद में मैं आटे में डुबाई, फिर मम्मा ने
0: रोटी बना ली।
1: नहीं मम्मा ने बनाया। मैंने खुद से थोड़ा सा बेला, फिर मम्मा ने थोड़ा सेट किया, फिर बाद में लास्ट वाली रोटी में जब मम्मा ने पैन हटाया सीधा पैन मैंने डाल दिया।
0: अरे भाई फिर तो ये तो प्रॉपर रोटी बना ली आपने खुद ही।
1: हाँ।
0: अरे माशाल्लाह, कितने साल की है फिर से बताना?
1: 8
0: ईयर्स ओल्ड है। हाय हाय, मैंने रोटी कब बनाई थी, मुझे याद ही नहीं पड़ा जब मैं सिक्स या सेवन्थ ग्रेड में थी। मैं तो बहुत बड़ी थी, आपने तो माशाल्लाह इतने छोटे होने में रोटी बना ली। मैं मुझे कब खिला रही हैं रोटी बनाकर?
1: पहले घर पे आई है मेरे।
0: अच्छा ये भी एक मसला है। अच्छा भाई चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे आएंगे। चले भाई आज का एपिसोड तो हमारा बाइंड अप होने लगा है, ठीक है। फिर अगले एपिसोड में भी इंशाल्लाह साथियों हमारा ईद के तीसरे दिन एक और एपिसोड रहेगा जो है ना हमारा किड्स कार्निवल का, तो उसके अंदर भी अमायरा मेरे साथ ही होंगी और अमायरा के साथ मजे मजे की बातें हमारी जारी रहेंगी हमारे सेकंड एपिसोड में भी। तो अभी के लिए अमायरा हम सबको अल्लाह हाफिज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, बातें बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, टू बी कंटिन्यूड रखेंगे, क्या कहती है? चले भाई साथियों अमायरा जाने से पहले कोई अच्छी सी बात बोलना चाहेंगी आप?
1: जी
0: जरा सोचे।
1: लास्ट मैं सोच रही हूँ कि एक रिडल क्विज हो जाए।
0: हाँ अमायरा आज आपको एक रिडल क्विज के साथ छोड़े जा रही हैं, जिसके लिए आप हमें मैसेज करके जवाब दे सकते हैं 666-22-107 पर। नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 666-22-107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अमायरा एक रिडल पर छोड़कर जा रही हैं आपको, आपने अमायरा को मैसेज में जवाब देना है इसका, ठीक है। अमायरा रिडल पूछ लें भाई।
1: पीपल बाय मी टू ईट ईट मी बट नेवर ईट मी।
0: हैं पीपल बाय मी टू ईट मी बट दे नेवर ईट मी। अब ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल हो गया भाई साथियों। एक काम करें आप लोग, आज इसके बारे में सोचें कि ये क्या है इस रिडल में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आएगा ईद के तीसरे दिन अमायरा इसका जवाब हमें देंगी, है ना अमायरा?
1: एक हिंट दे सकती हूं।
0: अच्छा हिंट के साथ छोड़कर जा रही है, चलें हिंट के साथ छोड़कर जाएं, चलें ठीक है।
1: पहला वर्ड तो पहला स्टार्टिंग में तो एक लेटर ए है, पर वर्ड के लिए बी है।
0: पहला अल्फाबेट ए है।
1: हाँ, जैसे एन ए वैसे। और दूसरा लेटर जो
0: अल्फाबेट है
1: का, हाँ, वर्ड का जो अल्फाबेट है वो पी है।
0: पी है, ए और पी है। ओके तो भाई ये याद रख लें कि पहला और दूसरा, पहला अल्फाबेट है ए, दूसरा अल्फाबेट है पी। आप सोचें और ध्यान से सोचें कि क्या चीज हो सकती है, और अमायरा और मुझे दीजिए इजाजत इस शो से। और आज हमने ढेर सारी बातें की सैक्रिफाइस के बारे में, और साथियों ये याद रखें कि ईद सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह से बारबेक्यू क्यों करने का नाम नहीं होता, ईद होता है नाम सैक्रिफाइस का। कुछ सैक्रिफाइसेस हम अल्लाह ताला की राह में करते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए करते हैं। सैक्रिफाइसेस बहुत सारी कंडीशंस में होते हैं, है कि नहीं?
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि हर पॉजिटिव सैक्रिफाइस, हमारा क्या कहती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है ना।
1: जी।
0: सैक्रिफाइस तो ये भी होता है कि जब हमारे छोटे बहन भाइयों को कोई चीज चाहिए होती है,
1: और शेयरिंग इज केयरिंग।
0: यस, ये जो शेयरिंग इज केयरिंग वाला मामला होता है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस आता है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन आपके कजिन्स को, आपके सिस्टर ब्रदर्स को वही चीज चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ना ग्रीडीनेस या ये वाला डिजायर होता है कि नो इट्स ओनली माइन, इसको हम सैक्रिफाइस करते हैं और हम उस चीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उससे शेयरिंग से क्या होता है अमायरा, वी फील मोर, हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। तो चले भाई अमायरा और सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ईद ढेर सारी एंजॉय करें, और उसके साथ

चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ। हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM।

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। May Allah accept your prayers, bless your home with love and peace. ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। Stay blessed, stay happy and keep smiling always. Wish you a very joyful and safe Eid ul Adha. और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल स्पेशल जहां होगा नॉन स्टॉप फन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ए ईद
2: ईद मुबारक
3: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
1: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ, ईद मिटा देती है इंसानों में दूरियाँ। ईद है खुदा का एक नायाब तबारक और हम भी कहते हैं आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। यस जनाब, ईद का मुबारक मौका आप सभी को, तहे दिल से ईद मुबारक। तो क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम तक पहुंच जानी चाहिए। FM 107 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। 666-22-107, 666-22-107 इज आवर नंबर। आप बिल्कुल हमें मैसेजेस करें, हमें बताएं कि भाई किससे आपको ज्यादा ईदी मिली है, ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरा। एट द सेम टाइम ये माहौल क्योंकि बन चुका है तो हमने कहा क्यों नहीं इस कमाल के माहौल को और भी खूबसूरत बनाते हैं ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक्स के साथ, क्योंकि आज का जो माहौल है वो काफी खुशनुमा है और वाइब बिल्कुल फेस्टिव है। तो याद रखिए हमारा नंबर 666-22-107। बेशक आप बता सकते हैं कि आपकी ईद की शुरुआत कैसे हुई, किसको कितनी ईदी मिली और क्या माहौल चल रहा है, क्या खास हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. और अगर आपको ईद मैसेजेस वगैरह भी देने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 666-22-107 इज आर नंबर। और अभी चलिए शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन शाम की हमारे इस ब्रांड न्यू शो के साथ जिसका नाम है ईद की धुन। तो इस धुन में खोते हैं। पहला गाना ईद के नाम कौन सा है? हाय हाय, जावेद अली की आवाज, ओफ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इनकी मीठी मीठी सी आवाज, मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि मिट्टी की खुशबू आई है, है कि नहीं? वेल, ही इज द मैन बिहाइंड अर्जिया, कुन फाया कुन, ये शानदार गाने इन्होंने गाए हैं। और इनके साथ है राघव सच्चर, लेकिन आपको इनके बारे में शायद ये नहीं पता होगा कि ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। यस, ये 30 से भी ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं। हाँ जी, सैक्सोफोन, फ्लूट, कीबोर्ड्स, बस आप नाम लीजिए और ये उसे प्ले कर देंगे। हाँ, तो ये है खास बातें हमारे कमाल के आर्टिस्ट की। ईद हो गई इज द ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि आज की शाम को और भी ज्यादा शानदार बनाने वाला है। सो ईद की धुन शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गाने के साथ। और इसके बाद गाना नंबर दो, यस, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा गाना जैसे कहते हैं ना कि मॉडर्न मेलोडी से अब हट के हम थोड़ा सा बिट रेट्रो और ग्रिटी सोल की तरफ जाएंगे। सो 2017 की फिल्म डैडी याद है आपको? यस, जो कि एक मुंबई की कहानियों की एक बायोपिक थी। हाँ, उस फिल्म का हम गाना प्ले करने वाले हैं एंड दैट इज इस फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद ने कंपोज किया था एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द लास्ट फ्यू फिल्म्स जहां पर ये दोनों साथ में दिखाई दिए थे। एंड इस गाने को जब सुनते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे पूरा मुंबई का मोहल्ला ईद में ना एकदम इकट्ठा हो गया है। वो ईद वाली वाइब इतनी शानदार होती है कि पूछे मत। एंड देन द पावरफुल वोकल्स, शबाब सबरी एंड तनवीर हुसैन, उफ, लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स, जिन्होंने पहली चीज साउंड दिया और उसके बाद अपनी आवाज दिया। तो एक कमाल के आर्टिस्ट के साथ ये बेहतरीन सा गाना जहाँ पर परकशंस इस तरह के हैं कि इट कैप्चर्स द डोंगरी एनर्जी। तो भाई ब्रदरहुड को फील कीजिए, दोस्ती और अपनों के साथ खुशियां मनाइए इस दूसरे गाने के साथ। तो यस, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे पहले ईद हो गई एंड देन मुबारक ईद मुबारक। इन दोनों गानों को दिल खोल के एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम फुल करके एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ईद की धुन बड़ी स्पेशल होने वाली है। यहाँ पर आपको खासम खास गाने हर मोमेंट के लिए सुनाए जाने वाले हैं। कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ये फरमीता और ईद के चारों दिन हम आपके लिए लेकर आए स्पेशल शो ईद की धुन. जाहिर सी बात है कि जब फेस्टिवल्स आते हैं, जब फेस्टिव माहौल होता है, तो बिना म्यूजिक के ऐसा लगता है कि हर एक महफिल थोड़ी सी सुनी सुनी सी है. है कि उस वो कहते ना कि कमाल की डिश बनी हो और उसमें नमक अगर ना गिरे तो फिर आपको लगता है कि स्वाद ही नहीं आया. एग्जैक्टली वही है हमारी लाइफ में म्यूजिक का रिश्ता. वैसे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ईद की धुन. आज ईद का पहला दिन कैसा गुजर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, किसको कितनी ईदी मिली, भाई अगर कोई मैसेजेस हैं ईद वगैरह के शेयर करो 6622107 पर 6622107. और अभी के लिए मैं कहूंगी कि हमारे जो कतर का है ना, वो मूड पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है. अब वक्त है अपने परफॉर्मेंस शूज निकालने का. क्यों बताऊंगी कुछ देर में. तो फिर चाहे आप लुसेल के टनल से ड्राइव कर रहे हो या फिर सुक वाकिफ में बिल्कुल चिल कर रहे हो, I'll simply say, अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिट परेड. यस, एक ऐसे ट्रैक से, वो गाने जो रील्स में धूम मचा रहे हैं. तो अब आपके सामने पेश होने वाला है वो गाना जहां पर वरुण धवन उफ अपना दिल निकाल के ला रहे हैं. इस गाने को कंपोज किया है द रॉक स्टार ऑफ द साउथ देवी श्री प्रसाद ने. हाँ जी, ये वो जीनियस हैं जिन्होंने पुष्पा यानी कि ग्लोबल हिट फिल्म पुष्पा के गाने बनाए हैं. नाउ ये जो वाओ गाना है बेसिकली इट्स अ तेलुगु चार्ट बस्टर जिसको री इमेजिन वर्जन बनाया है डीएसपी यानी कि देवी श्री प्रसाद ने. एंड जिन्हें कहा जाता है कि जब भी कोई परफॉर्मेंस वाले गाने होते हैं उसके ये बादशाह हैं. ये कमाल की धुनें बनाते हैं जहां पर अपने आप ही आप फुट टैप करना शुरू कर दोगे. वाली एक खास बात है इनकी. और जब भी ये गानों का म्यूजिक देते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने भी वोकल्स डाल दें एक एक्स्ट्रा पंच देने के लिए. तो ये ऐसा आप सुनेंगे वाव है जवानी तो इश्क होना है. इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग. और उसके बाद कौन आ रहा है आपका दिल जीतने. उसके बाद हम बात करते हैं उस आर्टिस्ट की जो यूथ की हार्ट बीट बन चुका है. दैट इज गुरु रंधावा. हाँ, he isn't just a singer. ये सॉन्ग राइटर है, कंपोजर है और ये वो शख्स है जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को बिल बोर्ड चार्ट तक पहुंचा दिया है. इनका न्यू ट्रैक रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो जिसे तनिष्क बागची ने प्रोड्यूस किया है, ये हम आपको सुनाने वाले हैं ईद के इस खास खास मौके पर. और तनिष्क बागची की बात करें तो भाई इन्हें रीमेक किंग कहा जाता है बॉलीवुड का. तो यहाँ पर प्लेफुल वाइब है और परफेक्ट ईद पार्टी मिक्स है. तो गुरु एक्चुअली काफी कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं जब वो म्यूजिक बनाते हैं जिसको हरकत्स कहते हैं और स्टूडियो में जाकर एकदम वाइब क्रिएट कर देते हैं. तो भाई जब ईद का मौका होना तो बिल्कुल शांत नहीं होना चाहिए, फुल ऑन जोश में, चीयरिंग अंदाज में, सेलिब्रेशन ऑन रहना चाहिए. तब हम सुनेंगे सॉन्ग वाव और उसके बाद गुरु रंधावा का ये अमेजिंग सॉन्ग रूप दी रानी. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर. दिल से देसी.

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर ईद की धुन सुन रहे हैं आप. और अभी हमें कुछ मैसेजेस आए हुए हैं. अयान क्या कह रहे हैं, हैप्पी ईद विश कर रहे हैं FM 107 की एंटायर फैमिली को. सो अयान थैंक यू सो मच. फातिमा क्या कह रही है, फातिमा कह रही है कि देखिए अमिता जी ईद में मुझे 100 रियाल ईदी मिली है. फातिमा आप कितनी उम्र की हैं, थोड़ी अपनी एज भी लिख के बताएं. एंड एट द सेम टाइम कहती हैं कि मैं इस 100 रियाल को खर्च नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं सेव करने वाली हूँ ताकि आगे मेरे किसी स्पेशल चीज के लिए काम आ सके. फातिमा वेरी गुड थॉट. अगर हमें ईदी मिली होती तो हम शायद आप जैसा सोच भी नहीं पाते, हमने तो खर्चे कर दिए होते. देन हमें आयाद का मैसेज है, ईद मुबारक कह रहे हैं. सो ईद मुबारक आपको भी, आपकी एंटायर फैमिली को FM 107 की तरफ से. जैनब कहती है कि अमिता मैं सुबह से बहुत कुछ मीठा खा चुकी हूँ एंड आई सो लव स्वीट स्पेशली ईद के टाइम पर. वैसे जैनब आपने जिक्र नहीं किया इस बार मटन बिरयानी बनी कि नहीं, और बनी तो कितनी खाई. हाँ पल आप बोलेंगे कि अमिता आप मटन बिरयानी खाते हो क्या. देखो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वेज से अगर मुझे हट के नॉन वेज में जाना है तो मैं एगिटेरियन हूँ. तो आप मेरे लिए एग वाली बिरयानी बना सकते हैं. हाँ वेल रयान का मैसेज है, FM 107 की एंटायर फैमिली को ईद मुबारक. रयान थैंक यू सो मच, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस इस वक्त आए हुए हैं. यहाँ पर हमें एक मैसेज आया है आदिल का जो कहते हैं कि ईद की चांदनी आपकी जिंदगी को रोशन करे, खुशियां आपके दिल को छू जाएं और अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर बरसे. ईद मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे सारे अमेजिंग अमेजिंग लिसनर्स का जिन्होंने हमें मैसेजेस किए हैं 666-22-107 पर. ये नंबर ध्यान रखिए, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप अपनी ए फॉर अमिता तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं. सो यहाँ पर ईद की धुन में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही मजेदार गानों को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये गाने ही हैं, ये म्यूजिक ही है जो हमारे सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाता है. सो अब थोड़ी रीजनल वाइब की बात करते हैं और हम वो गल्फ वाली फीलिंग लेके आते हैं. कतर की रोड्स पे अगर आप हिप हॉप ना बजाएं तो मजा नहीं आता बॉस. तो हम बात करेंगे बहरेनी हिप हॉप लेजेंड का. हाँ जी ये गाना अब मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे ख्याल से आप खुद सुन ही लीजिए. Fibonacci is a pioneer of Arab hip hop. Yes. और इन्होंने खलीजी डायलेक्ट को बिल्कुल वेस्टर्न फ्लो के साथ मर्ज कर दिया है. एंड ये ट्रैक है धुरंधर फिल्म से और काफी वायरल ट्रैक है क्योंकि इसमें अरबिक बीट्स हैं और जब हम वीडियो में देखते हैं तो भी मतलब एक अलग ही वाइब आती है. तो मैं आपसे कहूंगी कि इस गाने को अगर आपने वॉल्यूम कम करके सुना ना तो मैं कहूंगी नहीं नहीं सेलिब्रेशन का कोई मजा नहीं है. इसलिए इस गाने को अगर सुनना है तो वॉल्यूम बिल्कुल अप कर दीजिए और हाथ में करक या गावा हो तो फिर और भी मजा आ जाता है कि नहीं. सो यस कमिंग अप इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ धुरंधर जो कि बस कुछ ही देर में आएगा और उसके बाद क्या है. और उसके बाद अभी तक हमने सूफी सुन लिया, रैप सुन लिया, वक्त है थोड़ा ग्लोबल आइकॉन्स का. यस लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु मेड हिस्ट्री. यस और इनका नाम है दिलजीत दोसांझ. So, Diljit is not just a singer, ये तो एक movement है. और रांझा, उफ, what a beautiful song, जो कि actually globally hit कर रहा है. Well, ये जो गाना है इसका feel काफी intense है और दिलजीत ने कनेडियन पंजाबी साउंड बिल्कुल बूमिंग बेस के साथ उफ क्या कमाल कर दिया. मतलब ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा सॉन्ग बनाया है कि बस पूछे मत. और दिलजीत ने इस गाने के लिए स्पेशल वोकल ट्रेनिंग्स भी ली थी. यू नो दैट कि मुझे एकदम लोअर नोट्स अगर लेने हैं तो कैसे किया जाए. सो यस दिलजीत इज अ क्रिएटिव पर्सन और जब इनके गाने आते हैं तो हमेशा हम इनके गानों की म्यूजिक, गानों की लिरिक्स एंड देन वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड for the videos. So, हाँ जनाब अभी आपकी राहों में दो बड़े शानदार गाने आ रहे हैं. एक जो हमारे अरब रीजन की वाइब को और भी ज्यादा उठा के बरकरार कर देगा एंड यू विल लव इट. एंड दूसरा ग्लोबल आइकॉन दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग. तो यस

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: अपने पुराने गिले शिकवे को भूल जाए ईद मुबारक कहकर अपनों से मिल जाए अस्सलाम वालेकुम एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और ईद के खासम खास मौके पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम स्पेशल शो ईद की धुन तो यहाँ पर आपके ईद सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए हम हिटेड सॉन्ग्स लेकर आए हैं डेफिनेटली आप म्यूजिक लवर्स हैं सो आप इन गानों को एंजॉय करें जहां भी जा रहे हैं अपनों के साथ अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ या यूं ही ड्राइव पर निकले हैं एंजॉय द मोमेंट्स और हाँ अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं ईद विश करना चाहते हैं अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं देन 666-22-107 इज आवर नंबर 666-22-107 आप हम तक अपनी बातें कह सकते हैं अब देखते हैं हमें कौन कौन ईद विश कर रहा है सो वी हैव जुनैद जो कि बड़ा खूबसूरत नाम है इट्स अ सूफी सेंट आई गेस बहुत ही ब्यूटीफुल ये नाम है जब सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो ही इज विशिंग कि एफएम 107 की एंटायर फैमिली को ईद मुबारक जुनैद थैंक यू सो मच थैंक यू रियली और हम आपको कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक खूब इंजॉय करें खूब खाए पिए और ईद ही में से थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए रख लेना हाँ फिर यहाँ पर हफ्सा का मैसेज है कहती हैं कि मैं और मेरे भाई बहन आपको सुन रहे हैं तो हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आपको ईद मुबारक ओके हफ्सा एंड ग्रुप थैंक यू सो मच उमर का मैसेज है ही इज आल्सो सेइंग कि भाई ईद मुबारक आपको भी खैर मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से हमें मैसेजेस करने के लिए वेल ऑल यू पीपल आउट देयर अगर आप हमें सुन रहे हैं देन 666-22-107 इज आवर नंबर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अभी हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि कौन कौन से वो ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं जो हमारी राहों में आने वाले हैं वैसे अभी एकदम धमाकेदार गानों को हमने एंजॉय किया अब शाम का माहौल है थोड़ा सा रोमांस भी चल जाए तो क्या कहना है कि नहीं तो जब तलक इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक मतलब मैं कहूंगी इट्स अ मेलोडी एंड जो कि बिल्कुल सोलफुल म्यूजिक है और इसे सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा Well, this song is composed and sung by the powerhouse duo Sachet and Parampara. जी हाँ, इन्हें बेख्याली जो कबीर सिंह फिल्म थी उससे फेम मिला था एंड वहां पर तो इनका सॉफ्ट साइड हमको देखने मिला बट यहाँ पर कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है बट रियल मैजिक पता है क्या रियल मैजिक इज इन द लिरिक्स जिसको लिखा था इशाद कामिल ने इशाद जी की बात करें ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने रॉक स्टार और तमाशा जैसी फिल्मों में लिरिक्स लिखे थे हाँ जी उनकी शायरी में जो दर्द है ना जो सुकून है इट्स परफेक्ट फॉर द ओकेजन हाँ तो जब तलक इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जिसे हम आगे सुनने वाले हैं इसके बाद क्या होगा ईद सेलिब्रेशन हो और हमारे भाई जान यानी कि सलमान खान की बात ना हो इम्पॉसिबल सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे शो पर दिस इज द स्टॉर्म जो कि आना बनता है यस सिकंदर फिल्म का ये गाना जोहरा जबीन उफ व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक मतलब एक तो म्यूजिक दिया है हिट मशीन प्रीतम ने एंड इट्स संग बाय विशाल मिश्रा जिन्होंने रिसेंटली पहले भी मैं फ्रॉम द मूवी एनिमल के लिए अवार्ड्स जीते वेल ये गाना ऑर्केस्ट्रल है एंड मतलब कहा जाए भाईजान का स्टाइल है एंड डिजाइन सो ब्यूटिफुली मतलब बिग स्क्रीन बिग सेलिब्रेशन जब तक ये गाना फुल वॉल्यूम पे ना बजाया जाए तब तक लगता है कि सब कुछ मिस हो रहा है वैसे मुझे याद है कि पिछली ईद में और स्पेशली जब ये मूवी आई थी

सिकंदर. इसमें सलमान खान ने बहुत अमेजिंग अटायर पहने हैं एंड द वे ही वोर दैट कुर्ता, उसको लेकर हमारे इंडिया साइड में ऐसे तहलका मचा हुआ था कि मतलब हर किसी को ना ईद में इसी तरह के कपड़े पहनने. बट यस, ये ही वो टाइम होता है जब टेलर्स की बिल्कुल ऐश हो जाती है, सारे बुटीक्स फैशन हाउसेस एकदम अपने प्राइम पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम की ईद की डिमांड होती है कि भाई सेलिब्रेशन है तो फुल फॉर्म पे होना चाहिए, चाहे वो ब्यूटीफुल कपड़े ही क्यों ना हो, है कि नहीं. इसी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, और अगर आपके कुछ मैसेजेस वगैरह हैं सो डेफिनेटली आप हमसे शेयर कर सकते हैं. ये ईद की धुन खासम खास शो आपके लिए हम लेकर आए. आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया. बस एक छोटे से ब्रेक के बाद वापसी हो रही है, सो फिलहाल इंजॉय दीज सॉन्ग्स.

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. ईद की धुन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. तो क्या हाल चाल है? हाँ, आई एम श्योर कि जो हमारा स्पेशल शो ईद की धुन हम आपके लिए लेकर आए, यू रियली एंजॉयिंग. एंड ईद की धुन में ये जो धुनें आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसी लग रही हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107, या फिर आप हमें विश करने के लिए भी मैसेजेस कर सकते हैं. वेल, अभी तक हमने बहुत ही कमाल कमाल के गाने इंजॉय किए. थोड़ी देर पहले हमने सिकंदर फिल्म से जोहरा जबीन इंजॉय किया, और अब बारी है एक ऐसे गाने की जहां पर वो कहते हैं ना कि मोरनी बागामा बोले लम्हे फिल्म को जब एक नया चेहरा दिया जाएगा तो वो कैसा सुनने में आएगा. तो यस यस जनाब, ये शानदार गाना बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड बादशाह का है. यस, मोरनी इज अ मॉडर्न सॉन्ग जिसका ओरिजिनल सॉन्ग था फ्रॉम द मूवी लम्हे. एंड बादशाह ने एक श्योर किया है कि ये जो गाना शर्वी यादव के साथ उन्होंने गाया है उसमें वो ओरिजिनल राजस्थान फोक का जो फील है वो कम ना हो. और जब भी हम ईद की बात करें या किसी भी फेस्टिविटी की बात करें, ये गाना ड्राइव करते हुए जब आप सुनते हैं ना, तब इसकी बात ही कुछ और हो जाती है बॉस. सो आई होप कि आपने फुल ऑन आज इंजॉय किया है हमारी ईद की धुन को. अभी हम कुछ मैसेजेस की तरफ रुख कर लेते हैं. हमें किन किन का मैसेज आया है? तो हमें मैसेज आया है असलम का, जो कि कहते हैं कि कि मैं आपका फूडी लिसनर हूँ. क्या बात है, क्या बात है. कहते ईद मुबारक है आपकी एंटायर टीम को. और हमारे घर में मटन बिरयानी बनी है और शीर खोरमा बना है और उसकी खुशबू फैली हुई है. सो आई एम लिटरली एंजॉयिंग ये पूरी फेस्टिविटी आपका शो ईद की धुन सुनते हुए. हाउ स्वीट इज दैट असलम, थैंक यू सो मच. आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें मैसेज किया. अच्छा, यहाँ पर आतिफ का कहना है, ईद मुबारक अमिता, आपको भी खैर मुबारक, ईद मुबारक. और मैं कॉनिश की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई एम लिसनिंग योर शो अपने दोस्तों के साथ. आई एम एंजॉयिंग इट, ऑल द सॉन्ग्स आर रियली नाइस. सो थैंक यू सो मच आतिफ. अब देखिए, ट्रैफिक में फंस मत जाना, बस कहीं भी जा रहे हो तो टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि आज जो हमारा कतर है वो फुल ऑन ईद के सेलिब्रेशन से वो कहते हैं ना सजा हुआ है. उसके बाद अगला मैसेज आया है हमें मोहम्मद का. ओ हो, कहते हैं कि अमिता, ईद बड़ी खास है लेकिन आई एम मिसिंग माय फैमिली इन लखनऊ. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी पहुंच नहीं पाया, मैं यहीं पर अपने कामों में थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ. लेकिन हाँ, उनकी आज के दिन बहुत याद आ रही है. एंड जो आपने गाना सबसे पहले बजाया था जावेद अली की आवाज़ में, दैट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने ही घर में बैठ के अपने अपनों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच मोहम्मद फॉर सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. एंड मुझे किसका मैसेज आया है यहाँ पर? ओ हो, क्या बात है, उबेर का मैसेज है. उबेर क्या कह रहे हैं आप? उबेर कह रहे हैं कि अमिता, आई एम ऑल्सो ड्राइविंग एंड इस वक्त मैं पर्ल साइड जा रहा हूँ एंड एवरीवन इज सो ड्रेस्ड वेल. बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग डिजाइनर आउटफिट्स पहने हुए हैं. ईद बड़ी खूबसूरत दिखाई भी दे रही है, दैट इज सो स्वीट. एंड जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसे मोमेंट में आते हैं, जब फेस्टिविटीज होती है, तो वो कहते हैं ना कि हवा पानी हर चीज बदल जाती है. घर में माहौल कमाल का होता है, घर के बाहर कमाल का होता है. बस हम यही दुआ करते हैं कि इसी तरह आपकी खुशियां बस बरकरार रहें और कभी भी आपकी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे. यहाँ पर हमें सुख वाकिफ से किसी का मैसेज आया है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुखबीर. ओहो, पंजाब दा मुंडा. सुखबीर कहते हैं कि अमिता, मैं ट्रेडिशनल डिनर करने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ एंड डेफिनेटली आई एम गोना एंजॉय द एंटायर इवनिंग ईद की. और इस वक्त आपका रेडियो शो सुना तो जस्ट वांट टू से ईद मुबारक. सो आपको भी ईद मुबारक, क्या बात है. ये सारे मैसेजेस के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. और मैं कहूंगी कि 6622107 6622107 इज आवर नंबर. आप हमें बेशक मैसेजेस कर सकते हैं और हमें मैसेज करके जरूर बताएं कि आपकी ईद कैसी मनाई आपने और हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें विश करना चाहते हैं ईद से रिलेटेड, या किसी और को विश करना चाहते हैं तो भी हमें आप जरूर मैसेज करें. और हाँ, ईद की धुन ये स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंड इट विल बी ऑन एंड ऑन लाइक ईद के चारों दिन ये चलने वाला है.
इसी के साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं FM 107 पर. सो डू नॉट मिस इट. हर जगह पर हम मौजूद हैं. आप अपनी स्टोरीज वगैरह जब डालें तो हमें टैग करना ना भूलें. फिलहाल बादशाह का ये धमाल का गाना हम एंजॉय करेंगे. सो वॉल्यूम अप कर लीजिए.

हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन. जब फेस्टिविटीज की बात होती है तो अक्सर कहते हैं कि जितना मीठा मिल सके उतना कम है कि नहीं? वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आपने थोड़ी देर पहले बादशाह की आवाज को एंजॉय किया और बहुत ही कमाल का गाना मोरनी सुना. और अभी जाने का वक्त है जनाब, तो जाते जाते कुछ और हिट गाने आपके नाम किए जा रहे हैं. सो डू नॉट मिस इट, फुल ऑन एंजॉय करें, अपने अपनों का ख्याल रखें. एंड आई शुड से ईद मुबारक टू एवरीबॉडी. देखो पहला दिन है, आई नो कि बहुत एक्साइटमेंट है खाने पीने की चीजों से रिलेटेड, तोहफों से रिलेटेड, ईदी से रिलेटेड. भाई हर चीज का ख्याल रखना और अपने पेट का भी, क्योंकि ये सेलिब्रेशन पूरे 4 दिन तक चलने वाला है. Alright, on this note, मैं कहूंगी कि मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले कुछ कमाल के बोनस ट्रैक्स आपके नाम आ रहे हैं. सो एंजॉय कीजिए, खूब ख्याल रखिए. और जाते जाते मैं कहना चाहूंगी कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: मैगा जी टाइम तो कदी चंगा है, ईद की दिली मुबारकबाद। मैगा जी शाम में आने का मौका मिल गया, 5:02 हो गए। मैं जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइम बाद शाम में हाजिर इस खास शो के लिए ईद के मौके पर। और क्या मुबारक दिन हो सकता है इस, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा मैं किधर, वो होता ना ये चटपटाहट सी होने लगती है स्टूडियो में, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर बैठूँ माइक लेके। मगर फाइनली मैं आ चुका हूँ दोहा वाला कबीर FM 107 पे। एंड अभी शुरुआत करेंगे शो की, बहुत इनामात भी जिताने के लिए, और इनाम जीतने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत मैं कराऊंगा नहीं। हाँ मेरे सवाल थोड़े से लगोगे, बट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, एकदम चिल चिल पो। पर शुरुआत शाम के अधिकार से, उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखो अगर गलती से गुड मॉर्निंग मुँह से निकल जाए तो माजरत, क्योंकि हो सकता है ऐसा अभी हो सकता है ऐसा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि गुड इवनिंग बोलता रहूँ मैं। गुड इवनिंग हाँ ठीक है, अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। 666-22-107 जरा गुड इवनिंग तो खेल लीजिए मेरे साथ, आइए जरा 666-22-107 पर। मिलते हैं शाम के अधिकार के बाद 11:02 के बाद। एंड स्टे ट्यून्ड।
4: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का इहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: पर ट्राई करती हूँ. आज फर्स्ट टाइम थर्ड टाइम लग गया.
1: फर्स्ट टाइम थर्ड टाइम लग गया.
0: लास्ट टाइम 18 दिसंबर से मैं एक फर्स्ट डे से 18 तक मैं 1000-2000 बार कॉल करी लेकिन एक बार भी कॉल नहीं लगा.
1: तो ये मतलब
0: पहली बार कॉल लगा. मैं आज आई थिंक आपको इंस्टा पे मैसेज भी करी थी याद है.
1: अच्छा ओके ओके ओके. आप घंटी बजी थी बाकी. ठीक है नहीं आपको आपने बोल देना चाहिए एक बार ना व्हाट्सएप पे. अगर आप मैसेज भी कर देंगे ना कि कॉल करनी है तो कॉल आ जाएगी आपके पास. कोई टेंशन नहीं. 1000-2000 बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. आसान तरीका बता रहा हूँ आपको है ना.
0: अच्छा.
1: और बताइए कैसे जा रही है आपकी ईद.
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: सब बढ़िया. ठीक है कॉन्टेस्ट बस शुरू कर रहा हूँ मैं. फिर आराम से सुनिए फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा. ये व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास FM 107 का.
0: जी.
1: हाँ तो बस उस पर मैसेज कर दीजिएगा एंड इंशाल्लाह आपको.
0: आई थिंक यही व्हाट्सएप नंबर है.
1: नहीं व्हाट्सएप नंबर ये नहीं है वो दूसरा है.
0: ओके
1: इजी है बता दूं कि ऐसी बता दूं.
0: जी
1: बता दूं आपको. इजी नंबर है व्हाट्सएप का वैसे तो.
0: हाँ बता दीजिए.
1: देखिए 666
0: डबल टू
1: कितना याद रखिए बाकी 107
0: राइट.
1: हाँ
0: ठीक है मेरे पास.
1: अरे बस फिर बढ़िया. फिर मैसेज कर दीजिएगा. ठीक है
0: ठीक है.
1: ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया. ओके जी अल्लाह हाफिज़. तो बात सारी ऐसी है कि कॉल शॉल आ रही हैं लगातार लेकिन अभी तक कॉन्टेस्ट शुरू नहीं हुआ है. मैं शुरू करने वाला हूँ. आज जो है 503 रियाल का एक बहुत ज़बरदस्त वाउचर है एंड ये जिस जगह का वाउचर है इनफैक्ट ये जगह बड़ी खास है. मैंने भाई साहब रिसेंटली डिस्कवर करी है. तो कुमार एंड ट्रेवल रेस्टोरेंट जो ट्रेवलर रेस्टोरेंट ये बेसिकली मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट ऐसा वैसा नहीं है. और 503 रियाल का जो उसका गिफ्ट वाउचर है वो आज दो लोगों को मिलने वाला है. तो उसके तैयार हो जी. एक तो भाई साहब शाम में आके कुछ नया नया सा ही लग रहा है. अलग ही फीलिंग आ रही है. पर ठीक है अपना एरिया है जी कोई टेंशन नहीं है. 666-22107 कुछ देर में कॉन्टेस्ट शुरू होगा. बहुत आसान सा सवाल होगा. बाकी मैं जरा मैसेज पढ़ दूं. नसीम साहब वालेकुम सलाम कह रहे हैं ईद मुबारक हो जी. ये मॉर्निंग में नाम मिला था. इसरा बहन वालेकुम सलाम ईद मुबारक आपको भी. देन शकील अहमद साहब गुड मॉर्निंग. देखा गुड मॉर्निंग निकल गया ना. गुड इवनिंग. यूसुफ भाई वालेकुम असलम. भाई साहब आज तो बहुत कर रहे मज़ा आ गए सवेरे. ये जो स्लॉटर हाउस में जितने लोग गए हैं या सुबह जाएंगे उसमें जो लाइन में लगने का जो सीन है उसका मज़ा ही कुछ और है. पानी की बोतल लेके जाना भाई अगर दूसरे दिन किसी की कुर्बानी हो और वहीं पर करा रहे हैं. वैसे तो आज उन्हें सीख मिल गई होगी. नहीं मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ. बाकी आपको भी दिल की गहराइयों से यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक. एंड एक मैसेज आया. हेलो जी हेलो क्या हाल है. फैसल साहब वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक आपको भी. एंड इनके लाइक में से कबीर भाई फाइनली अब इवनिंग में आ ही गए पर मैं मॉर्निंग में आपको मिस करूंगा. बस एक दिन और है जी मॉर्निंग का शो. एक दिन और है 31 तारीख को सवेरे उठ के आना है उस दिन. बाकी तो बढ़िया है. एक और मैसेज आया है. एक सेकंड पढ़ लूँ मैं ज़रा. नाजिन खान जी हेलो. हाँ आपका अब आया मैसेज. एक मैसेज और है. अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ सहीफा. अच्छा बड़ा यूनिक नेम है आपका. कॉल करनी है फॉर द कॉन्टेस्ट. अभी कॉन्टेस्ट पर पहले मैं पहले सेटल डाउन हो जाऊँ ज़रा. कुर्सी लगा लूँ ठीक से. एक फलक भाई वालेकुम अस्सलाम भाई ईद मुबारक. बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है बात हो रही है. मेरा अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक. हुआ पता क्या मेरे साथ हुआ ये है कि जो शाम वाले थे सुबह नहीं आ रहे थे और सुबह वाले थे वो शाम में नहीं आ रहे थे. तो अभी वो ऐसा हो गया कि वापस शाम वालों से मुलाकात हो रही है. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को सब सुनने वालों को. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आपने अपना नाम अच्छा निदा नाम है आपका. ओके फिर ठीक है. एक मैसेज है. अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है. पार्टी सब बढ़िया. वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक और आपके सभी सुनने वालों को ईद मुबारक. मोहम्मद कलीम साहब का मैसेज है. परवेज़ खान भाई का मैसेज है. शहजादा सलीम साहब का मैसेज है. धड़ल्ले से मैसेज आ रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सभी का. तो एक गाने के बाद सीधा मैं कॉन्टेस्ट शुरू कर रहा हूँ. देखो सवाल बड़ा सिंपल होगा. रूल बता दूँ पहले ही. उसके बाद जो है आप उस्सा शुस्सा ना करें. आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक. तो बड़ा सिंपल सा मामला है. देखो मैं एक सवाल पूछूंगा ठीक है. उसका जवाब आप व्हाट्सएप पे ही करते ना. कोई लोड ही नहीं जी कॉल करने की. कोई लोड नहीं. तो आपने व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई करना होगा. आपका नाम लिखना होगा. स्पेस देके सही जवाब दे देना. बाकी उनमें से एक रैंडम लकी विनर हम चूज़ कर लेंगे. हर घंटे एक विनर जीतेगा और जीतने वाले को मिलेगा कुमार द ट्रेवलर रेस्टोरेंट का 503 रियाल का गिफ्ट वाउचर. इज दैट क्लियर एवरीबडी. एकदम क्लियर है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होना चाहिए. एक दो और मैसेज है. ईद मुबारक देन वेलकम भाई. ईद मुबारक गुड इवनिंग देन अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक. सुभाष भाई कैसे मेरा भाई. काफ़ी एकदम काती कैंट डीपी लगाई है भाई ने सूट शूट में. एक और ईद मुबारक. चलो मैं क्या है ईद मुबारक कॉल मी. ठीक है भाई रुको मैं कॉल करूँ एक सेकेंड. शुक्र है भाई आज फोन चार्ज है वरना मैं तो बता रहा हूँ इधर उधर हो रहा था. मैंने सुना था महवेश बहन को बोलते हुए फोन के बारे में. मैं डर गया सुबह मैं कह रे तो फिर अलग सी फीलिंग आती है सुबह किसी और को सुनने में ना अपनी जगह। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक भाई को। क्या है भाई
2: आपको और आपकी पूरी टीम को भाई मेरी तरफ से ईद मुबारक।
1: भाई हमारी टीम की तरफ से ट्रक भर के आपको ईद मुबारक मेरे भाई, बहुत सारा प्यार।
2: अरे भाई जगह नहीं है, मत दो इतनी।
1: भाई क्यों जगह नहीं है भाई, जगह बनानी पड़ेगी भाई, ऐसे कैसे प्लॉट खाली कराओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी एक विल्ला खाली करवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए।
1: अरे भाई कब्जे के प्लॉट नहीं चाहिए भाई।
2: कबीर भाई
1: क्या चल रहा है।
2: कबीर भाई एक बात नहीं समझ में आती भाई।
1: क्या भाई,
2: एक तरफ भाई तुम धमाल मचा रहे हो और एक तरफ हमारे सूर्यवंशी धमाल मचा रहे।
1: सूर्यवंशी धमाल मचा रहे, क्या कर दिया सूर्यवंशी ने।
2: अरे भाई पूछो मत भाई, सूर्यवंशी भाई जो कर रहे ना, वैभव सूर्यवंशी भाई हमारे।
1: अच्छा ओ अच्छा
2: भाई, बाप रे बाप। मैं बोला आज ये कौन सा बीज खा के आया मालूम नहीं, हम लोग तो बकरा खाए, ये कौन सा बकरा खा गया।
1: और भाई कैसा रहा पूरा दिन, कैसा रहा आज ये बताओ।
2: बहुत बहुत बहुत बढ़िया भाई माशाल्लाह, पूरा दिन तो रूम पे बैठ के निकाले माशाल्लाह, गर्म की वजह से कहीं जाना नहीं हुआ।
1: अच्छा
2: आपका एफएम सुन के निकाले टाइम,
1: बढ़िया
2: जा रहे माशाल्लाह।
1: हम भी भाई कुर्बानी के लिए गए थे, लेकिन सुबह सुबह पूरा पूरा अपना ही स्टेशन सुना है हमने, तो हमने कहा आज जो है पूरा स्टेशन तभी सुनेंगे भाई। एक एक कॉल
2: भी आज बिल्कुल ऑन था भाई, आपका एफएम ऑन था, मैं तो सुन रहा था माशाल्लाह बहुत देर से, कुछ काम ही नहीं था भाई, तो मतलब यही करो।
1: सही है भाई, सही है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। आइए बस कांटेक्ट शुरू करते हैं आसिफ भाई, बहुत सारा प्यार भाई,
2: जरूर भाई,
1: भाई।
2: जरूर भाई,
1: ठीक है भाई, आपको भी मुबारक मेरी जान। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद एक मैसेज आया, थैंक यू भाई फॉर मेकिंग माय नेम टेक माय सन्स नेम मोहम्मद यहया। मोहम्मद यहया अगर मुझे सुन रहे हैं तो बहुत बहुत बहुत सारा प्यार। यहया जी की उम्र क्या होगी, मैंने जी पहले लिखा दिया है। और मुझे आपके नाम का मतलब बताइए, ये सहीफा मैंने कभी नाम इससे पहले सुना नहीं है, मेरी नॉलेज थोड़ी छोटी हो जाती है इस मामले में, सो प्लीज़ लेट मी नो। बड़ा बड़ा यूनिक नाम है ये। एंड यहया की उम्र क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, एकदम जकास, बहुत बढ़िया वीर जी। एक और मैसेज आया, वेलकम टू प्रोग्राम अगेन, वेलकम टू योर प्रोग्राम। देखो ये मैं सुनने के लिए तड़प रहा था, कब कौन ये बोलेगा वेलकम टू योर प्रोग्राम अगेन, ये बात हुई। एक मैसेज है, अच्छा 5 साल के हैं यहाँ साहब, माय नेम मींस आसमानी सहीफ। ओफ कतई डीप मतलब है इसका माशाल्लाह। चलो आज एक और नए नाम के बारे में मुझे पता लगा, नेवर हर्ड ऑफ दिस नेम, बट काफ़ी यूनिक नाम है। एक नसीम भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग को जी, भाई साहब गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है मानना, तीन हम महीनों तक यही किया है, लेकिन गई मॉर्निंग, एक शो और बाकी है, और बाकी शाम वालों को तो मौज करा देंगे 1 तारीख से। बाय द वे आपने आई थिंक प्रोमो नहीं सुना ना उसका, आई डोंट नो कि मेरे पास अभी प्रोमो है कि नहीं, रुको मैं ज़रा देखता हूँ अगर होगा तो, पर मुझे लगता नहीं अभी है। है क्या, लेट मी चेक। नहीं अभी मेरे पास प्रोमो नहीं है, पर जब प्रोमो आपको सुनाई देगा शाम वाला, भाई साहब आप बोलेंगे क्या बना दिया है ये क्या रैप बना, बहुत टाइम बाद रैप करने का मौका मिला। ओके नाउ क्वेश्चन, आज का सवाल ठीक है, पहले वाउचर के लिए कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट 500 कथिरियाल के लिए, ये रहा आपके स्टूडियो सेट पर। और भाई साहब एक आई क्या, अब खूब सोया करेंगे भाई साहब, अब तो अंधी मचा देंगे। क्या समझ रहे हो, शाम को जब शुरू हो जा रहे हैं तो आपका भाई उठेगा नहीं, फर्नीचर की तरह पड़ा रहेगा फैसल भाई। तो सवाल ये है, और ये सवाल आज से ही जुड़ा हुआ है, बकरीद से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जो डोमेस्टिक बकरे होते हैं, पाले जाने वाले बकरों की कितनी स्पीशीज होती हैं, कितने तरह के पाले जाने वाले बकरे होते हैं, नंबर बताना है आपको, नाम नहीं बताना, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज नस्लें होती हैं डोमेस्टिक बकरों की। कर रहा हूँ इंटरनेट पे ढूंढ लो, कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैंने कौन सा देखना है और आप कौन से इतने सीधे हैं कि मेरे कहने से रुक जाएंगे। आराम से जाइए इंटरनेट पे, कोई गल नहीं, आप आराम से चेक चू कर लीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना 6662107 पर। एक मैसेज है, ईद मुबारक आप सबको, मेरा नाम अब्दुल जवाद है, मैं अबू मोर में रहता हूँ और तेलंगाना से हूँ। कबीर भाई मैं आपका मॉर्निंग शो कभी कभी सुना करता था, आप सुबह सुबह जो स्टोरी सुनाते थे उनसे माइंड फ्रेश हो जाता था, पूरे दिन अच्छा गुजरता था। अब आपको हमेशा अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, और आपको भी ईद मुबारक, दिस इज सच अ स्वीट मैसेज मेरे भाई अब्दुल जवाद भाई, तेलंगाना से हैं आप, बहुत बढ़िया भाई। एक मैसेज, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, शाम में स्टोरीज आएंगी क्या। ऑफ कोर्स आएंगी भाई, कैसी बात कर दी आपने। हाँ तो जी सवाल समझ गए आप, सवाल यह है कि पाले जाने वाले बकरे, डोमेस्टिक जो बकरे होते हैं, उनकी कितनी नस्लें होती हैं, ये आपको बताना है। जो आपके जवाब हैं वो मैसेजेस में एक्सेप्ट करूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, कोई मिस आउट ना हो जाए। तो अपना नाम लिखिएगा, स्पेस देके अपना जवाब लिखिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है, भेजते रहो। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
1: जी, आपका नाम?
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: कुछ करना था
1: मेरा दिमाग भाई साहब सरपट दौड़ता है, क्या समझ रहे हो, एक ही तो साइंटिस्ट है पूरे 107 में, कैसी बात कर दी बेटे। हाँ बताओ।
0: ओके 30 to 40।
1: 30 to 40। अच्छा
0: यस।
1: अच्छा इंटरनेट बढ़िया चल रहा है तुम्हारा?
0: नहीं, अब
1: नो लाइक वन नंबर ना, क्योंकि सच्ची बताओ ईमानदारी से तो क्या सर्च किया बताओ।
0: हाँ बोलो। फिर मेरा फिर वो नहीं करना, फिर प्लीज
1: क्या नहीं
0: मेरा
1: करना?
0: कैंसिल नहीं करना।
1: बताओ
0: हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स।
1: डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं कह रहा था मैं, देखा मैंने जब पूछा तुमसे।
0: नहीं नहीं बोला था, बोला था
1: गोट्स। गोट्स बकरे की आवाज भी निकाल दी मैंने, और कैसे बताऊं तुम्हें मैं। डोमेस्टिक गोट्स की स्पीशीज।
0: अच्छा गोट्स।
1: हाँ देखा।
0: अच्छा नहीं
1: नहीं
0: अभी लाइन भी
1: रहना,
0: मैं बता देता हूँ।
1: हाँ अभी लाइन में। अच्छा तो आराम से सोच साच के बता दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम मैसेज भी कर सकते हो।
0: नहीं नहीं क्या? नहीं अब मुझे पता चल गया।
1: अच्छा धनिया वो के रहोगे मेरी जिंदगी में आज। बता दो यार, तुम बता दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से ढूंढ लो, बाकी मैसेज मेरे पास आ चुके हैं।
0: नहीं मिल गया, मिल गया, मुझे तो मिल गया, बनी है इतना ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, आराम से बस वो।
1: हाँ बता दो फिर, एक मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। लग रहा अब सुबह है, एक भाई कह रहा है, भाई मुझे पता नहीं लग रहा सुबह हो रही है शाम हो रही है। भाई मैं गुड इवनिंग बोलूँ तुम गुड मॉर्निंग समझ लेना। और एक मैसेज है, भाई ने बता दिया 1000 स्पीशीज होती है, कहाँ कहाँ देखने गए इतने बकरे। यार 1000 स्पीशीज बता दी। जैसे तुमने सर्च किया वैसे इन्होंने सर्च किया।
0: नहीं मैंने तो बोला तो कम था उसका तो, माशाल्लाह कितना ज्यादा 1000।
1: उनकी मर्जी भाई, उनकी मर्जी, तुम भी अपनी मर्जी से जवाब दे दो, क्या मर्जी तुम्हारी, कितनी कितनी स्पीशीज होती है बताओ।
0: यानी मैंने 40 बोला, उसका टाइम 40 कर लिया उसने।
1: अब तो सही जवाब दो।
0: अब सही जवाब तो ये है, 1 एक ही है।
1: अच्छा एक ही है, चलो ठीक, चलो ठीक है, रजिस्टर कर लिया तुम्हारा जवाब, इंशाल्लाह सही होगा तो मैं आपको वापस कॉल करूंगा, ठीक है।
0: पर लेकिन ये बात प्लीज प्लीज, एक घंटा यार दिल कर रहा है मेरा नाम निकल जाए एक दिन, क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया यार, कॉल ही यानी हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स।
1: बेटे सिंपति नहीं चलेगी, दुआ दुआ मांगो, दुआ ठीक है, मांगो मांगो, जम के दुआ मांगो, ठीक है, चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो एक मैसेज आया है, देखो प्राइमरी श्राइमरी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये बताना है आपको कि डोमेस्टिक गोट्स, आज तो आवाज भी ढंग से नहीं, इतने बकरे देख लिए मेरी आवाज चली गई तो, उनके कितनी स्पीशीज होती हैं। डोमेस्टिक गोट्स, नॉट एनिमल्स, गोट्स स्पेसिफिकली, ये आपने बताना है, ठीक है। बहुत बहुत ईजी है, इंटरनेट आपके हाथ में है, रीलों से आपके अंगूठे के हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं उसे, डोले बन गए हैं, तो एक आध जवाब आप सर्च कर लेंगे तो मामला हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, ईद मुबारक आपको भी। और अभी तक भाई साहब मुझे 3 सही जवाब मिले हैं, अभी तक मात्र 3 सही जवाब। एक भाई ने तो कह दिया 1000 होते हैं। कौन से जगह पर होते हैं 1000, कहाँ देखने गए थे इतने सारे बकरे। हर किसी को जी ये है चितकबरा, इसके रंग देखो, ये है ब्राउन, ये है वाइट, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है। ऐसे गिना क्या आपने, मुझे लग रहा है ऐसे गिना है। नहीं भाई 1000 तो नहीं है, इतना तो मैं सही कर सकता हूँ आपको, थोड़ा ज्यादा ही नंबर चला गया आपका। तो 666-22107 नंबर है। गोट्स, देखो मैं और आसान कर देता हूँ, चलो लेट मी मेक इट मोर ईजियर, ठीक है जी, मच ईजियर। तो बेसिकली एक तो होता है जी वाइल्ड गोट, ठीक है, एक होती है डोमेस्टिक गोट, जिसकी होती हैं कई प्रजाति, हिंदी में ही बता दिया मैंने। नस्लें, उर्दू में भी, इंग्लिश में स्पीशीज, इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज। तो अभी तो आपको बताना पड़ेगा जो कह रहे हैं लोग, इज इट करेक्ट नहीं, मैं अभी जब अगर मैं सबको बताने लगे इज इट करेक्ट तो मेरा निंदा जी बैंड बच जाएगी मैसेज पढ़ने में और रिप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं। बट मीनवाइल सभी को ये दोबारा कहना है, आई रियली वांट टू नो कि आपका क्या रहा माहौल आज, कहाँ गए जिन्होंने यहाँ पर कुर्बानियाँ करी हैं, वो भी ज़रूर कॉल करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है सवेरे, ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल रहा यहाँ पे कुर्बानी का, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग बियॉन्ड क्रेजी। सुबह जो लाइन में लगने की जो फील है, वो सुबह जाके बकरे को ले जाने की जो फील है लाइन में, उसकी बात ही गुजारा भाई

0: भाई दैट इज सो स्वीट भाई, मैं तीन दिल भेज रहा हूँ आपको, कबूल कीजिएगा ठीक है, इसके तिक्के बना के मत खा जाना। और कुछ लोग कई लोग बड़े हैरान हुए, बोले नहीं नहीं नहीं कलेजी अलग चीज है भाई। नहीं मैं दिल के भी तिक्के होते हैं भाई, कैसे समझाऊं मैं आपको, खाए जाते हैं। पता नहीं मेरे आसपास लोग क्यों हैरान होते हैं। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम कबीर, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चंगा बहन, आप सुनाइए कैसी हैं?
1: जी मैं ठीक हूँ। इसका आंसर वन आई थिंक।
0: अच्छा आप ईमानदारी से बताइएगा आपने क्या सर्च किया था आज, पब्लिक को आसानी करें उनके लिए।
1: जी मैंने मैंने क्या सर्च किया था?
0: आपने सर्च तो किया, देखिए मैं ये बोल नहीं मान नहीं सकता।
1: नहीं नहीं मैंने मैंने मैं क्यों झूठ बोलूँ ईद में, मैंने क्यों झूठ बोलना आपसे।
0: ओहो
1: मैंने जी मैंने चैट जीपीटी से सर्च किया है कि हाउ मेनी डोमेस्टिक गोट्स आर देयर एज अ स्पीशीज, तो मुझे वन मिला।
0: पक्का शोर है आप इस बात के लिए? लॉक कर दूंगा मैं, बताइए।
1: वो मैंने चैट जीपीटी से देखा तो फिर यही आंसर होगा।
0: देखिए आप एआई पे यकीन करना चाहती हैं या थोड़ा सा और इस पे काम करना चाहती हैं, आप देख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
1: आप मुझे और कंफ्यूज करें कि मैं और उसके अंदर थ्रो करूँ।
0: देखिए बहन इसी बात के तो पैसे हैं।
1: तो मैं चैट जीपीटी एआई पे भरोसा करती हूँ। अच्छा। तो मेरा आंसर वन है।
0: ठीक है जी, ठीक है तो फिर लॉक कर देते हैं।
1: आप मुझे पजल कर रहे हैं, तो मैं वन पे ही जाऊंगी।
0: अरे
1: वो मुझे... कहते हैं दो कश्तियों की सवारी मुझे डूबता है, तो मैं अपनी कश्ती में रहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने कश्ती सवार चप्पू चलाते रहिए, आएगा किनारा एकदम सही है, प्लीज मुझे जिता दो क्योंकि मेरे पापा का यही वर्क था। अरे मेरा भाई सॉलिड दलीलें आ रही है, सॉलिड दलीलें। मेरे तो खानदान का ही काम है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ भाई, क्या बात कर दी यार। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अल्ताफ हुसैन।
0: अल्ताफ भाई कैसे मेरा भाई?
2: आप कैसे भाई? ईद मुबारक हो।
0: एकदम बढ़िया भाई, ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक।
2: आज तो बहुत आप जोश में हैं, तो आपकी आवाज में बहुत अच्छी है
0: भाई। आप सुबह नहीं आए, सुबह भी जोश में रहता था मैं तो शाम में भी आने का मौका मिला है वापस। सुबह सुबह आते तो जान पाते हैं हम, सुबह से ही एनर्जी हमारी ऑन रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका तो सवाल जो था तो उसमें तो कहीं जाती है ये डोमेस्टिक के, आप बता
0: नहीं
2: सकते?
0: नहीं, जातियां नहीं गिनानी है, सुनो तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीशीज गिनानी, मैं कह रहा हूँ कितनी होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज डोमेस्टिक गोट्स की कितनी होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ।
2: जी मेरे हिसाब से तीन है साहब।
0: अच्छा ओके ठीक है,
2: मेरा जवाब है तीन।
0: ठीक है डन हो गया मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बाकी ईद कैसे जा रही है?
2: बढ़िया साहब, सुबह से फिरते रहे लगातार गोश्त के लिए मरे हमें,
0: फिरते रहे।
2: नंबर नहीं मिला हमारा,
0: नंबर नहीं मिला आपका?
2: नंबर नहीं मिला, बकरा मार्केट गए थे सुबह तीन बजे से नहीं सॉरी मैं ईद की नमाज पढ़ के।
0: हाँ भाई कहूँ मैंने कहा तीन बजे वहाँ वहीं पे नमाज पढ़ी। अच्छा तो नंबर नहीं आया अभी तक वहीं पर?
2: लगभग एक बजे तक वेट करा मैं, बाद में जहाँ से बकरा लिया था उसको एडवांस दे दिया हूँ, देख के वहाँ से निकल गया भाई, कल सुबह मैं 5 बजे आऊंगा, खोल के निकल गया।
0: अच्छा निकल गए, ठीक है तो कल सुबह 5 बजे मिलेगा फिर कुर्बानियां गोश्त है।
2: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, वालेकुम सलाम। मैंने भाई आज सुबह जो पब्लिक देखी ना स्लॉटर हाउस में, मुझे अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज इस बार गर्मी के बावजूद लोगों में जोश व खरोश है ईद को लेकर, वो अलग लेवल का भाई। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक मेरे भाई को, ईद मुबारक, क्या हाल है
3: आज? फुल जोश में लग रहे हैं, फुल जोश में
0: भाई साहब, फुल जोश में ही रहते हैं हम, एक मीटर भी मतलब कम नहीं करते एनर्जी को। आप बताइए क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है आपकी सेहत? ठीक है
0: बस एकदम बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ। आप सुनाइए कैसी जा रही है ईद?
3: शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ड्यूटियों पे हैं।
0: ड्यूटियों पर हैं आप? कोई गल नहीं बाजी, ड्यूटी होगी तभी तो ब्यूटी आएगी जिंदगी में, बड़ा जरूरी है ये। तो ड्यूटी तो चलती रहनी चाहिए। तो अभी क्या कुछ दावत का सीन है? नहीं बना अभी तक, ये बनेगा शाम रात कभी।
3: आ जाए कोई मसला नहीं, ताबेदार आपके लिए तो जान भी हाजिर, आ जाए।
0: अरे नहीं जी, आपकी दावत का पूछ रहा हूँ मैं, आप अपनी दावत कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बताइए
3: जी। जब आप कहेंगे कर लेंगे, मुश्किल नहीं है।
0: अच्छा ठीक है, पर भाई ईद मुबारक आपको, दिल से मुबारकबाद। और सवाल सुन लिया तो आप बता सकते हैं जवाब, कोई गल नहीं।
3: जवाब मेरा ये है उसमें 300 से ज्यादा है, लेकिन जो रजिस्टर है ना वो 35 से 40 है।
0: अच्छा जी ठीक है, ठीक है डन हो गया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको, थैंक यू, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, बकरा ईद मुबारक हो आपको, आई एम फ्रॉम शाहानिया, माय नेम इज़ रिज़वान हबीबुल्ला खान, बकरों की नस्ल है 1, ओके जी। एक मैसेज है,

0: अहमद तारिक साहब का एक मैसेज है, इनाम नहीं मिला तो चैनल चेंज। भाई कर लो, क्या दिक्कत है। देखो क्या है ना, ये वाली बात मुझ पर काम नहीं करती। दिक्कत ये है, ये देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो मुझसे लड़ाई करते हैं, बहुत सारी लड़ाई हुई मेरी रेडियो पे। और फिर वो जिस भाई कह रहे ना मैं चेंज कर दूंगा चैनल अगर इनाम नहीं दिया तो, धमकी मत दो, मोहब्बत से देखो कुछ भी करा लोगे मुझसे, ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक मेरे भाई को, क्या चल रहा है पार्टी?
1: बस अभी निकलने लगे हैं हम लोग, बच्चा पार्टी को लेके फारिग हो गए हैं अब सुबह अपने सारे कामों से। और आपने ये क्या सवाल पूछ लिया जो आज तक कभी ना सुना ना देखा।
0: देखिए हम तो वही करते हैं, सबसे अलग होता है।
1: मुझे तो सिर्फ एक ही गॉड की वो पता है जिसको खा लेते हैं।
0: यही तो है, हम मुसलमान जो है सिर्फ बकरीद पे यही तो है कि नहार ही मिलता है बस, बाकी दुनिया ऐसी जैसी।
1: नहीं भाई हाँ। वो चैट जीपीटी पागल हुई भी है, कोई एक बता रहा है कोई तीन बता रहा है, अभी मैं अभी बताए क्या करूँगा। अभी बम्बे बगल
0: अभी एआई की दुनिया में तूफान आया हुआ है इस सवाल को लेकर, एआई भी परेशान है अभी, ये तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं आज तक। हाँ। क्या हो गया?
1: बिल्कुल वो परेशान चैट जीटी भी सोच रही होगी कि बकरा ईद तो भाई बकरा लेने से पहले सोच रहा था कितनी है, जब दिमा हो गया पक गया ये फिर क्यों पूछ रहे हैं।
0: एआई ये भी सोच रहा है कल तक तो मुझसे एक्सेल शीटें बनवा रहे थे, आज मुझसे पूछ रहे बकरे की नस्लें बताओ, ये क्या आदमी है भाई।
1: ये क्या बात कर दी।
0: हाँ तो इसीलिए
1: तो मैं एक के साथ जाऊंगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने डिटेल में ये बताया कि तीन होते हैं, जो एक दूध के लिए डेयरी के लिए यूज होते हैं, गोश्त के लिए यूज होते हैं, और एक जो अपनी ऊन के लिए इस्तेमाल होते हैं।
0: अच्छा
1: तो तीन है टेक्निकली, लेकिन ऊपर एक लिखा हुआ रहा है।
0: अच्छा ऊपर एक लिखा हुआ रहा है। अच्छा जी,
1: दिल मानता तीन है
0: आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा, मैं आपसे क्या बहस करता हूँ, आपको लगता है मैं आपसे बहस कर सकता हूँ।
1: कैसा लग रहा है शाम में आके?
0: अरे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपकी पसंद का टाइम दे।
0: जी बिल्कुल मेरा भाई, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन में हूँ नहीं मेरा भाई अभी, लेकिन अभी भी एक बाकी है
1: नहीं, लेकिन करना पड़ता है क्या करें।
0: हाँ वही है, करना तो पड़ता ही है, रोजी और रोटी दोनों से मोहब्बत है मुझे तो इसलिए करना पड़ता है।
1: इनकी तरफ से आपको सारे घर वालों को और 107 के सारे लिसनर्स को, टेक्निकल टीम को और अब्दुल्ला भाई को ईद मुबारक।
0: अरे क्या बात है, अब्दुल्ला भाई को अलग से ईद मुबारक, क्या बात है आज अब्दुल्ला भाई, पता नहीं सामने
1: अब्दुल्ला भाई बड़े फेमस है नाम, बड़ा सुनाना अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई तो अब्दुल्ला भाई को भी याद रखा जाए।
0: अरे बहुत पहुंची हुई चीज है अब्दुल्ला भाई, ऐसी वैसी थोड़ी। ठीक है बता दो मैंने मैं।
1: ठीक है
0: मेरा भाई, ओके ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। तो बिलाल भाई ने तो ईद मुबारक के साथ साथ जॉब भी दे दिया, मैं जरा सवाल एक बार फिर से, अरे कॉल आ रही, चलो बाद में दोहराते हैं, बात करते करते दोहरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मोहम्मद नदीम अब्बास की बात करूं।
0: नदीम भाई किधर थे भाई, नदीम भाई कहाँ थे?
2: अरे भाई इधर ही है, भाई इधर ही है, दोहा में थोड़ा गर्मी की वजह से छुप के बैठे।
0: बरसों बाद आपकी आवाज सुनाई दी, बरसों बाद कैसे?
2: नहीं बरसों बाद कहा, रमजान में इतने लास्ट
0: तक भाई बरसों हो गए, वो मेरे लिए उतना ही बरसों है, रेगुलर बात करते रहा करें, ऐसा ना करें आप।
2: अच्छा दिन महीनों साल ऐसा कुछ आपका अपना है।
0: हाँ बिल्कुल।
2: सबसे पहले तो आपको और आपके इर्द गिर्द जो लोग भी और सुनने वाले सबको ईद मुबारक।
0: जजाकल्लाह आपको भी ईद मुबारक।
2: और उसके बाद और क्या चल रहा है?
0: बस जी बढ़िया चल रहा
2: है। एक तो सवाल चल रहा है।
0: हाँ एक तो सवाल चल रहा है।
2: और सवाल का जो है कि मेरा तो अभी तक पिछला नाम भी नहीं मिला रमजान वाला,
0: वो मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। तो आप जवाब देना चाहते हैं, उसका वेट करना चाहते हैं पिछले वाले?
2: बिल्कुल देना चाहते
0: हैं। मैंने कहा क्लियर कट पूछ लूंगा इसलिए।
2: मेरे जवाब असली इसमें, वैसे जो गूगल सर्च पे तो एक ही आ रहा है।
0: अच्छा।
2: और वैसे जो हमारे देसी साहब में तीन एक टाइप होती है मेरे ख्याल में।
0: अच्छा ठीक है,
2: तो अभी आपने जो भी पूछी है दोनों जवाब मैंने दे दिए, बाकी अल्लाह करीम जो होगा देखा जाएगा।
0: ठीक है डन है ओके ओके।
2: तो चलो बस अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और ईद की खुशियां मनाइए।
0: आप भी आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत सारा प्यार। ईद वैसे जा कैसे रही है आपकी? सुबह से बिजी है मसरूफ, क्या चल रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सुबह से इतने बिजी नहीं, अभी बिजी होने जा रहे हैं।
0: अच्छा बिजी होने जा रहे हैं। ओ हो दावत के बारे में नहीं बताऊंगा ये वाला चलो।
2: नहीं नहीं आगे की बात नहीं
0: है। अच्छा ठीक है।
2: जो सीक्रेट नहीं बताए जाते।
0: हाँ नहीं बिल्कुल
2: मैं
0: ना जी आप मेरे साथ राज शेयर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे पेट में बहुत जगह है।
2: कोई नहीं
0: ठीक है।
2: नहीं फिर आपकी पेट में अगर राज चले जाएंगे तो खाएंगे क्या शाम को?
0: बड़ी फिक्र है आपको मेरी माशाल्लाह।
2: भाई हाथ देखो अपने पेट की नहीं दूसरों के पेट का भी देखना चाहिए ना।
0: बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ नदीम भाई बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। जैसा कल भाई ख्याल रखिए।
2: अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और नदीम भाई के बाद एक मैसेज आया हमको तो अच्छा लग रहा है इस टाइम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है क्योंकि हम आपको पहले सुबह सुनते थे फिर ड्यूटी चेंज हो गई। बल खैर आपको इस टाइम पे सुनेंगे बिल्कुल। मैं आपको बता नहीं सकता ये जो टाइम शिफ्ट होता है ना बीच बीच में हमारा ये कितनी सारी चीज़ों को बदलता है आपको अंदाज़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मोहम्मद रुहुल अमीन। आज अमीन अमीन करके सरवर भाई बात कर रहे थे किसी अमीन से क्या वही अमीन है?
3: जी।
0: ओके अमीन कैसे हो सब बढ़िया?
3: ठीक है।
0: कैसी जा रही है ईद?
3: सब कुछ ठीक है।
0: सब कुछ ठीक है। तो ईदी मैंने सुना था इकट्ठी हुई थी कुछ 200 रियाल के आसपास ईदी पहुंच गई थी अभी कुछ बड़ी है?
3: जी।
0: कितनी हो गई अभी?
3: ज्यादा
0: 100 रियाल ऊपर हो गए। चलो 300 तक पहुंच गए ना अभी?
3: जी
0: तकरीबन। अच्छा चलो माशाल्लाह 500 तक पहुंच जाओगे इंशाल्लाह पूरी पूरी दुआ है। तो बताओ अमीन क्या क्या सही जवाब क्या है?
3: आई थिंक
0: वन। यू थिंक वन? ओके ठीक है लॉक कर दूं मैं इसको बिल्कुल?
3: जी
0: ठीक है अमीन थैंक यू सो मच मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखो और मेरी दुआ है कि 500 कतरी रियाल पहुंच जाए तुम्हारे हिसाब किताब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो देखा आपने मेरे पहनी नजर को सॉरी पहने कानों को मैं सुबह सुन रहा था मैंने सुना था कि सरवर भाई बात कर रहे थे रोहुल अमीन से और भाई ने बताया था कि 200 कतरी रियाल तो पहुँच गया है मामला अब देखा जाएगा दिन के आखिर होते होते पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। और मैंने आज मैंने एक और भी एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करी ईद की नमाज के बाद जो लोग भागे हैं भाई साहब मुझे लगता था कि मैं ही बहुत तेज निकल के जाऊंगा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था मैं थोड़ा पीछे हूं मैं निकल जाऊंगा ना जी ना लोगों की स्पीड देखी आपने वो ऐसे मुर्गे भागते हैं एकदम उस स्पीड से भागे हैं लोग और गाड़ियां कुछ की तो चालू ही थी वो बैठ के जो भागे हैं उनका भाई नहीं कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है मैं लास्ट ही सही हूँ। तो जो लोग बिल्कुल टाइम पे स्लॉटर हाउस पहुंचे अभी भी बहुत सारे लोग निकल रहे होंगे आई एम प्रीटी श्योर अभी सुन रहे होंगे मुझे। सो अगर आप वकरा की तरफ से स्लॉटर हाउस में थे उस तरफ थे तो प्लीज़ अपनी मेमोरी जरूर शेयर कीजिएगा वरना मैं कल ही शेयर किए जा रहा हूँ तब से। अब्दुल्ला भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई बकरा इन दोबारा क्या हाल है भाई ठीक ठाक सवाल क्या है? ओके लेट मी रिपीट द क्वेश्चन बहुत आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें आपके साथ AI थोड़ा खेल जाएगा वो बात दूसरी है पर फिर भी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डोमेस्टिक पाले जाने वाले बकरों की कितनी नस्लें होती हैं जो पाले जाने वाले बकरे होते हैं वैसे तो वाइल्ड भी होते हैं उनको पाला नहीं जाता वो अलग ही कैटेगरी है मगर जो पाले जाने वाले बकरों की नस्लें होती हैं वो कितनी होती हैं नंबर ऑफ स्पीशीज 666-22-107 हिंदी में बता दूं कितनी प्रजातियां होती हैं। एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम आई एम फ्रॉम शानिया माय नेम इज अमीना खातून आप सबको बकरीद की मुबारकबाद आपको भी मुबारकबाद जज़ाकअल्लाह खैर आप सबके जवाब मैं देख रहा हूँ ये मत सोचिएगा क्योंकि एक फीलिंग आती है ना कि अरे मेरे मैसेज पर तो ब्लू टिक आया ही नहीं तो देखिए ऐसा नहीं है मैसेजेस ना ऊपर से दिख जाते हैं सबके नंबर नाम सब दिख रहे हैं तो मैं जिसके नाम लिखे हुए नाम पढ़ दूंगा जिसके नंबर है मेरे पास। सो एंड ऑफ दिस कॉन्टेस्ट जीतेगा तो जी एक ही हर घंटे एक विनर बनेगा कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के वाउचर का बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है मिशलिन स्टार है आई नीड टू ट्राई इट मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया जरा सा। एक मैसेज है यूसुफ भाई कह रहे हैं ये सवाल का जवाब गूगल AI भी नहीं दे पा रहा है मैंने लिख के डिलीट किया हूँ यूसुफ भाई ये तो मेरा काम है ऐसी टेंशन में डाल दो आदमी को ये जो अभी लोग सोच रहे हैं यार बात तो सही है और खुद बहुत सारे कसाई सोच रहे होंगे एक सेकंड छुरा रोको ये क्या सवाल पूछ रहा है एक सेकंड एक कॉल और आ रही है अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक मेरे भाई को नाम क्या भाई का
4: जी मेरा नाम सैयद फैजल हुआ कबीर भाई मैं वो मतलब मैं आपका ऐसा फैन हूँ जब आप सुबह में शो करते थे तो मैं उसी बहुत मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती थी जब आप कहते थे आज की कहानी ये है।
0: अरे रे रे रे।
4: और फाइनली आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है।
0: भाई आपको दिल से प्यार मेरे भाई, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू कि आपने इतनी दिल खोल के मोहब्बत जताई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं सच में मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ वर्ड्स,
4: मैं आपकी कहानी सुन के और सुबह मतलब सुबह से ड्यूटी स्टार्ट होती है और आप भी स्टार्ट होते हो तो बहुत मजा आता है, ड्यूटी भी हो जाती है और अच्छा खासा।
0: जजाक अल्लाह मेरे भाई, आपने पूरा सेट कर दिया मामला, मेरी ईद तो यही हो गई, ईद ही दे दी आपने मुझे। आप बताइए मेरे भाई ईद कैसी जा रही है आपकी?
4: दूसरी बात ये जो है तो सवाल पूछा कबीर भाई आपने, वाकई में AI तो फेल ही है और मैं तो और सदमे में जा रहा हूँ कि लोगों के एक आंसर आ रहे हैं, तीन आंसर आ रहे हैं, मेरे से तीन तो चार तो आ रहे भाई।
0: एक भाई ने तो 1000 भी लिख दिया, मैंने कहा कौन से माउंटेन पे गए थे ढूंढने इतने सारे बकरों को भाई। अभी अभी कुछ लोगों के पेज पे लिखा आएगा दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी होने वाला। पर मैंने कहा जो ऐसे सवाल
4: हो सकता है पॉसिबल है, AI फेल है भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, अब एक बोलू तीन बोलू 300 बोलू 35 बोलू क्या।
0: ये बकरे से ही पूछ के आना पड़ेगा लोग।
4: तो आप खाने में आसान है भाई।
0: कहानी मजा। तो कैसी रही ईद अभी? हाँ। कैसी जा रही है मेरे भाई आज ड्यूटी?
4: माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बेहतर जा रही है। हम लोग मतलब है 5-6 लोग हैं तो हम लोग का प्रोग्राम एक हफ्ते पहले से ही बना रहता है, सब कुछ कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है।
0: अच्छा
4: जी,
0: तो आपको क्या काम मिला है इस दावत में, आपका क्या रोल है?
4: जी मेरा रोल था, मैंने बनाई मटन बिरयानी
0: और
4: मेरे एक दोस्त है उन्होंने बनाई, मतलब मैं हम लोग बेसिकली बिहार से हैं।
0: अच्छा, और माशाल्लाह नॉर्थ वाले।
4: बिहार में मतलब एक गेहूं के आटे और चावल के आटे को मिला के एक सोहाली टाइप का बनाया जाता है।
0: अच्छा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, दोनों को मिला के जो बनाते हैं?
4: सोहाली।
0: सोहाली
4: बेसिकली, हाँ बेसिकली वो रोटी होती है चपाती टाइप की।
0: अच्छा,
4: उसको हम लोग सोहाली बोलते हैं और उसके साथ भुनी हुई कलेजी कबीर भाई।
0: अरे रे रे रे, जालिम
4: नाश्ता,
0: जालिम। ये कोई बात होती है यार, इतना डिटेल में बता के ना आपने बेचैन कर दिया। मैं आज ही एक सेकंड मुझे स्पेल आउट करने दो, मैं सच में ये सर्च करना चाहता हूँ। सुहाली नाम है ना? सुहाली, ओके यार, सुहाली रेसिपी आ रही है बाकायदा। अच्छा, तो ये नमकीन रोटी है थोड़ी सी है? नाइस है,
4: बहुत अच्छी। मतलब बटर में थोड़ी सी सिकी हुई रहती है।
0: ओए होए होए, तबाही काट दी
4: भाई आपने। भुनी हुई कलेजी के साथ आप इसको ट्राई करेंगे ना कबीर भाई, वाकई में मतलब
0: भाई
4: खुश हो।
0: थोड़ी सी पूड़ी जैसी दिख रही थी मुझे, लेकिन अच्छा ये है तो बहुत कुरकुरी सी लग रही है, कुरकुरी होती थोड़ी सी?
4: जी उसी टाइप में होती है, बस थोड़ी बड़ी होती है, चपाती के साइज की होती है ये, और बहुत सॉफ्ट होती है।
0: ये भाई ट्राई करने वाली चीज बता दी आपने, ठीक है। ये आपने जो मुझे दो जगह ईदी दी थी, एक तारीफ करके दूसरी बात ये बता के, उसके लिए शुक्रिया मेरे भाई। और उम्मीद है बस आपकी ईद अच्छी जाए, दिल से मेरी दुआ मेरे भाई, मुबारकबाद आपको और जो भी आप दावत करने वाले सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक।
4: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है कबीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: फाइनली
4: मेरी बात हो पाई आपसे।
0: भाई आप हुकुम कर देते, एक मैसेज कर देते, मैं आपका भाई कॉल कर
4: लेता, कैसी बात कर दी आपने, कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ कबीर भाई, स्टोरी भेज देना। मेरा यही मैसेज होता है कि स्टोरी भेज देना कि मैं दोबारा से सुन सकूं।
0: अरे एक आध बार कह देते, मैं कॉल कर देता, चलो कोई गल नहीं, अब ये आप बात हुई है ना इंशाल्लाह होती रहेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। आप दुआ देते थे रुक गए। अच्छा एक मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। एक मैसेज है भाई, वैसे तो मालूम नहीं है लेकिन अंदाजातन 15-30 तक होंगे। एक भाई कह रहे हैं बकरे से पूछ के आया हूँ, 45 है। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, आपका नाम? हेलो,
5: बात कर रही
0: हूँ। हाँ अच्छा बताइए, कैसी है? मैंने ईद मुबारक आपको।
5: अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चंगा, बताइए।
5: अच्छा बस मैंने कहा कॉल लगा लेती हूँ, मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन ट्राई कर लेते हैं शायद मिल जाए।
0: कोई गल नहीं, आप मैसेज कर देती मैं कॉल कर लेता, बताइए कैसी जा रही है आपकी।
5: मैंने भी ट्राई करना था, मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेती हूँ दोबारा।
0: ठीक है ठीक है, बताइए आपका क्या जवाब है।
5: स्पीशी 1 है, ब्रीड उसकी मोर देन 300।
0: अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी जा रही है आप, आपने बहुत अच्छे से सर्च किया है मुझे लग रहा है, बहुत भरोसा है आपको इंटरनेट पे।
5: टेस्टिंग तो बहुत ज्यादा की थी वो, पता नहीं अजीब अजीब आंसर देने लग गया था।
0: अभी एक भाई ने मैसेज किया है मुझे, मैं खुद बकरे से पूछ के आया हूँ, 45 बता रहा है आप क्या बात कर रहे हैं। तो बताइए मैं बकरों को भरोसा करूँ या आपके इंटरनेट पे भरोसा करूँ? नहीं पर देखो आपका जवाब मैं लॉक कर लेता हूँ। और आप बताइए ईद कैसी जा रही है आपकी?
5: बस ईद बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में हम नमाज वगैरह पढ़ने गए, फिर सब
0: कुछ कुछ स्पेशल बनाए आज कुछ घर में कुछ स्पेशल बनाए?
5: हाँ जी, कलेजी बनाई थी और शीरखुरमा बनाया, पूरी बनाई,
0: तो भाई मचा
5: अभी बिरयानी बनाई
0: है। और कुछ भी रह गया हो? कुछ रह गया बेचारे?
5: सारा हस्बैंड का फेवरेट बनाया
0: है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आखिरी में आपने जो पंचलाइन दी ना, इसके आगे सब चुप हो गया। ठीक है, डन है। ठीक है, हमारा पैगाम दीजिएगा और हमारी ईद मुबारक पहुंचा दीजिएगा उन तक। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह,
5: थैंक
0: यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जैसे बहन ने बताया कलेजी वगलेजी, मैं बताऊँ, मैं पता नहीं मुझे बड़ा लोनली सा फील हो रहा है। उसकी वजह ये कि मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, मैंने कहा नहीं भाई, जो जो दिल भी होते हैं, दिल के भी तिक्के बनते हैं। पर लोग कहते हैं दिल के तिक्के कौन खाता है? खाते हैं भाई, जिन्हें नहीं पता। आपको आपने नहीं खाया? अच्छा मैं चुप हो जाऊँ? ठीक है जी, कोई सुनने को तैयार नहीं है इस बात पर। मैं सुबह से ये कह रहा हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों से, लेकिन पता नहीं कोई राजी नहीं है। एक तो दिल्ली वाले मेरे आसपास जितने हैं, एक दो वो भी चुप हैं। जबकि इन्होंने खाए हैं, मानने को तैयार नहीं है। तो ऑफकोर्स कलीजी है, सब कुछ है, पाए वगैरह हैं, बट देन दिल के भी तिक्के बनते हैं, बड़े कमाल के बनते हैं। कभी आप अगर दिल्ली जाएंगे तो ट्राई कीजिएगा। एंड ऊपर से चाट मसाला एकदम नींबू ईबू घाल के, भाई साहब बढ़िया एकदम। ओहो, ना दीवाने हो जाए तो कहिएगा। पता नहीं आप लोगों ने ट्राई किए नहीं है, जिस किसी ने ट्राई किए हो तो मैसेज करके ज़रूर बताएं, बिकॉज अभी तक मुझे बड़ा लोनली सा फील हो रहा है। अच्छा मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, देखा जाए तो हाई आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, लगता ज़रूर है ट्रिकी, पर लेट मी आस्क यू। ठीक है, डोमेस्टिक गोट, नहीं गंदी आवाज थी, ये वाली ठीक थी। तो जो डोमेस्टिक बकरे होते हैं उनकी कितनी स्पीशीज होती हैं? स्पीशीज कीवर्ड है, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा भाई, इससे कर रही हिंट में दे। ये आपका कीवर्ड होना चाहिए जब आप एआई की नाक में दम कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में धनिया बो रहे हैं, एआई बता मुझे, तो दिस शुड बी योर की वर्ड। ठीक है, डोमेस्टिक कितनी स्पीशीज होती है ये आपने बताना है। भाई कह रहे मैं बकरे से पूछ रहा हूँ। पूछो, बताएगा तुम्हें। एक मैसेज है जामा मस्जिद के पास, भाई अरे मेरा भाई एक तो मिला, चलो एक तो मिला मेरा भाई। थैंक यू सो मच सैयद फैजल भाई। फैजल भाई कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल, जामा मस्जिद के पास मिलती है, दिल के तिक्के मिलते हैं भाई, मटन दिल के तिक्के बड़े कमाल के होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं। आई नो ऑफकोर्स वो काफ़ी अंडररेटेड है दुनिया में, क्योंकि लोगों ने कलीजी वलीजी बहुत ट्राई किया, लेकिन दिल के तिक्के यहाँ पे लोग ट्राई करते नहीं है। कतर में भी मिलते हैं बट उस लेवल पे नहीं मिलते हैं, मतलब वो वाला मयार नहीं, क्योंकि हमारी तरफ क्या है सीन ऐसा ना कि उन तिक्कों को बहुत ही चाट मसाला मसालेदार बना के रोल में लगा के ए, मत पूछो। इस बार छुट्टी में जो आपका भाई इतने फोटो डालेगा ना टिक्के खा खा के। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, सब अपने जवाब चेंज कर रहे हैं। कोई पहले लिखता है 40 पे लिख के, 1000 पे लिख के, 500 पे आए, 300 पे लिख के, एक क्या मानूं मैं। आप बस अपना जवाब देखिए, आखिरी जवाब जो आपको मिलेगा मुझे मैसेज में वो मैं कबूल कर लूँगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम शाहनिया, क्या होता है शाहनिया से बड़े मैसेज आ रहे हैं आज। क्या है, आज मॉर्निंग में मेरे साथ एक कॉमेडी हो गई नमाज के टाइम, ये आसिफ भाई ने मैसेज किया है। जब मैं ईद की नमाज अदा कर रहा था तो मेरे आगे एक अच्छा नमाज पढ़ अदा कर रहे थे, मैंने उसको देखकर अदा कर रहा था, मेरे बाजू में एक आदमी था वो मेरा देख के अदा कर रहा था, बाद में मालूम हुआ सामने वाला गलत कर रहा था। उसे देख कर मैं भी गलत कर रहा था, मेरा देख के मेरे साइड वाला गलत किया। ये बताए, ये ऐसा मौका होता है आसिफ भाई कि इस मामले के बाद कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है, ना नज़रें मिलाता है। ये नज़रें मिलाने वाला सीन नहीं है, आदमी बता रहे कौन बात करे, कैसा आदमी है यार, ये मेरी भी गलत करवा दी। जो आप पे भरोसा कर रहा होगा ना, जो उसने मस्जिद के बाहर निकलते ही आपके लिए दुआएं की होंगी। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, कि भाई ये जो जवाब आपने दिया, ये जो सवाल आपने पूछा है, ये आपने क्या मेरा इंटरनेट तक चलना बंद हो गया है, ये कैसा सवाल है? यही तो, ये ट्रिक क्वेश्चन है भाई साहब, सीधे सवाल तो हम करते ही नहीं ना, हम यकीन रखते। तो जिंगल चलाने से पहले एक बार प्रोड्यूसर जरा बता दूं, सवाल बड़ा सिंपल है। जो बकरे होते हैं, नहीं ये तो वो हो गया, चिड़चिड़ा बकरा हो गया, ये सही है। छत पे बंधा हुआ बकरा था ये, छत पे बंधा हुआ। तो जो बकरों की स्पीशीज होती हैं, कितनी स्पीशीज होती हैं बकरे की, डोमेस्टिक बकरों की? वर्ड स्पीशीज पे जोर देना है आपने, और अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। बकरों की बात करना बंद करो, बकरी गुस्सा हो रही है। आसिफ भाई ये क्वेश्चन मुझे दिया ही बकरी ने है। आपको क्या पता? आप तो घर में थे सुबह से, आपको नहीं पता है। एक मैसेज है, नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। देखिए फैसल भाई, सिंपल पूछ लूंगा तो फिर मैं अपने नाम को जस्टिफाई कैसे करूंगा? मेरा भाई जस्टिफाई भी तो करना जरूरी है ना। तो नौकरी तो ऐसी चीज है, अपने काम को बार बार जो जस्टिफाई करना पड़ता है। एक मैसेज है, फाइव लैंग्वेजेस मैं की करा फाइव लैंग्वेज का? आसिफ भाई की कहते। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सवाल मैं नहीं जान, सवाल का जवाब मैं नहीं जानता, पर लग रहा है यही सही है, तो आपने जो दिया है। कह रहे क्या, दो दांत वाला होना चाहिए बस। कह रहा मुझे नहीं मतलब स्पीशीज से भाई, दो दांत वाला होना चाहिए, बात खत्म। सिंपल एंड साउंड, ये हमारी हमारी कौम है ही, बड़े एकदम सिंपल है, मासूम लोग, नारी से मतलब है बस। जरा जिंगल चला देता हूँ।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अरे मैं अभी वो भी नहीं कह सकता ना, 7:02 सुबह सुबह कर रहा था मैं, 7:02 वो भी नहीं कह सकता अब, क्या इसके साथ कुछ राइम भी नहीं हो रहा। 6:02 हो रहे हैं, बस इतना जान लो, 6:02 मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। अच्छा देखो, जो मैंने सवाल पूछा है उसका वक्त आ गया कि सही विनर जो है उसका नाम अनाउंस कर दिया जाए। तो मेरे पास जो टीम बैठी है, मेरे पास दो लड़के बैठे हैं भाई साहब, वो रेंडमली सेलेक्ट करने वाले हैं। एक नाम मिलने वाला है, चरखे में नाम अपलोड हो रहे हैं क्योंकि सबके सवाल सबके जवाब ठीक नहीं है, जिनके जवाब ठीक हैं उनके नंबर्स को उठा के हम इस चरखे में घुमाने वाले हैं और फिर रैंडमाइजर से एक नाम मिलने वाला है। लेट्स सी वो किसका होगा। आई एम सो रेडी फॉर दिस क्योंकि जवाब कम सही है, वो जो ट्रिक क्वेश्चन था उसमें बहुत लोग फंस गए। चलो आज मैंने अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई कर दिया है। यासिफ भाई कह रहे हैं भाई माहौल बना दिया तुमने, लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। क्या तो सवाल ये था, क्या सवाल था? हाँ सवाल ये था कि जो बकरों की डोमेस्टिक स्पीशीज होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं, डोमेस्टिक स्पीशीज कितने किस्म की होती हैं। अब जब मैं शाम में आ ही गया हूँ, जुर्कनन साहब कह रहे हैं ऑप्शन वन किड़े मैं ऑप्शन देता ही नहीं भाजी। ओके तो अब शाम में आ ही गए हैं तो फिर ये शाम के शो की पहचान हुआ करता था गाना, क्यों नहीं चलेगा आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है भाई साहब, लट काट के मौसम बदल देंगे इस सोने भाई जमा जहज बना दूंगा, कोई ना बादशाह उच्चारण अमित

0: जी 6:05 हो लिए भाई, और क्या हाल है? बढ़िया
1: के ढंग से भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। एक एक मैसेज आया मेरे पास, भाई कह रहे हैं कितने घंटे का शो रहेगा? भाई 2 घंटे का रहेगा। कह रहे हैं भाई ये मत बोलना 2 घंटे का रहेगा। अरे ये मैंने बाद में पढ़ा 2 घंटे का रहेगा भाई, रहा करे 2 घंटे का शो शाम को, तो 5 से 7 ये आपको पता ही है। एक मैसेज, लकी आई एम ड्राइविंग कार लिसनिंग द शो, खैर मुबारक, शुक्रिया फॉर ईद विशेज। ऑफकोर्स ईद मुबारक सभी को। तो वक्त आ गया है मित्रों, सही विनर, सही विनर क्या होता है क्या आज मेरी वोकैबुलरी भी हो गई है, तो मैं कह रहा हूँ सही जवाब जिन्होंने दिया है उनमें से एक विनर चूज करने का वक्त आ गया है। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज हमें आज इस सवाल के बाद जो सही जवाब मिले हैं वो तकरीबन 37 सही जवाब मिले, 37 गिनती के हिसाब से, और इन 37 नंबर्स को अब रेंडमाइजर में पुट करके वी विल गेट वन नेम। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई ईद मुबारक। इनका नाम सबसे पहले हटाओ इनसे, अगर इनके पास कोई पुराना औजार वो भी छीन लो भाई सुन ही नहीं रहे हैं, मैं इतनी देर से अपना नाम भूले जा रहा हूँ। आज मैं कह रहा फजील भाई कैसे हो फजील भाई, ये कौन सा इनके नाम की गुड़िया बना रखी है आपने, तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं, क्या चक्कर है ये? एक मैसेज, यही मुबारक डोवाल सुकन इन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं शुरू करता हूँ, देखते हैं कौन है आज का विनर। सवाल ही था कि बकरों की, डोमेस्टिक गोट्स की कितनी स्पीशीज होती हैं? ठीक है भाई, ये इसमें एक ट्रिक ये थी कि मैंने बोला था आपको स्पीशीज पे फोकस कीजिएगा, जिन्होंने 4-5-75 हजार, कहां से उनको ये जवाब मिला मुझे ये जानना है, बिकॉज ये AI भी नहीं बता रहा होगा। हाँ AI कंफ्यूज हो गया होगा, यार कल तक तो ये मुझसे बंदा फाइलें बनवा रहा था, आज मुझसे बकरों के बारे में पूछ रहा है तो सही जवाब जो है वो है एक, ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज। लेकिन जो लोग 300 कह रहे थे वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि ब्रीड्स है ना, वो ब्रीड्स जो है वो 300+ हैं, बट स्पीशीज कली जी एक, बस एक। क्या कह रहे हैं, प्लीज भाई बोल दो, रहा नहीं जा रहा। रहा नहीं जाता ये है। अब जरा कॉल लगाते हैं, ये किनका नंबर हमारे पास आया है, इनको जरा कॉल लगाई जा रही है, देखते हैं ये नंबर कहाँ जाता है। ट्रिंग ट्रिंग, और अगर इनाम मिल चुका होगा तो इनाम ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो फिर नहीं मतलब है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: ये क्या नाम है आपका?
2: सहीफा।
1: अरे सहीफा, ये बताइए कि आप सुन रही थी कितनी देर से रेडियो?
2: जी हाँ।
1: क्यों सुन रही थी आप? क्यों सुन रही थी आप? क्यों उम्मीद है ये बताइए आप, वाई?
2: जब मैंने मैसेज किया तो मैंने कहा शायद जीत जाऊं, फिर मैंने कहा कॉल करके भी बोल ही देती हूँ, कोई बात नहीं।
1: अच्छा, तो मतलब आपकी जिद है कि आप जीत करेंगे?
2: हाँ हाँ, प्लीज प्लीज।
1: ये प्लीज प्लीज क्या होता है यार, ये तो कमाल हो गया। अब आपका नाम आ गया है, आदमी देखिए, हम देख रहे हैं कितने सीधे लोग हैं हमारे गांव के। अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी ट्यून किया है जीत चुके हैं सैफा जी, कांग्रेचुलेशंस।
2: थैंक यू सो मच।
1: मुबारक हो आपको, कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट के 500 का थ्रियल का वाउचर मिलता है। कांग्रेचुलेशन, आप उनमें से हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था, एंड बिल्कुल सही जवाब दिया था। आप ये बताइए कि आपको ये सवाल सुनकर कैसा लगा था? ये सवाल आपने सोचा था कोई आदमी पूछ सकता है?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ग्रैंडफादर मतलब रखते हैं, लाइक गॉड्स रखते थे।
1: अच्छा।
2: हम उनके साथ बड़ा बचपन में खेला करते थे, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी इस एनवायरनमेंट से यूज्ड टू नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है,
1: तो यूज्ड टू कराइए।
2: लेकिन हम नहीं, हम यहाँ कैसे कराएं, बस ये थोड़ी देर के लिए करा सकते हैं।
1: पिकनिक के नाम पे तवेले में ले जाइए एक बारी, घुमाइए उन्हें।
2: ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, घर जाते हैं खेल रहे हैं, लेकिन वो इतना यूज टू नहीं है, लेकिन हम बहुत खेला करते थे।
1: अच्छा,
2: बकरी के बच्चों के साथ, बकरी के साथ। लेकिन ये कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उसकी कोई, लेकिन मैं भी सोच रही थी कि उसकी स्पीशीज तो नहीं हो सकती।
1: बकरा भी कह रहा मुड़के है, क्या पूछ रहा?
2: ब्रीड हो सकती है, लेकिन स्पीशीज नहीं, मैंने कहा फिर भी कंफर्म कर लेती हूँ मैं।
1: हाँ, ये ट्रिक। अरे एक साहब तो कह के गए ना 100 स्पीशीज होती है इसकी, बकरे कंफ्यूज मंडी में, क्या कह रहा है आदमी, 1000?
0: ये तो हमें नहीं पता. तो जवाब बड़े कमाल का है. बट ये बताइए, आपका इतना इतना इतना यूनिक नाम है, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना ये नाम. तो किसने दिया आपको?
2: अच्छा जी, नहीं ये मेरी जो सबसे बड़ी आंटी थी, यानी कि खाला थी, उन्होंने रखा था. वो सऊदी में एक्चुअली होती थी, तो मतलब उन्होंने बस आसमानी से ही फो पे कहा था कि मतलब मामा को कि मतलब हम चाहते हैं कि रखें अगर आप अच्छा लगता है तो.
0: अच्छी खाला है, बहुत बहुत रेयर स्पीशीज होती है, आपको पता है.
2: हाँ जी बिल्कुल, अच्छी है.
0: अच्छी खालाएं होना, अच्छी बुआएं होना, ये तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह. ठीक है, तो आपको ईद मुबारक, और इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से टीम कॉन्टेक्ट करेगी, एंड एक बार फिर से मुबारकबाद, ईद मुबारक.
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: एवरीवन,
2: थैंक यू, नाइस टू टॉक,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. तो भाई बहुत यूनिक नाम है इनका, सहीफा मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था. कांग्रेचुलेशंस बहन एक बार फिर से. एंड अगला सवाल कुछ देर में आ रहा है, एक दो गाने के बाद, पर आप तैनात रहिए अपने व्हाट्सएप के साथ. 666-22-107 नंबर है, 666-22-107. एंड यस, सही जवाब ये था कि बकरे की एक ही स्पीशीज होती है भाई, वो जो 300 प्लस दिखा रहा है आपको, ब्रीड दिखा रहा है, स्पीशीज एक ही है. प्लीज बकरों को भी कंफ्यूज ना करें, प्लीज ना करें. जहरा जबीन, नकाश अजीज देव नेगी, मेलोडी कह रहे हैं मेरा दिल टूट गया. क्यों टूट गया भाई? आपने 300 लिखा था मेरा भाई. 6:12 मैं दो हवाला कभी

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: देखो जी, बाकी तो फर्स्ट क्लास है। अगला सवाल जो है वो इंशाल्लाह अजान के बाद ही आएगा। तो इत्मीनान से थोड़ा सा ठंड, गाड़ी किधर उधर पार्क कर लीजिएगा, बहुत जरूरी सवाल आएगा जिससे गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी एक तरफ जाने के लिए। बड़ा ही डायरेक्शनल सवाल है, कुछ देर में। अरिजीत सिंह, फिलहाल लाओ फर्स्ट क्लास ईद मुबारक। मैं दोहा वाला कबीर, FM 107।

तो 666-22-107 नंबर है। एंड एक और मिस जाए, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा जवाब सही है। देखो मैं अगर सबको बताने लग गया जवाब सही है कि गलत है, फिर ना मैं फंस जाऊंगा, तो ये नहीं करा हूं मुझसे, फिर मैं फंस जाता हूं, फिर हर किसी को बताना पड़ता, हर किसी को। तो नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं। चंडीगढ़ वालों बताओ ना कितना महंगा है प्लॉट चंडीगढ़ में। गाना तो बन गया। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, ईद मुबारक आप सभी को। कहां हो रहा है फायरवर्क्स? 666-22-107 नंबर है।

सेक्टर 17 हाटी साधू बादशाह साथ में स्कोर दिला दे घर चंडीगढ़ में मेगा जी 6:38 हो गए। मैं सवाल दोहरा के जल्दी से गाना चला रहा हूँ क्योंकि टाइम बड़ा कम है। सो एक मैसेज आया, हम लोग मॉल ऑफ कतर आए, बच्चों का शो चल रहा है, वही देख रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। लॉट्स ऑफ लव यूसुफ भाई और हमारा प्यार फातिमा को स्पेशली प्लीज़। ये भाई भाई सवाल क्या था भाई, मैं मुलाकात के लिए, अरे भाई ऐसी कैसे, तो सवाल ये था कि फायरवर्क्स जो आज हो रहे हैं वो किधर हो रहे हैं, दैट इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, किधर हो रहे हैं, कहाँ पे हैं, इतना बताना है। 666-22107 666-22107। अब जितने मैसेजेस आएंगे वो लास्ट है, मतलब आपके पास आखिरी जो मौका है कुमार एंड ट्रेवलर्स रेस्टोरेंट के 500 कथे रियल वाउचर जीतने का, 2:51, इसके बाद कह नहीं सकती तो इसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।

जी गुड इवनिंग, ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद, जश्न जारी है। हनी सिंह सिमर कौर सिंह स्टार ओ कैंडी, 6:42 हो रहे हैं भाजी। मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और बहुत सारे मैसेज आ गए ने, मैं एक बारी फिर दोहरा दूं सवाल को। सवाल ये कि कतर में कहाँ हो रहे हैं आज फायरवर्क्स? वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ लोगों ने बोला भाजी मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो 666-22-107 कई सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। मैं टाइमिंग बता दूं, पहले तो 8:30 है, पर कहां पर है ये तो आप मुझे बताएं, क्योंकि सवाल का जवाब देना है आपने। तो बहुत सारे सही जवाब आ चुके हैं, इनफैक्ट इसमें सिर्फ एक गलत जवाब आया है। लुसेल बॉलीवुड क्यों लग रहा है आपको वहां पे? जस्ट बिकॉज वो अच्छा है, आपका फेवरेट है इसीलिए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं जी बढ़िया, और आप सुनाएं क्या हाल है आपके? तो विनर का नाम जो है अनाउंस करने से पहले जो है मैं कुछ खबरों की तरफ ही बढ़ूंगा, बट मीनवाइल आप अभी भी जवाब दे सकते हैं। बताइएगा मुझे कि कतर में आज कहाँ हो रहे हैं फायरवर्क्स? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पिछला वाला जो था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो मैंने जानबूझ के किया था, जानबूझ के, क्योंकि मैं जानता था कि वो सवाल फंसाएगा लोगों को। पर अभी जो है आप ये जवाब दे दीजिए। मीनवाइल मैं कुछ खबरें बता देता हूँ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आप सवाल पूछे थे इतने सारे, इज रीडिफाइनिंग बेसिकली, इसके काम को कतर में और भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है माशाल्लाह, और इस पर काम चल रहा है। सो इसको लेकर एक बातचीत हुई है, कतर फाउंडेशन की जो एजुकेशन सिटी स्पीकर सीरीज है वो जारी है, एंड इसमें रीअश्योरेंस दी गई है कि जो डर लगता है लोगों के टेक्नोलॉजिकल टेक ओवर हो जाएगा, नौकरियां छिन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एआई से फ्यूचर में काम आसान होंगे, एआई खुद कुछ काम करेगा ऑफ कोर्स, मगर उसको इनपुट देना, उसके काम को एक शेप देना, ये काम तब भी इंसानों करेगा। सो तो वो जो फेयर है उसको लेके बातचीत हुई है। एआई विल ओनली रीशेप द रूल्स, बट पूरी की पूरी इंडस्ट्री वाइप आउट किसी भी केस में नहीं करने वाला। सो अगर आपके जहन में ये बात आ रही है, ना जी ये नहीं होगा, तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। इसके अलावा कतर में जो डायबिटीज़ कतर, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम, और ये माओं के लिए और बच्चों के लिए है, स्पेशली वो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और ये रिसेंटली हुआ। इसमें 25 माओं ने पार्टिसिपेट किया है, और पूरा डेली जो दिन का फोकस रहा है इस बात पर बातचीत हुई, एजुकेशन, पेयर सपोर्ट और प्रैक्टिकल डायबिटीज़ मैनेजमेंट को लेकर। तो इन बातों का ख्याल रखिए, अगर अर्ली एज में डिटेक्ट होता है तो यू कैन ऑब्वियसली गेट इट चेक्ड। एंड क्या क्या करना है इसके लिए, तो कतर मीडिया कॉर्पोरेशन के आपके नियर बाय PACC जो मेडिकल कार्ड पे, तो उन पे जाइए। इसके अलावा मौसम विभाग जो कह रहा है, आज जो टेम्परेचर था भाई, गाड़ी पे जब टेम्परेचर आया

0: पर मैंने कहा ये क्या मजाक है. तो वो तो ठीक है, वो तो कई मरतबा फ्लक्चुएट होता है, बट राइट नाउ 38 degrees एंड 29 मिनिमम 43 मैक्सिमम, समझ रहे हैं, और यही मौसम कल भी रहने वाला है. अब जरा वक्त आ गया कि आज के जो हमारे विनर हैं, हमारी विनर हैं, उनको कॉल कर ली जाए. तो सवाल बड़ा सिंपल था कि कौन है वो, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो आज जीत के जाएगा. सो 666-22-107 वॉज द नंबर. एंड मैंने पूछा था कि कहां पर हो रहे हैं फायरवर्क्स आज. बहुत सारे लोगों के जवाब आने के बाद अब वक्त आ गया है कि किसी एक शख्स को कॉल कर ली जाए. ठीक है, तो मैं कॉल करने जा रहा हूं और रैंडमाइजर में इनका नाम अब आ चुका है. बस अब कॉल करनी बाकी है, कॉल जा रही है. आई होप मैंने गलत नंबर तो नहीं मिला दिया, सही तो लग रहा है. अस्सलाम वालेकुम. अरे अरे अरे अरे अरे अरे भाई साहब क्या हो गया
1: भाई
0: भाई भाई अरे भाई क्या हो गया भाई,
1: अरे लाइट मार दिया भाई.
0: अरे अरे अरे अरे भाई साहब पानी पानी भी पानी दो पानी दो. क्या हो गया
1: भाई, बोल दो या तो फिर छोड़ दो, बताओ जाने दो, बताओ जाने दो, मत बोलो तो मैं इसके बाद में फिर एक बात करूंगा मैं.
0: तो बताऊं बताऊंगा ना बताऊं
1: बता दो या तो फिर मैसेज कर दो भाई, क्योंकि मेरा तो रहा नहीं जा रहा भाई.
0: भाई जीत चुके हो 500 कसरी रियाल का वाउचर फ्रॉम कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट. मुबारक मेरे भाई, जम के रज
1: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई. अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, सर पे अभी टोपी जस्ट नीचे उतार रहा हूँ मैं, बोला अल्लाह पक्ष पर मुलाकात करके आता हूँ, मरना कबीर भाई किसी और को जिता देंगे. अल्लाह की कसम
0: भाई, ये मत इल्जाम लगाओ कबीर भाई किसी को नहीं जिता रहे मेरे भाई, ये बड़ा मुश्किल होता है.
1: वैसा नहीं मतलब कबीर भाई, मैं नमाज गया था ना, जाके आने में टाइम तो नहीं हो गया, मतलब कबीर भाई
0: क्या प्लान है मेरे भाई का अभी, इसके बाद क्या प्लान है अभी
1: भाई? सच्ची बता रहा हूँ, रिचार्ज खत्म हो गया, पहले तो रिचार्ज कराऊंगा.
0: ठीक है, उसके बाद क्या प्लान है?
1: उसके बाद में भाई कभी भाई के लिए नमाज पढ़ के दुआ करूंगा.
0: अरे मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मेरे भाई को. और घर में बातचीत हो गई?
1: जी भाई कबीर भाई, दुआ घर में सबसे बातचीत हो गई, माशाल्लाह घर वाले बहुत याद कर रहे, कल बकरा काटने का टाइम है इसलिए.
0: अच्छा, कल तो ईद है इंडिया में इंशाल्लाह. ठीक है भाई, मेरा भी पैगाम पहुंचा दी देना वहाँ पे, और बोलना मेरी तरफ से भी ईद मुबारक.
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई. तो ये कब तक इनाम आ जाएगा भाई?
0: भाई इंशाल्लाह देखो, ये अभी जाएगा, ऑफिस खुलेगा इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी तुम्हारा नंबर.
1: शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: नो प्रॉब्लम मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से. ईद मुबारक मेरे भाई.
1: ईद मुबारक भाई.
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो. ओके मेरा भाई. तो दोनों विनर हमारे बन चुके हैं, और इस गाने के ऊपर मिलते जरा ईद की वाइब रुकनी चाहिए, ईद उल अज़हा. और आज के जो फायरवर्क्स हैं वो है कतारा में 8:30 बजे बीच फ्रंट की तरफ. कतारा में फायरवर्क्स, जो लोग उस तरफ जा रहे हैं, काफी उम्दा ट्रैफिक हो रहा है भाई. कॉन्ग्रेचुलेशन.

ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद तहे दिल से, और साथ भी बच चुके हैं, आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी आ गया है, लेकिन इंशाल्लाह भी कल भी लौटूंगा, परसों भी आऊँगा इंशाल्लाह। चार दिन का सिलसिला है तो आज से लेकर चार दिन लगा लीजिए, मैं 30 तारीख तक हूँ आपके साथ। तो ईद का ये जश्न जारी रहेगा और हर रोज़ विनर्स बनते चले जाएंगे। सब्र रखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आएगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहें तो मैं भी वहीं मिल जाऊँगा आपको। दोहा वाला कभी टाइप कीजिएगा, मैं ही हूँ उस नाम से, कोई नहीं है, तो मुझे भी आप ढूंढ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, आई नो आई एम नॉट रियली लाइव देयर, बट मैं आ जाऊंगा जी, एक्टिव हो जाऊंगा। अब की बार मैंने दोबारा प्रॉमिस किया, लोग मुझे भगा भगा के मारेंगे पर नहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड ड्राइव सेफली, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलामा।

बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। राब्ता करने के लिए नंबर है 2350888। शाहनिया सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है। राब्ता करने के लिए नंबर है 2352888। रैयान सेंटर के वर्किंग आवर्स सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हैं। राब्ता करने के लिए नंबर है 2350333। ओम सनीन सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खिदमात फराहम करता है और राब्ता करने के लिए नंबर है 2351151। अलवाकरा सेंटर के वर्किंग आवर्स सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हैं। राब्ता करने के लिए नंबर है 2351055। ओम सलाल सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है। राब्ता करने के लिए नंबर है 2351842। अलशमाल सेंटर के वर्किंग आवर्स सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हैं। राब्ता करने के लिए नंबर है 2351900। अलखोर सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खिदमात फराहम करता है। राब्ता करने के लिए नंबर है 2351299। सूक वाकिफ सेंटर सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है और राब्ता करने के लिए नंबर है 2340444। और वहीं HMC सेंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खिदमात फराहम करता है। राब्ता करने के लिए नंबर है 2350377। इन तमाम सेंटर पर मुकर्रर औकात के मुताबिक अवाम को मुकम्मल सहूलियात के साथ सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से टनल्स के अंदर महफूज ड्राइविंग के लिए हिदायत जारी की गई है, जहां ड्राइवर से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की गई है। मुकर्रर की गई स्पीड लिमिट्स के साथ साथ ड्राइविंग के दौरान हेडलाइट्स ऑन रखना और दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। ड्राइवर्स को मुकम्मल स्पीड लिमिट्स की पाबंदी करनी चाहिए और किसी भी सूरत में दाएं या राइट हैंड साइड की तरफ से ओवरटेक करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखना भी इंतहाई अहम है, ताकि किसी भी अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। ट्रैफिक रूल्स पर अमल करते हुए अपनी लेन के अंदर रहना लाजमी है, क्योंकि लेन डिसिप्लिन रोड सेफ्टी को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तमाम ड्राइवर्स को चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के फरोग में अपना किरदार अदा करें और जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करें। पुलिस एकेडमी ने, जो कि पुलिस इंस्टीट्यूट के जरिए रिप्रेजेंट की गई 2026 के सेकंड क्वार्टर के लिए ट्रेनिंग और तखस्सुसी कोर्सेज के अख्तिताम पर एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में लीगल एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और जनरल सुपरवाइजर पुलिस एकेडमी मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अलमाल ने शिरकत की, जबकि कई डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स और सिक्योरिटी और मिलिट्री इदारों के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। इस साल के सेकेंड क्वार्टर के दौरान पुलिस इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग और तखस्सुसी कोर्सेज मुनक़िद किए, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ सिक्योरिटी और मिलिट्री इदारों से 683 ट्रेनीज ने शिरकत की। ये प्रोग्राम्स रेडीनेस बढ़ाने और प्रोफेशनल और तखस्सुसी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्तलिफ फील्ड्स शामिल थी, जिनमें कमांडो ट्रेनिंग, डाइविंग, रैपिड इंटरवेंशन, इंस्पेक्शन, साइबर सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पॉन्स के कोर्सेज शामिल थे, जबकि प्रोमोशन और तखस्सुसी क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग इदारों के तायुन से मुनक्किद किए गए। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेनीज को इज्जत दी गई, जबकि ग्रेजुएट्स ने मिलिट्री परेड पेश की, जो म्यूजिकल बैंड के साथ थी। इसके अलावा फील्ड एप्लीकेशंस और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑपरेशंस की सिमुलेशंस भी पेश की गईं, जो जदीद ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनकी तैयारियों और प्रोफेशनल सलाहियतों को जाहिर करती हैं। तकरीब के बाद शिरकत करने वालों ने कमांडो कोर्स के लिए मुकर्रर एग्जीबिशन का दौरा भी किया, जहां फील्ड ट्रेनिंग मेथड्स को दिखाया गया और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स और टूल्स की नुमाइश भी की गई। वजारत दाखिला ने वाजे किया है कि अब रेसिडेंस परमिट की रिन्यूअल मेहतराज ऐप के जरिए आसानी से की जा सकती हैं, और इसके लिए जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट या किसी भी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। मेहतराज ऐप पर रेसिडेंस परमिट रिन्यूअल स्टेप्स क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेहतराज ऐप ओपन करें, रेसिडेंसी विंडो पर जाएं, रेसिडेंसी प्रोसीजर्स सेलेक्ट करें, रेसिडेंसी रिन्यूअल पर क्लिक करें। जिस शख्स की
रेसिडेंसी रिन्यू करनी हो उसका नाम सिलेक्ट करें, पेमेंट मेथड चूज करें, फी अदा करें, प्रोसेस कंप्लीट करें, रिन्यू

0: के बाद नया रेसिडेंस कार्ड कतर पोस्ट के जरिए डिलीवर किया जाएगा। तो याद रखें, मैत्राश ऐप आसान है, तेज है और सहूलत भरी सर्विसेज फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वान तुम बख।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश, एफएम 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं इस शो में जिसका नाम है जश्न ईद, और पूरे दो घंटे यानी 8 से लेकर 10 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:01।
2: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हाँ जी दोस्तों, इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे, और ईद को सब की ईद की मुबारक सभी को, मेरे भाइयों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त और एंजॉय करने के लिए निकले हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए निकले हैं, आप सभी को ईद की बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। और जश्न ईद ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपको जीतने का भी मौका है, क्योंकि अगर ईद में ईदी ना मिले तो वो ईद थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। और ऐसे हमारे साथ तो ऐसे तो होता है यार, हमारे माँ बाप जो हैं अब वो अपने मुल्क में हैं या फिर हमारे रिश्तेदार अपने मुल्क में हैं, तो ईदी हमें नहीं मिल पाती। एक ईदी वो होती है जो आप मांगे और मिल जाए, एक ईदी वो होती है जिसमें लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है और आप ना बहस करते हैं, तो वो बहस वाली ईदी जो है हमारी नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ ये है कि ईदी आपको FM 107 बिल्कुल देगा,
1: बिल्कुल ना यहाँ पे आपको लड़ना है ना झगड़ना है, बल्कि हम खुद आपको जो है वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ हर रोज 2 लकी विनर्स जो है वो जीतने वाले हैं बहुत ही कमाल धमाल के 1000 वर्थ गिफ्ट वाउचर। तो भाई आपके पास मौका है, करना आपको क्या है, सिंपली पार्टिसिपेट करना है। हमारे पास छोटे से सवाल है, मतलब सवाल क्या कहेंगे बल्कि टॉपिक है जिस पर जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबके हम यहाँ नाम लिखते जा रहे हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड 2 लकी विनर्स के हम यहाँ पे नाम निकालने वाले हैं। जो लकी होंगे और जीतेंगे मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से 100 कथरियाल गिफ्ट वाउचर।
3: एग्जैक्टली, तो ये इतना बड़ा वाउचर है और 1000 कथरियाल का, और मजेदार ये वाउचर है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी मसले आ रहे हो कि आज मैं सोच रहा हूँ, जो दांत मेरे फजील वाले टेढ़े हैं एक दांत, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है दांत टेढ़े वाले को सीधा करा ले, वो करा लेना ये लगे कि यार लीवर को साफ कराना है अलग से, है ना, अंदर जो है वो बोतलें जब हम साफ कराते थे बचपन में, अम्मी हमसे कराया करती थी, तो एक ऐसा होता है जूना जो फैला फैला सा होता है, बोतल के अंदर जाता है, सुकड़ जाता है, फिर बोतल के अंदर फैल जाता था, फिर ऐसे रगड़वा के अब अपनी किडनी विडनी साफ करा लिया आपने, है ना, ये सब करवा लिया,
1: मतलब पूरी तरह से डिटॉक्स
3: अंदर से,
1: अंदर से क्लेंसिंग होगी आपकी।
3: फिनाइल ना पी लेना कि हां ये फजील कह रहा था, लेकिन
1: नहीं, लेकिन जो भी कुछ पेंडिंग आपकी है, अगर आपको चेकअप्स कराने हैं या कुछ और भी ऐसा कुछ है, तो यस आपके पास यहाँ पे 1000 कथरियाल का वर्थ वाउचर आपको मिलना है। फ्री में आप जो भी फैसिलिटी चाहेंगे अवेल कर सकते हैं विद इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो मुझे लगता है ठीक ठाक अमाउंट है इसमें, आप 2-3 तो टेस्ट आराम से हो ही सकते हैं। हाँ
3: हमारी सैलरी का 50% है
1: तो आप सोच ही सकते हैं कितना बुरा हाल है हमारा,
3: तो अच्छा खासा है। और फिर देखो हम अभी मजदूरी भी कर रहे हैं
1: और हमें कोई गिफ्ट वाउचर मिलेगा,
3: हमें मिलेगा ना महीने के आखिर में, वही 50% मिलेगा ये हमारी सैलरी से तो कट रहा है।
1: सही बात है।
3: चले जोक्स अपार्ट, ये भी बताना जरूरी है, अब हम आज का टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या?
1: बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं कि आप जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कि आपको अच्छा लगता है कि आप जो है ईद सेलिब्रेट करें सिर्फ अपने फैमिली के मेम्बर्स जो

0: मतलब बिल्कुल क्लोज है उनके साथ या फिर आपको लगता है कि आपको मजा तब आता है जब दोस्त वगैरह होते हैं और बाहर आउटिंग वगैरह करने को आपको मौका मिलता है तब आपको लगता है कि हाँ अब जाके कहीं मेरी ईद जो है ना वो मनी मतलब पूछना ये है कि हल्ले गुल्ले वाली ईद आपको पसंद है या थोड़ी सी क्वाइट ईद आपको पसंद है
1: हल्ले गुल्ले नहीं हो तो फिर मजा गया ईद का मेरा तो है कि शोर शराबा होना चाहिए जब तक सेवइयों के लिए लड़ाई ना हो या फिर जब तक चाचा में और अब्बा में बड़े लड़ाई बड़े अब्बा में हाँ लड़ाई ना हो जाए किसी बात को लेकर अरे तुम्हारे घर नहीं पहले हमारे घर आएगा कसाई अरे तुम्हारे घर कैसे आ सकता पहले मैं बात करने गया था अरे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं
0: अरे फजील तुमने बिल्कुल सही बात कही तो सच में हाँ
1: तो जब तक ये ना हो जाए तब तक क्या मजा है फिर बताइए है ना रूट कर बैठ जाए कलेजी एक बड़े अब्बा के प्लेट में ज्यादा आ जाए चाचा के प्लेट में कम आए उस बात को लेकर कलेजी को लेकर आपस अब्बा के कलेजे और अम्मा के कलेजे दोनों आपस में लड़ रहे हो तो उसी में तो मजा है ना तो मुझे तो लगता है हल्ले गुल्ले वाली आपको कैसी वाली पसंद है
0: मुझे डिपेंड्स वैसे फिर भी ईद की बात ये है जो मतलब जब तक दोस्त के साथ आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं दावतें नहीं हो रही हैं थोड़ा सा इंटरेक्शन नहीं हो रहा तब तक क्या ही ईद है मतलब सिंपल ईद तो फिर वैसे लगेगी जैसे हर रोज आप दिन स्पेंड कर रहे हो क्वाइट सा
1: कुछ लोगों को लेकिन बहुत सुकून वाली ईद चाहिए होती है
0: कुछ लोगों को ईद में ना रेस्ट करना होता है तो वो बेचारे इतने टायर्ड इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि उन्हें लगता है कि ईद के दिन हम पर्टिकुलरली रेस्ट करेंगे आराम करेंगे सो फॉर दैट उनके लिए क्वाइट ईद है
1: बहुत काम कर लिया होता है इसलिए है ना तो लेकिन आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ हो
0: जैसे तुमने ये बोला ना कसाई को लेकर ये तो हमेशा हमने विटनेस किया है हर बार ही ऐसा होता है
1: हमारे अब्बा भी लड़ लेते थे कसाई को दूसरे घर से घसीट के लेकर आते थे चलो
0: हमारा टाइम था हमें पहले कराता तो फिर तुम कहीं और
1: हमारा कसाई बहुत स्मार्ट हुआ करता था
0: अच्छा पहले कर लो
1: आधा सेवा करके चला जाता था कहता बाकी जगह सेवा करेंगे फिर छोड़ छोड़ के चला जाता था
0: तो अच्छा,
1: हाँ नहीं आप लोग की तरफ नहीं होता था
0: नहीं ऐसे तो नहीं मतलब
1: 80% जगह तो मेरी तरफ यही होता था कि मतलब ऐसा हाँ, ज़िबा करा हाँ, फिर उसका थोड़ा मोड़ा जो काम करना था वो करा और करके फिर कहीं और चला जाता था फिर सेम वहां पर भी यही करता था तो अगर छोड़कर चले आए तो आप किसी और को बुलाओगे वो ज्यादा पैसा लेगा मिसाल के तौर पे अगर 500 रुपए ले रहा है तो दूसरे को बुलाओगे वो भी 500 लोगे तो 1000 रुपए हो जाएगा तो ऐसे क्या करता था वो कि 10 जगह जाएगा सब क्या आधा आधा छोड़ के चला जाएगा फिर क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और कसाई दूसरा घर वाला बुक कर ले तो उसकी कमाई कम हो जाएगी ना
0: ओ अच्छा
1: ये भी बुद्धि लगाता था तो आधा आधा करके चला जाता अब मजबूरी है बैठे रहो दिन भर तो अम्मा भी बड़ा गुस्सा आती थी अब्बू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था आधा काम नहीं कराएंगे तो अब वो अगर ऐसा आधा जबा करके कहीं और चला गया
0: तो तुम लोग पैसे ही मत दो आधे दो
1: हाँ तो पैसे लेकर नहीं जाता था उसको अच्छा। पता है ना ये अब किसी और को नहीं बुला पाएंगे अगर किसी और को बुलाएंगे वो भी सेम अमाउंट लेगा और जबा करके आधा तो चला गया अब तो तुम्हें आधा तो देना ही पड़ेगा ना तो वो फिर पौने चला जाएगा ज्यादा चला जाएगा ना पैसा जेब से तो वो आधा करके चला जाता था और फिर बाद में खूब लेट में आता था करीब कभी दोपहर के 2 बज रहे हैं कभी 4 बज रहे हैं और फिर बाकी का काम करके जाता था तो हर घरों में वो ऐसे करता था सुबह 9 बजे से लेकर आखिरी जब काट देगा फिर शुरुआत में पहले कर तो अब्बा क्या करते थे
0: हाँ।
1: तो एक जबा करके चला गया दूसरे घर तो अब्बा पीछे पीछे से दूसरे घर जाके खड़े हो जाते बेटा तुम वहां करो वहां से तीसरे घर जाने नहीं दूंगा अब्बा वहां से पकड़ के ले जाते थे हमारे घर
0: तो
1: अम्मी हाँ अम्मी लेकिन इसमें बहुत खुश होती थी कि हमारे वाले मियां जो है हमारा मियां बचा लेता है
0: समझदारी कहीं तो काम आ रही है चलो हाँ ये तो है
1: ये अम्मी जो है बहुत खुश रहती थी तो काम हो जाता था और अम्मी सामने खड़े होकर काम कराती अम्मी वो वाली नहीं होती जो नाक में दम कर देती है हमारी अम्मी वो थी अरे भैया कीमा बहुत ज्यादा मोटा किया है पतला करो कितनी जल्दी है तुमको अल्लाह क्या कर तो वो अम्मी ऐसे
0: तो क्या वो मशीन में लेकर आता था कि बारीक निकाल दूंगा
1: हाँ, वो सब वो लकड़ा ले आपके घर हुआ है ना
0: तो वो लकड़ा बारीकी से नहीं गौर किया
1: नहीं हमारी अम्मा खड़ी होगी बीच में अम्मी बड़ी बड़ी आगे दिखा बारीक करो ऐसा होता था तो ये है आपके घर कुछ ऐसा
0: तुम्हारा कितना पार्टिसिपेशन
1: हमारा कोई पार्टिसिपेशन हमारा वो होता था अरे यार इसी को घुमाते थे पत्ता खिलाते थे चला गया हमारा तो कुछ नहीं था आपका कोई कनेक्शन था
0: नहीं मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ मैं इससे कभी भी नहीं गई आसपास मुझे थोड़ा सी हाँ मैं थोड़ा वही वाली चीज है
1: देख लो दोस्तों औरतों का सही होता है ना कितना सज धज के तैयार हो रही मेकअप वेकअप कर रही है सामने भी नहीं आ रही और मर्द लोग जो है लुंगी पहन के खून के छींटे लिए वो बनियान में
0: नहीं तो फिर औरतें बना नहीं रही है खाना देखो बना के दे रही है सर्व कर रही है दावते कर रही है बांट रही है हिस्से लगा रही है कितने काम होते हैं ऑब्वियसली हाथ तो जाहिर है उनके भी बेचारे
1: आई एक्सेप्टेड द डिफीट
0: तो बस आज का दिन जो है वो स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट डे है. आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमें बताइए कि आपने क्या कुछ किया, क्या यहीं पे कुर्बानी करवाई, या आप जो है वो पसंद करते हैं कि अपने कंट्री में वहां कुर्बानी करवाएं. क्योंकि कुछ लोग जो है ना पैसे भेज देते हैं, उन्हें लगता है कि चलो हम वहां पे करवा दें. हालांकि करना यही चाहिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें यहीं पे कराइए जिससे कि वो देखें समझें और उस चीज को अपनाएं और आगे अपने मतलब आगे

0: की जनरेशन को भी ट्रांसफर कर पाए लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है तो फिर भी आप हमें बताइए सब डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नंबर है 666-22-107 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77
1: बिल्कुल तो मोबाइल उठाइए 443-443-77 पे हमें कॉल करिए और कॉल करने के बाद हम आपसे रब्ता करेंगे सारी बातें करेंगे कि यू नो क्या कुछ आपने आज किया और क्या अगला प्लान है कल का क्या प्लान है कोई है लाइन पर जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: माशाल्लाह कौन बात कर रहा है
0: मुनीबा मुनीबा हमारे साथ है ईद मुबारक मुनीबा कैसी हैं आप
2: ईद मुबारक आप लोगों को भी ईद मुबारक
0: जी तो कैसी रही अभी तक आपकी ईद
2: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही क्योंकि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर पे कुर्बानी की थी
0: अच्छा माशाल्लाह
1: तो कौन कौन थे कितने लोग हैं आप लोग घर में सब साथ में आए थे आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे
2: फैमिली मेंबर्स भी हैं जी फैमिली मेंबर्स हैं और हम लोग वैसे मेरे जो है ना काफी सर मेरे बच्चों के दादा दादी भी साथ होते हैं वो पाकिस्तान गए हैं हाँ। इसलिए फिर हम लोग भी थे और कुछ और भी रिलेटिव थे और हम लोग घर पे ही करते हैं और जो असल फैसिलिटी होती है ना वो तो कुर्बानी के जानवर से ही होती है ना वो एक दो दिन पहले लाया जाए हाँ। उससे बच्चे खेलें उससे खिलाएं पिलाएं उसके साथ एंजॉय करें
1: करेक्ट पत्ते खिलाएं और फिर जब पत्ते खत्म हो जाएं तो बाजार से दोबारा रात को 11-12 बज रहे हो तो लेकर आए
2: वहाँ पर ना वहाँ पर पाकिस्तान में या फिर यहाँ इंडिया वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाता होगा ना चारा यहाँ बकरों का चारा ढूंढना जुए से लाने के मतराजी है कतर में
0: अच्छा
2: अगर तो आपने टाइम से साथ में वो क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफाइंड एरियाज है ना जहाँ पे आप पहले वो हमारे घर के बिल्कुल करीब होता थी बकरा मंडी उन्होंने दूर शिफ्ट कर दिया और जाहिर सारे एनिमल्स और उनका फूड वगैरह भी उससे आसपास ही अवेलेबल होगा तो दोहा में तो मिलता नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है
1: सही
2: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने घर में कुर्बानी भी की बच्चों ने ये सारा जो प्रोसेस है जो सारी हमारी रिवायत है जो हमारी ट्रेडिशन है जो इसकी फेस्टिविटी है वो बच्चे तभी एंजॉय करते हैं जब वो घर में कुर्बानी हो और बकरा घर में ला के रखा जाए
0: तभी बनती है एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी बात कही मुनीबा यहाँ पर हम ये भी आप लोग से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रेफर क्या करती हैं यानी ह्यूज गैदरिंग आपको ज्यादा अच्छी लगती है ईद में या फिर आप प्रेफर करती हैं कि क्लोज छोटी गैदरिंग हो
2: जितनी रौनक हो अच्छी लगती है लेकिन जितनी गैदरिंग हो पाए उस पर इत्तफाक करना पड़ता
1: हमारी अम्मी जो है ना सेवई बनाती थी तो वो तो अच्छे खासे क्वांटिटी में बनाती थी क्योंकि अब्बा बहुत दिन तक खाते थे लेकिन दही बड़े जो है ना वो 10 पीस बनते थे तो मुझे लगता था अम्मी चाहती थी 10 से ज्यादा लोग ना आए दही बड़े लिमिटेड बनते 10-15
0: तो बैटर तो रखते होंगे ना जो आएगा फटाफट फिर बना दूंगे
2: छोटी ईद पे काफी ज्यादा इस चीज का होता है कि आप जो ना स्वीट बनाए जो पहले दो दिन चल रहे फिर मेहमान आए उसको भी आप सर्व कर पाए और चीज और स्वीट बनती है लेकिन इस चीज से ये है कि फिर ज्यादा गोश्त का होता है तो यही कोशिश होती है कि स्वीट इतनी बन जाए ये दो तीन दिन तक जो भी मेहमान आते रहे उनके लिए एक स्वीट जो है ना वो फ्रिज में पड़ी हो
1: या तो सही कह रही हैं आप मुझे लगता है ये हो सकता है या तो अम्मी के अंदर ये चल रहा हो कि देखो हम बिरयानी और गोश्त बना रहे तुम वो खाओ या हो सकता है कि लोग ज्यादा खाते ही नहीं थे शुरुआत से हमें बहुत लेट में पता चला कि अम्मी दही बड़े अच्छे नहीं बनाती तो कम बनाती थी ये भी हो सकता है
2: मैं आपको बताऊँ फजील भाई ऐसा है कि दही बड़े ना फ्रेश अच्छे लगते हैं अगर ज्यादा बनाए ना दो तीन दिन तक चलेगी लेकिन दही बड़े आपको फ्रेश फ्रेश चीज के अंदर वेजीज भी होती है कुछ
0: आप आराम से ड्राई करके उसे फ्रिज में रख दीजिए ये आप अलग है कि जब आप जैसे गेस्ट आ रहे हैं अब आपने दही वही फेटा और तैयार करके ट्रे हाँ लेकिन आप असेंबलिंग तब कर ली लेकिन आप बना के उन्हें रख सकते हो स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम
1: ये वाली तो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए ये वाली बतानी नहीं होती है जितने लोग सुन रहे

0: ठीक है,
1: पुराने ही खिला रही दो
0: दिन, बिल्कुल ठीक है। फ्रीजर में भी रख सकते हैं,
2: अरे
0: रमजान के लिए हम बड़े बना के फ्रीजर में रख लेते थे,
2: रख लेते
0: हैं इसी तरह। हाँ, नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं आप सॉफ्ट वाले, और असेंबलिंग जो है ना बिल्कुल योगर्ट में मिक्सिंग और सब इंग्रेडिएंट्स वो।
1: अब पता है जब भी मैं नाजिया के घर दावत, अब जब भी मैं नाजिया के घर दावत करने जाऊंगा मैं दही बड़े तो नहीं खाऊंगा।
2: नहीं, मैं और चीजें बहुत अच्छी स्टोर करती हूँ चार दिन
0: नहीं खाती हूँ, मैनेजमेंट अच्छी होती है और वो आपको खराब चीज नहीं खिलवाए खिलाएंगी, बहुत ख्याल रखती है।
2: वो आपको खराब होने से पहले खिलवाएंगे।

0: कि भाई कीड़े को ना लगे इसलिए तुम लोग को लग जाए जी।
1: जिस चीज में फिर ये होता है कि जब नमाज पढ़ के आते हैं तो उसके बाद फिर कुर्बानी की और उसके बाद सबसे पहली रोटी बचती है मेरा ख्याल सब घरों में जाती है मेरा ख्याल। आप आप बताएंगी अब से
2: कलेजी सबसे जी जी जी बिल्कुल सबसे पहले यही काम होता है और ब्रेकफास्ट ही लोग उससे करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अमेजिंग
1: कलेजी भुनी जाती है और उसके बाद कोई सालन या चावल बना लेते हैं सब लोग और इस तरह फिर और उसके बाद फिर सबसे मेन प्रायोरिटी किसे कतर में ईद बहुत ईद की नमाज बहुत जल्दी होती है उसके बाद कुछ कम नमका के कुछ गोश्त का कुछ समेत थे
2: थोड़ा आराम मिल जाए बिल्कुल और खास करके इतनी चीजें आप बना रहे होते कर रहे होते
1: हैं। अब हम लोग इस वक्त हम लोग इस वक्त रास्ते में फायरवर्क्स देखने के लिए
2: पहुंच चुके हैं। ओह नाइस वेरी नाइस। चलिए आपने तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ईद मनाई कि आपने कुर्बानी भी की नमाज अदा की एंजॉय किया खाना पीना एंड फाइनली आप जा रही हैं। आप थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी कनेक्ट हुई। लास्ट तक जरूर हमारा शो सुनिएगा। अगर आप लकी रहें तो जरूर आज जीतेंगे गिफ्ट वाउचर। ओके एंड दैट टू वर्थ कथरीरियाल 1000।
1: अच्छा चलिए ठीक है मेरा कारण है। बाकी ये है कि आप लोगों का रेडियो चैनल बहुत अच्छा लगता है खास तौर पर जो इंटरेक्टिव जो आप लोगों का हमारे साथ रिलेशन है हम आप लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हैं आपके थ्रू सब लोगों से मुखातिब हो सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और
2: आप सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं तो ऑफ कोर्स हमें आपके साथ जुड़ना ही जुड़ना है। और जी जी जी बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर कॉल। एंजॉय रेस्ट ऑफ योर टाइम। टेक केयर।
1: ओके थैंक यू।
2: अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक।
0: क्या बात है मजा ही आ गया।
2: काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और हमें बताया भी। तो बस दोस्तों आज की ईद चल रही है जा रही है हम बहुत सारी बातें आपसे कर ही रहे हैं। हमें ये भी बताते चलिए कि आप जो है वो क्या पसंद करते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है कि अच्छी ह्यूज गैदरिंग हो लाविश पार्टीज हो या फिर आपको छोटी सी अपनी क्लोज फैमिली के साथ गैदरिंग करना उनके साथ ईद सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। जो लेट अस नो ऑन द नंबर 666-22107 या फिर डायरेक्टली आप हमें कॉल कीजिए। यहाँ पर जितने लोग हमें कॉल कर रहे हैं उनके नाम भी हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड दो लकी विनर्स को मिलने वाला है कमाल धमाल का गिफ्ट वाउचर।
0: बिल्कुल तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के कॉल लेंगे और मैसेज भी। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशियाँ।

विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर।

0: Right guys, welcome back. Jashne jari hai FM 107 pe Fazil aur Nazia hum dono aapke saath hai aur hamare saath ek caller bhi yahan pe connect ho chuke hain. Chaliye inse baat karte hain. Hello.
1: Assalamu alaikum.
2: Ji wa alaikum assalam.
1: बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों
2: आपको
1: को
0: खैर मुबारक जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक आपका नाम
1: निदा
0: निदा हमारे साथ है ऑलराइट सो निदा कैसी रही अभी तक आपकी ईद
1: माशाल्लाह बहुत अच्छी
0: वाओ क्या बात है जबरदस्त चलिए आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि आप बताइए आपको आप किस कैटेगरी को बिलोंग करती है पर्टिकुलरली कि आपको अच्छा लगता है कि फैमिली गैदरिंग ह्यूज हो या फिर अपनी क्लोज छोटी गैदरिंग आपको अच्छी लगती है और दूसरी चीज़ ये कि कुर्बानी का जब गोश्त होता है क्या आप वो एज इट इज़ ही अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करती है वरना कुछ लोगों ने ये भी ट्रेंड शुरू कर दिया है कि वो अपने घर दावत कर लेते हैं और वहीं पर सबको पका के खिला देते हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए ये भी एक तरीका है गेट टुगेदर भी हो गया और सबका हिस्सा भी उन तक पहुँच गया आप क्या प्रेफर करती हैं
1: एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये होता है कि ग्रैंड गैदरिंग्स होती हैं क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले भी यहीं हैं मेरे मायके वाले भी यहीं हैं फिर मेरी मतलब हमारी जो फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है माशाल्लाह तो इस तरह से होता है कि कुर्बानी सभी करते हैं माशाल्लाह और लेकिन इस तरह करते हैं कि पहले दिन एक घर में दूसरे दिन दूसरे घर में और फिर तीसरे दिन जो है वो तीसरे घर में तो इस तरह से जो है वो करते हैं लेकिन मुझे ग्रैंड गैदरिंग्स बहुत पसंद है
0: ग्रैंड गैदरिंग चलिए अरे वाह और जो दूसरा पार्ट है कि कुर्बानी का जो हिस्सा है वो गोश्त आप एज इट इज ही दे देती हैं रॉ या फिर भाई उसको बना के और उसी की दावत करती दोस्तों को बुला लिया कि चलिए यहीं पे सब एक साथ मिल बैठ के खा लेंगे व्हाट डू यू डू
1: हम लोग जो है वो जो गरीबों वाला हिस्सा है वो गरीबों तक पहुँचा देते हैं और फिर उसके बाद जो रिश्तेदारों वाला है तो उसमें ये होता है कि जैसे आज हमारे घर में दावत है तो जितने भी हमारे करीबी जितने भी रिलेटिव हैं तो जो है वो सब हमारे घर अभी दावत पे आएंगे तो वो जो रिश्तेदारों वाला जो हिस्सा है वो हम खुद बना के जो है वो फिर वो उनके साथ खा लेते हैं बैठ के साथ में
0: क्या बात है जबरदस्त
2: बहुत ही उम्दा अच्छा उसके अलावा आप क्या कुर्बानी वाला ये जो है हिसाब किताब वो कैसे होता मतलब आप अपने घरों में कुर्बानी करती हैं यहाँ पर या फिर आप अपने घर पे वहाँ पर कुर्बानी करती हैं
1: हम लोग हमारे घर पे बकायदा बकरे लाकर कुर्बानी करते हैं
2: क्या बात है अच्छा और इसमें इसमें वो वाला हिसाब होता है कि कलेजी हम खाएंगे चापे हमारी हैं अम्मी चापे बना दिए
1: नहीं इस तरह नहीं है मतलब लेकिन यह है कि वही दावत में जो इवन ये कलेजी का ये करते हैं कि दोपहर में हम जो है वो बना लेते हैं कलेजी का सालन तो लंच में हम कलेजी का सालन खा लेते हैं फिर वही उसमें जो है ना थोड़ा पोर्शन निकाल के बाकी जो है वो रात के जो दावत के लिए जो मेहमानों के लिए बना रहे थे उसके साथ फिर बाकी रख देते हैं तो इस तरह से करते हैं
2: ओके बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा बात करके थैंक यू सो मच
0: थैंक यू और हमें लास्ट तक जरूर सुनिएगा अगर आप लकी रही तो इंशाल्लाह जीतेंगे गिफ्ट वाउचर
1: इंशाल्लाह
0: थैंक यू सो मच
2: थैंक यू थैंक यू साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेलो

0: अपने फैमिली के साथ जाते हैं, फिर घर आना, कलेजी खाते थे, मैं कलेजी वाला आदमी था, मैं सेवई वाला आदमी था, फिर बाहर में पतंगबाजी करता था। आपका क्या हिसाब है सुबह से लेकर शाम तक, आपको बताना ठीक है?
1: सही है, सुबह हम लोग बचपना में जाड़े में कुर्बानी का दिन आता था, तो हम लोग का एरिया मुस्लिम एरिया है और एक बाग पड़ता है, जगह बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत भैंसे आती थी, एक महीना पहले से भैंसे आती थी, वो जो गेहूं का पोरा निकलता है ना, वो जो भैंस पालने अरे बेचने वाले थे वो लेके आते थे वहाँ, एक एक महीना दो दो हफ्ता तीन दिन जैसे आप उसकी भैंस बिकती थी वैसे
0: वो
1: रहते थे, वहीं सोते थे, तो वो मजा कहीं मैं नहीं देगा।
0: सही,
1: बहुत अच्छा लगता है, एक महीना पहले से, अभी तो एक दिन
0: वो एक तरह से मुल्क में मेला लग जाता है, मतलब उस शहर में। तो आप कहाँ के रहने वाले भाई?
1: मैं यूपी का मऊ नाग भंजन का, आजमगढ़।
0: तो आप जुबैरगंज की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, जुबैरगंज
1: नहीं, नहीं, नहीं मऊ मऊ
0: मऊ में समझ गया,
1: मऊ नाग भंजन कोपागंज मेरा घर है।
0: हाँ ये भी बड़ा अजब रहता है वो, मतलब पूरे इंडिया के और स्टेट के अलग अलग स्टेट, इवन पंजाब से हैदराबाद से लोग आते हैं उस जगह पे। अच्छा? और बहुत बड़ी, मतलब एक मंडी की तरह है वो, बहुत बड़ी मंडी, करीब करीब 1,00,000 भैंसे होती होंगी ऐसा समझिए, बहुत बड़ी।
1: और कुर्बानी के दिन तो पूछना ही था, दोस्त का ग्रुप रहता था बस, आगे कलेजी खाने के बाद फिर कहाँ घर में बाहर ही।
0: सही, यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ऐसा समझ ले, यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका 10 गुना होगा शायद, वो भी छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा होता था ये, कुछ जगह है।
2: अच्छा चलिए, हमें पता नहीं था, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ आपने बताया।
0: चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच
2: जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सो यस दोस्तों, यहाँ पर ईद का जश्न जारी है, फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं, अभी हमारा और आपका साथ पूरे 1.5 घंटे का और भी है। फिलहाल के लिए आर वी गोइंग फॉर अ ब्रेक, राइट? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ आपको बताएंगे कहाँ कहाँ एक्टिविटीज चले जहाँ आप जा सकते हैं, एंड ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन आप हमारे साथ कर ही रहे हैं, करने के लिए नंबर है 4434377, यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आप लकी विनर बन सकते हैं और जीत सकते हैं
0: 1,000 का वाउचर। yes. ये मेडिकल वाउचर होगा।
2: यस, सो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए एंड सुनते रहिए जश्न ईद ओनली ऑन FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 8:45 ऑन द क्लॉक एंड यस हम वापस आ चुके हैं हमारे साथ एक कॉलर भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है फैजान

0: फैजान, क्या हाल चाल फैजान भाई? फैजान अंसारी?
1: नहीं, शेख फैजान।
0: अच्छा शेख फैजान, कैसे हैं शेख साहब?
1: मैं ठीक हूँ फजील भाई, आप बताएं कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया। वैसे शेख भाई अपने मुल्क जाते होंगे और वैसे ही है कि अरे गल्फ में तो शेख रहते हैं, और जब आप नाम बताते होंगे शेख फैजान को वो और उल्टा कहते होंगे तुमने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया, पूछते हैं वो?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है कि हम कौन है।
0: अच्छा
1: खैर, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: आपको भी बहुत
2: ईद मुबारक।
1: और नाजिया जी, आपका जो आज का माशाल्लाह ड्रेस था वो भी बड़ा अच्छा था, मैंने देखा था फेसबुक पे आपको सुबह।
0: हाँ,
1: और जो है ना सुबह वहीं से मुझे पता चला था कि आज कोई प्राइस भी रखा हुआ है आपने।
0: आपने वीडियो देखी होगी ना?
1: जी,
0: हाँ, तो तीन दिन पुरानी वाली आज वाली ड्रेस नहीं देखी फिर आपने?
1: अरे सर मैंने सुबह देखी है ना।
0: अच्छा आपके लिए, हाँ चलिए आज ही सही, ठीक है।
1: जी।
0: वैसे तो क्या कहते हैं, हम ईद पर आते हैं, ठीक है, कि आप ईद अपने घरों में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आपको ईद कैसी पसंद है, भीड़ वाली लोगों के साथ या फिर सुकून से 8-10-5 लोग रहे, भाई मुझे 20-25 लोग नहीं चाहिए, आपको ईद कैसी पसंद है?
1: जी फजील भाई, अभी तो खैर मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान, ये जो वार की वजह से, नहीं तो मेरी जो प्रीवियस ईदें गुजरी है माशाल्लाह फैमिली के साथ, और जो ना फ्रेंड्स एंड फैमिली गेट टुगेदर होता था, तो दो दिन तीन दिन बहुत मजा आता था। इस बार ही है वो ही अपने जो पुराने दोस्त हैं, वो जिस टाइम पे मैं खड़ा हुआ करता था, तो आजकल उनके साथ मैं घूम रहा हूँ और यकीन करें बहुत मजा आ रहा है।
0: क्या बात है, बहुत ही अमदा
2: पॉजिटिव है, देखो हर चीज में खुश है माशाल्लाह, ये होना चाहिए। चलिए फैमिली नहीं है तो जो फ्रेंड्स है उनके साथ एंजॉय करना, मतलब ये है कि एंजॉय करना है, खुश है।
1: जी, मैं एंजॉय करूं। और कल भी हम जो थे वैसे निकले थे, कल भी ऑफिस से ऑफ था, आज भी निकले हुए हैं बाहर, और बस अभी खाना शाना खाया है।
0: हाँ नहीं, देखिए आपके नाम में शेख लगा हुआ है तो आपका आसान तो होना चाहिए माहौल, अगर आपके माहौल हल्के नहीं हो रहे तो फिर तो हम क्या ही, हम तो समझ जाएंगे फिर तो कुछ तो मसला चल गया। तो अब आपके नाम में शेख है और आपकी 4 दिन छुट्टी ना हो कैसे चलेगा?
2: कैसे हो सकता
1: है? और ऊपर से इंजीनियर भी होना तो शायद वो इसलिए एक
0: हाँ, और जला लो भाई क्या कह के हम तो इसीलिए हैं।
1: अभी तो मैंने ये नहीं
2: किस प्रोफेशन में
1: मास्टर्स यूके से किया है।
2: अच्छा मास्टर्स यूके से किया है?
1: हाँ जी,
0: बर्मिंघम
1: से।
2: अब थोड़ी देर तक और बात हुई तो ये डॉक्टर बन जाएंगे।
0: अब क्या भस्म करके ही मानोगे मेरा भाई?
1: वो एक फिल्म थी ना, इंडिया की फिल्म थी, वो कहता नाम बताओ, चंदू स्वामी मुत्तु स्वामी वीर गोपाल
0: अय्यर। अब सुनते जाओ बेटा, तो
1: ना बढ़ती जाएगी।
0: मेरा भाई, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, और ये अच्छी बात नहीं कि ईद के दिन गुस्सा आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भाई।
2: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमें लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपका नाम हम यहाँ पे लकी ड्रॉ में डाल रहे हैं।
0: और कोई डिग्री ले रहे हैं क्या आजकल?
2: पीएचडी तो है इनके पास, डॉक्टर।
0: और कोई भी डिग्री ले रहे हैं क्या जाते जाते?
2: डबल पीएचडी।
1: अल्लाह
2: हाफिज़। अब नहीं चलाऊंगा।
0: ओके भाई, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
0: ओके, एक और कॉलर है जी। हेलो,
2: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही है?
2: वालेकुम सलाम। वालेकुम
0: अस्सलाम,
2: ईद मुबारक। कौन है मार्शल?
3: ईद मुबारक नाजिया जी एंड फजील भाई, मैं, मेरा नाम इस्माइल खान है।
2: इस्माइल खान
0: साहब, क्या बात है, कैसे हैं इस्माइल भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप सुनाए, आप लोगों की ईद कैसे गुजरी?
0: साहब की दुआ है माशाल्लाह, आपकी आवाज में चहक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आज पहली जो ईद है वो सबसे अच्छी आपकी ही मनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बनी। मैं आज बेटी के घर का विजिट किया, वहाँ गया, वहाँ गोश्त वोश्त खाया, खुद तो कुर्बानी की नहीं, तो फैमिली पाकिस्तान में, लेकिन एक बेटी इधर है।
0: अच्छा,
3: तो उसके साथ मिला मैं।
0: अरे वाह,
3: तो माशाल्लाह बहुत,
0: मतलब
3: अच्छा।
0: बच्ची यहाँ पढ़ाई कर रही है या फिर
3: नहीं? वो हाउस वाइफ है।
0: अरे वाह, ये तो अब्बा के लिए सबसे अच्छी बात हो गई।
2: नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन होल्ड पे चलेगी कॉल,
0: बेटी की कॉल आ गई होगी ना? हाँ, तो भाई बेटी जरूरी है।
2: बेटी का नहीं, अब्बा क्या क्या आपको बोलना है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हम।
0: कोई बात नहीं भाई, आप अपना टाइम ले लिए, होल्ड पे गया है या गलती से गया होल्ड पे, कट गया अब कॉल। खैर कोई बात नहीं, एक और कॉलर को ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है?
4: आयशा
0: खानम। आयशा
2: खानम,
0: कैसी हैं आयशा आप?
4: आप कैसे हैं? ईद मुबारक।
0: आपको भी ईद मुबारक। क्या किया आज ईद के दिन आपने, सुबह से लेकर अभी तक?

0: से तो दावतें थी बहुत सारी।
1: ओफो, दावत नहीं दावतें।
2: दावतें थी बहुत सारी थी। कितनी दावतें थी बताइए, काउंट करके।
0: बहुत सारी थी,
1: बहुत सारी थी।
2: अच्छा आज तो फाइव
1: किस घर की दावत, किस घर की दावत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? उस घर की जहाँ भीड़ होती है, या फिर उस घर की जहाँ पर थोड़ा सुकून से बैठकर खा सकते हैं या बात कर सकते हैं या खेल सकते हैं?
0: जहाँ पे भीड़ होती है।
1: जहाँ पर
2: अच्छा?
1: भीड़ होती है।
2: ओहो, मुझे
0: क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, उनके साथ खेलने में मजा आता है।
2: तो ये बताइए, आपने ज्यादा करके खेलने में टाइम स्पेंड किया या खाया पिया अभी?
0: मैंने ज्यादातर खेलने में स्पेंड करा।
1: खेलने
2: में उन्होंने किया ज्यादातर।
1: तो अच्छा, घर पे हर जगह दावत थी, तो घर पे कुछ दावत हुई थी या फिर दूसरे घर के, दूसरे के घर पे जाके?
2: नहीं, इनके घर है ना।
0: नहीं, हमारे हर साल होती है, लेकिन इस साल हमने नहीं करी।
1: अच्छा, इस साल आपने नहीं करी, बाकी के घरों में आपने दावत करी है, ऐसा ना?
0: जी, रमजान में भी करी थी।
1: तो आप कैसे अपने अम्मी का हाथ बटाती है या अम्मी की हेल्प करती है जब आपके घर में दावत होती है? तो
0: मैं पूछती हूँ, लेकिन मम्मा कह दिए कि तुम काम बढ़ा दोगे तो इसलिए बच्चा इसलिए
1: बैठ
0: कि तुम नहीं
1: करो। देखे, देखे, कोई बात नहीं, मेरी अम्मी भी यही कहती थी।
2: बेचारी। इफ यू डोंट माइंड आयशा, आपकी एज क्या होगी?
0: मेरी 11।
2: तो सपोर्ट कर सकते हैं, अम्मा को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस?
1: नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी 10 साल का था तो अम्मी कहती थी हाथ जोड़कर बेटा तुम मत करो। हाँ, और मैं अच्छा ये और...
2: तुम तो जान के करते हो कि मैं बुरा काम करूं। अच्छा, जिससे मुझसे कहा ही ना।
1: चलें, ये आज ही की बात याद आई।
2: अच्छा?
1: तो बेगम ने कहा कि प्याज जो है ना छोटी छोटी काट दो, तो मैं जैसे ही पहली छुरी चलाई, तुम मत करो, तुम मत करो। हमने कहा काट दे रहे ना, वो मेहनत कर रही थी, कोरमा बना रही थी सुबह से। तो नहीं, तुम मत करो, हम कर दे रहे हैं। नहीं, तुम मत करो। हमने कहा क्या हो गया, हम कर दे। कहते तुम और काम बढ़ा दोगे, तुम रहने दो, तुम जाओ, तुम जाओ। और ने सही में हाथ जोड़ के तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुम जाओ, हम कर लेंगे, रहने दो। तो हमने बल्कि इंसिस्ट किया, रहे करा लो, करा लो।
2: फजील, ये वाकई स्ट्रेटजी है कि लोग काम ही ना लगे, इतना बुरा करो, हाथ जोड़ लें भाई, हम खुद ही कर लें।
1: नहीं, एक्चुअली हम कोशिश बड़ी करते हैं, लेकिन हमें आती ही उतनी चीज है। अब आप 4 इंच छोटी पतली प्याज, अब मैंने को हमेशा वही प्याज काटी जो मैं काटता रहा हूँ ना अपने खाने बनाने के लिए, उनको अलग टाइप की प्याज चाहिए। अब ये बताओ, प्याज देखो एक तो गोल कटती है, एक छोटी छोटी, उनको पता नहीं कौन सी डिजाइनर प्याज चाहिए थी जो हम नहीं काट सकते, तो उन्होंने मना कर दिया, और जबकि खुद थकी हुई थी।
2: मतलब फजील, मान रहे हो ना तुम कि अगर डिजाइनर प्याज काटनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल सी कर सकती
1: है, कर सकती है।
2: हर तरह की वैरायटी ऑफ कटिंग,
1: हमें ये ड्रामे नहीं है ना, हम तो ये है कि भाई खाना बन जाए। तो आप देखिए, आयशा भी बहुत ईमानदारी से काम करती होंगी, लेकिन आता ही एक दो काम है तो उनको लगता कि नहीं भाई घर वाले।
2: बट मैं कहना चाहूंगी आयशा की मामा से कि प्लीज आयशा को आप दीजिए मौका, छोटी छोटी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दीजिए
1: काम खराब करने का।
2: नहीं, एटलीस्ट उठाना, रखना, सेट करना, जो भी कर सकती है।
0: मम्मा हेल्प करवाती है, लेकिन मेरी छोटी बहन आ जाती है तो फिर उसकी वजह से काम बढ़ जाता है। अब मम्मा कहती हैं कि तुम पहले लड़ाई कर लो, फिर मुझसे हेल्प करवाना।
1: हाँ, नहीं कोई बात नहीं।
2: तो नहीं, आप हेल्प कर सकती हैं छोटी बहन की टेक केयर करके, ये सबसे बड़ी हेल्प है जो मम्मा चाहती होंगी पर कह नहीं पाती होंगे आपसे। आप उसको अच्छे से एंगेज कीजिए, बगैर लड़े
1: कि लड़ गई और फिर लोग का काम बढ़ गया कि किसी के सर पे मार दिया और रो रही है एक तरफ, और वो चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रही है, ग्लास तोड़ ली पटक, लो भाई रहन, तुम रहन दो, तुम दोनों बैठ जाओ आराम से, हम कर लेंगे काम, ये होता है वैसे कभी कभार।
2: चलिए खैर, आयशा बहुत अच्छा लगा, आप इंजॉय कीजिए अपनी दावत और हमें लास्ट तक सुनिएगा, और इंशाल्लाह अगर आप लकी रही तो जरूर जीतेंगे आज गिफ्ट वाउचर। ओके मुझे लग रहा है अब तो शायद 9 बजने जा रहा है, एक आधी पेंडिंग रह गई, इतनी दावतें हो गई हैं।
1: एक जगह मैंने कहेगा बहुत सारे घरों का मेहमान भूखा रह जाता है।
2: हाँ, ये बात तो है।
1: एक बार मेरे साथ भी हुआ, तो 3 घर से आए, थोड़ा वहाँ खा लेते, थोड़ा वहाँ खा लेते, थोड़ा वहाँ खा
2: लेते, कहीं नहीं खा पाए,
1: तो थोड़ा वहाँ खाया, उसका मजा लिया, थोड़ा यहाँ का पेट भर गया लेकिन खा नहीं पाए।
2: हाँ, होता ना आपने,
1: हाँ, वो कि एक ही खाना खाए कायदे से, तो वहाँ पर कुछ और खा लिया, फिर वहाँ कुछ और खा लिया, फिर तीसरे घर गए। तो
2: ये होता ही, अगर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं तो आपकी एक तो प्लेट का साइज वही है, आप वो पोर्शंस भी थोड़े थोड़े, और आपकी लालच होती है मैं सब ट्राई कर लूं, उसमें आपको किसी का भी टेस्ट सही से नहीं आता।
1: और देखिए, एक घर से दूसरे घर पहुंचते हैं ना तो 20 मिनट तो लग ही जाता है आपको, 20 मिनट में पहले प्लेट का खाना का पेट भर चुका होता है ना, पहले आपने थोड़ा खाया लेकिन 20 मिनट हो गया तब तक पेट भर गया भाई,
2: सही।
1: क्या करें, तो ये परेशानी जो है चल रही है समाज में, इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम एक वोटिंग कराएंगे दोस्तों, कैसे खत्म की जा सकती
2: है। बिल्कुल, और वो लोग जिन्हें ना दावतें मिल रही हैं, ना जा रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं, उनके लिए एक्टिविटीज हैं
1: हमारे लिए, जैसे
2: हाँ, मतलब
1: हम उस पर बात करेंगे।

0: लेकिन 9 बजे के बाद
1: 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद उस पे बात होगी।
0: फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं,
1: राइट।
0: हमारे भी गले को आराम चाहिए क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है ना, हमारी दावतें कहाँ हो रही है,
1: सारी मारी जा रही है।
0: छोटा सा ब्रेक, दावतें हो जाए तो अच्छा है। दिल से देसी

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: फिलहाल 9:02 सुनते रहे FM 107, ये शो जश्न ईद।
2: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का, और हर किसी

एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई, मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद अल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद, फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं एंड 9:10 ऑन द क्लॉक। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो,

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ?
0: ईद मुबारक। मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं खान बात कर रहा
2: हूँ। कौन कौन खान? एक बार फिर से
0: ईद मुबारक। ईद मुबारक। एक दोस्त से मिलने के, एक दोस्त आप लोगों के साथ लाइव कॉल थी और दोस्त ईद मुबारक में कर रहा हूँ। तो ये ईद की खुशियाँ होती है, मेरी तरफ से आप लोगों की भी बहुत सारा ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो आप उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे, किसी कॉल आ गई थी?
0: आ जाइए ना। एक दूसरा दोस्त भी है, वो शायद अभी आपको कॉल कर लेगा इंशाल्लाह।
1: अच्छा,
0: जो याद है ना जी, सर्वर के शो में हम लोग चैंपियंस होते थे, मोहम्मद गफ्फार, फिर उसको बोलती थी गफूर भाई।
1: अरे वाह, यहाँ पे पूरी टीम आज भी मौजूद है, क्या बात है।
2: कुनबा है पूरा यहाँ।
0: अभी तो फिलहाल हम दो है, क्यों मेरी ड्यूटी अभी नाइट को हो गई, चेंज हो गई पूरी सब।
2: अच्छा,
0: तो
2: अच्छा, अच्छा।
1: अच्छा,
0: वो भी कॉल करेगा भी शो में हिस्सा लेने के लिए।
1: क्या बात है, चलिए।
0: तो पता नहीं कैसे कान से टच हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया उस वक्त। मैं दोबारा कॉल के लिए
1: होल्ड पे गई और फिर डिस्कनेक्ट हो गई, तो हमें लगा कि शायद आप लंबी बातचीत कर रहे हैं कहीं।
0: तो नहीं, बस वो पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गए।
2: तो चलें सवाल पे आते हैं। आज का सवाल ये है कि आप कैसे सेलिब्रेट ईद करना चाहते हैं? लोगों के साथ, बहुत भीड़ हो, यार दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, या फिर गिने चुने अपने करीबी?
0: बस यही यही ऑप्शन, पहले वाला।
2: पहले
0: ऑप्शन तो सुनना ही नहीं है, भीड़ बड़ा अच्छे लगते दोस्त।
2: ऑप्शन दो सुनना ही नहीं है भाई साहब, यही वाला
0: नहीं सुनना। यही पहले वाला ऑप्शन, भीड़ बड़ा दोस्तों के साथ गैदरिंग, और फैमिली है तो फैमिली भाई है, और या भतीजे भतीजा है, उनके साथ इकट्ठे बैठे गपशप लगाए।
2: तो ये बाहर बाहर जाके ढाबों पे खाना या फिर घर के अंदर?
0: नहीं, घर के अंदर।
2: घर
0: के अंदर या फिर खुद ही सामान लेके जाए, कहीं जाए और खुद ही पकाए।
2: अच्छा, खुद ही पकाए, मतलब बेगम के हाथ का नहीं सही लग रहा मामला?
0: हाँ, बेगम के हाथ का तो बस घर में, फिर वो तो अलग सी बात होती है ना, वो तो बेगम जब पकाती है तो वो अलग बात रहती है, उसके तो कोई हल ही नहीं है, वो तो फिर टॉप रहता है सबसे।
2: फिर तो मुक्का बना रहता होगा, खाओ यहीं पर बैठ के।
0: हाँ वो तो अलग बात है, उसकी तो कोई वो यानी उसकी मिसाल ही नहीं है बस।
2: तो कुर्बानी का बकरा आप यहाँ पर लेते हैं या फिर अपने मुल्क में?
0: नहीं, मुल्क में, वहाँ पर पैसे बेच के उधर ही वो लोग कर दिए कुर्बानी।
2: क्या बात है यार, बहुत साल हो गए मुझे, मैंने ईद नहीं मनाई, बकरा ईद नहीं मनाई मैं, और ईद भी नहीं मनाई, लेकिन इस बार बकरा ईद मनाने की बहुत ज्यादा चुल है मेरे अंदर, बहुत शौक है। मैं एकदम से ऐसा हो रहा कि इस बार नहीं है, आने वाला 2027 में
1: इंशाल्लाह।
2: तो इंशाल्लाह मैं 2027 में नहीं मिलूंगा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा बाहर के लिए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
0: अच्छा,
2: आपको ये बताना है कि ज़िबा आप कर जब अपने मुल्क में थे तो आपके फादर साहब करते थे या आपने कभी भी पार्ट लिया? क्योंकि मेरे साथ ही हुआ, हमेशा अब्बा ने ही पार्ट लिया है ज़िबा करते हुए, लेकिन एक बार उन्होंने मेरे हाथ पे छुरी दी थी जिसमें अब्बा भी बैठे हुए थे और कसाई भी बैठा हुआ था, और फिर मैंने छुरी जो है वो फेरी थी। तो आप कभी करा है आपने कभी ऐसा, कैसा फील था?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल किए, बकरी भी ज़िबा किए और गाय भी ज़िबा किए। तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी है।
2: हाँ बताएं।
0: जो मैं क्या ईद में, मैं पिछला एक ईद था तो उसमें मेरे भाई को जबरदस्त लात पड़ी थी, मेरे बड़े भाई को। तो मेरी साइज जो है मिस्टर सरवर से मिलती जुलती है, नाजिया जी फिर हंसेंगी। तो वो बेचारा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल पतला। तो जब मैं नेक्स्ट ईद में जब मैं गया तो गाय जैसी आ रही थी, तो मेरे भतीजा सब जब देख रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, वो अचानक से लेट गई। क्या अभी इसके साथ मैंने क्या लफड़ा करना है, इतना यानी भारी भरकम बदला। तो वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि यानी लेट गई, फिर हमने उसके पैर वैर बांधे और कुर्बानी मैंने खुद उसके कुर्बानी कर दी।
2: तो जब पैर पड़ा होगा तो फिर तो भाई दूर निकल गए भाई।
0: तो ये किस्सा था। और एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका एक फजील भाई का एक शो था, नाजिया नाम कॉल लंबी हो रही, सबसे माजरत।
2: नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, हमारे पास बहुत।
0: तो वो एक फजील भाई जो है वो एक लाई दो गेम जो खेल रहा था, वो अभी उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं।
2: हाँ,
0: तो इस बार मैं अभी, हाँ बिल्कुल, मैं पाकिस्तान गया था, आप माने, तेरे कजन के बेटे की शादी थी।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग सब एक रूम में बैठे हैं, रात में अभी दिसंबर में थी, तो ठंडी का मौसम था पाकिस्तान में। तो वहाँ पर तकरीबन समझो कि 15-20 लड़की, जिसमें यंग टीन एजर सारे। तो मैं आप लोगों को एक गेम बताता हूँ, ऐसा ऐसा गेम है, साफ यकीन नहीं मानी, सबने मोबाइल नीचे रखे, कोई किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। 3 घंटा तक हम लोग गेम खेले, 3 घंटा बाद एक दो विनर मुझे मिले, जिन्होंने

0: नेट क्रॉस किया।
1: अरे वाह क्या बात है। और देखो यही
0: लेकिन
1: तो
0: आजकल रेडी भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या वजह है यार।
1: काकी
0: भी चली गई और वो गेम भी चला गया लेकर आप अनिल भाई
1: ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन क्या है ना थोड़ा सा चेंज के लिए हमें ये जरूरी है कि हर वक्त ना हो, तो हम थोड़ा चेंज के लिए उनको हटा दिया गया है, क्योंकि फिर ये भी तो बात करनी है कि पैर पड़ जाता है ज़िबा करते हुए ये बातें करनी।
2: सर्वर मिर्जा तो बता रहे थे क्यों निकल ली ऊपर
1: ऊपर
0: अरे भैया कहाँ निकल लिए,
1: अरे लिफ्ट से कहीं गए होंगे ये बता।
0: अच्छा अच्छा तो और वेद भाई का क्या हाल है, वेद भाई नहीं आ रहे हैं?
1: वेद भाई इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे।
2: हमारे साथ एक कॉलर थे एंड ऑफ कोर्स आप हमें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कीजिए। बहुत ही हल्के फुल्के सवाल हैं और जितने लोग हमें कॉल करेंगे उन सबके नाम यहाँ पर लकी ड्रॉ में जाने वाले हैं। लास्ट में हम दो विनर्स अनाउंस करेंगे,
1: दो विनर अनाउंस करेंगे जिनको मिलेगा 1000 कतरे रियाल का वाउचर और ये मेडिकल वाउचर है। अच्छा नाजी हम ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, उससे पहले एक सवाल आपसे है कि आपने घर में क्या पार्ट लिया है जब आपके घर में ज़िबा होता था, तो कोई तो पार्ट लेती होंगी।
2: मेरा पार्ट था छुपने का,
1: मतलब सिर्फ ज़िबा के बाद का मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ज़िबा होने के बाद होता है ना, जैसे हम मर्दों का, हम बच्चों का काम होता था कि अरे चलो सीनी उठाओ, किचन में पहुंचाओ, फिर वो हो जाए तो फिर अरे चलो तुम वो भेजा लेकर आओ उसका, अरे चलो ये करो, तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो हुआ करती थी।
2: अच्छा मेरा
1: आपका कोई काम था किचन में कोई
2: होता
1: काम?
2: था होता था, क्योंकि मैं वैसे भी वेजिटेरियन और ये सारी चीजें किचन में आ रही, तो मेरा काम होता था ये सारे गोश्त के आने से पहले मैं अपना खाना बना के और हटा लूं।
1: अच्छा आप अपना बना के,
2: मतलब
1: आप बचपन से नहीं खाती थी?
2: हाँ मैं बचपन से नहीं खाती, तो मैं अपनी जो भी चीज मुझे बनानी है जो भी बनवानी है वो सारी चीजें मैं वहां से हटा के अपने डाइनिंग टेबल पे पहुंचा देती। ये मेरा सबसे पहले काम था कि उसके बाद क्या है कि बांटना, फिर मेरी दादी लग जाती थी, फिर बहुत काम चलता तो घंटों हिस्से बनते रहते थे, ये अलग हटाओ, ये शाम का है, ये खोरमे का है, पता नहीं क्या क्या बोटियां एंड ऑल दैट। तो मेरा बस इतना काम होता है मैं आके झांकती थी, देखती थी अच्छा अभी भी चल रहा है, अच्छा अभी भी चल रहा है काम, और मैं बस चली जाती थी और मैं इससे आगे नहीं, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ी सी मैं डर भी जाती हूँ और मैं फिर थोड़ा वेजिटेरियन होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट बकरीद में नहीं कर पाती हूँ।
1: कैसे हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो नॉनवेज ना खाए। अच्छा चलो कि एक कॉल आ रही है, हम वो कॉल ले लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे क्योंकि ये भाई भी कॉल कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
1: बहन जी, ईद मुबारक, कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: खैरियत।
1: तो ज़िबा किया आज?
3: हाँ जी, लेकिन हमने नहीं किया आज, नहीं किया लेकिन यहाँ नहीं किया, लेकिन अपने कंट्री में किया है।
1: अपने अपने कहा होम कंट्री में, क्या कौन सी होम कंट्री, कौन सी आपकी, पाकिस्तान, इंडिया?
3: नहीं मैं पाकिस्तान से।
1: पाकिस्तान में किस जगह से?
3: पाकिस्तान में कराची।
1: कराची, कराची की कई वीडियोस आजकल आ रही है मेरे पास, तो वहाँ पर भी ना ज़िबा वगैरह जब होता है तो उन सब की वीडियोस वगैरह हमारे पास आती है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था,
2: नाम नहीं पूछा फसील,
3: मेरा नाम सहीफा है।
1: सहीफा
3: जी,
2: सहीफा
1: ये नाम का मतलब सहीफा
2: क्या मतलब है आपके नाम का?
3: आसमानी सहीफे जो नाजिल हुए।
1: शरीफा सुना था हमने, एक शरीफा फल हुआ करता है।
2: ये अलग है वजील।
1: शहीफा, शहीफा मतलब क्या होता है? आसमानी,
3: आसमानी सहीफे।
1: ओके कूल,
3: जो तौरात ज़बूर वगैरह नाजिल हुई थी ना उनके साथ ही आसमानी
2: अच्छा।
1: तो आप जब किसी को ये नाम बताती हैं तो जैसे मैं कई बार ना अपना नाम बताता हूँ उसके अलग अलग मतलब, या ओ फदील, कोई फजील, तो कोई आजील, तो वो कर रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या?
3: जी मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ कोई शरीफा कर रहा होता है, कोई शरीफा कर रहा होता है।
2: लेकिन 100% आपसे पूछते होंगे कि आपके नाम का मतलब क्या है, क्योंकि आपका थोड़ा सा यूनिक सा नेम है माशाल्लाह।
3: पूरे स्कूल में मेरा अगर मामा वगैरह कोई आके या कोई भी आके कहता था तो वो जो गेट कीपर होते थे वो फौरन मेरी क्लास में आके कहते थे कि तीन पेरेंट्स आए बुला दे। कोई होता ही नहीं।
2: Nice.
1: अच्छा अब आते हैं हम जरा इस सवाल पे जो अभी हमने कुछ देर पहले नाजिरा से किया था, और सवाल ये था कि आपका किचन में कोई काम होता था जब ज़िबा हो जाता था, या फिर ज़िबा के दौरान आपका कोई काम होता था?
3: नहीं जी, ज़िबा के दौरान भी होता था और ज़िबा के बाद

0: तो बहुत ज्यादा होता था।
1: अच्छा क्या क्या काम होता था ज़िबा के दौरान, क्या होता था? मैं ये जानना चाहता हूँ।
0: ज़िबा जब हो रहा होता था तो बाबा कहते थे कि फला बर्तन निकालो, ये निकालो, ये ला दो, चादर निकालो और वहां बिछा दो ताकि वो गोश्त के जो पीसेस आएंगे वो रखे जाएंगे, तो वो पंखा चलाना है, ये करना है, ये सारे काम हमारे होते थे।
1: और
0: जब ज़िबा हो जाता था उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो था वो किया जाता था।
1: ये वाला तो हमने भूल ही गए। एक्चुअली में ज़िबा हमारा फेस्टिवल नहीं होता था, मर्दों का होता था कि चलो भाई कौन मजदूर है आज।
0: नहीं, हमारे जो घर के अंदर वाला काम होता है वो सारा हमने करना होता है, ये सारी चीजें
1: हमें पांच साल तक हमें लगा हम शहजादे हैं। उसके बाद छठे साल से पता चला नहीं नहीं ये पाल इसलिए रहे थे कि ये शहजादा नहीं, इसे लेबर बनाना है। फिर उसके बाद हाँ तुम यहाँ जाओ। फिर उसके बाद पहले रमजान में चलता था कि चलो वो मस्जिद जाना है, उनके घर जाना है, उनके घर जाना है। अब्बा को कहीं नहीं भेजते थे, अब्बा आराम से टांग के ऊपर टांग रख के बैठे रहते थे।
2: तो तुम दूर तक जाते थे?
1: हाँ, और क्या काम तो जा रहे हैं, तो उस वक्त कौन सा हमें साइकिल भी चलानी आती, छठे उम्र में कौन सी साइकिल चला लेते,
2: मतलब इतने छोटे बच्चे को अकेला भेज देते थे।
1: वो मस्जिद जाओ और फिर यहाँ जाओ और वहाँ जाओ। वो एक तो 30 दिन किया और जैसे ही आराम मिला 2 महीने बाद ये भी खट से आ जाता था। चलो भाई बेटा 3-3, 4-4 दिन यहाँ पर बटो, उधर जाओ और फिर वो साइकिल। अच्छा ये भी है, जब 8-9 साल में साइकिल चला तब पता चला इनको ज्यादा बड़ा लेबर भी चाहिए। तो छठे साल में, तो छठे की उम्र में आस पास भेजा इन्होंने कि हाँ भाई, क्योंकि और जब उनको ना 10-11 में साइकिल भी चलाने लग गया, 2.5 किलोमीटर तेरे नानी का घर है बेटा, जाए वहां पर दे आना, और फिर नानी का वो नानी जो वो छोटी वाली कजिन है ना उनके यहाँ चले जाना। अच्छा वहां गए तो बेटा बगल में ही जो है नुसरापी भी रहती, नुसरापी भी देना। तो हमें पता चला कि जितने छोटे थे उतना सही था, बड़े होते होते हम मजदूर अच्छे होते गए उनके लिए। तो हमारे घर वालों ने अम्मी कहती थी बहुत दुआ से
2: गाड़ी मिली होगी तो मेरे ख्याल से पूरी भैंस लदवा दी बेटा, बात आना
1: गाड़ी दी रही ना, उन्होंने कहा कि खर्चा होगा ये अपने लिए। तो अम्मी हमारी कहती थी कि अल्लाह हमने जो है बहुत दुआओं से फजील आया है। तो मुझे अब समझ में आया ये दुआएं किस बात के लिए दी।
2: अम्मा दुआ करी कोई आ जाए हाथ बटा दे मेरा।
1: तो हमारी अब पहले अप्पी हुई तो हमारे घर में वो है कि नहीं लड़की है भाई, तो
2: जबकि उससे भी काम कहना चाहिए।
1: हाँ तो वो मजदूर को मार सकती थी, मजदूर मर नहीं मार सकता था,
2: मतलब दिहाड़ी वाले थे। हाँ
1: मजदूर पीट जाता था लेकिन मजदूर पीट नहीं सकता था। तो खैर ये है कि भाई क्या कर सकते हैं, वो मजबूरी है। तो हम इसी तरह से करेंगे तो काम ये तो देखिए।
2: नहीं फिर ये सारी चीजें काम आई, तो फजील को कम उम्र में सारे रास्ते रट गए कि नानी दादी फलाने रिश्तेदार सब
1: कम उम्र में। हमारी रीढ़ मजबूत हो गई थी, हमें कंधे मजबूत हो गए।
2: पर साइकलिंग का तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग होता चला गया।
1: उससे पहले अम्मी ने सर मजबूत करा, कहे जो भी तसला लियो तसला सर पे रखो अच्छा चलता है, उसमें देर दूर तक ले जा सकते हो, कंधे पे तुम्हारे कंधे झुक जाएंगे। अम्मी माशाल्लाह बताया करती, टीचर थी ना तो। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था कि अब जैसे आपने बताया कि ज़िबा के दौरान क्या होता है, बट ज़िबा के बाद क्या काम होता था? खाना बनाना या मेकअप करके तैयार होना?
0: नहीं, खाना तो मेरी मामा जो है वो कलेजी वगैरह मेरी मामा बनाती थी। और फिर उसके बाद लंच में जो है वो हमारे यहाँ मतलब है हर ईद पर ये इसी तरह से चलता है की पहले कलेजी बनती है और वो भी रिश्तेदारों के डिस्ट्रीब्यूट होती है जो आस पड़ोस में होते हैं थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद फिर दोपहर में बिरयानी बनती है। तो वो बिरयानी जो है वो मामा, पहले जब मैं नहीं करती थी कुकिंग तो मामा बनाया करती थी, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट की तो फिर उसके बाद वो मेरे जिम्मे आ गई, तो फिर मैं ही बनाया करती थी।
2: बेचारे ये भी मजदूर है,
1: इसमें बेचारे का आप
2: देख लो,
1: नहीं देखिए इसमें फर्क है। आप एक घर के अंदर किसी
2: फजील तुमको बनाना नहीं पड़ा, सोचिए ना धोना बनाना सर्व करना कितना।
1: तो ये सब लोगों के सामने नहीं है ना, अपने घर वालों के सामने। हम मजदूर बाहर भी बन रहे हैं, उनको पता चल गया तो बाहर वाले भी काम देने लग गए थे। तो हमारे घर के बगल
0: तो
1: अब न इतनी बात आ गई,
2: वो कह रही मैं डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाती थी।
1: हाँ तो दो
2: डबल काम करे, डबल
1: हम कहा इनको कह रहे शहंशाह थी, ये भी
2: ये खुद दिहाड़ी की थी।
1: तो हमारा क्या देखो, महिलाओं का क्या है कि वो किचन के अंदर तक है जो काम है, हमारा बाहर तक। और हमारे घर के बगल हमारी भाभी रहती थी, भाभी बोले तो मतलब दूर की रिश्तेदार, उनको हम लोग भाभी कहते थे। तो उनको पता चल गया कि ये लड़का काम कर लेता है, तो उनने भी खूब दुआ करी। फिर उनका भी एक लड़का हुआ यासिर, वो हमारा भाई है, तो उनसे फिर हम दोनों मिलकर खूब मजदूरी करते थे। तो हमारा ये काम रहा है माशाल्लाह। उनने भी हमसे खूब करा, बेटा तुम जा रहे हो मस्जिद तक, हमारी वाली भी थाली पहुंचा दो, हमारी वाली भी गोश्त पहुंचा।
2: बाहर खड़े होकर देखते रहते थे कि कैमरा क्या थे, पता कैसे चल रहा है कि फजील जा रहे
1: हैं। हमारा गेट उनका गेट बहुत ज्यादा मिला हुआ था, तो हमारा गेट खुलता था आवाज करता था, समझ में आ जाता था उनको एक गेट खुला है बाहर निकल लगा वो दौड़।

0: आ जाती थी, बेटा जा रहे हो तो लेते जाओ। लेकिन माशाल्लाह हमारे अप्पी, हमारी अप्पी जो है वो भी बहुत काम करती थी, मेकअप करके तैयार हो जाती थी।
1: और
0: हाँ, जब लोग उनको देखें कह रहे क्या कहते हैं, वो शकील साहब की लड़की जो है वो तैयार होके आज जो है नानी घर जा रही है, नानी घर जब पहुंचे तो सब लोग देख के कहें वाओ है। उसके बाद जब मजदूर को देखे कि लुंगी पहना है, फटी बनियान है, उस पे कह अरे वाओ, फिर हमको देखकर भी लोग वाओ कहते थे, लेकिन वो लोग जो है वो कसाई होते थे। तो वो है, खैर माम, लेकिन यही है कि क्या कर सकते हैं, अब्बा का जोर चलता था घर पे,
1: अपने अपने एक्सपीरियंस है। लेकिन देखो मजबूती भी तो आई, अब वो रिस्पांसिबिलिटी और वो मजबूती, आज कॉन्फिडेंटली तुम कहीं भी जा सकते हो, आर्म बंद करके साइकिल उठाई और सीधा सही जगह पे डिलीवरी।
0: नहीं, मुझे ये बात का मैं प्राउड हूँ कि अब मैं भूखा नहीं मरूंगा, मजदूरी तो कर ही सकता, दिहाड़ी आ जाएगी।
1: देखो कितने काम तुम्हें सिखा दिए उन्होंने, अम्मा जो थी वो फोर साइटेड थी, उन्होंने सही सोचा कि सही तरीके से सिखाना है।
0: सही है,
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत मजा आया आपसे बात करके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
0: तो हमारी मजदूरी की बात हो गई भाई, ये इन
1: लेकिन बांटने जाने में मजा आता होगा, पता है जहाँ जहाँ जा रहे हो कुछ ना कुछ तुम्हें, देखो ईद का दिन ना जरूर लोग खिलाते हैं,
0: तो
1: कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, वैरायटी, तुम्हारी तो वैसे ही दावत होगी, 10 घर गए 10 दावतें होगी।
0: इसी पर लाइन बनी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, आप भी लीजिए ये वाला फन ना, हम तो कह ही रहे हैं
1: ना, आई एम ऑलवेज रेडी, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए,
0: हमारे घर कुर्बानी हुई है फिर कल आ जाइएगा, 6 जगह जाना है।
1: नहीं तो यहाँ पे तो मैं ड्राइव करूंगी, सारे सामान रखूंगी,
0: आपको लगता है ड्राइव करना आसान है, ऐसी जगह तंग जगह भेजेंगे जहां पर यू टर्न नहीं ले पाएंगे आप, बताइए। कि फजील ऐसा है तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन
1: हाँ भाई भाई, लेकिन मजा भी आता था, देखो बच्चे खुशी खुशी पार्टिसिपेट, क्योंकि देखो मैं तो थोड़ा डरती घबराती, मुझे अपने भाई का याद है, अब तुम तो परेशानी में जा रहे हो, लेकिन वो बहुत शौकिया जाता था, उसको हर मिनट लगता था, दादी से कहता कहीं और बांटने, कहीं और देना, कहीं और जाना, तो उसको एक्साइटमेंट था बांटने का।
0: ये उन बच्चों को होता है जो बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकले दे, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा नहीं निकलने देते हैं ना, उन बच्चों के साथ ये होता है,
1: ये बात
0: कि उनको और ज्यादा एक्साइटमेंट, मुझे भी होता था, लेकिन दोपहर में निकलना है, अम्मी कहती तुम काले हो जाओगे, फिर भी मैं रुका नहीं, काले तो फिर भी हो गया। खैर 9:28 दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम करेंगे मजीद आपसे बातचीत, सुनते रहते दिल से दही सी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू वेलकम इन आर हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियां, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाएं खुशियां।

0: उत्तर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa. Download the app QMC now.
4: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
5: महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद, फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं। 9:44 ऑन द क्लॉक और हम दोनों वापस आ चुके हैं।
8: बिल्कुल, और वापस आके काम करना हमें विनर बनाने का, विनर बताने का। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले कि कहां क्या इवेंट चल रहे हैं कतर में, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं इन चारों दिन। आज का दिन तो चलिए लगभग निकल गया, लेकिन कल परसों और परसों के बाद, यानी कि नरसों तो ये 3 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं कतर में। किन जगहों पे एक्टिविटीज या इवेंट चल रहे हैं?
7: बिल्कुल, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है और मैं कह सकती हूँ कतर में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाले जितने लंबी लंबी वीकेंड्स उन्हें मिल रहे हैं, छुट्टी मिल रहे हैं, उन्हें आप एक्साइटिंग बना सकते हैं विद ऑल दीज एक्टिविटीज।
8: और फिर वो भी मिल रहा है ना, बढ़िया वाला डिस्काउंट मिल रहा है, बूफे आ जाओ 45 में खिला देंगे।
7: तो मतलब अगर आप कतर के कल्चर को जानना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट ही आपका प्राइम मोटो है, तो आपके लिए हर तरह की एक्टिविटीज है। सबसे पहले आप जा सकते हैं द पर्ल आइलैंड और जीवान आइलैंड। यहाँ पर ईद उल अदा के सेलिब्रेशंस जारी हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली और फ्रेंडली एक्टिविटीज हो रही हैं और एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री रखी गई है। बहुत सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज हैं, जहाँ बच्चों को जो है डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए, और उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री है, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए। इसके अलावा मैं बताऊं कि ये जो वर्कर सपोर्ट और इंश्योरेंस फंड है, उनकी तरफ से ईद उल अदा सेलिब्रेशन 2026 फॉर कम्युनिटीज ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम सारे जितने लेबर भाई हमारे भाई हैं उनके लिए एशियन टाउन में और फिर अलखोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर जो है फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं। कल्चरल परफॉर्मेंसेज है, ट्रेडिशनल डांस हो रहे हैं, लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा रफल ड्रॉ भी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और साथ ही एक बहुत ही अच्छी स्पेशल अवेयरनेस फिल्म भी दिखाई जाएगी जो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए यहाँ पर जो है वो फ्री चेकअप्स भी करवाए जा रहे हैं, यानी जो फ्री डायबिटीज़ चेकअप है, ब्लड प्रेशर है या और भी, वो सारे एकदम फ्री हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यहाँ ये एक्टिविटी बिल्कुल फ्री रखी है, ज़रूर आप जाइए।

0: पार्टिसिपेट कीजिए. ये तीनों चारों दिन जारी है और इसके टाइमिंग्स जो है वो शाम में है 4 बजे से. तो आप यहाँ जाके इंजॉय कीजिए. और इसके साथ कटारा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगेन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो यहाँ भी आपका जाना बनता है. उसके साथ साथ आप जो है फायरवर्क भी इंजॉय कर सकते हैं. तो मौका मिलता है ज़रूर जाइएगा, इंजॉय कीजिएगा. ऑल टुगेदर यहाँ भी बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ और एक्साइटिंग प्राइजेस भी रखे गए हैं. तो देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, कतर गवर्नमेंट ने कितना कुछ तैयार कर रखा है. अच्छा, अगर मैं फायरवर्क की बात करूँ तो रात 8:30 है, ये याद रखिएगा. और बच्चों की जो ईदी या फिर बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स दिए जाएंगे वो शाम 5:30 है एक स्लॉट, और दूसरा स्लॉट है 8:00. तो ये टाइम्स आप जो है जहन में रखिए. कटारा में भी जाइए 27 से 30 में, पूरे चारों दिन ये एक्टिविटीज हो रही है.
1: बिल्कुल. तो अब हम आ जाते हैं आज का विनर कौन है इस पर. और तो नाजिया, कैसे आप चाहेंगी कि विनर का अनाउंसमेंट हो, जैसा नाजिया कहे?
0: मुझे लगता है मुंह से कर देना.
1: हाँ तो भाई आज के विनर हैं फजील.
0: ऐसे? ओ वाह!
1: अरे
0: काश ऐसा हो.
1: आप बताएं आप कैसे करना है, किसी को कॉल करके या फिर रैंडम हम एक नंबर के बीच कुछ चुने?
0: हाँ ऐसे ही कर लेते हैं और फिर उन्हें कॉल करके बताते हैं कि देखिए आप जो हैं वो जीते हैं.
1: या फिर कोई कॉल जैसे अलग अलग कर लेते हैं. आज हम ऐसा कर लेते हैं कि कोई अभी जिसने कॉल करी हम उनसे बात करते हैं.
0: ठीक है, उनसे पूछते हैं.
1: उनसे पूछते हैं, ठीक है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम फाजिल भाई, खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से.
1: आप लकी विनर हैं आज, पता है इस बात के विनर कि हमने आपको चूज किया है कि आप किसको विनर बनाएंगे.
0: एकदम खुश हो गए
2: करने के लिए आके, शायद मेरे किस्मत का ताला खुल जाए और वो विनर मैं हो जाए.
1: नहीं भाई,
0: हो सकता है आपका नाम भी जाएगा. हो सकता है, हो सकता है.
1: तो आप ये बताएं मुझे आपका नाम क्या है.
2: मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार.
1: मोहम्मद
0: गफ्फार, ये तो हमारे चैंपियन है. हाँ, पहचान.
1: तो गफ्फार साहब वेलकम,
0: आपको भी ईद मुबारक. खैर मुबारक
1: गफ्फार साहब. हम आज के विनर की तरफ बढ़े हैं, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस ईद उल अधा को, लोगों के साथ, 4-6 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, झुंड हो, या फिर 2-4 लोग जो बहुत करीबी हैं?
2: नहीं, मैं ईद इस तरह से मनाना पसंद करता हूँ जिस जो महफिल में सब लोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हो, अपना जो भी है नमाज उमाज पढ़े, बाकायदा बाइज्जत आए अपने माँ बाप से जो भी है, पैर पढ़े, दुआएं लिए, फिर कुर्बानी का जो भी बंदोबस्त है, जो भी इंतजाम है, पाकीज पाक तरीके से जो भी है अपन उसको दुआ करे, और जो है पूरा तरतीब करके जिस जिसको कुर्बानी देने का है साफ दिल से बनीयत साफ रख के अपनी कुर्बानी देके हमें दुआ करना है कि अल्लाह हमारी जीवी कुर्बानी को कबूल
1: फरमाए,
2: फिर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताए, वक्त बिता के उन लोग के साथ में रहना, रहने के बाद में जो है खाना पीना वो ये चलता, बच्चे वगैरह रहते जिसको ईद ही दिए, मीठा उठा जो भी है खिलाए करे, जो भी लोग आते फिर कुर्बानी दिए करे, तो उनकी भी जो है मेहमान नवाजी बा इज्जत दे के करना. इस तरह से पूरे महफिल में अगर रह के ईद मनाई जाए तो वो ईद भी बहुत अच्छी लगती है और जो है महफिल भी बहुत अच्छे से चलती
1: समझिए,
2: यानी खुशी का माहौल रहता जिस तरह ईद मनाना चाहिए उस तरह से.
1: लेकिन आज हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमें कम लोगों के साथ मजा करता है, करने का दिल करता है, जहाँ ज्यादा भीड़ ना हो. ऐसे किसी ने नहीं कहा, सबको झुंड चाहिए,
0: भीड़ चाहिए. हाँ, किसी ने भी नहीं कहा, क्लोज फ्रेंड्स.
1: और वैसे अगर आप कॉर्निश पे जाएं आपको यही झुंड दिखेगा, लोगों का यू नो हुजूम दिखेगा जो साथ में अपने दोस्तों यारों के साथ निकले. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. अब एक आपके ऊपर टास्क जो है वो लाजिम है, आपको वो मुकम्मल करना है. तो आपको एक नंबर हम दे रहे हैं, उसमें से 2 नंबर आपको अलग अलग अपने मर्जी के सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो 1 से लेकर 8 तक आपके पास रेंडम नंबर हैं. अब आप चाहे 1 सेलेक्ट करें, चाहे 2, चाहे 8, चाहे 7, व्हाटएवर. तो 2 नंबर कोई भी आप सेलेक्ट करें, इनमें जिनका नाम होगा वही जीतेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब शुरू होता है.
2: सेलेक्ट करता हूं 4 नंबर.
1: 4 नंबर. ओ, 4 नंबर. 4 नंबर पे वो शख्स है जिसने सबसे पहले कॉल करी थी. नाजी आपको याद है कौन था वो सबसे पहले कॉल किसने किया था?
0: कोई फीमेल थी, सुंदुस महल, क्या नाम था?
1: हाँ फीमेल थी, ये तो सही कहा आपने.
0: फीमेल थी बट नाम मैं
1: फिजा से नाम मिलता जुलता है.
0: निदा.
1: हाँ, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा. निदा आज की है विनर.
0: वाह भाई वाह, एक विनर
1: हमारी हो गई. निदा, बहुत ही उम्दा. अब एक और आपको भाई
2: जी, जी.
1: बताएं, 4 नंबर छोड़ के 1 से 8 पे कोई भी नंबर.
2: 7 नंबर.
1: ओ हो हो, 7 नंबर पे आपको याद है कौन? नहीं आपको तो नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ नाजिया. ये आसमान से जुड़ा हुआ इनका नाम।

0: अरे हाँ, जिनका यूनिक सा नेम था, कुछ तो था,
1: शफीफा।
0: शफीफा,
1: कांग्रेचुलेशन।
0: तो आज की हमारी दो फीमेल,
1: क्या बात है भाई, बहुत ही उम्दा। शफीफा और दोनों फीमेल ही हैं,
0: दोनों फीमेल्स
1: तो फीमेल हैं। फैजान भाई, फैजान भाई सातवें नंबर पे रह गए, अगर सात नंबर बोलते तो फैजान जीत जाते थे। लेकिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम भी इसमें डाला था मैंने। आठ नंबर बोल देते अगर आप, आठ नंबर अगर आप बोल देते तो मजा आ जाता। हम छह पर, आप छह बोल देते, हम आपको छह पर डाल देते मेरा भाई।
0: चले कोई बात नहीं, अभी आपके पास तीन दिन और हैं।
2: बोल के लेने से वो नहीं है भाई, अब जो ने भी कॉल किए, जिसकी किस्मत में आना है वो खुद चल लेते आता है।
0: हाँ ये तो है किस्मत, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, अभी दो दिन आपके पास, तीन दिन आपके पास है इनफैक्ट, इंशाल्लाह।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। तो यस, आज के हमारे जश्न ईद के दो अल्टीमेट फीमेल विनर्स हैं,
1: बिल्कुल, निदा और शफीफा।
0: और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी मुबारकबाद के साथ अब वक्त हो गया है कि हम भी यहाँ से आपसे अलविदा कहके जाएं।
1: बिल्कुल,
0: दावतें अगर बची हैं तो डालें,
1: दावतें अगर बची हैं तो डालें और एंजॉय करें इस खास दिन को, बाकी के बचे तीन दिन को एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ घूमें फिरें, एंड लेट्स नाच। फिलहाल बादशाह बेनदयाल और न्यूक्लिया की आवाज में गाना आपके लिए, एंजॉय करें और सुनते रहें FM 107। ईद मुबारक।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कतर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब है। एक खास शो जहाँ आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम, ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
1: अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक एवरीवन। और कतर से आपको एक प्यार भरा सलाम ऑन द शो कॉल कतर से सलाम। जी हाँ, वेलकम टू आवर स्पेशल ईद स्पेशल शो कतर से सलाम, जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं खुशियों को, कल्चर को और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आने वाले ट्रेडिशंस को। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया, और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ईद सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक जज्बा है जो दुनिया भर के लोगों को एक साथ, एक ही एहसास के साथ जोड़ देता है। एहसास है कुर्बानी का। इस स्पेशल सेगमेंट में हम जानेंगे कि ईद उल अधा किस तरह से मुख्तलिफ कल्चर्स में सेलिब्रेट की जाती है, और आज हम फोकस कर रहे हैं नाइजीरिया पर, एक ऐसा मुल्क जहां ईद की अपनी खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं, मिठास है, अपनी रूह है। और इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, मिस्टर अब्दुल वहाब, जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है, जो हमें बताएंगे कि उनके मुल्क में ईद का दिन कैसे गुजारा जाता है, लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कौन से ट्रेडिशंस जो हैं वो उन सेलिब्रेशंस को और भी स्पेशल बनाते हैं। सो स्टे विद अस एज वी एक्सप्लोर कलर्स, कल्चर एंड द ब्यूटीफुल स्प्रेड ऑफ ईद राइट फ्रॉम नाइजीरिया हियर इन कतर। ऑन द शो कतर से सलाम, लेट्स वेलकम हिम।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर से सलाम विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107, दिल से देश।
1: All right, we would like to welcome Mr. Abdul Wahab on FM 107 with the greetings. Eid Mubarak. How are you doing?
2: I'm fine, thank you very much. And nice to meet you. And I'm very happy to be with you.
1: Thank you so much. We'll start with this. To tell me, how do families in Nigeria usually celebrate Eid after the prayers?
2: In Nigeria, you know, when after they finish the prayer, at prayer ground, because you know we used to pray at the open ground. After that, we go home, and also in Nigeria, we used to gather together with family. Mm-hmm. Family come from all over the cities, mm-hmm, to the village, because mm-hmm, we come from urban city to the rural area. All mm-hmm of us, we have village. We go there, bring together. After finish the prayer, we go there, they go in and go to the house, we eat the special, you know, we have a special meal for the Eid. Mm-hmm. After that, you know, we greet each other, and also our family also go to another family's house, mm-hmm, in order to greet each other, and other families also from another family come to our family in order to greet us and pray. We pray together and we celebrate. That's mm-hmm it.
1: Nice, very nice. Okay, tell me, what are some of the unique traditions, you know, that make Eid ul Adha special in Nigeria?
2: In Nigeria, in the Eid, as I said earlier, after the prayer and Eid, we have something called Durban.
1: Okay.
2: We celebrate Durban. Like us, we play with us, we go to ground, maybe field or stadium. We gather together, all the cities gather together, and that's place, you know. They play with us, they make race with us, and the governor, and we have kings. All the cities have kings, we gather together, and that's area. And we celebrate dancing, and you know, we have a specific, you know, festival there, and everybody will be happy and distribute the food for everybody there. We eat and we celebrate.
1: Very nice, really interesting, yeah. Something very interesting.

0: also the family, bonding of the family together. Family, sometimes, you know, when we gather together, we try to tell each other, let us see you. I have not seen for a whole year. It's not good. Okay, we are family. In the same, you know, we do meeting that is not going to benefit each other. All of us that okay, we are family one. Also, as I say earlier, also those who don't know each other before, my son or my nephew, you know, they don't know each other. At that gathering, they know each other. They know that we are family. We are one. You know, all these things that is, you know, they hate each other.
1: Very nice. Beautiful message. Thank you so much for being part of our show, Khatar Se Salam. Thank you. It was really, truly a pleasure having you on the show and really pleasure listening to your beautiful insights about Eid celebration in Nigeria. Let me to add that your the way you narrated your experiences, your stories, and you know that cultural perspective, some way or the other, it added so much value to our conversation, and I'm sure it gave our listeners also a wonderful glimpse into how Eid celebrated in different parts and how Eid is celebrated in Nigeria. We really, really appreciate your time, your willingness to share such a tradition, such a meaningful traditions with us. Thank you once
0: thank
1: again,
0: we wish you
1: happiness, success, and Eid Mubarak to you and to your family. Thank you so much once again.
0: Wish you too. Thank you for having me. Thank you so much.
2: Aap sun rahe hain program Qatar Se Salaam with RJ Nazia, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: दोस्तों अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए. हम उम्मीद करते हैं कि आपने नाइजीरिया के ईद ट्रेडिशंस के बारे में कुछ नया और दिलचस्प जरूर सीखा होगा. हमारे मेहमान मिस्टर अब्दुल वहाब का बहुत हमने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वक्त निकाला और इतनी अच्छी तरीके से, इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी खूबसूरत यादें हम सबके साथ शेयर की. जी हाँ, ईद हमें सिखाती है कि खुशी तभी मुकम्मल होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं. जी हाँ दोस्तों, ईद का असल पैगाम मोहब्बत, शेयरिंग और यूनिटी है. और आज के प्रोग्राम ने हमें ये याद दिलाया कि दुनिया कितनी भी मुख्तलिफ क्यों ना हो, ईद सबको जोड़ देती है. ईद का एहसास और जज्बा हम सब के लिए एक जैसा ही है. दोस्तों ईद जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती है, खूबसूरत एहसास एक हम सब के अंदर पैदा करती है कि हम और आप मिलकर इन ट्रेडिशंस को जिंदा रखें, फैमिली बॉन्ड को, कम्युनिटी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं. ये हमें ये सिखाती है कि कल्चर चाहे जितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन ईद का पैगाम हर जगह एक ही है, मोहब्बत, सेक्रीफाइस, शेयरिंग, केयरिंग. मैं नाजी आपके साथ और ये शो आप सुन रहे थे कतर से सलाम. पहले अभी के लिए आपसे इजाजत लूंगी. अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए और दुनिया के रंगों को अप्रिशिएट करते रहिए और कहते रहिए एक दूसरे से ईद मुबारक.
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी.
4: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास. सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवश खान, 7 से 9 बजे सुबह. मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ. हर ईद की सुबह मनाए खुशियाँ FM.

0: महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार, ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना

0: के इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107, दिल से।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे मावज FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं FM 107 Qatar और मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ महावश और मौका है ईद उल अजहा का, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक का वक्त आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से ईद की खुशियाँ आपको नसीब हो, ये हमारी दुआ है। तो चले अपने शो का आगाज करते हैं। इस ईद उल अजहा पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है रूहानी लम्हे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम अपने दिल को रूहानियत के साथ जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईद उल अजहा सीरीज का ये खास शो है और हमारी इसकी पहली एपिसोड है। इसमें दो एपिसोड होंगी, आज आप पहले दिन सुन रहे हैं ईद के और फिर तीसरे दिन भी मेरा और आपका साथ रहेगा। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं बल्कि अताअत, सबर और सबसे बढ़कर शुक्र का पैगाम लेकर आता है। तो इस खास सिलसिले में हम बात करेंगे उन जज्बात की जो ईद को सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इबादत बनाते हैं। आज की हमारी थीम है शुक्र, यानी अल्लाह की नियमतों का दिल से एतराफ। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये रूहानी सफर। शुक्र एक बहुत खूबसूरत और गहरा एहसास है। ईद उल अजहा के मौके पर जब हम कुर्बानी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और खुशियां मनाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ हमें दिया किसने। यकीनन ये सब अल्लाह की अता है और इसी एहसास का नाम शुक्र है। आम तौर पर हम शुक्र को सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने तक महदूद समझते हैं, लेकिन हकीकत में शुक्र इससे कहीं ज्यादा वसी है। शुक्र का मतलब है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमत को पहचानें, उसकी कदर करें और दिल से इस बात को तस्लीम करें कि हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के फजल से है। ईद उल अजहा हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने का इरादा किया। तो ये सिर्फ अताअत ही नहीं थी बल्कि एक आला दर्जे का शुक्र भी था। उन्होंने ये साबित किया कि असल शुक्र ये है कि इंसान अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे। आज हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें बेशुमार नेमतें नजर आती हैं। हमारे पास घर है, खाना है, खानदान है, सेहत है और सबसे बढ़कर ईमान है, लेकिन अक्सर हम इन नेमतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ईद का ये मौका हमें याद दिलाता है कि हम रुककर सोचें और इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र का ताल्लुक सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी है। जब दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है तो इंसान के रवैये बदल जाते हैं। वो शिकायतें कम करता है, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कोशिश करता है। ईद के दिन हम खुशी मनाते हैं, लेकिन असल खुशी तब होती है जब हमारे दिल में शुक्र होता है। अगर दिल में शुक्र ना हो तो बड़ी से बड़ी खुशी भी अधूरी लगती है, लेकिन अगर दिल शुक्र से भरा हो तो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी महसूस होती है। कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की अमानत है और जब हम अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करते हैं और उसका गोश्त दूसरों में तकसीम करते हैं तो ये दरअसल शुक्र का अमली इजहार होता है। हम ये जाहिर करते हैं कि हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर है और हम उन्हें दूसरों के साथ
बांटने के लिए तैयार है। शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब बंदा शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह उससे राजी होता है और उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून पैदा हो जाता है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से अदा होता है। एक और अहम बात यह है कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें मजीद अदा करता है।

मन करते हैं कि हम अल्लाह की दी हुई चीज को अल्लाह की रजा के लिए वापस कर रहे हैं। यह एहसास इंसान के दिल को आजजी और शुक्र से बढ़ देता है। कुर्बानी का एक अहम पहलू ये भी है कि इसमें दूसरों का ख्याल रखा जाता है। हम अपने घर तक महदूद नहीं रहते बल्कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों, ज़रूरतमंदों और रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। यह अमल हमें सिखाता है कि शुक्र सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के साथ बांटने से मुकम्मल होता है। अगर इंसान के दिल में शुक्र ना हो तो अपनी नेमतों को सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखता है, लेकिन जब शुक्र पैदा हो जाता है वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। वो ये समझता है कि जैसे अल्लाह ने मुझे दिया है वैसे ही दूसरों को भी हक है। कुर्बानी हमें ये भी सिखाती है कि असल मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत होती है। जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखता है तो अपनी हर चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। यही वो जज्बा है जो इंसान को हकीकी मोमिन बनाता है। आज के दौर में कुर्बानी का ये पैगाम और भी अहम हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं, माल से, आराम से या अपनी ख्वाहिशात से। लेकिन कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी उन चीज़ों को अल्लाह की राह में छोड़ने में है। कुर्बानी का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि यह हमें आजजी सिखाती है। जब हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं तो हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ अल्लाह का है। यह एहसास इंसान को गुरूर से बचाता है और शुक्रगुजार बनाता है। शुक्र और कुर्बानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो इंसान शुक्रगुजार होते हैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, और जो कुर्बानी देता है उसके दिल में शुक्र और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खूबसूरत रूहानी चक्कर है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। ईद उल अज़हा

रहे हैं? क्या हम दूसरों के साथ बांट रहे हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे कर रहे हैं? अगर हम इन सवालों पर गौर करें तो हम अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने का मौका मिलता है। ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत पैगाम हमें एक बहुत अहम हकीकत की तरफ ले जाता है। हमारी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह की नियमतों को पहचान कर उनका शुक्र अदा करना है। शुक्र वो रोशनी है जो दिल को सुकून देती है और इंसान की सोच को मुस्बत बना देती है। आज के एपिसोड में हमने सीखा कि शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल, जबान और अमल तीनों का मजमुआ है। जब दिल में अल्लाह की नियमतों का एहसास हो, जबान से उसकी तारीफ हो और अमल में उसकी अदात और उसकी दी हुई नियमतों का सही इस्तेमाल हो, तभी शुक्र मुकम्मल होता है। ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जो हमें सबक देती है कि असल शुक्र ये है कि इंसान अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे। यही है वो जज्बा जो ईमान को मजबूत करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। हमने ये भी समझा कि शुक्र और सबर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खुशी में शुक्र, मुश्किल में सबर, यही एक मोमिन की पहचान है। कुर्बानी का पैगाम भी हमें ये सिखाता है कि हम अपनी नियमतों को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने का जज्बा पैदा करें और दूसरों के साथ बांटकर अपनी खुशियों को मजीद बढ़ाएं। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहाँ इंसान अक्सर नाशुक्री और बेइत्मीनानी का शिकार हो जाता है, शुक्र हमें एक नया जाविया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कीमती है और हमें उस पर अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। आइए इस ईद उल अज़हा पर हम ये अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को शुक्र से भर देंगे, हर हाल में, हर लम्हे और हर नेमत। हम अल्लाह ताला की अता करदा नियमतों को पहचानेंगे।

0: की कदर करेंगे और उन्हें दूसरों के साथ भी फायदा मंद बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ईद को बरकतों, रहमतों और सुकून से भर दे और हमारी जिंदगी को अपने जिक्र और शुक्र से रोशन फरमा दे। आमीन। ईद उल अज़हा की एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ईद के तीसरे दिन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कहीं बिरयानी की खुशबू तो कहीं शीर खुरमे की मिठास, कहीं दोस्तों का हल्ला गुल्ला तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं। ईद के रंग हजार हैं, मगर हर रंग सजता है अपनों के साथ। इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना ईद आपके घर चलकर मनाई जाए। पेश है खास शो घर घर ईद। आपकी फरमाइश, आपकी बातें और ईद के वो किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुना। हम बनेंगे आपकी खुशियों के साथी, ताकि हर घर मुस्कुराए और हर दिल गुनगुनाए। तो हो जाइए तैयार, सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ FM 107 पर।
0: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश एफएम 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

नए ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशियां

जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर। एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम।

107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये खास शो ईद नामा। वेल, हम सब यार कहीं ना कहीं अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में ईद मनाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दोस्तों के घर जाना, दोस्तों को घर बुलाना, उनके साथ कहीं दूर निकलना या छोटे बच्चों को ईदी देना या उनसे धीरे से प्यार मोहब्बत से वापस मांग लेना है, कह रहे तुम ईदी तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी खुश मिजाजी होती है और बहुत ही दिल को खुश करती है। लेकिन होम कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ईद कैसे सेलिब्रेट होती है, उसके अलावा यू नो ईद में क्या खाना होता है, कतर और सऊदी में क्या हिसाब किताब है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईद कैसी होती है, ईद कल्चर कैसा होता है पूरे ग्लोब में अगर देखें, पूरी दुनिया में अगर देखें, ईद की डिशेज क्या होती हैं, बिरयानी से लेकर चपली कबाब तक, आए हाय लाजवाब याद आ गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ अफ्रीका और यू नो तुर्की के बारे में भी। सारी जानकारी आज इसी शो में होगी भाई साहब, कि बाकी दुनिया में भी ईद कैसे मनती है, अपने शहर का तो सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को जिसका नाम है ईद नामा। दोस्तों, होम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बकरीद का जश्न बेहद बड़ा और रौनकदार होता है। ईद से कई हफ्ते पहले ही गली में या फिर कहें बड़ी सड़कों में बकरा मंडीज जो हैं वो सब सजने लगती हैं और लोग बड़े ध्यान से सबसे अच्छा बकरा जो है या ऊंट जो है उसे चुनते हैं, क्योंकि ये कहावत है कि भाई खूबसूरत बकरा होना चाहिए जब भी आप खरीदारी कर रहे हो। बच्चे इन जानवरों से घुल मिल जाते हैं और उन्हें खूब सजाते हैं, प्यार करते हैं, उनको टहलाते हैं, अपने हाथों से पत्ते खिलाते हैं। आपको याद है, आपने भी करा होगा, वैसे सींग पकड़ के चूमा भी होगा। मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं यू नो जब मेरे घर बकरा आता था तो अपने हाथों से पत्ता खिलाना, उसको घुमाने ले जाना, यू नो जब वो गंदगी करे तो अम्मी चिल्लाती थी, फिर खुद ही साफ भी कर रहे हैं। घर में एक ऐसी जगह उसे दे दी जाती थी जहाँ पर ठंडक ना हो, कई बार ठंडक में बकरीद जो है वो पड़ा करती थी, और घर का एक कोना दे दिया जाता था, वहाँ पर वो बैठता था, बोरी रखी जाती थी ताकि गंदगी ज़्यादा ना हो, और अम्मी को बड़ा वो होता था कि यार सारा काम उनको करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अम्मी भी बड़ा यू नो खुश होती थी कि घर में हम लोग इस काबिल हो सके कि घर में एक बकरा हो। तो ये खूबसूरत दिन जो है हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे, बड़ा ही बेहतरीन होता है। हालांकि अब हमारे साथ यू नो नहीं हो सकता, ये हम वो नहीं कर सकते जो हम एक वक्त पे किया करते थे अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ की ईद भी बिल्कुल अलग होती है। और वैसे भी ईद के दिन मर्द सुबह जल्दी नए कुर्ता पैजामा पहनकर ईदगाह या यू नो मस्जिद जाया करते हैं नमाज के लिए। जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे वो ये ईद के दिन की, कि आदमी बाकी दिन सजे या ना सजे, ईद और बकरीद इन दो दिन नए कुर्तों के साथ आदमी को देख लो भाई साहब सजता है ना, मतलब उसके चेहरे पे अलग चमक होती है नहाने वहाने के बाद लेकिन बहुत खूबसूरत दिन होता है। वहां से लौटकर फिर यानी

0: कंट्रीज में गरीबों तक मीट पहुंचाते हैं या पहुंचवाते हैं। खाने की टेबल पर यहाँ ग्लोबल फ्यूजन देखने को मिलता है। एक ही टेबल पर साउथ एशियन बिरयानी, अरब की मंडी और टर्किश कबाब्स के साथ साथ अमेरिकन स्टाइल बारबेक्यू, लैम्ब चॉप्स भी मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग लोग आते हैं ना, वो अपना अलग अलग खाना लेकर आते हैं। और जब आप दूसरों का खाना खाते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ आपके शहर का खाना ही नहीं, बाकी मुल्कों का खाना भी कितना लजीज है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने शहर का खाना छोड़कर दूसरे के शहर का खाना खाने लगते हैं और वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे मेरे साथ ये अक्सर होता है कि कितना भी मुझे आप कढ़ाई पनीर या कढ़ाई शोरबा और ये सारी चीज़ें खिला दो, चिकन खिला दो, कढ़ाई चिकन हो गया, मटन चिकन हो गया, हरा चिकन हो गया, लेकिन बारबेक्यू का और जो हमस का मज़ा है गार्लिक के साथ, ओए होए भाई, भुलाया नहीं जाता है। मैं इंडिया भी चला जाता हूँ, मुझे इसकी याद आने लगती है। तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार सिर्फ आपके मुल्क का नहीं, आपके कम्युनिटी का नहीं, बाकी अलग अलग मुल्क का अलग अलग खाना कितना लाजवाब होता है। उसके अलावा शाम के वक्त इस्लामिक सेंटर्स और लोकल कम्युनिटी हॉल्स में भी स्पेशल ईद कार्निवाल लगते हैं। इन मेलों में या कहें इन कार्निवाल में बच्चों के लिए बाउंसी कासल, फेस पेंटिंग, हलाल फूड ट्रक्स और इस्लामिक बुक स्टॉल्स भी होते हैं। ये माहौल बच्चों को अपनी रूट्स और कल्चर से जोड़े रखते हैं और उसमें मदद भी करते हैं। वेल, ईद कल्चर पूरी दुनिया में किस तरह से सेलिब्रेट होता है, इस पर भी ज़रा नज़र डालते हैं। अगर हम पूरी दुनिया पर नज़र डालें दोस्तों, तो बकरा ईद का कोर मैसेज है एक, और वो है सेक्रीफाइस और चैरिटी। ये मैसेज पूरे दुनिया में एक ही है, पर हर कंट्री अपना एक यूनिक लोकल तड़का इसमें जरूर जोड़ देती है। ग्लोबल लेवल पर ये त्योहार, ये फेस्टिवल सिर्फ एक मजहबी फर्ज नहीं है, बल्कि कल्चर और भाईचारे का एक बड़ा डिस्प्ले बन जाता है। देखिए, ये आम वर्ड जो है वो आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा, ब्रदरहुड, भाईचारा, लेकिन ये भाईचारा जो लफ्ज है ये बड़ा भारी, ये आप जब आप रहते हैं कहीं दूसरे मुल्क में तब आपको इस लफ्ज की अहमियत असल में पता चलती है, लेकिन आप अपने मुल्क में रहेंगे तो ब्रदरहुड या भाईचारा इस लफ्ज को आप उस नजर से नहीं देखते जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो इंडोनेशिया और मलेशिया में इस त्यौहार को या इस फेस्टिवल को हरी राया हाजी कहते हैं। यहाँ लोग ट्रेडिशनल बातिक प्रिंट्स या कहें पहनकर नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी के बाद मीट से स्लो कुक्ड स्पाइसी मीट करी को तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं रेंदंग, और केतुपद यानी कि राइस केक भी बनाते हैं जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। खास तौर पे ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है, साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको ज़्यादा बेहतर समझना है तो हरी राया हाजी इसे भी समझिए, क्योंकि इन मुल्क में बकरा ईद को यही कहते हैं और ट्रेडिशनल बातिक प्रिंट्स पहनकर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कुर्बानी के बाद मीट से अलग अलग डिशेस जो हैं वो तैयार की जाती है। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में क्या, नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों में ईद के दिन लैम्ब के हेड और ऑर्गन्स को ग्रिल करने की एक अलग ट्रेडिशन है जिसे बोलफफ कहते हैं, और लोग अपने चेहरे पर ऑर्गेनिक हैना यानी कि मेहंदी लगाते हैं। आप अपने हाथों में मेहंदी लगती हुई देखी होगी, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका के जो मोरक्को अल्जीरिया की कुछ कम्युनिटी हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बोलफफ कहते हैं इस ट्रेडिशन को, जहाँ पर हेड और ऑर्गन्स को ग्रिल किया जाता है। और टर्की में इस त्यौहार को कुर्बान बैरमी कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। साथ ही में ऑर्गेनिक हैना जो है वो चेहरे पे लगाई जाती है, जहाँ सरकारी छुट्टी भी होती है। इन मुल्कों में बड़े बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं और उनसे जो ब्लेसिंग ली जाती है उसका एक नाम है, उसे कहते हैं बैरम लाजमा, बैराम लाजमा। हो सकता है मेरी प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो, लेकिन मोस्टली आसपास की ही बात है। सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ट्रेडिशनल हॉर्स रेसेस और लोकल रेसलिंग मैचेस भी होते हैं। हर जगह का पहनावा, जबान, टेस्ट, ये सब अलग हो सकता है, लेकिन जब कुर्बानी का मीट बन जाता है तो गरीब और अमीर के बच्चों की दीवार जो है वो बिल्कुल टूट जाती है। ये ग्लोबल यूनिटी और शेयरिंग की फीलिंग ही बकरीद की या बकरीद को पूरी दुनिया में सबसे अलग और पाक त्योहार या फेस्टिवल बनाती है।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी

लेकिन फेमस ईद डिशेज के बारे में क्या है, इन मुल्कों में कौन कौन से डिशेज बनते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। वेल दोस्तों, बकरा ईद यानी कि ईद उल अधा पर पूरी दुनिया में मीट, खुसूसन मटन और बीफ के लाजवाब पकवान बनाए जाते हैं। हर रीजन का अपना एक यूनिक तरीका होता है मीट को कुक करने का। अगर हम देखें कि कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन कौन से स्पेशल डिशेज हैं, तो साउथ एशिया की तरफ पहले चलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर बिरयानी को बहुत ज़्यादा चाव से खाया जाता है, इतना ज़्यादा कि मेरे जैसा पेट निकला है। मटन या यू नो बड़े का जो गोश्त होता है वो बड़ा ही खुशबूदार बासमती राइस के साथ बनाया जाता है, जिसमें खड़े मसाले हैं, सैफरन यानी कि केसर का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जब आधा 80% जब पक जाता है चावल, तो उसे दम पर लगाया जाता है। ये ईद दावत का किंग है, यानी कि बिरयानी जो है ना वो दावत का किंग माना जाता है। फिर शीरखुरमा बगैर किसी मीठे के कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल हो सकता है क्या? शीरखुरमा ईद का सबसे जरूरी मीठा डिश। ऐसा समझिए शीरखुरमा की बाकी दिनों इतनी इज्जत होती हो या ना होती हो, लेकिन इस दिन, इस अकेले दिन अगर कोई कह सकते हैं राजाओं का राजा है, तो वो शीरखुरमा है। बिरयानी किंग है, लेकिन किंग का किंग शीरखुरमा है। ये दूध, सेवइयों से, खजूर से और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है और उनको धीमी आंच पर पकाया जाता है, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। कई बार बिरयानी से ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप अच्छा शीरखुरमा तैयार कर रहे हैं तो इसमें बिरयानी से ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें देखिए, अगर आपने देखा हो बिरयानी में भी यू नो अलग अलग चीज़ें डलती हैं, खड़े मसाले डल रहे हैं, महंगी चीज़ें डल रही हैं, गोश्त डल रहा है, है ना, ड्राई फ्रूट्स भी कहीं कहीं होता है, लेकिन शीरखुरमा में ड्राई फ्रूट सबसे पहले, दूध महंगी चीज़, खोया महंगी चीज़, खजूर, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और शीरखुरमा का भी अलग एक रौला होता है भाई साहब। उसके अलावा कलेजी फ्राई, जिनको इनका शौक है उनको इतना शौक है कि बगैर इसके वो रहते ही नहीं है। और ईद की सुबह नमाज के बाद सबसे पहली डिश अक्सर कलेजी होती है, और ये मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कतर, सऊदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कलेजी सबसे पहली चीज है, आते ही हाँ भाई कलेजी लगा दो, ये पहली लाइन होती है। ये बनाया जाता है और इसका बनाने का जो तरीका है वो बड़ा आसान सा होता है, थोड़े मसालों के साथ ये बन जाती है और टेस्टी बड़ी लगती है। तवे पर भी मसालों के साथ इसे चटपटा बनाया जाता है, अगर लोगों को चटपटा पसंद है तो, है ना, तो उसे फ्राई करके आप बड़े ही लाजवाब तरीके से एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा चपली कबाब, पाकिस्तान, क्या लाजवाब चीज़ आपने दी है मेरा भाई। ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मिंस्ड मीट यानी कि कीमा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है इस खास डिश में, और वही इस डिश की मेन चीज़ भी है, मिंस्ड मीट यानी कि कीमा। और फिर उसको मसाले वगैरह में कई लोग अंडा भी डाल लेते हैं, कई लोग अलग से मसाला डालते हैं, तेल का अच्छा छिड़काव और फिर तवे में दबा दबा के, ओहो चलूं क्या खाने। और कुरकुरे कबाब होते हैं, ये तो भाई और मज़ा आ जाता है, क्योंकि कबाब भी देखिए अलग अलग होते हैं। एक तो शामी कबाब होता है वो अलग है, फिर एक कबाब होता है जिसे सिर्फ कीमा होता है और उसमें थोड़े बहुत मसाले होगा, एक है चपली कबाब, दुनिया भर के मसाले, है ना, और फिर गहरे ऐसे तवे में जिसमें तेल ज्यादा हो और फिर अंडा डाल के चपटा पूरा कर दिया जाए और फिर धीरे से सरका दिया जाए बड़े से चपली कबाब को, वो है जो कुरकुरा मजा आता है ना, टमाटर का यूज होता है, फिर दिल खुश होता है चपली कबाब खाने में। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, अब बात करते हैं अरब वर्ल्ड यानी कि मिडिल ईस्ट के बारे में। गुजी, ये वो लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा, अभी कुछ देर पहले हमने इसके बारे में बात भी करी थी। ये गल्फ रीजन की एक ग्रैंड डिश है, इसमें एक पूरा पूरा लैम, साबुत बकरा जो है वो स्लो रोस्ट किया जाता है। हालांकि इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ग्राउंड के अंदर रोस्ट करता है, कोई ग्राउंड के बाहर रोस्ट करता है, कोई पूरी तरह से बंद कर देता है, कोई खुले में रोस्ट करता है, अलग अलग तरीका है, जिस तरह का आपको यू नो टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से तय होता है। और फिर उसके अंदर नट्स जो हैं, रेजिन्स हैं, किशमिश हैं, मसाले हैं, स्पाइस है।

राइस है, ये सब जो है ऊपर से डाला भी जाता है। कभी कभार आप इसको भी कुक करते हैं, और कई कई बार पूरे बकरे को रोस्ट करने के बाद आप चावल के ऊपर रखते हैं, फिर जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं उस गोल सी प्लेट या गोल सी बड़ी थाली के अगल बगल, फिर सारे मिलकर खाते हैं, इससे जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड देन अरब वर्ल्ड में एक और डिश है जिसका नाम है माबूल। ये स्पेशल शॉर्ट ब्रेड कुकीज होती हैं जिन्हें ईद के लिए ही बनाया जाता है। इनके अंदर खजूर, वॉलनट्स, पिस्ताचियो की स्टफिंग जो है वो की जाती है। तो किंग का किंग मामूल, किंग गोजी। और फिर मनसब के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जॉर्डन और सऊदी के कुछ हिस्सों में फेमस। इसमें मटन को एक स्पेशल ड्राइड योगर्ट जो सॉस में पकाया जाता है और राइस के साथ भी परोसा जाता है। ये काफी हद तक गूजी जैसा होता है लेकिन थोड़ा अलग है ना, हर मुल्क का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ही फर्क जो है वो हो जाता है, लेकिन बड़ा ही लाजवाब। फिर साउथ एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के अगर हम बारे में बात करें तो रेंदांग का जो डिश है उसे कोई नहीं भूल सकता। इस डिश को दुनिया के सबसे टेस्टी खानों में गिना जाता है। आपने बहुत कम ट्राई किया होगा, द थिंग इज कि ट्राई तो मैंने भी कभी नहीं किया लेकिन सिर्फ सुना है, कभी मौका लगा तो ज़रूर। तो गोश्त को कोकोनट मिल्क और लेमन ग्रास, ग्लेंगल और टर्मरिक जैसे मसालों के साथ घंटों तक पकाया जाता है। अच्छा घंटों तक क्यों? क्योंकि एक तो गोश्त वो वाला गोश्त होता है जो आसानी से पक जाता है, एक गोश्त होता है जिसमें भाई चार सीटी में तो कुछ होगा नहीं, चार सीटी में तो सिर्फ अंगड़ाई लेता है वो, कम से कम 10 सीटी चाहिए। तो अब यहाँ कुकर का तो हिसाब है नहीं, इसको स्लो आँच में धीमे धीमे पकाना है, तो करीब कभी कभार डेढ़ घंटा दो घंटा बहुत आसानी से लग जाता है तेज़ आँच में भी। तो बड़े का जो गोश्त होता है वो टाइम तो लेता है दोस्त, घंटों तक पकाया जाता है और फिर उसके बाद जूस जब सूख ना जाए और मीट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको पकाते रहो। और फिर दूसरा डिश केटूपट, ये भी एक बड़ी यू नो इंटरेस्टिंग डिश है। ये राइस केक्स होते हैं जिन्हें कोकोनट लीव्स के अंदर वीव करके उबाला जाता है, इसे रेंडांग के साथ सर्व किया जाता है। देखो ये रेंडांग तो वो हो गया कि जो बड़े गोश्त के साथ कोकोनट मिल्क और लेमन ग्रास ये सारी चीज़ें धीमी आंच में देर तक, लेकिन कुछ मीठा तो चाहिए ना, तो राइस केक वगैरह कोकोनट लीव्स के अंदर वीव करके इसे सर्व किया जाता है। एक तरह से चटनी भी मान लीजिए, ये भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये बड़ी ही टेस्टी होती है मैंने जो सुना है भाई, है ना। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, आप टकरा जाते हैं ना जब दूसरे मुल्क में होते हैं तो आपको पता चल जाता है भाई कैसी चीज़ें चल रही कैसी नहीं। उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका और टर्की के बारे में हम बात कैसे ना करें यार। जैसे मोरक्को में मैंने बताया था बोलफफ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश है। बकरा ईद के दिन मोरक्को में सबसे पहले लैम्ब लिवर को फैट यानी कि चर्बी में लपेट कर स्कीवर पर या ग्रिल जो है वो किया जाता है। तो इसकी तो वीडियो आपने कई बार देखी होगी, अगर आप शौक रखते हैं चैनल्स का या फिर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं लंबी वीडियोस खाने की देखते हैं, क्योंकि आजकल तो रील पे आ ही जाता है, हमारी उम्र वही पहुंच चुकी है कि दो घंटा खाली बैठे रहो तो भूख हो जाती है ना, भूख लगने लगती है, और हमारे सोशल मीडिया को पता है कि इसको कब खाने की चीज दिखानी है, और ये भी पता है कि दूसरे मुल्क की दिखाएंगे तो ज्यादा देर तक देखेगा ये। तो बुलफफ जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश है। बकरा ईद के दिन मोरक्को में सबसे पहले लैम्ब लिवर को, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, लैम्ब लिवर को फैट यानी कि चर्बी में, वाइट चर्बी में लपेट दिया जाता है और फिर ग्रिल करने के लिए रख दिया जाता है। इससे गोश्त जलता नहीं है, अंदर अंदर भाप से वो पकता रहता है, और फिर जो चर्बी है वो चर्बी तो टाइम ही लेती है, उससे उसके अंदर का जो तेल है मेन वो निकल जाता है, लेकिन फिर चर्बी का जो टेस्ट होता है वो लाजवाब, उफ भूख ही लगने लग गई। खैर इस पर जीरा और पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि और भी ज्यादा टेस्टी लगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं टर्की के कुर्बन कवुरमसी डिश के बारे में। ये एक सिंपल पर बेहद ही स्वादिष्ट या कहें टेस्टी डिश है। कुर्बानी के फ्रेश मीट को उसकी अपनी ही चर्बी यानी कि फैट में बिना पानी के सिर्फ नमक और थोड़े से अनियन के साथ स्लो कुक किया जाता है। ये वो आला है कि जैसे हमारे अपने मुल्क में कुर्बानी के बाद सबसे पहले कलेजी खाई जाती है, तो वैसे तुर्की में कुर्बान या कहे कुर्बन कवुरमसी खाई जाती है। और फिर टैगिन मोरक्को और अल्जीरिया में मीट को वेजिटेबल्स, सूखे आलू बुखारा और एप्रिकॉट्स के साथ एक मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर स्टू किया जाता है, और ये भी बड़ा ही लाजवाब बड़ा ही टेस्टी होता है। और मोरक्को की ये वाली चीज़ जो बता रहे ना, मोरक्को और अल्जीरिया में मीट को वेजिटेबल्स या आलू बुखारा इन सब के साथ, ये वाली तो वीडियो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने देखी थी, आई थी मेरे पास। बड़ी मज़ेदार होती है, उम्मीद है कभी ऐसा मौका मिले कोई ऐसा दोस्त बन जाए, मैं तो दोस्त इसीलिए बना रहा हूँ आजकल।
बाकी अब बात करते

0: देखते हैं दोस्तों पूरे दुनिया में कैसे ये दिलों को जोड़ती है बकरीद, क्योंकि अभी तक जितना भी आपने सुना, कुछ देर बाद आपके रील पर ये खाने की चीजें आएंगी और कुछ लोग फोटोज भी अपलोड करेंगे। ये दिन ही ऐसा है बकरीद का कि जब तक फोटोज ना देखो, जब तक फोटोज अपलोड ना करो, अपनों को विश ना करो, और इन सब चीजों को करने के बाद जब तक सोशल मीडिया पे रील ना आ जाए बकरीद की, या फिर सोशल मीडिया पे खानों की रील ना आ जाए, कैसे चलेगा। तो बकरीद जो है ये सिर्फ एक मजहबी त्यौहार या फेस्टिवल या कुर्बानी का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक ऐसा पाक मौका है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक धागे में पिरो देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जमीन पर हजारों तरह की जबानें बोली जाती हैं, हर कंट्री का अपना अलग पहनावा है और हर खाते पीते घराने का टेस्ट अलग है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो ये सारी दीवारें पल भर में टूट जाती हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, चाहे वो इंडिया की किसी छोटी सी गली में हो, सऊदी अरेबिया के बड़े मैदानों में हो, या अमेरिका के किसी मॉडर्न स्टेडियम में हो, एक साथ कतार में खड़े होते हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये सीन अपने आप में ही दिलों को एकता या कहें यूनिटी का सबसे बड़ा सबूत देता है। इस ईद का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कुर्बानी का गोश्त बांटने की ट्रेडिशन। इसमें एक गहरा इंसानी मैसेज भी छुपा है दोस्तों। जब मीट को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए होता है, माइंड यू, एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए होता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या जिनको अच्छा खाना नसीब नहीं होता। ये रूल सोसाइटी से अमीर गरीब का फर्क मिटा देने का है। जब एक अमीर इंसान अपने हाथ से किसी जरूरतमंद को खाना देता है तो वहां सिर्फ पैसा या मीट नहीं बदलता बल्कि दिलों का कनेक्शन बनता है। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि हमारी खुशियां तभी पूरी होती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आज के डिजिटल दौर में ईद दिलों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। बॉर्डर चाहे कितना भी दूर हो, लोग वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरफ जहां घरों में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, वहां दूसरी तरफ दूर बैठे रिश्तेदार भी इस जश्न का हिस्सा बनते हैं। ईद पर लोग पुरानी नाराजगियां भूल जाते हैं और उसको भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगर आपकी किसी से नाराजगी हो तो भूल जाइए और गले लगाइए, क्योंकि यही तो वो महीना है, यही तो वो दिन है जब हम किसी से जो दूरी बनाकर रखे हुए हैं एक साथ आ सकते हैं। यही मौका है कि हम एक बार फिर से साथ आ पाए, जिनसे राइवलरी है, जिनसे चिढ़ है, जिनसे गुस्सा है, दिलों से ये बातें निकाल दें कि हम किसी के काबिल नहीं या कोई हमारे काबिल नहीं, और एक मुसलमान भाई की तरह साथ में खड़े हों। ये माफी और मोहब्बत का मौसम होता है जब पूरी दुनिया में एक साथ लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हर रोते हुए को हंसाते रहें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और खूबसूरत जगह बनाएं। हम सभी का आपस का रिश्ता है हमेशा, खुदा करे ऐसे ही मजबूत रहे, आपका दस्तरखान हमेशा बना रहे और आपका घर हंसी खुशी से गूंजता रहे। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही दोस्तों, बकरीद के इस पूरे सफर में नजर डालने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये त्योहार, ये दिन, ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन की इबादत या दावत तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी ग्लोबल चेन है जो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को एक गहराई से जोड़ती है। हमने देखा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के मोहल्लों में रौनक लगती है, अरब देशों में मॉडर्न और ग्रैंड तरीके से इसकी तैयारियां होती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में माइनॉरिटी में होने के बावजूद लोग बड़े कन्वेंशन सेंटर में एक साथ जमा होकर अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं। हर जगह का पहनावा अलग है, लैंग्वेज अलग है और दस्तरखान अलग है, लेकिन ये जो डिशेज हैं, जैसे कि साउथ एशिया की बिरयानी, मिडिल ईस्ट की खुजी और साउथ एशिया का रंदांग, इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। मगर इस सब के बीच जो चीज बिल्कुल नहीं बदलती वो है इस त्योहार की रूह, जो है सेक्रीफाइस, शेयरिंग और टुगेदरनेस। ये त्योहार, ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां लोग अपनी पर्सनल जिंदगियों और डिजिटल स्क्रीन में बिजी हो चुके हैं, ईद एक नेचुरल ब्रेक की तरह है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने से बाहर निकलें और दूसरों के बारे में भी सोचें। कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इंसान अपने अंदर के लालच, ईगो और सेल्फिशनेस को खत्म करे। जब हम मीट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद में बांटते हैं तो हम एक बेहतर और बराबर सोसाइटी यानी कि इक्वल सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। ये फीलिंग दुनिया के हर कोने में एक जैसी होती है, चाहे वो कोई अमीर मुल्क हो या कोई छोटा मुल्क हो। तो दोस्तों, ये था शो ईदनामा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी FM 107 पे। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसीकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी ए फॉर अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, ए फॉर अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन ए फॉर अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो, तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
5: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगू, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, ईद के 14 दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ, ओनली ऑन FM 107।
6: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू।

0: थान पे सचती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107 दिल से।

की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रीफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: Midnight Melodies only on FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से 2 नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी 1 नंबर प्लेट को आगे की तरफ और 1 नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।
3: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को कर्बे आजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब के हुजूर कल्ब सलीम लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ खड़े हुए माबूद चाहते हो, आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनांचे वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया, आप लोग बोलते भी नहीं? इसके बाद वो उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई। वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाही थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिखाया।

इस आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया है। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेक आमाल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसां कर दें? क्या मुत्तकियों को हम फाजरों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सधे हुए घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहां तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने, और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार न हो, बेशक तू ही असल दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया हर तरह के म्यामार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासिल थे। हमने उससे कहा, ये हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन उसके लिए हमारे हां तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है।